एफएम बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 की आषाढ़ माह की दूसरी तिथि। तदनुसार 23 जून सन 2026। अभी प्रातः के 5:56 हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब प्रारंभ होती है।

एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत तेजी से विकसित हो रही भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय शक्ति है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में एक निजी मीडिया हाउस द्वारा आयोजित सम्मेलन में कहा कि पिछले दशक में भारत की उपलब्धियां राष्ट्र प्रथम की भावना से निर्देशित रही हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में लिए गए निर्णय और कार्रवाई सदियों तक देश के भविष्य की आधारशिला रहेंगी।
1: भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
0: प्रधानमंत्री ने G7 शिखर सम्मेलन में अपनी हाल की भागीदारी का उल्लेख करते हुए कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत के प्रति भारत की अटल प्रतिबद्धता को समझा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की चेतना में सदियों से सहेजी गई स्मृतियां जीवंत हैं। वर्तमान में उठाए गए कदम अगले 1000 वर्षों के लिए भविष्य को आकार देंगे। सरकार के 12 वर्ष के सेवा कार्यों का स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब देश के लगभग 45,000 गांवों तक मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि आज कुछ लोग संविधान की बात उठाते हैं, लेकिन जब वे सत्ता में थे तो नक्सलग्रस्त क्षेत्रों में संविधान का नाम लेने पर ही गोली तक मार दी जाती थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि

0: स्वच्छ भारत अभियान और मेक इन इंडिया जैसी पहल इस कारण सफल हो सकी है क्योंकि देश के लोगों ने राष्ट्र को सर्वोपरि रखा और देश के प्रति कर्तव्य निभाए। आर्थिक सुधारों से मध्यम वर्ग को मिल रहे लाभों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कर राहत उपायों से परिवारों की कर मुक्त आय बढ़ी है। भारत और मोरक्को के बीच आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक कल नई दिल्ली में हुई। बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव डॉक्टर विनोद बाहड़े और मोरक्को के राष्ट्रीय न्यायिक पुलिस ब्रिगेड के प्रमुख हिशाम बाली ने की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने सूचना साझा करने, क्षमता निर्माण और बेहतर कार्य प्रणालियों के आदान प्रदान के माध्यम से आतंकवाद के खिलाफ द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नैफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। उम्मीद है कि ये पोर्टल नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने और किसानों, सदस्य संस्थानों और हितधारकों के हित में बेहतर डिजिटल मंच प्रदान करेगा। लखनऊ आग हादसे में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थी मारे गए और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज के लिए संभावित हाजियों के आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हज नीति 2027 जारी करते हुए कहा कि आवेदन हज कमेटी ऑफ इंडिया के पोर्टल और हज सुविधा ऐप के जरिए ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं, जिससे ये प्रक्रिया ज्यादा आसान और सुलभ हो जाएगी। फीफा विश्व कप में इस समय अमेरिका के फिलाडेल्फिया में ग्रुप 1 के मुकाबले में फ्रांस और इराक के बीच मैच चल रहा है। इससे पहले ग्रुप जे के मैच में अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया। दोनों गोल अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने किए। इसके साथ ही मेसी ने 18 गोल के साथ जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोज का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। एफआईएच प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी दिल्ली से हम अनुप्रसारित कर रहे थे हिंदी में समाचार। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। लीजिए पेश है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। शुरुआत इस देशवंदना से करेंगे।

कार्यक्रम आराधना के आखिर में हम सुनवा रहे हैं आपको जगजीत सिंह और साथियों के स्वरों में कबीर भजन।

0: जगजीत सिंह के गाए इस कबीर भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं खेती की बात। आज का विषय है जून माह में सब्जी फसलों की खेती और देखभाल। वाचन स्वर चित्रलेखा तिवारी का है।
1: किसान संगी हुआ राम राम, जय जोहार। संगी हुआ बरसात के दस्तक के संग जून महीना आ गए। ये महीना सिर्फ मौसम बदले के संकेत न है बल्कि नया तैयारी नया फसल के शुरुआत संदेश घलो देते। यही समय में खेती के काम और फसल के उचित देखभाल किसान मन के सफलता के आधार बनते। तो आज के खेती के बात में हमन जून महीना में लगाए जाने वाले प्रमुख सब्जी फसल के खेती के उन्नत तकनीक और देखभाल ए विषय में बातचीत आप मन सो करबो। तो चलो खेती के ज्ञान अनुभव के ये सफल शुरू करत हन। संगी हुआ जून महीना में साग भाजी के सफल खेती पर महत्वपूर्ण बात ये है कि जून महीना बरसात के शुरुआत के समय होते। ए समय में साग भाजी खेती पर उपयुक्त माने जाते। अ किसान भाई मन ए महीना में रमकेरिया हो गए, लौकी हो गए, करेला हो गए, मखना हो गए, खीरा, तरोई, बरबट्टी, मिर्चा, भाटा, पताल जैसा खूब सारा सब

0: सब्जी के फसल के बुआई करथे अउ ओकर लाभ भी लेथे। तो सबसे पहली तो खेत के तैयारी के बात करबो, तो खेत के अच्छी तरह जोताई करके माटी ला भुरभुरा बना लेवा अउ आखिरी जोताई जब करिहा ओ समय सरे गरे गोबर खाद या कंपोस्ट खाद 8 से 10 टन प्रति एकड़ के हिसाब से डालना एवं लाभदायक रथे। एकर ले माटी के उर्वरा शक्ति बढ़ते और फसल के बढ़वार भी अच्छा होते। जून महीना में बरसात के संभावना रथे, एकर बर खेत के पानी के निकासी के उचित व्यवस्था बहुत जरूरी है। असाढ़ा जा रथे, पानी ज्यादा भर जाही तब पौधा ह जलक जाथे, जलही तहां सब सर जाथे जी, बीमारी भी बढ़ जाथे। एकर बर खेत म नाली बना के अतिरिक्त पानी ल निकाले के व्यवस्था जरूर करो। और बीज बुवाई के बात करबो तो हमेशा प्रमाणित और रोग मुक्त बीज लही आप मन बुआओ। बीज बोए के पहली बीज उपचार जरूर कर लेवाओ, एकर ले बीज जनित रोग से बचाव होही और अंकुरण भी आपके बढ़िया होही। अब फसल उगे के बाद समय समय में निराई गुड़ाई करत रहो, मने घास कांदी हो जाते ना, कांदी बढ़ जा रहे तो ओला जो खरपतवार के थन ओला हटा देवा, नहीं तो ओकर से का हो ही ना, जो उन खातू माटी दवाई जो भी डालबो तो खरपतवार ज्यादा ले लेते। और सही के पेड़ पौधा जो रहते जो हमार साग भाजी रहते ओ हर ओकर कम पोषक ला लेते, तो एकर बार खरपतवार ला हटाना बहुत जरूरी है। एकर बार 15 से 20 दिन के अंतराल में ना कांदी ला नींदते चढ़ा जा जाके देखा छोट छोट हो है तुरंत उखाड़ के फेंक देवा। और जून महीना में नमी अधिक रही थे एकर कारण कीड़ा और रोग के प्रकोप भी बढ़ जाते। रमकेरिया में फल तना छेदक बीमारी, भाटा में चूसक कीट बीमारी, बेल वाला जो सब्जी है फल मक्खी के समस्या आ जाते। तो किसान भाई मन नियमित रूप से खेत के निरीक्षण कराओ और जौन भी बीमारी के आपला संकेत मिलत है, दिखत है ये किस्म के है ना, कुछ भी बीमारी लगते तो ओकर संकेत दिखे लगते, जैसे पाना में दिखते, डारा में दिखते, तो कीट नियंत्रण के जो भी उपाय है ओला आप मन करत रहो। कीटनाशक आप घर में रखा और समय समय में छिड़काव करते रहो। रोग नियंत्रण पर भी सावधानी जरूरी है। आप पाना में जैसे धब्बा रोग हो गए, झुलसा रोग हो गए है ना, फफूंद जनित बीमारी हो गए, तो ये सब जैसे ही दिखत है तो कृषि विशेषज्ञ के सलाह के अनुसार दवाई छिड़कत रहो। हमन रेडियो में बार बार अपन बताते रहन के कौन किस्म के साग भाजी में जो भी बीमारी लगत है तो कौन किस्म के दवाई डालना है, तो रेडियो भी सुनाओ ओकर से भी जानकारी लेवाओ और कृषि वैज्ञानिक मनसूबी बीच बीच में सलाह लेके आप दवाई के छिड़काव करत रहो। ओकर से आपके नियंत्रण रही बीमारी में और फसल नुकसान भी कम होही। आप पोषण प्रबंधन घलो महत्वपूर्ण है, बढ़वार बर संतुलित मात्रा में नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास और जैविक खाद जो सूक्ष्म पोषक तत्व के उपयोग बर उत्पादन और गुणवत्ता दोनों बढ़ाते। तो किसान भाई बहनी में नियमित सिंचाई, उचित जल निकासी, कीट रोग नियंत्रण और समय में पोषण प्रबंधन करके जून महीना में साग भाजी के फसल के अच्छा उत्पादन और अधिक लाभ कमा सकत है। तसंगी हुआ बढ़िया खेती किसानी कराओ, साग भाजी बुओ, अच्छा लाभ लेवाओ। यही संदेश के संग आज के खेती के बात में अटके कल नवा विषय के संग फिर उपस्थित होबो। तब तक के लिए राम राम, जय जोहार।
1: जून माह में सब्जी फसलों की खेती और देखभाल विषय पर आप सुन रहे थे खेती की बात। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, FM बैंड 103.2 MHz पर। प्रातः के 6:35 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है रामचरित मानस गान। मुख्य गायक है श्रीकांत पारगांवकर, संगीत संयोजन सतीश भाटिया का है।

इसी लोकाचार का गान किया गया है। उधर सुहागिनी स्त्रियां कुंवर और कुमारियों को कोहबर में ले आती हैं, जहां कुल देवता की पूजा अर्चना में मंगल गान के साथ लौकिक रीतियां संपन्न हो रही हैं। यहां पर वर वधु एक दूसरे के मुंह में कौर खिलाते हैं, जिसे लहकौर कहा जाता है। सुहागिनों के रूप में उपस्थित पार्वती श्री राम को तथा सरस्वती सीता को लहकौर सिखा रही हैं।

अवध के निकटवर्ती प्रदेशों तथा भारत के कतिपय अन्य भागों में विवाह संस्कार संपन्न हो जाने के बाद दुल्हा दुल्हन को कोहबर में ले जाए जाने का विधान प्रचलित है, जहां कुलदेवता की पूजा की जाती है। रामचरितमानस के प्रस्तुत प्रसंग में

0: अभी हम प्रसारित कर रहे थे रामचरित मानस गान। मुख्य गायक थे श्रीकांत पारगांवकर। FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं चिंतन। आज का विषय है निवारण। आलेख स्वामी आत्मानंद का है।
1: मानव जीवन सुख और दुख से भरा है। कोई ऐसा मनुष्य नहीं होगा जिसके जीवन में केवल सुख ही सुख हो, या कि केवल दुख ही दुख। हां, यह बात सत्य है कि जीवन में सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। थोड़ा सा सुख पाने के लिए हम कितना अधिक दुख उठाते हैं, बहुधा इसकी ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। जीवन के दुखों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है।

एक श्रेणी वह है जहां दुख सुख के आगे आगे चलता है। इसे यूं भी कह सकते हैं कि दुख की प्रक्रिया में से गुजरकर मनुष्य को सुख प्राप्त होता है। एक घंटा फुटबॉल का मैच देखकर सुख की संवेदना पाने के लिए कलकत्ते में लोग टिकट खरीदने के लिए खुले आकाश के नीचे 48-48 घंटे क्यू में रहकर वर्षा और धूप का कष्ट सहा करते हैं। धन की प्राप्ति हमारे मन में सुख की संवेदना उठाती है, पर इसके लिए हमें कितना श्रम करना पड़ता है, कितना कष्ट उठाना पड़ता है। भोग के साधन जुटाने के लिए हमें कितना कष्ट झेलना पड़ता है। फिर इसी प्रकार जब सुख की संवेदना नष्ट होती है तब भी हमें दुख होता है। इसे अनिवार्य दुख कहा जा सकता है। यदि तनिक गहराई से सोचें तो देखेंगे कि इस अनिवार्य दुख के मूल में हमारी तृष्णा विद्यमान है। तृष्णा को महाभारत में प्राणांतक रोग कहा गया है। यो असौ प्राणांतिको रोगः ताम तृष्णाम त्यजतः सुखम। इस दुख से उबरने का रास्ता तृष्णा के त्याग को बताया गया है। दुख का दूसरा प्रकार वह है जो हम पर बलपूर्वक थोपा जाता है। हम उसे नहीं लाते बल्कि वही स्वयं आकर हम पर हावी हो जाता है। जैसे हम रास्ते से जा रहे हैं और कोई वाहन आकर हमसे टकरा गया, हमारी हड्डी टूट गई और हम महीनों प्लास्टर में बंधे पड़े रहे, या फिर हमें किसी रोग ने धर दबोचा। दुख के ये रूप ऐसे हैं जिन्हें हमने नहीं बुलाया था पर जो खुद आकर हमें पीड़ित करते हैं। इनसे बचने का कोई उपाय नहीं है, तो फिर इन दुखों के लिए क्या किया जाए? गीता में हमें इसका उत्तर मिलता है, जहां कहा है तांस्तितिक्षस्व भारत, अर्जुन उनको सहन करो। ऐसे अपरिहार्य दुख को सह लेना पड़ता है। एक तीसरे प्रकार का दुख है जो न तो अनिवार्य है न अपरिहार्य, पर जिसे हम स्वयं ले आते हैं। बात अटपटी लग सकती है पर है सत्य, और वह है ईर्ष्या से पैदा होने वाला दुख। इसे आत्मकृत अथवा खुद पैदा किया गया दुख भी कहते हैं। इसके कारण हम दूसरों के सुख को देखकर स्वयं दुख का अनुभव करते हैं। इसे बोलचाल की भाषा में डाह भी कहते हैं। मन की यह वृत्ति बड़ी विचित्र है, यह हमें अकारण ही जलाती है। हमने अपने पड़ोसी के यहां रेफ्रिजरेटर क्या देखा कि हमारी ईर्ष्याग्नि भड़ककर हमें जलाने लगती है। यदि मेरा कोई परिचित अपने किसी प्रशंसनीय कार्य के कारण जनप्रिय और यशोधन हो जाता है तो वह मुझे सुहाता नहीं। यदि किसी को लॉटरी मिल जाती है तो मेरा हृदय कचोटने लगता है। हमारे एक परिचित सज्जन एक घटना सुनाया करते हैं। एक वर्ष उनके किसी परिचित ईंट के ठेकेदार को अच्छा मुनाफा हुआ। उससे भेंट होने पर वे उससे बोले, इस साल तो आपको अच्छा खासा लाभ हुआ है। क्या खाक लाभ हुआ, पिछले साल तो घाटा हो गया था। ठेकेदार का उत्तर था, अजी पिछले साल की बात छोड़िए, इस साल तो आपको खुशी मनानी चाहिए। हमारे परिचित सज्जन बोले, अजी क्या खाक खुशी मनाऊं, मेरे पड़ोसी ठेकेदार को तो दुगना फायदा हुआ है। ठेकेदार ने शिकायत के स्वर में कहा, यह आत्मकृत दुख है, इसे हमें अपने मन का जोर बढ़ाकर बलपूर्वक झटक देना चाहिए। तो अनिवार्य दुख को दूर करने का उपाय है तृष्णा पर अंकुश लगाना, अपरिहार्य दुख को सह लेना चाहिए तथा आत्मकृत दुख को मन का जोर लगाकर पुरुषार्थ प्रकट करते हुए झटक कर दूर कर देना चाहिए।

निवारण इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे चिंतन। आलेख स्वामी आत्मानंद का था। FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। आज के शेष और मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी हम लेते हैं कार्यक्रम विवरण के माध्यम से।

सुबह 8:30 पर छत्तीसगढ़ी में समन्वित साहित्यिक पत्रिका मोर भुइयां में आज सुनिएगा पुरातात्विक स्थल मल्हार के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व पर श्री संजीव पांडे से महेंद्र साहू की बातचीत और सुबह 10 बजे प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर। ये दोनों कार्यक्रम हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। हर दिन की तरह सुबह 7:05 पर हम पेश करेंगे कार्यक्रम आज।

पांडे से महेंद्र साहू की बातचीत और सुबह 10 बजे प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर, ये दोनों कार्यक्रम हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। हर दिन की तरह सुबह 7:05 पर हम पेश करेंगे कार्यक्रम आज सुबह। सदाबहार नगमों का आनंद लीजिएगा सुबह 7:30 पर। नई तरह के कार्यक्रम का सफर हम तय करेंगे सुबह 10:30 पर। सुबह 11 बजे सुनेगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। संध्या 5 बजे समय होगा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ का। संध्या 5:05 पर हम लेकर आएंगे साहित्य की, जिसके अंतर्गत कहानी पेश करेंगी चलमेश्वरी राव, काव्य पाठ करेंगे वीवी रमन किरण। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता होंगी डॉक्टर सुप्रिया भारती। महिलाओं का प्रिय कार्यक्रम महिला सभा हम लेकर आएंगे संध्या 5:35 पर। सामायिक चर्चा का विषय होगा नारी शक्ति का अदृश्य संघर्ष। क्रम होगा फोन करें गीत सुने का और प्रस्तुतकर्ता होंगी मोनाली ठाकरे। ग्राम सभा की ओर हम बढ़ेंगे शाम 7:20 पर। बेरा के गोट में चर्चा का विषय होगा पारंपरिक खेती का। शाम 7:30 पर किसान वाणी का समय होगा। आज की बात में चर्चा होगी बकरी पालन और पशुधन प्रबंधन और स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम किसान वाणी गाँव में ग्राम सरायपाली विकास खंड कोटा में महिला स्व सहायता समूह द्वारा दाल प्रसंस्करण इकाई के उद्घाटन समारोह की रेडियो रिपोर्ट हम आपके लिए लेकर आएंगे। कार्यक्रम का संपादन चित्रलेखा तिवारी द्वारा होगा और कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता होंगे डॉक्टर सुप्रिया भारती। रात्रि 8 बजे अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन के नगमों को हम पेश करेंगे सुगम संगीत में। रात्रि 8:15 पर हम बिखेरेंगे महक कार्यक्रम रजनीगंधा की। इसी के साथ कार्यक्रम विमरम समाप्त हुआ। FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने वाले हैं। संस्कृत में और हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल निजी मीडिया हाउस के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वसनीयता, स्थिरता और वैश्विक हित के लिए प्रतिबद्धता पिछले दशक में भारत की उपलब्धियों के मूल में रही है। G7 शिखर सम्मेलन में भागीदारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की अटल प्रतिबद्धता को समझा है। सरकार के 12 वर्ष के कार्यों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों की प्रतिबद्धता से सफल हुई है।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं। श्री मोदी ने सस्ते आवास, कर सुधार, स्वास्थ्य देखभाल योजना और बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे का उल्लेख किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में कल ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में हुई प्रगति सहित आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री डोभाल ने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर, भरोसेमंद और सकारात्मक संबंध दोनों देशों के बीच विश्वास और बेहतर समझ को मजबूत करने में सहायता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की और सकारात्मक संबंधों की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। भारत और मोरक्को के बीच आतंक

0: गांधी संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने सूचना साझा करने, क्षमता निर्माण तथा बेहतर कार्य प्रणालियों के आदान प्रदान के माध्यम से आतंकवाद के खिलाफ द्विपक्षीय सहयोग और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 अलंकरण दिए जाएंगे। सुविख्यात टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी, पार्श्व गायिका अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा पद्म पुरस्कार पाने वालों में शामिल हैं। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। यह पोर्टल नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगम संचालन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उम्मीद है कि यह पोर्टल नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने और किसानों, सदस्य संस्थानों तथा हितधारकों के हित में बेहतर डिजिटल मंच प्रदान करेगा। लखनऊ अग्निकांड में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई थी और 9 अन्य घायल हो गए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए परामर्श जारी किया है। यह यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे अमरीकी ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में बेल्जियम के जूलियन कैरागी से खेलेंगे। महिला सिंगल्स में भारत की 7 खिलाड़ी मुख्य ड्रॉ में शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी दिल्ली से हम अनुप्रसारित कर रहे थे समाचारों को। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 7:05 हुए हैं। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम आज सुबह की ओर।

0: आज सुबह।
1: कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं का हृदय से अभिनंदन। कीजिए स्वीकार अपनी रेडियो साथी अपेक्षा शर्मा का स्नेहिल नमस्कार।

श्रोताओं, सुबह जब हमारी आंखें खुलती हैं तो हमारी नजरें किसे तलाशती हैं? जी हाँ, हम माँ को ढूंढते हैं। सुबह होते ही पूरे घर में माँ की आवाज सुनाई देती है। उनके बिना घर का एक छोटा सा काम भी नहीं होता है। वो घर में एक पत्नी, बहू, माँ और बहन बनकर ना जाने कितनी जिम्मेदारियां निभाती हैं। और ना केवल शादी के बाद बल्कि शादी से पहले भी एक स्त्री के रूप में कभी वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही होती है, तो कभी माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बनी होती है। श्रोताओं, ये बिल्कुल सच है कि स्त्री सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि जीवन की निरंतरता का आधार है। उसके बिना परिवार की कल्पना अधूरी है, समाज की संरचना अधूरी है और मानव सभ्यता का

अस्तित्व भी अधूरा है। लेकिन एक सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए कि क्या हम उसे वो सम्मान और अधिकार दे पा रहे हैं जिसकी वो हकदार है। आज हम विज्ञान, तकनीक और विकास की बातें करते हैं, हम चांद और मंगल तक पहुंचने का गर्व करते हैं, लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारी बेटियां, बहनें, माताएं या सभी महिलाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं? शायद नहीं। आज भी उन्हें कपड़ों पर, अपने आने जाने के समय पर, अपनी हंसी, अपनी बातों और अपने निर्णयों तक के लिए जज किया जाता है। और इससे भी ज्यादा दुख तब होता है जब एक महिला विधवा हो जाती है तो वो अपने जीवन साथी को खोने के साथ ही समाज की नजरों में अपनी पहचान, अपना आत्मविश्वास और अपना सम्मान खो देती है। आज भी हमारे आसपास ऐसी कई महिलाएं होंगी जिन्होंने जीवन साथी को खोने के बाद आर्थिक कठिनाइयों का सामना किया है, सामाजिक उपेक्षा और तानों का बोझ उठाया है। श्रोताओं, आखिर उनका अपराध क्या है? विधवा होना कोई दोष नहीं है, बल्कि जीवन की ऐसी परिस्थिति है जो किसी के साथ भी घट सकती है। जिस दर्द से महिला गुजर रही होती है उस पर समाज का व्यवहार उसके घावों को और भी गहरा कर देता है। एक विधवा भी उतनी ही सम्मान की अधिकारी है जितनी दूसरी महिलाएं हैं। उन्हें भी खुश रहने का अधिकार है, निर्णय लेने का अधिकार है, अपनी पसंद का जीवन जीने का अधिकार है और पुनः विवाह करके घर बसाने का अधिकार है और सबसे बढ़कर सुरक्षित रहने का अधिकार है। इन्हीं गहरी बातों और समस्याओं के निवारण के लिए हम हर साल 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाते हैं। ये दिवस उनके सम्मान में मनाया जाता है ताकि उन्हें भी अपना जीवन स्वतंत्र होके सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार मिले। श्रोताओं, किसी भी स्त्री की पहचान उसके पति के होने या ना होने से नहीं होती, बल्कि उसके अस्तित्व, साहस और मानवीय गरिमा से होती है।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
2: जब बात हो परिवार की सेहत, स्वाद और भरोसे की, तो नाम हो हल्दी वा इंडिया। शुद्ध शहद ए टू बिलोना की कच्ची घानी सरसों तेल और प्राकृतिक खाद्य उत्पादों की विश्वसनीय श्रृंखला के साथ हल्दी वा इंडिया लेकर आया है शुद्धता और गुणवत्ता का विश्वास।
3: श्रोताओं, लीजिए पेश है आज का ट्रैफिक अपडेट।
4: नमस्कार मित्रों, मैं हूं उमाशंकर पांडे। बिलासपुर जिले की आज की, अभी की यातायात संबंधी जानकारी के लिए आप सुन रहे हैं ट्रैफिक अपडेट साथ बिलासपुर। आप सभी का स्वागत है। शहर के साथ ही सुगम यातायात व्यवस्था के बीच संपूर्ण बिलासपुर जिले की सभी सड़कों में सभी प्रकार के वाहन अपनी स्वाभाविक गति में दौड़ रहे हैं और इन दौड़ते भागते वाहनों से बिलासपुर जिले का सभी स्थानों से सुगम यातायात संपर्क बना हुआ है। आप सभी से निवेदन है, सड़कों में उतावलेपन से बचें, धैर्य, संयम एवं यातायात के नियमों के प्रति निष्ठावान रहें। ये सभी सद्गुण आपकी हर यात्रा सरल और कुशल बनाएंगे तथा ये भी तय है कि आप अपनी यात्रा पूरी कर सकुशल घर भी वापस आएंगे। मित्रों, आप सभी जान चुके हैं कि हमारा बिलासपुर स्मार्ट सिटी बन चुका है। यहाँ की यातायात व्यवस्था ITMS अर्थात इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा संचालित है। सभी जान चुके हैं कि शहर में प्रायः सभी चौक चौराहों में या सड़कों में सैकड़ों की संख्या में अति आधुनिक कैमरे लगे हैं। सभी जान चुके हैं कि यातायात के नियमों को तोड़ते ही ये कैमरे हमें छोड़ने वाले नहीं हैं। फिर भी प्रतिदिन इन कैमरों के द्वारा भेजे गए चालान पटाने वालों की लंबी कतार लगी रहती है, वह भी बड़ी रकम के साथ, जिन्होंने लाल बत्ती अर्थात सिग्नल का उल्लंघन किया 2000 पटा रहे हैं, जो गलत दिशा में वाहन चलाए 2000 पटा रहे हैं,

0: मोबाइल से बातें करते, वाहन चलाते हुए हमारा कैमरा कभी बर्दाश्त नहीं करता, जुर्माना देना ही होगा। दो पहिया में तीन सवारी, ये कैमरा बिल्कुल नहीं देखना चाहता, फौरन चालान आपके घर आपकी फोटो के साथ भेज रहा है, जिसे आपको पटाना ही पड़ेगा। यही नहीं, यदि आज आप सिग्नल जम करते हैं तो 2,000 पटाएंगे, यदि यही गलती आप दूसरी बार भी करते हैं तो दूसरा जुर्माना 5,000 पटाना पड़ेगा, अर्थात दो गलतियों पर 7,000 रुपए। फिर से आप सभी से निवेदन है दोस्तों, ये गलती ना करें। इस संपूर्ण कठोर व्यवस्था का मूल उद्देश्य सिर्फ यही है कि आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, अपनों के साथ रहें। हमेशा यातायात नियमों का पालन करें। आपकी यात्रा शुभ हो।
1: श्रोताओं, जरा एक पल सोचिए, अगर हमारे घरों तक पानी ना पहुंचे, सड़कों का निर्माण ना हो, बिजली की व्यवस्था ना हो, अस्पताल और स्कूल ना हो, पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए मौजूद ना हो, तो हमारा जीवन कैसा होगा? दरअसल, हम अपने दैनिक जीवन में जिन सुविधाओं का उपयोग करते हैं, उनमें से अधिकांश हिस्सा लोक सेवाओं का है। सुबह घर का नल खोलने से लेकर रात को घर की बत्ती बंद करने तक हमारा जीवन किसी न किसी रूप में लोक सेवाओं से जुड़ा हुआ है। हम सभी ने लोक सेवा के बारे में सुना है, लेकिन कभी-कभी इसे लेकर हमारे मन में बहुत से भ्रम भी होते हैं। लोक सेवा का मतलब है जनता के लिए, जनता के हित में और जनता की सुविधा के लिए प्रदान की जाने वाली सेवाएं। लेकिन अक्सर हमें ये लगता है कि सरकारी सेवाएं सिर्फ कागजी प्रक्रियाओं तक सीमित रहती है। कुछ लोग सरकारी कार्यालयों में जाने से कतराते हैं, तो कुछ मान लेते हैं कि उनकी समस्याओं का समाधान ही नहीं होगा। और कई बार ये देखने को मिलता है कि पानी, बिजली, नाली की समस्या लेकर हमको भटकना पड़ता है, और बार-बार शिकायत दर्ज कराने पर भी हमारी समस्या का समाधान नहीं हो पाता। लेकिन आज के समय में लोक सेवाओं का स्वरूप बदल रहा है। अब कई सरकारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। शिकायत दर्ज करने से लेकर प्रमाण पत्र बनवाने तक की कई सुविधाएं घर बैठे प्राप्त की जा सकती हैं। जब किसी गांव में सड़क बनती है, जब किसी किसान तक सिंचाई की सुविधा पहुंचती है, जब किसी जरूरतमंद को अस्पताल में उपचार मिलता है, जब पुलिस किसी संकट में फंसे व्यक्ति की मदद करती है, जब बिजली और पानी की व्यवस्था होती है, तब लोक सेवा अपने वास्तविक स्वरूप में दिखाई देती है। लोक सेवा के क्षेत्र में लाखों कर्मचारी, अधिकारी, शिक्षक, चिकित्सक, पुलिसकर्मी, सफाईकर्मी और बहुत से जनसेवक अपना बहुमूल्य योगदान समाज को दे रहे हैं, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से समाज की सेवा में लगे हुए हैं। इन सभी के योगदानों को सम्मान देने के उद्देश्य से हम हर साल 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाते हैं। इनके सम्मान के साथ साथ ये नागरिकों को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करने का भी अवसर है। श्रोताओं, लोक सेवाएं सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि उनके बेहतर संचालन में नागरिकों की भागीदारी भी उतनी महत्वपूर्ण है। अगर हम सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, नियमों का पालन करें, पानी और बिजली का दुरुपयोग ना करें और अपनी समस्याओं को सही माध्यम से प्रशासन तक पहुंचाएं, तो लोक सेवाएं और अधिक प्रभावी बन सकती है। पानी, बिजली, सड़क, राशन, स्वास्थ्य, शिक्षा और परिवहन से जुड़ी किसी भी समस्या की शिकायत का समय पर समाधान ना होने या जानकारी के अभाव होने पर घबराना नहीं है। आपकी आवाज और समस्या को संबंधित विभाग तक पहुंचाने और समस्या के समाधान के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 एक महत्वपूर्ण माध्यम है। श्रोताओं, इस हेल्पलाइन के जरिए आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, उसकी प्रगति की जानकारी ले सकते हैं और समाधान ना होने पर उसे आगे भी बढ़ा सकते हैं। श्रोताओं, लोक सेवा

सिर्फ सुविधाओं का नाम नहीं है, बल्कि ये सरकार और जनता के बीच विश्वास का एक मजबूत पुल भी है। जितनी बेहतर लोक सेवाएं होंगी, नागरिकों का जीवन उतना ही सुखद और सुरक्षित होगा।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: श्रोताओं, अब हम ले रहे हैं आप सभी से अनुमति कार्यक्रम को संपन्न करने की। आज का कार्यक्रम आप सभी श्रोताओं को कैसा लगा, इसकी समीक्षा हमें कार्यक्रम चिट्ठी मिली में जरूर लिख भेजिएगा। अब कीजिए स्वीकार अपनी रेडियो साथी अपेक्षा शर्मा का स्नेहिल नमस्कार।

कार्यक्रम आज सुबह अभी आप सुन रहे थे एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 7:30 हुए हैं। पेश है सदाबहार नगमे।

श्रोताओं, आपने सुना वारिस फिल्म का गीत लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर के युगल स्वर में। वर्मा मलिक की रचना थी, उत्तम जगदीश का संगीत था। आइए सुनते हैं निदा फाजली के बोलों को उषा खन्ना की तर्ज पर। मोहम्मद रफ़ी की गायकी है और फिल्म है आप तो ऐसे न थे।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
2: लीजिए पेश है इंदिवर की रचना प्रेम गीत फिल्म से। संगीतकार और गायक जगजीत सिंह हैं।

श्रोताओं, कृपया कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। प्रत्येक गुरुवार और शुक्रवार को शाम 7:30 से फोन इन पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। इसमें किसान भाई कृषि उत्पाद, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान पाने के लिए विशेषज्ञों से फोन पर सवाल पूछकर समाधान पाते हैं। इसी कड़ी में गुरुवार दिनांक 18 जून 2026 को स्टूडियो में पशु चिकित्सालय बरतोरी बिलासपुर के पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ डॉक्टर रंजना नंदा उपस्थित रहेंगी। इनसे सुबह 10:30 से 11 बजे तक सवाल पूछने के लिए विषय होगा बरसात पूर्व पशुओं को रोग प्रतिबंधात्मक टीकाकरण, और सुबह 11 बजे से 11:30 तक का विषय होगा पशु विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी। इन विषयों से संबंधित समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए हमारा फोन नंबर है 2665923100026। फोन लगाने से पहले बिलासपुर का एसटीडी कोड 07752 अवश्य लगाएं। इन कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग का प्रसारण 25 जून 2026 और 26 जून 2026 को शाम 7:30 से 8 बजे तक आप सुन सकते हैं। ये सूचना यहीं समाप्त हुई। श्रोताओं, महेंद्र कपूर और सलमा आगा की आवाजों में हम लेकर आए हैं हसन कमाल के बोलों को। धुन बनाई है रवि ने, फिल्म का नाम है निकाह।

कार्यक्रम का आखिरी नगमा हम सुनवा रहे हैं आपको भीगी पलकें फिल्म से, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के युगल स्वर में। गीतकार एमजी हशमत हैं, संगीतकार जुगल किशोर और तिलक राज हैं।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में भीगी पलके फिल्म के इस गीत को। FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं। समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज़ हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अग्निकांड में 4 अधिकारियों को निलंबित किया, 4 और आरोपी गिरफ्तार। उर्वरक ले जा रहे 4 जहाज हॉर्मुज जल डमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। कतर ने रास लाफान LNG विस्फोट में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे US ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल निजी मीडिया हाउस के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वसनीयता, स्थिरता और वैश्विक हित के लिए प्रतिबद्धता पिछले दशक में भारत की उपलब्धियों के मूल में रही है। G7 शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की अटल प्रतिबद्धता को साझा किया है। सरकार के 12 वर्ष के कार्यों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों की प्रतिबद्धता में सफल हुई है।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं। श्री मोदी ने सस्ते आवास, कर सुधार, स्वास्थ्य देखभाल योजना और बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे का उल्लेख किया। देश की मजबूत अवसंरचना पर बल देते हुए श्री मोदी ने कहा कि वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत रेलगाड़ियां विस्तारित राजमार्ग और हवाई अड्डों से संपर्क व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।
1: 2014 में करीब 28 लाख लोग हर रोज मेट्रो से सफर करते थे, आज करीब 1,28,00,000 लोग हर रोज मेट्रो से सफर कर रहे हैं। अब वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी अच्छी सड़कों, अच्छे हाईवे से समय तो बच ही रहा है, गाड़ियों की मेंटेनेंस पर होने वाला खर्चा भी

0: कम हुआ है। बीते वर्षों में एयरपोर्ट की संख्या डबल हुई है। इससे कई छोटे छोटे शहरों में भी मिडिल क्लास को हवाई यात्रा की सुविधा पहली बार मिली है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में अभूतपूर्व अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ भारतवासियों के सामूहिक प्रयासों से विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
0: भारत आज रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो चुका है। ये गति आगे और तेज होगी कि हमारा सपना जितना बड़ा है, हमारे प्रयास भी उतने ही विराट होंगे। और 140 करोड़ देशवासियों का यही साझा प्रयास विकसित भारत बनाकर रहेगा।
1: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में कल ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में चीन की विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में हुई प्रगति सहित आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री डोभाल ने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर, भरोसेमंद और सकारात्मक संबंध दोनों देशों के बीच विश्वास और बेहतर समझ को मजबूत करने में सहायता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की तथा सकारात्मक संबंधों की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि आज 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 अलंकरण दिए जाएंगे।
2: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूति, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: हमारी विशेष श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में पद्म पुरस्कार पाने वाले सम्मानित व्यक्तियों के जीवन, उनके कार्यों और समाज में उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
3: मैं आपका काम सीखा, अंगूरी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूरी का ही होता है, तो मरूरी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
4: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करे, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सिख के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था, उसी गुलदस्ते को फिर से उजागर करने के, उसको बनाने के लिए हमने प्रयास करा।
1: ये विशेष कार्यक्रम आज सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 पर प्रसारित किया जाएगा। श्रोता इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। लखनऊ अग्निकांड में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया।
5: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया गया है। अलीगंज पुलिस ने BNS और उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत 6 नामजद आरोपियों और अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। राज्य सरकार ने आग की घटना की उच्च स्तरीय जाँच के आदेश दे दिए हैं। घटना की जाँच के लिए एक विशेष जाँच दल SIT का गठन किया गया है, जिसके सदस्य 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। SIT में में अतिरिक्त मुख्य सचिव धर्मार्थ कार्य पर्यटन और संस्कृति अमृत अभिजात और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन प्रवीण कुमार शामिल हैं। कल दोपहर लगी भीषण आग में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें ज्यादातर

0: 16 से 25 साल की उम्र के छात्र थे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। इससे नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुगम बनाने और किसानों तथा कृषि संस्थाओं के हित में नेफेड की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। सहकारिता मंत्रालय ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान श्री अमित शाह कई महत्वपूर्ण डिजिटल और किसान केंद्रित पहल का भी शुभारंभ करेंगे। यूरिया, डाई अमोनिया फॉस्फेट और सल्फर लेकर आ रहे चार भारतीय मालवाहक जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुसार ये जहाज अब देश के विभिन्न बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम और काकीनाडा बंदरगाह, ओडिशा का पारादीप बंदरगाह और गुजरात का मुंद्रा बंदरगाह शामिल है। दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि कतर के अधिकारियों ने रास लाफान क्षेत्र में रविवार रात हुई दुर्घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की है। दूतावास ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। घटना में घायल सभी लोगों को उचित चिकित्सा उपचार मिल रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारतीय नागरिकों सहित अन्य लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोहा स्थित भारतीय दूतावास कतर के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और भारतीय नागरिकों के परिवारों की सहायता कर रहा है। कतर की सबसे बड़ी गैस रिफाइनरी में हुए विस्फोट में 13 लोग मारे गए और 66 अन्य घायल हो गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए परामर्श जारी किया है। यह यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। कश्मीर से जम्मू जाने वाले वाहनों को सवेरे 11:30 बजे से पहले नवयुग सुरंग पार करने की अनुमति नहीं होगी। वहीं जम्मू से कश्मीर जाने वाले वाहनों को प्रतिदिन दोपहर 3 बजे के बाद सुरंग में प्रवेश नहीं मिलेगा। परामर्श में घाटी के कई महत्वपूर्ण स्थानों के लिए समय सीमा भी तय की गई है। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
2: कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे अमरीकी ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में बेल्जियम के जूलियन कैरागी से खेलेंगे। किदाम्बी श्रीकांत अपने पहले दौर के मुकाबले में चीनी ताइपे के लियाओ झुओ फू का सामना करेंगे। वहीं महिला सिंगल्स में भारत की 7 खिलाड़ी मुख्य ड्रॉ में शामिल हैं। 17 वर्षीय तन्वी शर्मा जर्मनी की यवोन ली के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेंगी। महिला डबल्स में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद पहले दौर में स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज का सामना करेंगी। वहीं हॉकी में FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना पाकिस्तान से होना है। उधर फीफा विश्व कप में फ्रांस ने इराक को 3-0 से हरा दिया है। वहीं न्यूयॉर्क में नॉर्वे ने सेनेगल को 3-2 से हराया। इस बीच आज सवेरे 8:30 बजे से जॉर्डन और अल्जीरिया के बीच मैच खेला जाएगा। इससे पहले अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया। दोनों गोल अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने किए। इसके साथ ही मेसी 18 गोल के साथ जर्मनी के मिरोस्लोव क्लोस का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़कर विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।
1: मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र और सिक्किम में बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, अरुणाचल प्रदेश, तटवर्ती कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, गोवा, ओडिशा, तेलंगाना, केरल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी ऐसी ही स्थिति रहेगी। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बृहस्पतिवार तक तेज हवाएं चलने और गरज के साथ वर्षा का मान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे newsonair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
3: धन्यवाद मुकेश। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, अमेरिका ईरान के बीच बात बनी, 60 दिन में होगा अंतिम समझौता। ईरान के तेल से पाबंदी हटी, स्विट्जरलैंड के बुर्गेन स्टॉक रिसॉर्ट में घंटों चली वार्ता। बातचीत सकारात्मक और रचनात्मक माहौल में हुई, जेडी वेंस ने बैठक को ऐतिहासिक बताया। पंजाब केसरी ने तनाव के बीच उम्मीद शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, जेडी वेंस अमेरिका के भावी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। उम्मीदवार हो सकते हैं। उन्हें डोनाल्ड ट्रंप का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जा रहा है। अगर शांति समझौता विफल रहता है तो ट्रंप इसका पूरा दोष वेंस पर डाल देंगे। ये शांति समझौता वेंस के राजनीतिक करियर के लिए दोधारी तलवार बन चुका है। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की

0: आर्मर ने इस्तीफे का ऐलान किया। बर्नहम ने पीएम पद की दावेदारी पेश की। स्टार्मर बीते 10 साल में ब्रिटेन के पीएम पद से इस्तीफा देने वाले छठे व्यक्ति। जनसत्ता की सुर्खी है, लखनऊ के अलीगंज में इमारत में लगी आग, 12 बच्चों समेत 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री ने हालात का जायजा लिया, जांच के लिए एसआईटी गठित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए पीड़ितों की हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। दैनिक जागरण ने लापरवाही की आग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, बहुत दिन नहीं हुए जब देश की राजधानी में अवैध होटल में आग से 20 से अधिक लोग मारे गए थे। माना यह गया था कि इस घटना से सीख ली गई होगी, लेकिन लखनऊ की आग से पता चलता है कि ऐसा नहीं किया गया।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अलंकरण कांड में 4 अधिकारियों को निलंबित किया, 4 आरोपी गिरफ्तार। उर्वरक लेकर आ रहे 4 जहाज हॉर्मुज जलडमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे यूएस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज प्रिंसिपल ऑफ नेशन फर्स्ट has been driving force behind India's transformation into a fast-growing, credible and reliable global power. President Draupadi Murmu to confer Padma Awards during second round of civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan today. Uttar Pradesh government suspends 4 officials in connection with Lucknow fire incident. 4 accused arrested. 4 ships carrying fertilizers heading towards Indian ports after crossing Strait of Hormuz. Qatari authorities confirmed death of 12 Indian nationals in Ras Laffan LNG explosion. And Lakshya Sen and Tanvi Sharma to lead India's challenge at US Open Super Badminton Tournament beginning today in California. Prime Minister Narendra Modi has said the principle of nation first has been the driving force behind India's transformation into a fast-growing, credible and reliable global power. Addressing a summit organized by a private media house in New Delhi, the Prime Minister said the country's achievements of the past decade were rooted in trust, stability and a commitment to the larger global good.
3: भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है, और भारत राइजिंग पावर के साथ साथ सुपर पावर तक ले गए। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भारत रिलायबल पावर है। मैं अभी 2-3 दिन पहले जी समिट से लौटा हूं और दुनिया का हर नेता, हर देश इस बात को भली भांति समझता है कि आज के भारत के लिए नेशन फर्स्ट ही सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे बड़ा सिद्धांत है।
2: Referring to his recent participation in the G7 summit, Mr. Modi said, world leaders recognized India's unwavering commitment to putting national interests first, a philosophy that continues to shape the country's policies and development agenda. Highlighting the government's 12 years in office, the Prime Minister said initiatives such as Swachh Bharat, Make in India, promotion of Khadi and support for local products succeeded because citizens embraced the spirit of nation building.
3: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में अगर आप तराजू से तोलोगे हर निर्णय, हर कदम, हर प्रयास, उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया। देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूं।

0: छत्तीसगढ़ी समन्वित साहित्यिक पत्रिका मोर भुइयां के आज के ए अंक मा आप सभी श्रोता साथी मन के स्वागत है। जय जोहार, राम राम, महेंद्र साहू होतिले। श्रोता साथी हो, 31 मई के पूरा देश विदेश में मन की बात कार्यक्रम हमन सुनें, और मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी हमार छत्तीसगढ़ के एक पुरातात्विक स्थल मल्हार की चर्चा करें।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, बीते दिनों मुझे यूरोप के नीदरलैंड जाने का अवसर मिला। वहां मैं कई मीटिंग में शामिल हुआ। इसी दौरान एक ऐसा क्षण आया जिसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। नीदरलैंड में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर मुझे देश विदेश से लगातार संदेश मिल रहे हैं। लोग खुशी जता रहे हैं। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इन ताम्र पट्टिकाओं में चोला वंश की उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। साथियों, हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहां 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। ये पांडुवंशी राजवंश के महर्षि बालार्जुन के शासनकाल से जुड़ी मानी जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं, यानी 1400-1500

0: साल पुराने ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
1: जब मल्हार की चर्चा होइस, ताम्र पट्टिका के चर्चा होइस, तो मल्हार के रहोइया जम्मो रहवासी मन के चेहरा में एक अलग उत्साह देखे बर मिलिस कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी आज हमारे कस्बा के, हमारे मल्हार के नाम के उल्लेख करें। आज हमारे साथ श्री संजीव पांडे जी उपस्थित हैं आकाशवाणी रायपुर के स्टूडियो में। आप ताम्र पट्टिका ला विशेष रूप से संरक्षित करके आप रखे हाओ, एकर बारे में हमन चर्चा करबो। लेकिन जैसे कि हमन कहें कि मल्हार एक पुरातात्विक स्थल है, ऐतिहासिक महत्व है वो जगह के, सबसे पहले तो आपका स्वागत करो थन आज के कार्यक्रम में। और आपसे हम जानना चाहथन कि हमर श्रोता साथी मल्ला मल्हार के बारे में आप थोड़ा सा जानकारी देवा।
2: आकाशवाणी के जम्मो श्रोता साथी मल्ला जय जोहार करत हो, जय छत्तीसगढ़, जय मल्हारगढ़। मल्हार हमर छत्तीसगढ़ के प्राचीन संस्कृति के जुन्ना जतका भी विरासत है, ऐतिहासिक स्थल है, ओकर गौरवशाली अतीत के एक ठन झलक है। मल्हार कहते साथ मल्हार के नामकरण के भी नाम आते। मल्हार के तलाव म, डेहरी म, हर घर म, हर तुलसी चौरा म शिव जी के उहला प्रतिमा है, ओकर नाम से हमर मल्हार के नाम पड़िस। ऐसे हमन मानथन ओला मल्हारी शिव, शिव जिलम मल्हारी करके संबोधित करथन। तो मल्हार के बारे में दो तीन प्रकार के बात है। राग भी में मल्हार आते, और हमन चूंकि बहुतायत में वहाँ एक मुखी शिवजी से लेके 1000 शिवलिंग तक के मल्हार में हावय। वहाँ तालाब में है, घर मन में है, देवालय में है, तेकर नाम से मल्हार पड़िस। मल्हार ऐसे जगह है जिहाँ इतिहास के पढ़ैया मन पर बहुत सामग्री है, चाहे वह पंचतंत्र के कहानी हो, चाहे जातक कथा हो। लेकिन मन के जब भी शैक्षणिक भ्रमण माथे तो मैं ये सब पिल्हर मल्ला उमल बड़ा गर्व से दिखाता हूँ, घुमाता हूँ। उसी प्रकार से मल्हार के एक किसान है कुआं खोदे में गड्ढा करत रिसे, और वह जानत नहीं रिसे, और वहाँ जिन गड्ढा खोदत रिसे वहाँ बने बुनाए वाला कुआं मिल गए। हमर मल्हार ऐसने ऐतिहासिक मल्हार है जिहाँ पुराना संपदा भरे पड़े है। यदि मल्हार के उत्खनन किए जाए तो मैं तो कहता हूँ कि विश्व में शामिल करे के लायक, विश्व विरासत में शामिल करे के लायक जगह बन जही, ऐसे मोर मानना है। मल्हार के उत्खनन में एकर पहली भी बहुत सारा सामग्री मिले है। सागर विश्वविद्यालय के बड़े बड़े इतिहासकार डॉक्टर कृष्णदत्त वाजपेयी जी वहाँ के प्रमुख ऋण है मध्य प्रदेश के समय में, वह उत्खनन करा रही से तो मल्हार में प्राचीन बस्ती दबे मिले रही से। मल्हार में एक शिव मंदिर है, वो है भारत में अद्वितीय शिव जी के मंदिर माने जाते। मंदिर के आधार पीठिका 108 कोण वाला है, और वहाँ वास्तुशास्त्र के 250 विशेषता तो मैं ही बता सकता हूँ, मालूम और बहुत सारा विशेषता हुई। प्रवेश द्वार में गंगा यमुना काल भैरव बैठे है, वहाँ कल्पवृक्ष पायदान में बैठे है, भगवान नवग्रह ऊपर में पैनल के रूप में है, गणेश जी के दो पत्नी रिद्धि सिद्धि दोनों दिशा में बैठे है। तो इसना मल्हार के महिमा महान है। मल्हार के कण कण में देवता धामी है। यहाँ 126 तालाब है, जिला हमन छत्तीसगढ़ी में छह अगर छह कोरी कथन, छह कोरी तालाब उहू जम्मो भगवान के नामकरण में है। कोनो के नाम ऋषि मुनि के नाम से है, मार्कंडेय कुंड, कोनो के नाम राम सागर, लक्ष्मण सागर, परमेश्वरा सागर, ऐसे टाइप के सब प्राचीन समय में जुन्ना टाइम में हमर सियान मन पुरखा मन एक नामकरण भी उसने है टाइप के रखे है। मल्हार हमर दक्षिण कौशल के राजधानी रही से, एकर प्रमाण मैं आप लोग जरूर बता सकता हूँ। महू अपन 25-30 साल 40 साल ले पिताजी के दादाजी के सानिध्य में रहे, यहाँ के उत्खनन वगैरह लम्बा देखे। यहाँ एक बंदरगाह भी है लीलागर नदी में।
1: अच्छा।
2: वो बंदरगाह है लीलागर नदी से शिवनाथ नदी जाते, और शिवनाथ नदी है जोड़ते उड़ीसा के बॉर्डर में। अल हमन कौशाम्बी के मार्ग कथन इतिहास के भाषा में, या राष्ट्रीय सेमिनार में जाथन तो सुनथन ये वही मार्ग है। इमल वो समय व्यापार होते रही जल मार्ग से, ओकर स्पष्ट प्रमाण मल्हार में हवा। ये तरह से शोधार्थी वर, पढ़िया लिखैया वर, इतिहास के सिक्का ताम्रपत्र, मल्हार से प्राप्त शिलालेख, एमन प्रचुर मात्रा में अध्ययन करे बर बहुत सामग्री है।

0: मल्हार एक बहुत विशेषता लिए हुए नगर है, प्राचीन गौरव वाला जगह है। और ओकरे में हम बड़ा गर्व से कथन कि करे जन वृद्धि शोभा के ओला श्रृंगार कथे, और करे हर मन ल जन मोहित ओला मल्हार कथे। इसके के एक ठन हमन कहावत भी कथन।
1: जी, आप जैसा जानकारी देता है हमन ला तो ऐसा लगत है कि हमन कथा सुनत हन, है
0: जी
1: ना।
0: जी हाँ साहू जी
1: कथा के रूप में और भी हमन बाद में चर्चा करबो।
0: जी
1: अभी जो पुरातात्विक स्थल मल्हार के बारे में आप चर्चा करत हो,
0: जी
1: तो यहाँ जो मूर्ति मिलते वो कौन कौन से देवी देवता के मूर्ति मिलते और कितना पुराना रथ है?
0: मल्हार में चारों संप्रदाय के, जैन बौद्ध वैष्णव शैव, चारों संप्रदाय के प्रतिमा हाँ मल्हार में भी संग्रहालय में संजो के संस्कृति विभाग रखे हुए है। चारों संप्रदाय के प्रतिमा मिलते, मोला तो ऐसे लगते बहुत बड़े बड़े विद्वान मनाते उनको सानिध्य भी मोल मिलते। तो मल्हार है एक समन्वय स्थल भी रही से, मल्हार में सब्बो संप्रदाय के प्रतिमा विद्यमान है, एकर से एक कला केंद्र के रूप में विकसित रही सो ही ऐसे लगते, और समन्वय स्थल भी रही से।
1: काफी प्रसिद्ध जगह है ये मल्हार हर। तबे मुझे लगते ना कि कहीं ना कहीं से मल्हार की चर्चा माननीय प्रधानमंत्री जी मन की बात कार्यक्रम में करें, और विशेष रूप से ताम्र पट्टिका के बारे में। और ये जो ताम्र पट्टिका है ये आपके घर में सुरक्षित है, संरक्षित करे के प्रयास आप करे हो, तो ये बात आपके घर से माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय तक, फिर प्रधानमंत्री जी अलग मन की बात कार्यक्रम में शामिल करें, ये यात्रा के बारे में बतावा। कैसे पता चले इसकी आपके घर में ये अमूल्य संपत्ति है आज की तारीख में?
0: जी मोर दादाजी पंडित छेदीलाल पांडे है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रही से,
1: हाँ
0: और वो हर पुरातत्व के प्रति बहुत समर्पित व्यक्ति रहे हैं। मैं मिडिल स्कूल के छात्र रहे हूँ, और मोर पिताजी है रघुनंदन प्रसाद पांडे, राष्ट्रपति सम्मानित रहे हैं, जिन मल्हार के इतिहास में 4 ही पुस्तक लिखे है आज से 82-83 में। और इमन पुरातत्व के प्रति अतका समर्पित व्यक्ति है कि मल्हार के हर पथरा इमन देवता मानत रही हैं, अतका समर्पित व्यक्ति है। ई मतलब मैं बचपना में देखत रहे इकर सानिध्य मिलत रिसे, और ऐसे करके इकर संग्रहालय मैं देखो, और समय बच्चा रहे मैं हाँ, तो सिक्का मिला मोर पिताजी लाख वाला बहुत सुरक्षित अमूल्य धरोहर के रूप में रखा है। ये हमारे राष्ट्रीय धरोहर की के मोला बतावा यही है हमारे मल्हार असली मल्हार की के। ऐसने टाइप के एक निजी संग्रह बना के मोर पिताजी रखिन, और संग्रहालय में आज मौर्य शासक मन के टेराकोटा आर्ट के पार्ट्रीज मन है, वो समय के राजा मन के टेराकोटा में जिन सील बने हैं, सील के उपयोग करे वो सील हम संग्रह में है। मोर पिताजी के ये संग्रह में एक किसान खोदत रिन है मल्हार में, जुताई कर देने किसी काम के जुनवानी खार कथन। मल्हार के हो सबले प्राचीन जगह है, प्राचीन क्षेत्र है, एक ठन ताऊ सोनवर्षा खार भी है। मल्हार में बहुत सारा सिक्का मिले हैं, और आज भी मिलते थे।
1: सोना के?
0: जी हाँ, तांबा के, जस्ता के, चांदी के, सोना के। मल्हार राजधानी रिसे, तो राजधानी माने समृद्धता के एक पहचान भी है, और ये सब मिलते ओकर से प्रमाणित भी हो जाते। सबले पहली मैं उल्लेख करत बतावत रहे कि तालाब ओ समय राजधानी में इनकम ऑफ सोर्स राजा मन के तालाब से होत रिसे, तो इसने ये सिक्का वगैरह जारी हुआ है उन्हें तो सिक्का मिली। मल्हार से सिक्का जारी करके पत्थर के ढलवा भी है, वहां ढलाई करत इन्हें राजा के समय सिक्का जारी करे, वो सब ढलाई के पथरा मोकर खांचा सांचा सब यहाँ विद्वान है। तो यहाँ से सिक्का भी बहुत मिलत रहते, आज भी पानी के कटाव में हम लेकर रहन तो खोजे जाते रहन, हम पिताजी का अनुसरण करते हुए उनकर देखन नकल कर करके सिक्का पाबो सामान पाबो ऐसे की के। तो ऐसे करके संग्रहालय मोर पिताजी है समृद्ध बनाइन, स्वर्गीय रघुनंदन प्रसाद पांडे 4 पुस्तक भी लिखिन, और शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रपति पुरस्कार मिले सुनला उनकर विद्यालय में। तो ये संग्रह ल बढ़ायन, और ताम्रपत्र उन्हीं ल प्राप्त होइस। पूरा क्षेत्र में हल्ला हो गई से कि मल्हार के इतिहास पुरातत्व ल संजो के रखने वाला परिवार है वो है स्वर्गीय रघुनंदन प्रसाद पांडे, छेदीलाल पांडे, पांडे परिवार है की के। तो ये ताम्रपत्र ल खेत के जोताई में एक किसान ल मिलिस, वो हमार पिताजी से बहुत प्रभावित व्यक्ति रही से, उनकर विद्वता से, उनकर हर चीज से। वो आके बताइस फिर कि महाराज ये ताम्रपत्र हल पाए हो कि वो किसान लगले हमर पिताजी के पास आइस, मोर पिताजी ओला अपन हाथ में रखिन, और वो समय में पुरातत्व विभाग के पूरा अधिकारी लग खबर करिन। मोले याद है बिलासपुर में संग्रहाध्यक्ष

0: जिला रजिस्ट्रीकरण अधिकारी आनंद कुमार रिजबूट साहब रीन है। ओला दिन ओ मल्हार आइस तह ओला ओकर अवगत कराइन, ओकर प्रिंट वगैरह लेगिन, ओकर बारे में पूरा डिटेल लग बाहर भेजिन और ओला पता करिन। तो वो राजा महाश्री गुप्त बारार्जुन के ताम्रपत्र के उल्लेख ल दो पन्ना में फिर साहब एक हफ्ता के अंदर अवगत कराइन हमर पिताजी ल। ऐसे करके ताम्रपत्र वगैरह सब मल्हार के प्राचीन धरोहर संरक्षित करे बर संजोए बर हमर पिताजीवन प्रयास करिन, ओगला महू आगे बढ़ाएं। आज मोर पिताजी भी नहीं है, दादाजी भी नहीं है, वो संग्रहाल मैं रखे हुए हूँ, यह उकरे असली मेहनत है। मैं तो उमा आगे जरूर बढ़त हूँ, लेकिन यह उकरे तपस्या मानता हूँ मैं, उकरे संग्रह है। मल्हार लजन हर पत्थर देवता के समान माने, ऐसे समर्पित व्यक्ति रिन है। और ताम्रपत्र आइस और मोर संग्रह में पिताजी के संग्रहालय में लगभग सिक्का भी है, वह बहुत सारा सिक्का है जिन कई प्रकार के कई काल पीरियड के कई राजा मन के है, खरोष्टी भाषा के है, रोमन भाषा के है, ब्राह्मी लिपि पाली भाषा के जनरली मिलवेज करते मल्हार जितका भी लेख वगैरह मिले है, एक शिला लेख भी मोर घर में है।
1: मैं ये आपने जानना चाहते रहे संजय जी कि ये जो ताम्र पट्टी का मिले है ओकर खासियत का है, उसमें का अंकित है, कौन सा भाषा में का लिखे है, कुछ एकर बारे में बतावा।
0: ये ताम्रपत्र राजा महाश्रीगुप्त बालार्जुन के समय के ताम्रपत्र है। ये ताम्रपत्र के वजन है 3.5 किलोग्राम के लगभग है। यह तीन पट्टी का महावय साहब, तीन फलक महावय और एक बढ़िया गोलवा रिंग में गुथाए हुए है। अल हमन कंप्लीट कथन ऐसने है, एक ठीक सिंगल फलक भी है, ओकर आउ कहीं भाग रही सोही। एक ताम्रपत्र राजा भरत बल के मोर यहाँ आउ रखा है संग्रह में, तो वह इनकम्प्लीट है, अधूरा है, लेकिन यह पूरा रिंग से बढ़िया गुथाए हुए है और तीन ठीक पट्टिका है। और वहाँ सुंदर ढंग से हमर प्राकृत भाषा, पुराना भाषा, ब्राह्मी लिपि में, पाली भाषा में वहाँ लेख खुदे हुए है, उत्कीर्ण है। और एकर लंबाई मोटाई है लगभग आधा आधा फीट के है तीनों फलक के। और यह रिंग में गुथे जन रिंग में उमा एक पद मुद्रा लगे हुए है, वो पद मुद्रा है गोल साइज के है। वो गोलवा साइज में देखथन तो बहुत सुंदर भगवान शिव जी है नंदी में सामने बैठे हुए है। उमा शुभ के रूप में एक कमल फूल दर्शाए गए है, उमा त्रिशूल दर्शाए गए है। वह में छोटा सा एक ठो लेख भी है वो ताम्रपत्र के हल्का सा डिटेल के बारे में, वो कब के काय तेन यह राजा महाश्रीगुप्त बालार्जुन के ताम्रपत्र है जिन मल्हार के जुनवानी खार में मिलिस, मल्हार से प्राप्त होइस, तीन फलक में है, शुद्ध तांबा के है साहब हर
1: जी। जी बहुत बढ़िया, आप सरल भाषा में हमार श्रोता वाला जानकारी दे आप मन। आपसे अब जानना चाहत हन, बार बार हमन चर्चा करत हन कि प्रधानमंत्री मोदी जी आपके शहर के, आपके ताम्रपट्टिका के उल्लेख करें है ना
0: जी।
1: एक जो ज्ञान भारत टीम जो है आपके घर पहुंची
0: जी,
1: वो मतलब कैसे पता चलिस कि आपके घर में अमूल्य धरोहर है, और का प्रक्रिया अपनाइन कि ये जो घटना है राजधानी तक पहुंची सवेल मन की बात कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी अपन विचार साझा करें
0: जी। ज्ञान भारत बिलासपुर के टीम है साहब, जिला पंचायत अधिकारी से मोर व्यक्तिगत परिचय से संदीप अग्रवाल साहब से, तो मल्हार आते तेल मतलब घुमाथन हमन तो व्यक्तिगत रूप से हमला जाना रहते, तो मल्हार वाला महाराज लंग जा तो बहुत जुन्ना संग्रह है, क्योंकि पूरा टीम लग ज्ञान भारत के भेजिस जिला पंचायत सीओ संदीप अग्रवाल साहब हर। तो वो टीम हम मल्हार आई मल्हार बढ़िया भेंट होइस, बैठेन मोर संग्रह देख के बहुत प्रसन्नता व्यक्त करिन। वो संग्रह में ये ताम्रपत्र मैं उमल दिखाएं, ताम्रपत्र में उमन बहुत खुशी होके वीडियो रिकॉर्डिंग करिन, ओकर पूरा डिटेल नोट करिन, ओकर सब प्रकार के जिन माननीय प्रधानमंत्री जी है हमार पांडुलिपि सर्वेक्षण अभियान जिन चला थे केंद्र सरकार के द्वारा, उमा पांडुलिपि सर्वेक्षण में बहुत सुंदर चीज हमन पागन की के एकदम खुश हो गए, गदगद हो गए हमार पांडे जी के संग्रहालय। और मल्हार में आयन तो बहुत बढ़िया हमारा आना सार्थक हो गए, ताम्रपत्र देख के बहुत खुशी व्यक्त करिन, ओकर पूरा फिर डिटेल नोट करिन, फोटो खींचिन, ओला सब अवगत कराए में है कब मिलिस का हुईस सब प्रकार के ला। हम बहुत प्रफुल्लित होन कि कतका बढ़िया हमार माननीय प्रधानमंत्री जी है, अतका बढ़िया पुराना सामग्री मन के महत्व ला बढ़ाए बर, ओला सामने लाए बर, भावी पीढ़ी में ला अवगत कराए बर, अध्ययन करे बर, संजोए बर,

0: अतका बढ़िया प्रयास करत है कि और मन लेके गईन है तहाँ 8-15 दिन में मोला फिर सूचना आ गए। हमन बहुत खुशी होन मल्हार के मन लम्बा बताएं, बहुत प्रसन्नता होइस मोर परिवार में, एकदम खुशी के माहौल छा गए कि हमारे पिताजी दादाजी मन पुरखा मन अतका बढ़िया जेन चीज ला संग्रहित करके रखे है, आज ओकर महत्व कतका बड़े है ओला हमन समझेन, पहले भी समझत रहन लेकिन आज हमन एक ठन थोड़ा सा प्रोत्साहन बरोबर मिल गए माननीय प्रधानमंत्री जी के मन के बात के एपिसोड में, हमर तामपत्र के उल्लेख आही और तुम्हार चयन कर लिए गए है कि मोला बिलासपुर कलेक्टर द्वारा सूचना दिए गई।
1: अच्छा
0: माननीय संजय अग्रवाल के द्वारा SDM साहब फोन करके बताइन कि महाराज मल्हार के तुम्हार समान है संग्रह में तामपत्र के ताम पट्टिका के ओकर उल्लेख माननीय प्रधानमंत्री जी है अपन एपिसोड में 31 मई के करही, आप लोग संभवतः संयोग में भाग्यशाली हो हा, बात भी हो सकत है आप कहूँ झंझा कहके, तो हमन बहुत प्रसन्न हो भाई और बहुत प्रसन्नता हो मल्ला कतका बढ़िया हम लगिस मल्हार के हमारे इतिहास राष्ट्रीय स्तर में पहचान बनत है और ये तामपत्र माननीय प्रधानमंत्री जी है माननीय मोदी जी है अपन आखर से बोलिन मन के बात में ओहुल हमन बहुत ध्यान से पूरा चौपाल बना के गांव में गुड़ी में रेडियो में सुनत रहन, बहुत खुश होन फटाका फोड़ेन मिठाई बाटेन, बहुत खुश होन एक दूसरे बधाई देन कि हमर मल्हार छत्तीसगढ़ के प्राचीन दक्षिण कौशल के राजधानी कथे तेन मल्हार लाज हमर माननीय प्रधानमंत्री जी मन के बात में उल्लेख करत थे, यहाँ के ताम्रपत्र के कतका बढ़िया उल्लेख आ गए, राष्ट्रीय पहचान मिल गई कि हमन पूरा गांव क्षेत्र में एकदम गदगद हो गए साहब।
1: जी पांडे जी, आप मन चौपाल लगा के पूरा गांव वाला मन आप मन सुना
0: जी
1: मन की बात कार्यक्रम ला
0: जी,
1: हर एपिसोड में कोई ना कोई बात होते जो हर आदमी ला प्रोत्साहित करते
0: जी हाँ साहब,
1: ऐसे ऐसा बात बताते हैं जिला हमन कल्पना भी नहीं कर रहे, लेकिन प्रधानमंत्री जी कहीं ना कहीं से सूचना मिलते और वो बात मतलब वो शामिल करते हैं। ऐसे ही ये घटना आपके मल्हार में भी घटी
0: जी,
1: आप मन खुशी भी व्यक्त करा, जब आप मन खुशी व्यक्त करा और चर्चा हुई आप मन के मल्हार के, एकर बाद तो एक पूरा उत्सव जैसा माहौल हो गए और जनप्रतिनिधि मन अधिकारी कर्मचारी मन आप मन से फिर तो संपर्क करीन हुई, अलग अलग तरह से लोग अपन खुशी जाहिर करीन हुई, तो कैसे कैसे आप मन के भेंट मुलाकात हुई इस लोग मन से, जनप्रतिनिधि मन से, विधायक मन से, मंत्री मन से, हर कोई आप मन से, मल्हार वासी मन से, वो खास करके आप मन से मिले के प्रयास करीन हुई।
0: मन की बात के जहाँ उद्घोषणा हुई कार्यक्रम में देखिन तो सबले पहली मोला कर्नाटक के बुलगरगा यूनिवर्सिटी के एक जन प्रोफेसर मोर संगी जिन मल्हार के भ्रमण कर रहे से
1: अच्छा,
0: और बिहार के जिला पुरातत्व के डॉक्टर विशु उपाध्याय जिन डिप्टी डायरेक्टर है बिहार सरकार में, उमन आए रहे अवन मोला फोन करके बताइन कि महाराज तू तो टीवी में दिखा था बधाई हुआ मन के बात कार्यक्रम में मल्हार के जिन तामपत्र हम देख के आए रहन ओला आज प्रधानमंत्री जी हर संबोधन कर रहे थे कि तो मैं फिर महू टीवी में चालू करके देखें और देखें उगरे बधाई सबले पहली मूल्य मिलीस तहाँ बिलासपुर के अधिकारी रायपुर के मोर जितका परिचित अधिकारी रिन है, विश्वविद्यालय के रायपुर के डॉक्टर नीतीश मिश्रा जी रिन है, इतिहास विभाग के जिन प्रमुख है रविशंकर यूनिवर्सिटी के ऊह फोन बधाई दिन जम्मो लगाले बहुत झन के मोला लगातार बधाई मिले लगीस तो मोरो छाती फूलिस कि मैं मल्हार में पैदा हुए। मल्हार एक ऐसे बहुत सुंदर नगर है, प्राकृतिक नगर है, पुरातात्विक संपदा के धनी नगर है, मैं बिल्कुल अपन खुश हो गए, मैं भगवान मोला बहुत अच्छा जगह पैदा करीन कही के, अब बहुत सारा मोला लगातार बधाई एक हफ्ता ले चलत रही साहब
1: जी, ये बीच में हम मन प्रयास करें आपसे भेंट करे के फोन के माध्यम से आपसे बातचीत हुई, व्यस्तता आपके रही से अब थोड़ी व्यस्तता कम है, तो आप आकाशवाणी रायपुर के स्टूडियो बुला के यहाँ आपसे हम लंबी बातचीत कर रहे थे, है ना पांडे जी।
0: जी सर,
1: ये सारा चीज इतना बड़ा घटना घटिस
0: जी,
1: है ना, खुशी मनाया खूब आप मन, है ना
0: जी।
1: आपके 3 पीढ़ी लगातार मल्हार और आसपास के क्षेत्र में जितना भी पुरातात्विक जिनिस जो मिलते ये मल्ला आपन संरक्षित करे के प्रयास करा था आप मन।

0: ये पूरा टीम है
1: जी
0: जेमन एकर संवर्धन पर
1: लगे
0: लगे
1: हुए हैं
0: हुए हैं,
1: जी
0: और समय बेसमय जो कुछ घटनाएं भी घट जाते कि कोई
1: जी
0: मूर्ति उठा के ले जाते,
1: ले
0: कुछ
1: जाते
0: ये करते वो करते, ओकर से बहुत सारा नुकसान भी होते कि जो शोधार्थी हैं वो मल्ला ओमन वंचित हो जाते हैं ओकर से। तो आपके मल्हार के जितना भी पुरातात्विक चीज है, महत्व के चीज है, ये मल्ला सुरक्षित रखे खातिर, संरक्षित करे खातिर आप गांव वाले मन के

0: महत्व के चीज है। ये मन ला सुरक्षित रखे खातिर, संरक्षित करे खातिर आप गांव वाले मन के का प्रयास होते कि ये सब सुरक्षित रहे और नई पीढ़ी ज्यादा से ज्यादा एक से जुड़ सके।
1: हाँ साहब, यही हमार राष्ट्रीय धरोहर, राष्ट्रीय धरोहर के पहचान है। प्राचीन संस्कृति ही है तो हमला पुराना संस्कृति के बारे में ज्ञान दही। हमर पूर्वज मन जब रजिस्ट्रार नहीं रही होत रही से, वो समय पुलिस के व्यवस्था नहीं रही से, तो प्रशासक मन का करत रही है, राजा के द्वारा में कैसे शासन चलत रही से, यही है हमला इतिहास पुराना चीज अवगत करा थे। वो सभ्य समान हमर मल्हार में है। वो समय दंड के प्रक्रिया के कतक बढ़िया मल्हार के पत्थर में अंकित है, चोर मन ला दंड दिया जाए तेन हर। और अभी जन तामपत्र उल्लेख करत रहन, यह वही है राजकीय आदेश या जमीन के राजा मन एक दूसर लंग आदान प्रदान कराए, खरीदी बिक्री कराए, लेन देन कराए, तो दान पत्र तामपत्र के माध्यम से कराए। ऐ है हमल नया पीढ़ी ला बताते कि हमर प्राचीन संस्कृति का रहे और वो समय कतका हमन समृद्ध रहन और आगे रहन। हमर नया पीढ़ी पर शोध पर ये सब बहुत आवश्यक है। हमला पुरातत्व संपदा ला अक्षुण्ण बनाए रखे पर मेहनत करना चाहिए। ये हमर भावी पीढ़ी है, एकर से ज्ञान प्राप्त करी और निश्चित ही एकर से हमन आगे बढ़बो, हमला बहुत ज़्यादा पढ़ाई के मौका मिली।
0: ऐसा एक प्रयास है आप मन के,
1: जी,
0: और के बहुत अच्छा प्रयास है। कुछ और जैसे आप दो लाइन के मल्हार के बारे में आप सुनाए, ऐसे कुछ और बात है जो आप सुनाना चाहते हो?
1: जी हाँ, हमन मल्हार के प्राचीन मंदिर मूर्ति ल देखथन तो उपेक्षा भी वह थोड़ा सा तरस आते। एक अच्छा आकर्षक हमर छत्तीसगढ़ राज्य के संग्रहालय है मल्हार में बन जतीस तो हमार पुरातात्विक संपदा जन धूप पानी में नष्ट हुआ थे ओकर संरक्षित हो जतीस कह के, तो एक बारे में अक्सर हमर पिताजी है कहे अपन रचना में, हे मल्हार बीते वैभव की तू है अमर कहानी, हे मल्हार बीते वैभव की तू है अमर कहानी, तेरी स्मृति में आंखों से बह जाता है पानी। एक टन छोटा सा व्यथा भी है मल्हार के है, किंवदंती है, रैया के सिरजे रैया रतनपुर, रैया के सिरजे रैया रतनपुर, राजा बेनियु के सिरजे मल्हार। यह हमर पुराना लोकोक्ति मुहावरा में सियान मन कहे।
0: जी बहुत बढ़िया, आप चार लाइन में आप बताया। चलते चलते आप से एक और छोटी सी बात करना है कि ताम्र पट्टिका आपके घर में मिली, और ये ताम्र पट्टिका आपके बाबूजी मतलब आपके पिताजी बहुत तेल सुरक्षित रखें, अध्ययन करें आप लभी बताएं, ओकर से पहले आपके दादाजी जल हम छत्तीसगढ़ी में बाबा कथन,
1: बाबा जी हाँ।
0: है ना, बाबा के हाथ में इस, बाबा के बाद दादा के हाथ में इस, दादा के बाद आपके हाथ में इस, आपके बाद अगली पीढ़ी में भी आई। तो आप ऐसे परिवार से जुड़े हुए हैं जेकर आज पूरा राष्ट्र में चर्चा होते है, कैसा महसूस करता आप और का करना है आप लागे?
1: यह एक ठन मुला बहुत बड़े जिम्मेदारी के एहसास हो गए साहब, मुला बहुत ही प्रफुल्लित हुए मन के बात माया के बाद। एकर पहली मैं लगन से काम भी करत रहे हूँ और अतका बढ़िया मुला उल्लेख माननीय प्रधानमंत्री तक मल्हार के बात है, हमन के परिवार के माध्यम से मोर पिताजी मन के प्रयास के माध्यम से पहुँचिस, उमा बहुत खुशी हुईस और मैं एमा मोला काम करे के क्षमता आउ बढ़ गए, मोला जिम्मेदारी के आउ ज्यादा एहसास होए लगिस। मोला बहुत सारा यहाँ के पुरातत्व संपदा, छत्तीसगढ़ के पुरातत्व संपदा के बारे में रक्षा करे बा मोला एक ठन बड़े समिति बना के काम करे की इच्छा होते। अब मल्हार के लिए तो हमन तो लगे छुए हैं समर्पित भावना से, यहाँ एक निजी संग्रह ही है हमर तीन पीढ़ी के पहचान है, जिला हमन सरकार के सब राष्ट्रीय धरोहर संजो के रखे हुए हैं, तो मोल बहुत प्रोत्साहन लगी से, मोल बहुत अच्छा लगी से, और मोर जिम्मेदारी बहुत बढ़ गए ऐसे मैं मानता हूँ, और मोल बहुत काम करे हुए अपन जिंदगी भर।
0: जी आप लगातार पुरातत्व के क्षेत्र में आप काम कराओ और जो नई पीढ़ी है इला भी आप समझाए के कोशिश करा, जोड़े के प्रयास करा। अभी हम श्री संजीव पांडे जी से बातचीत करते रहे और ये बातचीत के विषय रहिस पुरातात्विक स्थल मल्हार के ऐतिहासिक और

0: सांस्कृतिक महत्व। आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जय जोहार, धन्यवाद साहब।
0: और एक संग मोर भुइया के आज के व्यंकले मोला यही विदा देवा। जय जोहार, राम राम।

0: अभी आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ी में समन्वित साहित्यिक कार्यक्रम मोर भुइयां। संपादक और प्रस्तुतकर्ता थे महेंद्र साहू। ये आकाशवाणी रायपुर है। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा।
1: आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से हम रिले कर रहे थे छत्तीसगढ़ी में समन्वित साहित्यिक पत्रिका मोर भुइयां। FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं, आइए जुड़ते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से।
2: मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
2: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन चित्रलोक कार्यक्रम में एक और छोटा सा ब्रेक।

परम सुंदरी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें थीं सचिन जिगर, विशाल मिश्रा और अमिताभ भट्टाचार्य की। अमिताभ भट्टाचार्य ने बोल लिखे थे।

आज है यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस हर साल 23 जून को मनाया जाता है। उद्देश्य लोक सेवाओं के महत्व को बढ़ावा देना और जन सेवा में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों का सम्मान करना है। ये दिन हमें सेवा, संवेदनशीलता और सुशासन के मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देता है। आइए जन सेवा के इस पावन भावना को प्रणाम करें और एक बेहतर समाज बनाने का संकल्प लिया जाए।

सुनिधि चौहान और साथियों की आवाजों में राजी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीतकार थे गुलजार और साथी संगीतकार थे शंकर एहसान लॉय। चित्रलोक कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए मालिनी अवस्थी की आवाज में हक फिल्म का ये गीत।

हक फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें थी मालिनी अवस्थी और साथियों की, कौशल मुनीर ने बोल लिखे थे और विशाल मिश्रा का संगीत था। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर इस समय आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। आइए लेते हैं एक और ब्रेक।

0: फिर से बहुत स्वागत है आप सभी का चित्रलोक कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हिंदी सिनेमा के बहुमुखी प्रतिभा के धनी अभिनेता राज बब्बर जी का जन्मदिन है। विविध भारती परिवार की ओर से उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं। हम उनके स्वस्थ, सुखी और दीर्घायु होने की कामना करते हैं। आपको याद दिला दें कि आज के फनकार कार्यक्रम सुबह 9:30 और रात 9:30 पर सुनिएगा। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता राज बब्बर पर, सुनना ना भूलिएगा।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
2: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
2: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी, रामा शेट्टी, रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आई फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल के थे, इरशाद कामिल के बोल थे, ए आर रहमान की तर्ज थी। दोस्तों 23 जून को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य उन करोड़ों महिलाओं की

की ओर समाज का ध्यान आकर्षित करना है, जो पति के निधन के बाद जिन्हें आर्थिक, सामाजिक, भावनात्मक और तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उन महिलाओं के साहस, धैर्य और संघर्ष को नमन करने का दिन है जिन्होंने तमाम कठिनाइयों का सामना करते हुए उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा है। उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करना भी हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। 2026 की थीम है विधवाओं के लिए न्याय, गरिमा और आर्थिक सशक्तिकरण। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय

जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें शंकर महादेवन, सूरज जगन और जय बरुआ की आवाजें थी। जावेद अख्तर ने बोल लिखे थे और शंकर एहसान लॉय ने तर्ज बनाई थी इसी गीत के। साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहते हैं। आप स्वस्थ, सकुशल और सानंद रहिए, इसी कामना के साथ आज के चित्रलोक कार्यक्रम

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं।
2: किसने कहा है कि शोधन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: शोधन ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे की शोधा आ गई सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में।

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे अभिनेता की जिनका जन्म संयुक्त प्रांत टुंडला आगरा में पंजाबी परिवार में 23 जून 1952 को हुआ। अपनी आरंभिक शिक्षा आपने आगरा से की, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के आप पूर्व छात्र हैं। इतनी जानकारियों के बाद निश्चय ही एक कलाकार का चेहरा आपके जेहन में कौंध गया होगा, और ऐसा ना भी हुआ हो तो ये गीत इस अभिनेता की पहचान करा ही देगा।

आज के फनकार में आज का सफर हम तय करेंगे एक सशक्त अभिनेता राजनीतिज्ञ राज बब्बर की बातों के साथ, उनकी फिल्मों के गीतों के साथ।

अभिनय की बारीकियां और उसके विस्तार को आपने एनएसडी से जाना। अपने प्रशिक्षण के बाद आप मुंबई चले आए। यहां आने के बाद समय के कुछ अंतराल पर आपको मिली फिल्म आप तो ऐसे न थे। ये 1980 की फिल्म थी जिसमें राज बब्बर ने विजय नाम के किरदार को निभाया था। इनके साथ रंजीता, दीपक पाराशर, मदनपुरी और ओम शिव पुरी थे। मोहन कुमार द्वारा निर्मित, अम्बरीश संगल द्वारा निर्देशित ये फिल्म अपने एक गाने की वजह से आज तक याद की जाती है, जिसे 3 सिंगर्स ने आवाज दी थी और संगीत था उषा खन्ना का। ये गाना पर्दे पर रंजीता और राज बब्बर पर फिल्माया गया है।

कह सकते हैं कि राज बब्बर की विशेष पहचान फिल्म इंसाफ का तराजू से हुई। इस फिल्म में जीनत अमान और पद्मिनी कोल्हापुरे ने भी अभिनय किया। इस फिल्म में आपके अभिनय से प्रभावित होके बीआर चोपड़ा बैनर की फिल्मों के आप सक्रिय सदस्य बन गए। निकाह में दीपक पाराशर और सलमा आगा के साथ आप थे, साथ ही आज की आवाज में स्मिता पाटिल के साथ आपने अभिनय किया।

सामाजिक घरेलू ड्रामा फिल्म थी 100 दिन सास के, जिसमें मुख्य कलाकार थे रीना रॉय, अशोक कुमार, राज बब्बर, बेला बोस और ललिता पवार। वैसे तो ये फिल्म पूरी तरह किरदार दुर्गा पर आधारित थी, जो समाज में बहुओं के लिए बनाए गए नियमों पर प्रश्न उठाती है। इस किरदार को रीना रॉय ने निभाया था। ये एक सफल फिल्म थी और इस फिल्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे राज बब्बर।

में रोल पाना इस थिएटर आर्टिस्ट का ध्येय था, वहीं फिल्मों के लिए किया जाने वाला स्ट्रगल एक सत्य, इंसाफ का तराजू। इसकी सफलता राज बब्बर के तमाम संघर्षों का एक सुखद परिणाम लेकर आई थी। इस फिल्म से जुड़ा हुआ एक किस्सा है। एक इंटरव्यू में आपने शेयर करते हुए बताया था कि वो अपनी माँ के साथ जब फिल्म देख कर निकले तो माँ रो रही थी। राज बब्बर ने सोचा शायद मेरे इतने सालों के संघर्ष के बाद मिली सफलता पर इनके खुशी के आंसू है, पर जब असली बात पता चली तो आपको सुखद आश्चर्य हुआ। माँ ने कहा, बेटा हम दो रोटी कम खा लेंगे, ऐसा काम मत किया कर। इंसाफ का तराजू में राज बब्बर ने एक नेगेटिव किरदार निभाया।

0: राज बब्बर ने सुप्रसिद्ध थिएटर पर्सनालिटी सज्जाद जहीर की बेटी और मशहूर थिएटर आर्टिस्ट नादिरा जहीर बब्बर से विवाह किया। आपसे राज बब्बर की दो संतानें हैं, आर्य बब्बर और जूही बब्बर। ये दोनों ही कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। वहीं इनकी पत्नी मशहूर अदाकारा स्मिता पाटिल से प्रतीक बब्बर हैं, जो स्वयं एक बहुत अच्छे अभिनेता हैं।
1: मैं आया हूं, मैं आओगे ना दूर हुआ, दिखाओगे ना थामके वो जोश में यू होश से।

राज बब्बर ने स्मिता पाटिल के साथ कई फिल्में की, जिनमें प्रमुख हैं आज की आवाज, वारिस, इंसानियत के दुश्मन, अवाम, जवाब, हम दो हमारे दो, शपथ, मेरा घर मेरे बच्चे, दहलीज, किनारा और भीगी पलकें।

आगरा से पढ़ाई के बाद आप पटियाला यूनिवर्सिटी के ड्रामा डिपार्टमेंट का एक हिस्सा बने। यहाँ थिएटर का आपने विधिवत प्रशिक्षण लेना आरंभ किया, जहाँ इनकी मुलाकात हुई हरपाल टिमाणा जी से, जो खुद एनएसडी से थे। आप स्वयं पंजाबी कलामंच नाम की एक सांस्कृतिक संस्था चलाया करते थे। आपने राजबब्बर से एक दिन कहा कि देखो राजबब्बर, नाटक तुम कर रहे हो और बड़े अच्छे अभिनेता हो, मैं खुद भी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से हूँ, मैं तो यही नसीहत दूंगा तुम्हें कि जाओ और एनएसडी से एक्टिंग का कोर्स करो। ये बात राजबब्बर को जच गई। सन 1972 में राजबब्बर ने एनएसडी में दाखिला लिया, जहां इनके सीनियर्स थे नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी। महान थिएटर गुरु इब्राहिम अलकाजी से इन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया। शुरुआती दौर में इन्हें दारा सिंह की फिल्में काफी पसंद थी, फिर दिलीप कुमार साहब के अभिनय ने इन्हें मुतासिर किया। एनएसडी करने के बाद इन्हें प्रस्ताव मिला कि आप एनएसडी की रिपेट्री का हिस्सा बने, लेकिन राजबब्बर चूंकि दूरदर्शन से भी जुड़े थे, सुदर्शन काया थी इनकी, पर्दे पर इनकी उपस्थिति दर्शकों को पसंद भी आती थी, ये इन्हें मालूम भी था, और इसी वजह से इन्होंने शायद ये निर्णय लिया कि वो रिपेट्री का हिस्सा नहीं बनेंगे। जहां तक दूरदर्शन की बात है तो ये काम इन्हें कहा जाता है कि इलारून जी ने दिलवाया था। यही वो दौर था जब नादिरा बब्बर से आपका मिलना हुआ और विवाह संपन्न हुआ।

किसी भी कला के क्षेत्र से जुड़े शख्स का हिंदी फिल्मों से जुड़ने के पीछे की कहानी कई बार बहुत रोचक और प्रेरणादायी होती है। ऐसा ही राज बब्बर जी के साथ भी हुआ।

फिल्मों का इन्हें मिलना अभी भी तय नहीं था। थिएटर करते रहे जब इनके अच्छे मित्र शंकर सुहेल के द्वारा इनकी मुलाकात मशहूर प्रकाश मेहरा से हुई। सलीम जावेद की जोड़ी और रमेश सिप्पी उस वक्त एक बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे थे जिसके लिए राज बब्बर का चयन हुआ। स्क्रीन टेस्ट में भी आप सफल रहे। दिलीप साहब ने जब स्क्रीन टेस्ट देखा तो खुश हुए। रमेश सिप्पी भी आश्वस्त हुए कि अब फिल्म को एक महत्वपूर्ण किरदार राज बब्बर मिल गया है। पर बाद में किन्हीं कारणों से यह किरदार निभाया अमिताभ बच्चन ने और फिल्म थी शक्ति। प्रकाश मेहरा से इनकी भेंट एक वक्त पर नाउम्मीदी को चीरती हुई उम्मीद की किरण लेकर आई। नमक हलाल में काम करने की बात चली पर इस फिल्म में भी इनका रोल शशि कपूर ने किया। यहां भी उम्मीद दगा दे गई पर आशा इनकी न छूटी। शारदा फिल्म में आप एक छोटे किरदार में नजर आए जिसमें जितेंद्र, रामेश्वरी और सारिका थी। फिर सुपरहिट फिल्म इंसाफ का तराजू ने इनकी किस्मत बदल दी। राज

0: बब्बर अपनी फिल्मी हैसियत के साथ साथ समाज सेवा के कार्य से भी जुड़े रहे हैं और एक राजनेता के रूप में भी सक्रिय हैं। इन्होंने अपने होम प्रोडक्शन में अपने भाई के साथ मिलकर बब्बर फिल्म्स के बैनर तले 1992 में कर्म योद्धा, 2003 में काश आप हमारे होते और 2010 में टीवी सीरियल महाराजा रणजीत सिंह का निर्माण किया। सन 1981 में इंसाफ का तराजू बेस्ट एक्टर के लिए, 84 में अगर तुम ना होते सपोर्टिंग एक्टर के लिए, 85 में आज की आवाज बेस्ट एक्टर के लिए, 94 में दलाल विलन के लिए और 1996 में याराना फिल्म के विलन के लिए।
1: अभी हम रिले कर रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों को। FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 9:55 होने वाले हैं। प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।

0: सेवा के कार्यक्रमों को। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 9:55 होने वाले हैं प्रादेशिक समाचार, हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में 65 पुरस्कार प्रदान करेंगे। इनमें छत्तीसगढ़ की बुधरी ताती भी शामिल है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज होगी राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर आज नया रायपुर के ग्राम पलौद में वृक्षारोपण अभियान आयोजित किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। इनमें छत्तीसगढ़ की बुधरी ताती भी शामिल हैं। इसके अलावा सुविख्यात टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी, पार्श्व गायिका अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा को भी पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सरकार ने वर्ष 2026 के लिए 5 पद्म विभूषण सहित 131 पद्म अलंकरणों की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में राज्य मंत्री परिषद की बैठक आज सुबह 11:30 नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंत्रालय में होगी। इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल राजनांदगांव में आयोजित प्रगतिशील किसान सम्मेलन में 510 करोड़ रुपए की लागत के 300 से अधिक विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राजनांदगांव जिले में जल संरक्षण और फसल चक्र परिवर्तन के क्षेत्र में सराहनीय कार्य हुआ है। उन्होंने किसानों से आधुनिक खेती तकनीकों को अपनाने और धान के साथ अन्य फसलों की खेती बढ़ाने की अपील की। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह भी मौजूद थे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर आज राजधानी रायपुर में खेल और पर्यावरण संरक्षण को जोड़ते हुए वृक्षारोपण अभियान आयोजित किया जाएगा। नया रायपुर के ग्राम पलौद में छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ और वन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में यह कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में इसमें शामिल होंगे। इस दौरान 2036 पौधों के रोपण का लक्ष्य रखा गया है। अभियान के माध्यम से खिलाड़ियों और युवाओं को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया जाएगा। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नैफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। यह पोर्टल नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगम संचालन को मजबूत बनाने के लिए तैयार किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अंबिकापुर के कुछ समितियों में वित्तीय अनियमितताओं के मामले में कड़ी कार्रवाई की है। इसके बाद शंकरगढ़, कुसमी, रामानुजगंज और रामचंद्रपुर क्षेत्र के प्रभावित किसानों को अब फिर से खाद और बीज मिलना शुरू हो गया है। मामले में दोषी अधिकारियों कर्मचारियों पर FIR, निलंबन और विभागीय कार्रवाई की गई है। करीब 497 किसानों की शिकायतों में 30 करोड़ 51 लाख रुपए से अधिक की अनियमितता सामने आई है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि किसानों के हितों से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव संभागीय और जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेंगे। बैठक में अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी, किसी भी प्रतिनिधि को मान्यता नहीं दी जाएगी। बैठक में प्रदेश के स्कूलों में व्यवस्थाओं और शैक्षणिक तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। इस दौरान किताब, यूनिफॉर्म और साइकिल वितरण की स्थिति पर भी चर्चा के साथ ही VSK ऐप के माध्यम से शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति पर भी चर्चा होगी। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। अंबिकापुर में हजरत निजामुद्दीन के बीच चलने वाले एक्सप्रेस ट्रेन की आवृत्ति बढ़ाकर साप्ताहिक से द्विसाप्ताहिक कर दी गई है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में डाटा एंट्री ऑपरेटर के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए 28 जून को प्रथम चरण परीक्षा आयोजित की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के रायपुर कार्यालय में नए क्षेत्रीय अधिकारी आलोक कुमार कल पदभार ग्रहण करेंगे। दुर्ग में कुरियर सेवाओं के माध्यम से नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए पुलिस और खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने कुरियर संचालकों की बैठक की और अधिकारियों ने सभी पार्सलों की सख्त जांच और बुकिंग प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में 65 पुरस्कार प्रदान करेगी। इनमें छत्तीसगढ़ की बुधरी ताती भी शामिल है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज होगी राज्य मंत्री

0: की बैठक और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर आज नया रायपुर के ग्राम पलौद में वृक्षारोपण अभियान आयोजित किया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। 10 बजे हैं। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा। ये आकाशवाणी रायपुर है। लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर।
2: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं छत्तीसगढ़ संवाद।

0: छत्तीसगढ़। धान का कटोरा तो है ही, साथ ही यह है बेमिसाल प्राकृतिक सौंदर्य का गढ़ भी। प्रकृति यहाँ लहलहाती है, बलखाती है और है मुस्कुराती। यहीं का एक बेहद खूबसूरत इलाका है बस्तर। कभी बस्तर दुर्गम घाटियों और घने जंगलों की आदिम बस्तियों के लिए जाना जाता था, लेकिन अब बस्तर जाना जाता है चहुमुखी विकास के लिए। बस्तर के जनजातीय क्षेत्रों में अब विकास की रोशनी पहुंच चुकी है। यहाँ के दूर दराज के इलाके भी अब पहुंच मार्गों से जुड़ चुके हैं। गांवों, टोलों और मजरों तक शिक्षा की अलख जग चुकी है। युवाओं के लिए तकनीकी शिक्षा का तेजी के साथ विस्तार हो रहा है। बेरोजगारों के लिए स्वावलंबन के नए नए द्वार खुल रहे हैं। बस्तर खेलों में भी सबसे आगे है। खेलो इंडिया के राष्ट्रीय खेल आयोजन में यहाँ के खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपने दमखम से सबको आश्चर्यचकित कर दिया। यही तो है बस्तर के विकास की एक साफ तस्वीर
1: कि नक्सलवाद समाप्त होने के बाद बस्तर क्षेत्र का जो पहला प्रवास है और वो भी सुकमा की धरती से शुरू किए हैं, और इसके पहले भी हम कई बार सुकमा आए हैं, लेकिन आज जो इतनी गर्मी के बाद इतनी संख्या में लोग आए हैं, इस बात का प्रमाण है कि सबको विकास पर भरोसा है, देश के संविधान पर

भरोसा है और आज हम पूरे बस्तर और छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहेंगे। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आज नक्सलवाद छत्तीसगढ़ से समाप्त हो पाया है और ये क्षेत्र जो 40 वर्षों से भी ज़्यादा समय तक विकास से वंचित रहा, नियत निर्माण योजना के माध्यम से हम लोग विकास पहुँचाए हैं, लेकिन अब माननीय गृह मंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि इस संभाग को देश का सबसे अच्छा आदिवासी संभाग बनाएंगे, विकास यहाँ पर पहुँचाएंगे, वो काम हम लोग करने वाले हैं। यहाँ पर 308 करोड़ के विकास कामों का सौगात सुकमा जिले को मिला है, उसके लिए भी सुकमा जिले के लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना।

0: बस्तर की वादियों में एक डरी सहमी सी आहट गूंजा करती थी, लेकिन अब उसकी जगह साहस और भरोसे के गीत गाए जा रहे हैं। बच्चे हंसते खेलते अपने ही गाँव में अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। गाँव के ही पढ़े लिखे युवक युवतियाँ उनके अच्छे शिक्षा दूत जो बन गए हैं। दशकों तक उग्रवाद की गिरफ्त में रहे बस्तर के युवा अब गुमराह नहीं होते, क्योंकि वे समझ चुके हैं लोकतंत्र की शक्ति को। नियत मिलनार योजना ने यही काम तो किया है। इस बारे में नारायणपुर की जिला पंचायत सीईओ आकांक्षा खलखो ने बताया।
1: बस्तर संभाग के प्रभावित क्षेत्र में स्थापित जो नए कैंप स्थापित हो रहे हैं उनके 10 किलोमीटर के परिधि पे हम मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। इसको नियत मिलनार योजना मूल रूप से इसको कहा गया। इसका मूल उद्देश्य ये था कि शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं को 100% लाभ हम लोगों तक पहुंचा सके। इस योजना में इनिशियली जो 1.0 जो जिसको कह सकते हैं वो 5 जिले शामिल थे, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा। 2.0 जो नियत मिलनार 2.0 नियत मिलनार 1.0 का विस्तार करते हुए शासन लाना चाह रही है। ये इसको 10 जिलों में टोटल शासन लेकर के आ रही है। बीजापुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, सुकमा, गरियाबंद, मोहला मानपुर और खेरागढ़ छुईखदान। इसके अंतर्गत भी जितने गांव हमारे पूरे जिले में हैं उन सभी को हमको टारगेट करना है और वहां तक हमको शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाकर उनको सैचुरेट करना है। इसमें जो है सभी ऑलमोस्ट सभी विभाग इसमें शामिल हैं। पंचायत ग्रामीण विकास हो गया, पीएचई हो गया, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति हो गया, क्रीड़ा, विद्युत, स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य, इस तरीके से सभी ऑलमोस्ट सभी विभाग इसमें शामिल हैं। जितने भी लोग शासन की योजनाओं से वंचित थे उनको हम लोग टारगेट कर रहे हैं। मूलभूत सुविधा जैसे सड़क, पानी, बिजली आदि से गाँव का संपर्क स्थापित किया जा रहा है। जो भी नियत मिलनार योजना में नक्सल पीड़ित रहे उनका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हम लोग इस प्रकार से हम लोग कर रहे हैं और जन जागरूकता से हम शासन की विकासकारी योजनाओं को हम पहुंचा रहे हैं। नियत मिलनार योजना जो 1.0 थी उसके अंतर्गत काफी काम हुआ है। रोड कनेक्टिविटी बढ़ी है, विद्युत लाइन बहुत सारे गाँव में पहली बार गई है, पीडीएस हम अब ट्रैक्टर के माध्यम से अंदर अंदरूनी गांव में हम पहुंचा पा रहे हैं, हैंडपंप खनन काफी नए नए गांव में हुआ है, हितग्राही मूलक शासन की विभिन्न योजनाओं को भी हम सीधे अब जो है वो पहुंचा पा रहे हैं। शुरू में जो है 1.0 में सिर्फ 5 जिले थे, अब 10 जिले हो गए। रोड कनेक्टिविटी इसमें प्राइमरी जो पहला फोकस रहता है वो रोड कनेक्टिविटी का रहता है, क्योंकि अगर हम पहुंच ही नहीं पाएंगे, रोड से कनेक्टेड नहीं रहेगी तो वो गांव हमेशा कट ऑफ रहेगा। और सबसे पहले हमारी प्राथमिकता रहती है कि हम उन गांव को मेन स्ट्रीम से

या मेन जो कम्युनिकेशन चैनल्स हैं उनसे जोड़ पाए। रोड कनेक्टिविटी, टावर हो गया, विद्युत लाइन भी हमारे नारायणपुर में काफी गांव में पहली बार विद्युतीकरण हुआ है। पहले बार जैसे मसपुर हो गया, गारपा हो गया, पहली बार यहाँ पे विद्युत लाइन गई है। अंदर अंदर के ओरछा ब्लॉक के अंदर के गांव जो थे, पहले राशन लेने के लिए ओरछा ब्लॉक मुख्यालय में आते थे, अब हम वहां पे ट्रैक्टर के माध्यम से गांव तक पीडीएस का उनकी राशन है वो हम पहुंचा रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी योजनाएं जो हम पहले कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से या नक्सल के प्रभाव के होने से नहीं कर पा रहे थे, वो अब हम लोग रीच आउट कर पा रहे हैं। आंगनवाड़ी, जिसमें अंदर में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो पॉपुलेशन का टारगेट अचीव नहीं कर पाते हैं, जैसे एक आंगनवाड़ी 300 का पॉपुलेशन हो तो बनती है, तो उनको हम लोग ढूंढ रहे हैं। नए बच्चे जो आंगनवाड़ी से अभी नहीं जुड़ पाए, उनको हम आंगनवाड़ी में जोड़ रहे हैं। नारायणपुर ब्लॉक में अभी तक 22 ऐसे नए स्कूल हम लोग खोले हैं जो पहले नक्सल प्रभाव के कारण बंद थे, और कुछ ऐसे स्कूल हैं जो हम लोग पहली बार प्रशासन के जाने के वजह से खुली है। तो 22 नए स्कूल खुले हैं। आंगनवाड़ियों में हम लोग ने बच्चों को नए इनरोल किया है, स्कूल्स में हमने बच्चों को नए इनरोल किया है। तो इस तरीके से हम लोग पहुंच पा रहे हैं लोगों तक।

0: बस्तर वनोपज और वनौषधियों के लिए भी विख्यात है। तेंदुपत्ता, हर्रा, बहेड़ा, चार, शहद और इनके अलावा और भी बहुत सारी चीजें जंगलों से मिलती हैं। इन्हीं वनों में मौजूद हैं तरह तरह की जड़ी बूटियां और ढेरों वनस्पतियों के अनमोल खजाने। बस्तर की जनजातियां इन पर पूरी तरह से निर्भर हैं। यही वजह है कि वे जल, जंगल और जमीन के महत्व को अच्छी तरह से समझते हैं और इनकी रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं।
1: मैं श्रीमती मेनका चंद्राकर ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट से डिप्टी कमिश्नर हूँ। अफेक्टेड है, नक्सली अफेक्टेड है, नक्सल प्रभावित हैं और बुनियादी सुविधाओं से, शासन की योजनाओं से जो की पहुंच से जो दूर हैं ऐसे गांवों को, और शासन का मुख्य उद्देश्य यही है कि इन गांवों को बुनियादी सुविधाओं, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऐसी सुविधाओं से मतलब इनको लाभान्वित करना, और शासन की जितनी भी व्यक्तिमूलक योजना है उन सभी का सीधा लाभ इनको पहुंचाना, जैसे कि प्रत्येक का आधार कार्ड हो, प्रत्येक को उज्ज्वला योजना के तहत वो गैस कनेक्शन मिला हो, इस तरीके से व्यक्तिमूलक एवं समुदाय मूलक सभी योजनाओं से इनको सैचुरेट करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। प्रथम फेज में इसमें 5 जिलों को शामिल किया गया था, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा और कांकेर। फरवरी 2024 के बाद जो बस्तर संभाग के ऐसे नक्सल प्रभावित जिले जहां पर की सुरक्षा जो शिविर है ना, कैंप जो लगाए जा रहे हैं, सुरक्षा कैंप, उसके 10 किलोमीटर की परिधि में ताकि एक सुरक्षित वातावरण में शिविर लगाए जाकर इनको सामुदायिक और व्यक्तिमूलक योजनाओं से, शासकीय योजनाओं से लाभान्वित किया जा सके, यहाँ पे जो रहवासी ट्राइबल पॉपुलेशन है उनको, इसलिए ये योजना चलाई गई थी। आदिवासी विकास विभाग द्वारा मुख्यतः जो है वो वन अधिकार पट्टा से संबंधित सैचुरेशन किया जाएगा, जो भी वहाँ पे ऐसे हितग्राही हैं जो कि 13 दिसंबर 2005 के पूर्व से जिनका कब्जा है उस क्षेत्र, मतलब आवास का कब्जा हो उनके पास या फिर कृषि भूमि का कब्जा हो, तो उनको नियमित तरीके से वनाधिकार पट्टा उनको शासन के द्वारा जारी किया जा सकेगा। और इसके साथ ही इसमें छात्रावास एवं ऐसे क्षेत्र जहाँ के बच्चों के लिए, मतलब जो स्कूली बच्चे हैं उनके लिए अगर छात्रावास की सुविधा नहीं है तो उनको छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराना, इसमें स्कॉलरशिप को भी जोड़ा गया है कि उन सभी बच्चों को FRA, मतलब बच्चों को जो है वो छात्रवृत्ति का लाभ भी दिया जाए। अभी तक काफी परिवर्तन देखने को मिल रहा है, जैसे कि मैं अपने ही अगर विभाग का बताऊं तो अभी तक जो 5 जिले थे, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा और कांकेर, उसमें व्यक्तिगत वनाधिकार के कुल जो है 4

1988 जो वनाधिकार पट्टा वितरित किया गया है, सामुदायिक वन अधिकार का 214 पट्टा वितरित किया गया है और सामुदायिक वन संसाधन अधिकार के 78 पट्टे जो है वो वितरित किए गए हैं। इसके साथ ही छात्रावास भी, जहाँ पे छात्रावास की सुविधा तो थी मगर बच्चों की सीट संख्या जो स्वीकृत सीट छात्रावासों में कम थी, तो इसको शासन ने बहुत ही उसमें अपने प्रायोरिटी में लेते हुए वहाँ पे 650 सीटों की वृद्धि की है। मतलब सीटों का छात्रावास में स्वीकृत सीटों में वृद्धि करके जो बच्चे प्रवेश से वंचित रह जाते थे उनको भी प्रवेश दिलाने का कार्य किया है हमारे विभाग के द्वारा।

0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं छत्तीसगढ़ संवाद।
1: बस्तर में सार्वजनिक और निजी निवेश के साथ एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। यहाँ सड़कों, पुलों और शिक्षा का विकास जिस तेजी के साथ हुआ है, उसी द्रुत गति से अस्पताल और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स भी विकसित हो रहे हैं। स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए एमएसएमई और अन्य उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। आदिवासी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए एकलव्य विद्यालय और आईटीआई स्थापित किए गए हैं।

0: बस्तर में केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत 12,200 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जिससे आवागमन और सुरक्षा दोनों ही बेहतर हुए हैं। स्थानीय किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ने के लिए विशेष प्रशिक्षण और सहायता योजनाएं आरंभ की गई हैं। महिलाओं और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल विकास और आजीविका मिशन के तहत अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ऐसी कई योजनाएं हैं जो बस्तर के विकास को गति दे रही हैं। इस बारे में बता रहे हैं CEO दंतेवाड़ा श्री जयंत नाहटा।
1: जिसमें व्यक्तिगत जो योजनाएं हैं, इसमें जैसे जॉब कार्ड, पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, प्रधानमंत्री आवास का लाभ, लोगों के घर में घर घर पानी, जल जीवन मिशन के अंतर्गत, स्वच्छ भारत के अंतर्गत जिनको टॉयलेट नहीं मिले उनको टॉयलेट मुहैया कराना, आयुष्मान कार्ड बनवाना, और ऐसे ही जो सामुदायिक आधारित जो हमारी संरचनाएं हैं, जैसे सभी उन गांवों में सैचुरेशन मोड पर सभी आंगनवाड़ियों को बनवाना, जितने भी उप स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उनको उनका निर्माण करवाना, राशन कार्ड, प्राइमरी स्कूल, प्लेग्राउंड, सड़कें, बिजली, पानी, इंटरनेट, ये सबको पहुंचाने और सैचुरेशन करने का नियम देना जो 2.0 है, ये पूरी इसमें योजना है। इसके अंदर दंतेवाड़ा जिले के पहले हमारे दो कैंप्स थे, तो जो भी सिक्योरिटी कैंप्स हमारे नए 2024 2023 अंत और 24 के बाद बने हैं, तो दंतेवाड़ा जिले के अंदर मुलेर में जो कैंप है और जो बासनपुर कैंप है, तो उसके आसपास के 10 किलोमीटर रेडियस में जितने गांव हैं, तो हमारे 13 गांव जो हैं वो उसमें शामिल हैं। दंतेवाड़ा जिले के अंदर जो जैसा मैंने बताया जितने भी व्यक्तिगत मूलक योजनाएं हैं उसमें बहुत अच्छा पिछले 1.5 साल में सैचुरेशन में काम हुआ है, जिसमें सभी नियत के गांवों में 95% से ऊपर आयुष्मान कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। इसमें आधार कार्ड भी 95-96% के ऊपर दिए जा चुके हैं।

इसमें प्लेग्राउंड भी बने हैं। मुलेर में माननीय सीएम साहब का विजिट भी पिछले साल ही हुआ था, जिसके कारण वहाँ पे भी विकास में बहुत तेजी आई है। वहाँ पे रोड बनना बन चुकी है। वहाँ पे और भी पीएमजीएसवाई और एम एवन मिशन के अंदर हर घर जल भी मुलेर गांव बन चुका है। ऐसे ही बासनपुर के अंदर भी अलग अलग विकास कार्य हुए हैं। सभी तरीके की योजनाओं और सभी तरीके के फंड्स जो हैं उसका उपयोग यहाँ पे किया गया है। जैसे डीएमएफ को यूज किया गया है, सरकार की जितनी भी योजनाएं चलती हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, जल जीवन मिशन हो, उसको उसका कन्वर्जेंस किया गया है। और SCA जो फंड होता है उसको भी यूज करते हुए जितनी भी लोगों की डिमांड, तो हमने इसमें जो डीएमएफ है उससे जैसे मुलेर का 2 करोड़ से ऊपर का हमने सैंक्शन दिया था इलेक्ट्रिफिकेशन का, तो काफी इलेक्ट्रिफिकेशन वहाँ पे बिजली पहुंच गई है, लाइट पहुंच गई है।

0: बस्तर में पर्यटन और संस्कृति के संरक्षण की भी अपार संभावनाएं हैं। इसी के मद्देनजर यहाँ प्राकृतिक सुंदरता और जनजातीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन स्थलों का विकास और बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजन हर साल किए जाते हैं। बस्तर के किसान, महिला समूह, युवा उद्यमी और आदिवासी समुदाय एक साथ मिलकर इसे संवार रहे हैं, इसे आत्मनिर्भर बना रहे हैं और समृद्ध कर रहे हैं। बस्तर में बुनियादी जरूरतों के विस्तार के लिए कई काम किए जा रहे हैं।
1: मैं कृपेन तिवारी, सहायक आयुक्त के पद पर जिला कोंडागांव में कार्यरत हूं। जो बस्तर के वनांचल क्षेत्र है जो नक्सल से प्रभावित थे, बस्तर में 5 जिले थे जिसमें से कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा को शामिल किया गया था, और उनको उन क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार जैसे बिजली, पानी, सड़क और स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे सुविधाओं को, मूलभूत सुविधाओं को वहां पहुंचाना था और अंतिम छोर तक शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच सुगम सुनिश्चित करना था। सरकार ने इस पर अच्छा कार्य किया, पूर्णता और सघनता से शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच को सुगम बनाने की ओर सरकार कार्य कर रही है। शासन में भी कोई विशेष विभाग, एक विशेष विभाग नहीं, शासन की जन कल्याणकारी योजनाएं विभिन्न विभागों के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है। जैसे राशन की पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए खाद्य विभाग के सहयोग की आवश्यकता होती है। बच्चों को उनके पोषण को ध्यान देने और बुनियादी स्तर पर उनका विकास करने के लिए बाल विकास, महिला एवं बाल विकास विभाग की आवश्यकता होती है। शिक्षा के लिए, शिक्षा की पहुंच को सुगम बनाने के लिए शिक्षा विभाग की आवश्यकता होती है। जनजाति कार्य विभाग की आवश्यकता होती है। वैसे ही विभिन्न विभागों का सभी का साझा सहयोग से ही जनता तक अंतिम रूप से पहुंचा जा सकता है। 31 मार्च 2026 की स्थिति में छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त भी घोषित कर दिया गया है, तो अब ये शासन कहे कि उस क्षेत्र को हमने टारगेट लिया हुआ था, फोकस में रखा हुआ था, केंद्र बिंदु में रखा हुआ था, तो उस क्षेत्र की विकास करने के लिए ही ये 2.0 NNR का प्रारंभ किया गया है। और जैसे ही इसके सैचुरेशंस को ही इस वर्ष इसमें लक्ष्य रखा जाएगा और आगामी जैसे ही शासन की निर्णय आएगी वैसे ही इसमें प्रशासन करेगा। आंगनबाड़ी केंद्र भी इसमें शामिल है, PDS भी शामिल है और रोड एक्टिविटीज भी इसमें शामिल है। ये जो भी आधारभूत और संरचनाओं से लेकर जो अपने सर्विसेज सेक्टर्स की जो चीजें होती है वो सारी चीजें इसमें शामिल है।

0: छत्तीसगढ़ सरकार बस्तर के विकास को लेकर कई मोर्चों पर एक साथ काम कर रहे हैं। अब कृषि, कौशल विकास, पर्यटन और उद्योग जैसे क्षेत्रों में बस्तर की संभावनाओं को उजागर किया जा रहा है। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का मानना है कि विकसित छत्तीसगढ़ @2047 का संकल्प नवा अंजोर विजन के माध्यम से पूरी तीव्रता और पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: जब छत्तीसगढ़ स्वस्थ रहेगा तभी हमारा छत्तीसगढ़ आगे बढ़ेगा। इसके लिए आज से इस बस्तर क्षेत्र में मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान इसकी शुरुआत किए हैं। अब आने वाले समय में हमारे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी एक एक घर में जाके एक एक लोगों का स्क्रीनिंग करेंगे और उनकी बीमारी का इलाज होगा। और आने वाले समय में निलाना 2.0 वो भी शुरू करने वाले हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत में शिविर होगा और शिविर में सारे अधिकारी रहेंगे सभी विभाग के, और जो भी योजनाओं से संबंधित राशन कार्ड बनना है, आयुष्मान कार्ड बनना है, वन भूमि का पट्टा की बात है, सब सारा समस्याओं को निपटाते जाएंगे। भी हम लोग अभियान बहुत जल्दी बस्तर क्षेत्र में शुरू करने वाले हैं।

की बस्तर संभावनाओं की धरती है। यही कारण है कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसमें एक मजबूत स्तंभ न खड़ा किया जा सके। यहाँ की मिट्टी की सौंधी सौंधी गंध में बेहद ही अपनापन है। बस्तर सदियों से सबको लुभाता है और बड़ी ही आत्मीयता के साथ यहाँ आने को आमंत्रित भी करता है। छत्तीसगढ़ के विशाल कैनवास पर अब बस्तर की खुशहाली के कई रंग खिल उठे हैं। यहाँ के मांदर की थाप और बांसुरी की तान से विकास के सिर निकल रहे हैं। यही वजह है कि पूरे जोशो खरोश के साथ बस्तर बढ़ रहा है उजाले की ओर।

0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे छत्तीसगढ़ संवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर। यह आकाशवाणी रायपुर है। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा।
2: प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे थे।
3: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशी।

0: खुशबू तो लाजवाब है।
1: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
2: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
1: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
2: आकाशवाणी से।
3: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
4: FM बैंड 103.2 MHz पर ही आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 10:30 हुए हैं। आइए शुरू करते हैं सफर नए तराने कार्यक्रम का।

आपने सुना 1920 एविल रिटर्न्स फिल्म का गीत सोनू निगम की आवाज़ में। बोल थे शकील आज़मी के, संगीत था चिरंतन भट्ट का। अब पेश है कार्यक्रम का अगला तराना मर्डर टू फिल्म से। सईद कादरी गीतकार हैं, गायक और संगीतकार हर्षित सक्सेना है।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं लीजिए पेश है आज का ट्रैफिक अपडेट।
4: नमस्कार मित्रों, मैं हूं उमाशंकर पांडे। बिलासपुर जिले की आज की अभी की यातायात संबंधी जानकारी के लिए आप सुन रहे हैं ट्रैफिक अपडेट सा बिलासपुर। आप सभी का स्वागत है। शहर के साथ ही सुगम यातायात व्यवस्था के बीच संपूर्ण बिलासपुर जिले की सभी सड़कों में सभी प्रकार के वाहन अपनी स्वाभाविक गति में दौड़ रहे हैं और इन दौड़ते भागते वाहनों से बिलासपुर जिले का सभी स्थानों से सुगम यातायात संपर्क बना हुआ है। आप सभी से निवेदन है, सड़कों में उतावलेपन से बचे, धैर्य संयम एवं यातायात के नियमों के प्रति निष्ठावान रहें। ये सभी सद्गुण आपकी हर यात्रा सरल और कुशल बनाएंगे तथा ये भी तय है कि आप अपनी यात्रा पूरी कर सकुशल घर भी वापस आएंगे। मित्रों, आप सभी जान चुके हैं कि हमारा बिलासपुर स्मार्ट सिटी बन चुका है। यहाँ की यातायात व्यवस्था ITMS अर्थात इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा संचालित है। सभी जान चुके हैं कि शहर में प्रायः सभी चौक चौराहों में या सड़कों में सैकड़ों की संख्या में अति आधुनिक कैमरे लगे हैं। सभी जान चुके हैं कि यातायात के नियमों को तोड़ते ही ये कैमरे हमें छोड़ने वाले नहीं हैं।

0: भी प्रतिदिन इन कैमरों के द्वारा भेजे गए चालान पटाने वालों की लंबी कतार लगी रहती है, वो भी बड़ी रकम के साथ, जिन्होंने लाल बत्ती अर्थात सिग्नल का उल्लंघन किया 2,000 पटा रहे हैं, जो गलत दिशा में वाहन चलाए 2,000 पटा रहे हैं, मोबाइल से बातें करते वाहन चलाते हुए हमारा कैमरा कभी बर्दाश्त नहीं करता, जुर्माना देना ही होगा। दो पहिया में तीन सवारी, ये कैमरा बिल्कुल नहीं देखना चाहता, फौरन चालान आपके घर आपकी फोटो के साथ भेज रहा है, जिसे आपको पटाना ही पड़ेगा। यही नहीं, यदि आज आप सिग्नल जम करते हैं तो 2,000 पटाएंगे, यदि यही गलती आप दूसरी बार भी करते हैं तो दूसरा जुर्माना 5,000 पटाना पड़ेगा, अर्थात दो गलतियों पर 7,000 रुपये। फिर से आप सभी से निवेदन है दोस्तों, ये गलती ना करें। इस संपूर्ण कठोर व्यवस्था का मूल उद्देश्य सिर्फ यही है कि आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, अपनों के साथ रहें, हमेशा यातायात नियमों का पालन करें। आपकी यात्रा शुभ हो।
1: श्रोताओं, कृपया कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। प्रत्येक गुरुवार और शुक्रवार को शाम 7:30 से फोन इन पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। इसमें किसान भाई कृषि उत्पाद, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान पाने के लिए विशेषज्ञों से फोन पर सवाल पूछकर समाधान पाते हैं। इसी कड़ी में गुरुवार दिनांक 18 जून 2026 को स्टूडियो में पशु चिकित्सालय बरतोरी बिलासपुर के पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ डॉक्टर रंजना नंदा उपस्थित रहेंगी। इनसे सुबह 10:30 से 11 बजे तक सवाल पूछने के लिए विषय होगा बरसात पूर्व पशुओं को रोग प्रतिबंधात्मक टीकाकरण, और सुबह 11 बजे से 11:30 तक का विषय होगा पशु विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी। इन विषयों से संबंधित समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए हमारा फोन नंबर है 2665923100026। फोन लगाने से पहले बिलासपुर का एसटीडी कोड 07752 अवश्य लगाएं। इन कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग का प्रसारण 25 जून 2026 और 26 जून 2026 को शाम 7:30 से 8 बजे तक आप सुन सकते हैं। ये सूचना यहीं समाप्त हुई। पलक मुछल की आवाज में हम लेकर आए हैं पल पल दिल के पास फिल्म का गीत। रचनाकार सिद्धार्थ गरिमा है, संगीत सचेत परंपरा का है।

ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए

0: मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: कार्यक्रम का आखिरी गीत हम आपको सुनवा रहे हैं हेट स्टोरी 3 फिल्म से अरमान मलिक की आवाज़ में। गीतकार मनोज मुंतशिर हैं, संगीतकार बामन हैं।

हेट स्टोरी 3 फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे अरमान मलिक की आवाज़ में। इसी के साथ नए तराने का ये सफ़र यहीं संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, FM बैंड 103.2 MHz पर। सुबह के 11 बजे हैं, आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: आप सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार, जोहार, जय हिंद। श्रोताओं, आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं, गांव की मिट्टी में वो ताकत है जो इंसान को अपनी भाषा, संस्कृति और जड़ों से जोड़े रखती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुविचार के लिए। तो आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का, यवतमाल महाराष्ट्र से क्षितिज संदीप कोल्हे, गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलाऊ दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी, और तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। आपसे यही निवेदन रहेगा हमारा कि इसी तरह से बने रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ। स्वागत है एक बार फिर से, और आइए अब चलते हैं हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी भारत की विभिन्न झीलों के बारे में, याद है ना। हमने बात की थी मणिपुर की अनोखी झील लोकटक, हिमालय की सुरम्य वादियों में बसी मानसरोवर झील, ओडिशा की चिल्का झील और कश्मीर की डल झील की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। तो आइए अब चलते हैं आज की चर्चा में। श्रोताओं, इस सप्ताह उमंग कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ले चलेंगे भारत के विचित्र, रहस्यमयी और अनूठी गुफाओं में। सचमुच बड़ा ज्ञानवर्धक और मनोरंजक होगा उनके बारे में जानना, है ना। लेकिन पहले आपको ये तो बता दें कि हम गुफा को भौगोलिक रूप से परिभाषित कैसे करेंगे। तो आइए सुनते हैं इसकी परिभाषा। श्रोताओं, आम बोलचाल की भाषा में हम झील, पर्वत, लगून, मानसून जैसे शब्दों को तो कह देते हैं, लेकिन सही मायनों में उसकी परिभाषा वैज्ञानिक रूप से नहीं जानते। श्रोताओं, गुफा पृथ्वी की सतह के नीचे या अंदर प्राकृतिक रूप से बनी हुई खोखली जगह को कहते हैं। अगर आप पूछें कि इसे सरल शब्दों में कैसे कहें, तो आपको बता दूं कि धरती या पर्वत या समुद्र के भीतर प्राकृतिक रूप से बनी खोखली जगह को गुफा कहते हैं। हाँ, ये कभी कभी मानव निर्मित भी हो सकती है। तो आइए अब आते हैं आज के विषय पर। आज हम चर्चा करेंगे भारत की एक अद्भुत गुफा की, जिसे हम भीम बैठका गुफा के नाम से जानते हैं। श्रोताओं, इस नाम के पीछे एक बड़ी दिलचस्प पौराणिक कथा है। ऐसा कहते हैं कि यह नाम महाभारत के भीम से जुड़ा है। ऐसी मान्यता है कि भीम इस स्थान पर रुके थे, भीम बैठका यानी भीम के बैठने की जगह। इस गुफा को भीम की आश्रय स्थली भी कहा जाता है। सचमुच ये बड़ी रोचक बात है, इस गुफा को भीम की आश्रय स्थली भी कहा जाता है। तो आइए श्रोताओं, अब जानते हैं कि भीम बैठका की गुफा है कहाँ। तो आपको बता दें, ये जगह मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में है, जो राजधानी भोपाल से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में पड़ती है। ये अत्यंत प्राचीन गुफाएं हैं। लेकिन अब एक और प्रश्न मेरे मन में आता है, आपके मन में भी आ रहा होगा, और वो प्रश्न ये है कि भीम बैठका की गुफाओं का पता कैसे चला। तो श्रोताओं, इसके पीछे बड़ा मनोरंजक किस्सा है। वहां के स्थानीय लोग तो इन गुफाओं के बारे में जानते थे, लेकिन इसका पता विश्व को तब चला जब डॉक्टर विष्णु वाकणकर ने इसके बारे में प्रामाणिक ढंग से जानकारी दी। तो आइए जानते हैं कैसे पता चला डॉक्टर विष्णु वाकणकर जी को। तो आपको बता दें कि डॉक्टर विष्णु वाकणकर एक जाने माने पुरातत्वविद रहे हैं। वर्ष था 1956। एक बार वे ट्रेन से भोपाल से इटारसी जा रहे थे। ट्रेन विंध्य पर्वतमाला से होकर जा रही थी। श्रोताओं, यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो डॉक्टर विष्णु वाकणकर को जरूर याद रखिएगा, ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। जी, तो मैं आपको बता रहा था कि वे ट्रेन से भोपाल से इटारसी जा रहे थे। तो ऐसा हुआ कि उन्होंने ट्रेन की खिड़की से कुछ ऐसी चट्टानों और पहाड़ियों को देखा जो बड़ी कलात्मक लगी। वे दूसरी चट्टानों से भिन्न थीं। वे उन्हें अपनी फ्रांस और स्पेन की यात्रा के दौरान देखी गई प्रागैतिहासिक शैल चित्रों वाली चट्टानों जैसी लगी। तो फिर क्या था, वे उतर गए अगले स्टेशन पर और उस स्थान पर पहुंचे। बाद में उन्होंने बताया कि पहली गुफा में घुसते ही वे आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने वहां बहुत सारे शैल चित्र यानी पत्थरों पर बने चित्र देख लिए, जिन्हें हम रॉक पेंटिंग्स कहते हैं। जी हाँ श्रोताओं, इन गुफाओं में 30,000 वर्ष तक पुराने शैल चित्र हैं, जो पुरापाषाण युग से मध्यकाल तक की झांकी प्रस्तुत करते हैं। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए डॉक्टर विष्णु वाकणकर को सन 1975 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और वर्ष 2000

0: 3 जुलाई में यूनेस्को ने भीमबेटका की गुफाओं को विश्व धरोहर घोषित किया। ये खोज पुरातत्व और मानव अध्ययन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे ये साबित हुआ कि भारत में मानव सभ्यता कितनी प्राचीन और निरंतर है। तो आइए श्रोताओं, आप जानते हैं कि इन गुफाओं में क्या ऐसी बात है जो इसे खास बनाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह भारत का सबसे पुराना ज्ञात मानव आवास है, जिसमें 600 से भी अधिक शैलाश्रय या रॉक शेल्टर्स हैं। ये प्रकृति द्वारा बने आवास हैं। इन गुफाओं में शिकार, सामूहिक नृत्य, युद्ध, पशु पक्षी और प्रारंभिक मानव की रोजमर्रा की जिंदगी के चित्र हैं। श्रोताओं, इन चित्रों में गेरुआ, लाल, सफेद, पीले और हरे रंगों का इस्तेमाल हुआ है। ये रंग वनस्पति से बने हैं, इसलिए हजारों वर्षों बाद भी ये टिके हुए हैं। अगस्त 1990 में भारत सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय महत्व का स्थान घोषित किया गया। ये वो जगह है श्रोताओं, जहां संभवतः आदि मानव ने पहली बार पत्थरों की दीवारों को कैनवस बनाया। हम भीमबेटका की गुफाओं को भारत के इतिहास की पहली चित्र गैलरी भी कह सकते हैं। तो श्रोताओं, भीमबेटका की गुफाएं सचमुच अद्भुत हैं। अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, भीमबेटका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की? 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन दोनों पतों पर हमारे प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम संकल्प की धनी वसंती। श्रोताओं, ये कार्यक्रम एक महान पर्यावरण नेत्री वसंती के जीवन और पर्यावरण के संरक्षण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में एक नाटक के द्वारा मनोरंजक ढंग से जानकारी देता है।
1: दोस्तों, कभी सोचा है तुमने कि हमारी सभ्यताओं को किसने पाला पोसा है, किसने संवारी है हमारी दुनिया? माँ की गोद ने और नदियों की घाटियों ने। हजारों हजारों साल से माँ ने हमें सीने से लगाया, हमें जीवन दिया है। यही तो है नदी, जिसने हमारी सभ्यता को सींचा और हरा भरा किया है।

नदी मनुष्य के साथ रही है, उसकी हर हंसी हर आंसू में। वो हम सफर रही है मनुष्य के हर सफर में। तभी तो हर सभ्यता ने नदी को माँ कहा है।

लेकिन कभी कभी मनुष्य अपनी नासमझी और नादानी में जीवन देने वाली इस मां के जीवन को ही खतरे में डाल देता है। उत्तराखंड की एक बहुत खास नदी कोसी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ।

0: लेकिन भारत देश की महिलाएं अपनी प्रकृति की रक्षा के लिए हमेशा ही तैनात रही हैं। 1972 में चिपको आंदोलन की शुरुआत कर अपने जंगलों को बचाने वाली गांव की ही एक अनपढ़ 50 वर्षीय बाल विधवा गौरा देवी थी।
1: और इस बार भी कोसी की रक्षा के लिए एक महिला ही आगे आई। हाँ, आज की हमारी नायिका बसंती बहन ने कोसी को बचाया।
0: भला क्यों बचाया बसंती ने कोसी को? क्या नाता है कोसी और बसंती का? आखिर ये बसंती है कौन? ये बसंती भी कुछ खास ही है।

0: कोसी की तरह। दोनों ही हिमालय के ऊंचे शिखरों से ही नहीं बल्कि घने जंगलों से निकली हैं। आइए जानते हैं कि उनके बीच कैसे बनता है एक गहरा नाता और कैसे बचाती हैं वे एक दूसरे को।
1: ये कहानी है उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के एक छोटे से गांव की।

0: सन 1980 अप्रैल का एक दिन।
1: बसंती, अरे बसी, ओ बसी कहाँ है तू?
2: अरे बुआ क्यों चिल्ला रही हो? मैं यहाँ बुरांस के फूल चुन रही हूँ।
1: अरे क्या करेगी इनका तू है?
2: क्या करूँगी? गमकुआ इधर बनाऊंगी। क्या तुम्हें पता नहीं कि इससे शरबत बनता है? तो शरबत बनाऊंगी।
1: अरे बसी तू बिल्कुल बावरी है। अरे चार रोज बाद तेरा ब्याह है और आज जंगल में बुरांस के फूल चुन रही है। हा? चल घर चल। अरे चल सब खोल रहे हैं तुझे। अरे चल ना जल्दी कर।
2: नहीं।

0: तो उसने ठीक से अपने गुड्डे गुड़िया का भी ब्याह नहीं रचाया था और उस छोटी सी गुड़िया का ब्याह हो गया।
1: शादी के लगभग 2 साल बाद एक रोज शाम के समय सर पर लकड़ियों का गट्ठर उठाए जब बसंती घर पहुंची तो घर का नजारा बिल्कुल बदला हुआ था।
0: सारा गांव उसके घर में इकट्ठा था और बहुत तेज रोना धोना मचा था। बसंती को कुछ समझ में आता, इससे पहले ही मां उसकी ओर तेजी से आई और गले लगाकर रोने लगी।

अरे बसंती, बेटी तू बर्बाद हो गई, तेरी दुनिया हमेशा के लिए उजड़ गई बेटी, अरे तू विधवा हो गई।

0: और इस तरह इससे पहले कि बसंती ब्याह के मायने समझती, वो विधवा हो गई। वक्त ने धीरे धीरे उसे विधवा होने का मतलब भी समझा दिया। पिता को अपनी मासूम बच्ची के भविष्य की चिंता सता रही थी, लेकिन नियति ने तो उसके लिए कुछ और ही संयोग रच रखा था। बसंती के पिता को उनके एक मित्र से कौसानी के लक्ष्मी आश्रम के बारे में पता चला।
1: आजादी के पहले गांधी जी की शिष्या सरला बहन ने इस आश्रम की शुरुआत पहाड़ की बच्चियों को शिक्षित करने के लिए की थी। बाद में यह आश्रम उन महिलाओं के लिए जीवन की शाला बना जिन्हें दुनिया विधवा कहकर बेसहारा समझती है। वही महिलाएं दक्ष होकर आज समाज का सहारा बन रही।

0: ये सोचकर कि बसंती का भविष्य सबसे ज्यादा आश्रम में ही सुरक्षित रहेगा, बसंती के पिता ने बसंती को इसी आश्रम में भेज दिया।
1: घर से आश्रम की यात्रा बसंती के लिए एक जीवन से दूसरे जीवन में प्रवेश की यात्रा बन गई। जीवन के 12 बसंतों ने ही उसे एक चहकती बालिका से विधवा और फिर आश्रमवासी बना दिया।
0: ये तो थी कहानी बसंती की, पर बसंती का आखिर क्या नाता है कोसी से? है ना, बहुत गहरा नाता है। उस रोज जब बसंती पहली बार अपने पिता के साथ आश्रम जा रही थी, तो उसे लगा कि ये उसकी जिंदगी की अंतिम यात्रा है। मगर उसी रास्ते में उसकी भेंट कोसी नदी से हुई।

0: हुआ यूं कि कोसानी जाते हुए मन्नान में बस दोपहर के भोजन के लिए कोसी नदी के निकट रुकी तो उदास बसंती भोजन करने के बजाय कोसी के किनारे जाकर बैठ गई।
1: थोड़ी देर बाद उसे कोसी के निर्मल जल से आवाज आई। मानो कह रही हो, बेटी बसंती, तू उदास मत हो। ये यात्रा तुम्हारे जीवन की अद्भुत यात्रा साबित होगी। इस यात्रा से तुम अपने जीवन को मायने दे सको, तुम अपने जीवन दे सको, मायने दे सको।
0: बसंती घबराकर इधर उधर देखने लगी, पर कहीं कोई नहीं था। फिर ये आवाज किसकी थी? बसंती ने पानी में झांका तो उसे अपनी ही छवि दिखाई दी। अब तक उसकी आंखों से आंसू छलकने बंद हो चुके थे और चेहरे पर संशय की जगह विश्वास अपनी जड़ जमाने लगा था।
1: उसके बाद से बसंती को जब भी बड़े सवाल सालते वो कोसी के किनारे चुपचाप अकेले जा बैठती और उसे जवाब मिल जाता। दरअसल कोसी उसकी अंतरात्मा की परछाई बन चुकी थी।
0: साल पर साल गुजरते गए। बसंती अपने सामाजिक कार्यों में मगन रही और कोसी भी अपनी जल तरंगों से घाटी को हरा भरा करती रही।

0: लेकिन लोगों की नादानी से कोसी की रस धाराएं तेजी से सूखने लगी। और एक दिन ऐसा भी आया कि उत्तराखंड की सरकार ने कोसी पर पहरा लगा दिया। ये बात सन 2003 की गर्मियों की है।
1: बसंती दीदी, ओ बसी दी, कहाँ हो? गजब हो गया, कुछ सुना तुमने दीदी?
2: अरे क्या हुआ शांति?

0: क्यों सारा पहाड़ सर पर उठा रखा है? मैं यहाँ गौशाले में हूँ, घास काट रही हूँ।
1: दीदी दीदी, अभी अभी मैं नीचे गांव से आ रही थी।
2: हाँ?
1: वहाँ सरकार ने कोसी पर जगह जगह पुलिस बैठा दी है।
2: क्या?
1: सरकार का हुक्म है कि खेती के लिए कोई भी कोसी का बूंद भर पानी भी इस्तेमाल न करे।
0: अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? कोसी हमारी है या सरकार की?
1: कहते हैं कि कोसी का पानी बहुत तेजी से घट रहा है, इसलिए सारा पानी अल्मोड़ा शहर जाएगा। वहाँ पीने का पानी हमारी कोसी से ही तो मिलता है ना।
0: अच्छा चल, आश्रम चलकर सबको इसकी खबर देते हैं।
1: ठीक है, चल ठीक है दीदी, चलो चलो।
3: उस रोज रात को कोसी नदी के बारे में आश्रम में भोजन के बाद चर्चा हुई।
4: हाँ, बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब इसका उपाय क्या है, क्या करें? हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं, मेरी तो ऐसा है, हम सबको मिलजुल के कुछ करना चाहिए।
3: कोसी नदी को बचाने की जिम्मेदारी आश्रम की बड़ी दीदी राधा भट्ट ने बसंती को सौंपी।

0: अब हम लौटते हैं लक्ष्मी आश्रम की ओर, जहां सुबह सवेरे झोला लेकर बसंती बहन गांव का रुख कर रही हैं। ऐसा करते हुए उन्हें 45 दिन हो चुके हैं। वो रोज सुबह 6 बजे बरासे घाटी के गांव की ओर चल पड़ती हैं। शुरू में कोई उनकी बात को सुनने समझने को तैयार नहीं था। एक दिन बसंती को महिलाओं का एक झुंड मिला। सभी के हाथों में रस्सी और दराती थी। वे सब बहुत तेजी से जंगल की ओर जा रही थी। बसंती दीदी समझ गई कि ये सब लेसाल गांव की महिलाएं हैं और जंगल में लकड़ी काटने जा रही हैं। बसंती दीदी ने उन्हें पुकारा।
1: अरे कहाँ जा रही हो बहनों? क्या तुम सब लेसाल गांव की हो?
2: हाँ, हम सब लेसाल गांव की हैं और जंगल जा रहे हैं लकड़ियाँ काटने।
1: बहन जरूर जाओ, लकड़ी भी लाओ, लेकिन देखो कच्ची लकड़ियाँ मत काटना।
3: वो भला क्यों? तुम क्या कोई यहाँ की कलेक्टर लगी हो जो हमें ये फरमान सुना रही हो? अरे हम क्यों तुम्हारी बातें सुने? हाँ
1: मेरे लिए नहीं, अपने कोसी के प्राण बचाने के लिए आप सबको मेरी बात माननी चाहिए।
2: तुम्हारी बात से कोसी के प्राण का क्या रिश्ता?
3: हाँ।
2: हमें क्यों मूर्ख बना रही हो?
3: और क्या
2: है? आखिर तुम कौन हो, क्या चाहती हो?
3: हाँ।
1: आमा मैं लक्ष्मी आश्रम से आई हूँ। आप सबने तो सुना ही होगा कि इस बार कोसी के पानी पर सरकार ने पहरा लगा दिया है। गांव का कोई आदमी कोसी के पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए नहीं कर सकता। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम मिलकर कोसी को बचाएं। यही बात समझाने के लिए मैं गांव-गांव घूम रही हूँ।
2: तुम्हारी बात में दम तो है बेटा, पर कोसी को हम कैसे बचा सकते हैं?
1: आमा इसका जवाब तेरे पास है।
2: मेरे पास?
1: हाँ तेरे पास। आमा तुम इन सबको बताओ कि कोसी नदी बनी कैसे है।
2: कोसी बनी कैसे? ये कैसा सवाल है? क्या तुम नहीं जानती कि हमारे पेनाथ जंगल के बांज बुरांश के घने पेड़ प्राकृतिक जल को सही

0: बातचीत करते हैं और उसी से कोसी का जन्म हुआ
1: और क्या
0: है।
2: बिल्कुल ठीक। ऐसे में अगर हम जंगल काटेंगे तो कोसी में पानी घटेगा या बढ़ेगा?
1: घटेगा।
0: अब हमें तुम्हारी बात समझ में आ गई।
3: खाली हमारे समझने से क्या होता है, हम अकेले क्या कर सके हैं?
2: हम गांव के बाकी लोगों को ये बात समझा कर अपने जंगल के पेड़ों की जिम्मेदारी स्वयं कर सकते हैं।
0: चलो इसकी शुरुआत हमारे ही गांव से करो।
1: अरे चलो चलो बसंती बहन, हमारे गांव चलो
4: चलो चलो
1: चलो। हाँ जल्दी चलो, हम सबको बताते हैं।

और इन औरतों का काफिला एक बार जो चल पड़ा तो रुका नहीं। इस दिन बसंती बहन लेसाल गांव गई और वहां औरतों ने एक सभा बुलाई और झटपट एक महिला मंडल का गठन हो गया। फिर धीरे धीरे 20 गांव में महिला मंडल का गठन हो गया। बरासे घाटी के कफारी, बिजुरिया, धौलरा, गरुड़ा, सैल, खीराकोटा, कांटली आदि गांव में महिला मंडल का गठन हो गया।

0: शुरू में तो पुरुषों ने महिला मंडल का विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी बात समझ में आ गई और वे भी अपना जंगल बचाने के अभियान में लग गए। अगस्त 2003 से आज तक इन गांव के लोगों ने कच्ची लकड़ी और हरी पत्तियां नहीं काटी।
1: पर रास्ता इतना आसान भी नहीं था। कोसी की जीवन रेखा पिनाथ जंगल केवल बरारो घाटी में नहीं पड़ता था, उसका कुछ हिस्सा लोध घाटी और बागेश्वर में भी पड़ता था, और वहां के लोग अब भी जंगल काट रहे थे। तब बरारो घाटी के महिला मंडलों ने फैसला किया कि पूरे इलाके में कोसी बचाओ जुलूस निकाले जाएं, सभाएं की जाएं।

0: बसंती बहन और गांव की संकल्प की धनी जुझारू महिलाओं ने यह साबित कर दिया है कि अगर आप ठान लें तो सब कुछ संभव है। उत्तराखंड की धरती ऐसी ही साहसी महिलाओं की धरती रही है और उसी परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं बसंती बहन।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम संकल्प की धनी बसंती, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT FM बैंड 103.2 MHz पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 11:30 हुए हैं। आइए पुनः जुड़ते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से।

नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो

0: मैं हूँ ना बासु। और फारूक ने कहा, वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा, ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर? तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए? वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है? हाँ, वही करते रहोगे।
1: 20 जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन।

अभी आप सुन रहे थे शंकर शंभू कव्वाल की आवाज में आमिर खुसरो की ये रचना। और ये आवाज है विशाल मिश्रा की, आप सुन रहे हैं इनका गाया ये गैर फिल्मी गीत।

0: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: दिव्या कुमार और अदिति सिंह शर्मा की आवाज में ये पारंपरिक गीत।

0: बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: और आइए अब सुनते हैं उस्ताद मेहदी हसन की आवाज में ये राजस्थानी मांड।

केसरिया बालम पधारू मारे देश, राजस्थान की जबान है ये। केसरिया महबूब से मुखातिब है।

0: अभी हम रिले कर रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों को। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 11:55 होने वाले हैं। प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।
1: आकाशवाणी रायपुर है, अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में 65 पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। इनमें छत्तीसगढ़ की बुधरी ताती भी शामिल है। महासमुंद जिले के सरायपाली क्षेत्र में

वैज्ञानिक अन्वेषण के दौरान मिले हीरे। मुख्यमंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में नवा रायपुर स्थित मंत्रालय में हो रही है राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। इनमें छत्तीसगढ़ की बुधरी ताती भी शामिल है। इसके

और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। इनमें छत्तीसगढ़ की बुधरी ताती भी शामिल हैं। इसके अलावा सुविख्यात टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी, पार्श्व गायिका अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा को भी पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सरकार ने वर्ष 2026 के लिए 5 पद्म विभूषण सहित 131 पद्म अलंकरणों की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंत्रालय में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। महासमुंद जिले के सरायपाली क्षेत्र के बलौदा बेलमुंडी डायमंड ब्लॉक में वैज्ञानिक अन्वेषण के दौरान हीरे मिलने से छत्तीसगढ़ के खनिज क्षेत्र में नई संभावनाएं बनी है। एनएमडीसी सीएमडीसी लिमिटेड द्वारा 200 टन खनिज सामग्री के परीक्षण के बाद कुल 5 हीरे मिले हैं, जिनका वजन 1.22 कैरेट है। इनमें 2 जेम क्वालिटी के हीरे शामिल हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे निवेश, रोजगार और आर्थिक विकास के नए अवसर बढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर आज राजधानी रायपुर में खेल और पर्यावरण संरक्षण को जोड़ते हुए वृक्षारोपण अभियान आयोजित किया जाएगा। नया रायपुर के ग्राम पलौद में छत्तीसगढ़ के ओलंपिक संघ और वन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में एक कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में इसमें शामिल होंगे। इस दौरान 2026 पौधों के रोपण का लक्ष्य रखा गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अंबिकापुर की कुछ समितियों में वित्तीय अनियमितताओं के मामले में कड़ी कार्रवाई की है। इसके बाद शंकरगढ़, कुसमी, रामानुजगंज और रामचंद्रपुर क्षेत्र के प्रभावित किसानों को अब फिर से खाद और बीज मिलना शुरू हो गया है। मामले में दोषी अधिकारियों कर्मचारियों पर FIR, निलंबन और विभागीय कार्रवाई की गई है। करीब 497 किसानों की शिकायतों में 30,51,00,000 रुपए से अधिक की अनियमितता सामने आई है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि किसानों के हितों से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव आज संभागीय और जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेंगे। बैठक में अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। किसी भी प्रतिनिधि को मान्यता नहीं दी जाएगी। बैठक में प्रदेश के स्कूलों में व्यवस्थाओं और शैक्षणिक तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। सक्ती जिले के डबरा थाना क्षेत्र में चूही पाली गांव के पास लोगों को लेकर जा रहा मालवाहक वाहन पलट गया। हादसे में 11 से 12 लोग घायल हुए हैं। 4 गंभीर घायलों को बेहतर इलाज के लिए रायगढ़ रेफर किया गया है। पुलिस के अनुसार वाहन में 15 से 20 लोग सवार थे, जो शादी समारोह से लौट रहे थे। छत्तीसगढ़ में दक्षिण पश्चिम मानसून ने दस्तक दे दी है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाड़ी ने बताया कि सोमवार 22 जून को मानसून ने बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा जिले के रास्ते प्रदेश में प्रवेश किया है और आज की स्थिति में मानसून मध्य छत्तीसगढ़ तक पहुंच गया है। वहीं आगामी 2 से 3 दिन में मानसून के और आगे बढ़ने की संभावना है। इसी के प्रभाव से पिछले 24 घंटे में प्रदेश के अधिकांश स्थानों में मेघ गर्जन के साथ मध्यम से लेकर तेज वर्षा और वज्रपात भी हुआ है। वज्रपात की स्थिति प्रदेश में आगामी 5 दिन तक बने रहने की संभावना है। इसके साथ ही मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ में अधिकतम तापमान में अगले 24 घंटों के दौरान 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में 65 पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। इनमें छत्तीसगढ़ की बुधरी ताती भी शामिल है। महासमुंद जिले के सरायपाली क्षेत्र में वैज्ञानिक अन्वेषण के दौरान हीरे मिले। मुख्यमंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में नवा रायपुर स्थित मंत्रालय में हो रही है राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

0: आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। सुविख्यात टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी, पार्श्व गायिका अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा पद्म पुरस्कार पाने वालों में शामिल हैं। आकाशवाणी अपने विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म और आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं के जीवन और उनकी योगदान की जानकारी मिल रही है। ये कार्यक्रम आज 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल एक सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की प्रतिबद्धता को समझा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष की नागरिकों की प्रतिबद्धता से उपलब्धियां हासिल हुई हैं।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते से भारतीय किसानों, मछुआरों, कारीगरों और छोटे व्यापारियों को वैश्विक स्तर पर कारोबार करने में मदद मिलेगी। इससे रोजगार सृजन भी बढ़ेगा। एक अंग्रेजी दैनिक के लिए लिखे गए आलेख में वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होने वाला ये समझौता ब्रिटेन में भारतीय सामानों की पहुँच बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि इससे लगभग 99% शुल्क तुरंत समाप्त हो जाएंगे और भारत से निर्यात बढ़ेगा। अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय कथित शिक्षक भर्ती परीक्षा में धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि ये कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था। लखनऊ आग की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 254 अंक गिरकर 76,840 पर, जबकि निफ्टी 90 अंक की गिरावट के साथ 24,013 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, यादों की महफिल। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि गैर पारंपरिक खतरे अब राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल गए हैं। उन्होंने कहा कि नई तकनीक, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और साइबर खतरे तेजी से डिजिटल होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक में मुख्य रूप से गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। दोस्तों, इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और आज अभिनेता राज बब्बर साहब का जन्मदिन है। हम विविध भारती परिवार की ओर से उन्हें देते हैं ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। और आज इस कार्यक्रम में, यानी यादों की महफिल कार्यक्रम में, हमने राज बब्बर की फिल्मों से ही कुछ गीत आपके लिए चुने हैं। यह है इस कार्यक्रम का पहला गीत। फिल्म का नाम है निकाह। आवाजें महेंद्र कपूर और सलमा आगा की। गीत को लिखा है हसन कमाल ने और धुन बनाई है रवि ने।

महेंद्र कपूर और सलमा आगा की आवाजों में अभी आपने फिल्म निकाह का ये गीत सुना। आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं। कविता कृष्णमूर्ति की आवाज, फिल्म का नाम याराना। गीत रचना रानी मलिक की और धुन अनु मलिक की है।

0: कविता कृष्णमूर्ति की आवाज थी और फिल्म का नाम था याराना।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: और आइए अब सुनते हैं जगजीत सिंह के संगीत निर्देशन में इंदिवर का लिखा गीत, युगल स्वर सुरेश वाडकर और अनुराधा पौडवाल की, फिल्म का नाम है प्रेम गीत।

कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं वर्मा मलिक के बोल, उत्तम जगदीश का संगीत। फिल्म का नाम है वारिस और गाने वाले कलाकार लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह।

0: कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
1: 20 जुलाई

0: जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना, उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार?
3: महेंद्र कपूर की आवाज, फिल्म का नाम आज की आवाज, गीतकार हसन कमाल, संगीतकार हैं रवि।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जुगल किशोर तिलक राज की संगीत निर्देशन में लीजिए हम आपको सुनवाते हैं एमजी हशमत का लिखा गीत, युगल स्वर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की ये फिल्म है भीगी पलकें।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूलें कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। और अब आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर, बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। जी बताइए कैसे हैं दोस्तों? आपके शहर में बारिश हुई या नहीं, या अभी भी आप धूप में बहुत परेशान हैं? बताइए आपके शहर में चिलचिलाती धूप है या फिर हल्की फुल्की बूंदे? लेकिन हमारे कार्यक्रम में आज हल्की फुल्की बारिश है और साथ में है प्यारी सी हमारी छतरी। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में छतरी केवल धूप या बारिश से बचने का साधन नहीं होती है ना, बल्कि ये धैर्य, सुरक्षा और दूरदर्शिता का एक गहरा दार्शनिक प्रतीक होती है। क्यों, सही है ना? ये हमें सिखाती है कि तूफानों को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उससे बचने की तैयारी जरूर की जा सकती है। जैसे छतरी बारिश में या चिलचिलाती धूप में खुद उस धूप को सहती है, बारिश को सहती है, तूफानों को सहती है, लेकिन हमें सुरक्षित रखती है। ठीक वैसे ही दोस्तों हमारे जीवन में आने वाले संकटों और चुनौतियों का सामना करने के लिए आत्मबल भी एक ढाल की तरह काम करता है, यानी एक छतरी की तरह काम करता है। तो आज का ये सफर हम शुरू करते हैं इसी छतरी के नाम। तो सुरीला सफर में आप मेरे साथ हैं ना? अरे बताइए मेरे साथ हैं भी कि नहीं? देखिए ना, मुझे अकेले इस सुरीले सफर में निकलने से डर लगेगा, आप अगर मेरे साथ हैं तो ये सफर यूं ही आसान हो जाएगा जैसे हर बार होता है। तो बताइए, लिखिए फटाफट कि आप इस सफर में मेरे साथ हैं, है ना? और हाँ, अपनी छतरी लेना मत भूलिएगा। हो सकता है कहीं बारिश हो, कहीं चिलचिलाती धूप हो, कहीं बहुत बुरी गर्मी हो, तो हम परेशान न हो जाएं और ये सफर सुरीला ही बना रहे। इसलिए आज का ये सुरीला सफर हम शुरू करते हैं। हाँ, हमारी आज की इबारत, हमारे कुछ दोस्त कह रहे हैं कि हमने इबारत नहीं लिखी, ऐसा नहीं है। आज जो हमने इबारत लिखी है वो ये है कि दशकों तक मुख्यधारा में हिंदी फिल्मों में गीतों के माध्यम से बारिश के साथ रोमांस किया गया, और इन गानों ने हमें छाता जरूर दिया, यानी हर फिल्मी गाने में ये छाता जरूर हमें मिला। और छतरी का ये उपयोग इसलिए किया गया कि फिल्मों में बारिश के दौरान नायक और नायिका एक छतरी के नीचे आकर उनके बीच का प्यार हमें दर्शाया जाता है, उनके बीच की केमिस्ट्री से हमको अवगत कराया जाता है, इसलिए इन छतरियों का इस्तेमाल किया गया। और साथ ही डांस सीक्वेंस में रंग बिरंगी छतरियों का इस्तेमाल करके वो जो सेट है उसे आकर्षक बनाया जाता है। और बहुत से गीतों में बारिश होते समय छतरियों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन कुछ गीत ऐसे हैं जहां बारिश नहीं थी लेकिन नायक और नायिका के बीच छतरी थी। तो आज का ये कार्यक्रम उन्हीं छतरियों के नाम, आपके नाम, इस गीत के साथ।

0: दो ना।
1: भरो इंतजार आएगा वो दिन, बड़ी देर है
0: कब आएगा। अरे अरे, अरे, अरे।

0: बारिश तेज है, अरे अरे अरे भीग जाएंगे, अरे मैंने कहा बारिश तेज है, ये भीग जाएंगे, ये बारिश तेज है।
1: जी तो सुरीला सफर में तो हमने बारिश की शुरुआत कर दी है। आपके शहर में बारिश हुई या नहीं आप हमें बताने वाले हैं, और कितना मजा आता है ना इस गीत को, जब आपने देखा होगा तो पता चला होगा कि पूरे गाने में नायिका छतरी को खोलने नहीं देती है, और अंत में जब नायक छतरी खोलता है तो छतरी उड़ जाती है, छतरी उड़ गई, कितने मजे में वो कहते हैं उड़ जाने दे, है ना। तो हमारे श्रोताओं ने भी आज बहुत कुछ लिखा है छतरियों पर और इस रिमझिम बारिश पर। एक श्रोता लिखती है कि सदियों से रिमझिम गिरती बूंदें और हिंदी सिनेमा का रोमांस एक दूसरे के पूरक रहे हैं। दरअसल बारिश में भीगते हुए जब एक ही छाते के नीचे नायक और नायिका करीब आते हैं तो ये सिनेमा के सबसे खूबसूरत और यादगार दृश्यों में से एक बन जाता है। टिप टिप गिरती बूंदों की धुन और छतरी की ओट में पनपता ये भीगा हुआ प्यार दर्शकों के दिलों में आज भी एक मीठी सी हलचल पैदा कर देता है। बहुत सुंदर। वही एक श्रोता लिखते हैं कि हिंदी सिनेमा के सुनहरे पर्दे पर मानसून और मोहब्बत का हमेशा से एक अटूट रिश्ता रहा है। जब जब रुपहले पर्दे पर बादल गरजे हैं तब तब प्रेम की नई परिभाषाएं लिखी गई हैं। इस भीगे हुए रोमानी माहौल को मुकम्मल बनाने में छतरी ने हमेशा एक बेहतरीन माध्यम का काम किया है। बारिश की बौछारों के बीच एक ही छतरी के नीचे सिमटे नायक नायिका के बीच की दूरियां पल भर में मिट जाती।

जानती हैं, ये छोटी सी छतरी केवल पानी से बचाने का साधन नहीं बल्कि उनके दिलों को करीब लाने और सुलगते हुए जज्बातों को हवा देने का एक जादुई जरिया बन जाती है। पुराने दौर के श्वेत श्याम गानों से लेकर आज के रंगीन दौर तक छतरी के साये में पनपा ये रोमांस दर्शकों के दिलों को आज भी गुनगुनाता है। बहुत सुंदर। तो हम आपको बता दूं, ये गाना फिल्म दो झूठ से हमने लिया था। किशोर कुमार और उषा मंगेशकर की आवाजें थी, एमजी हशमत के बोल थे और शंकर जयकिशन की धुन थी। हमारे एक साथी ने लिखा है कि साउथ इंडिया विशेषकर केरल में बारिश से बचने के लिए छतरी के बजाय पारंपरिक बांस और ताड़ के पत्तों से बनी एक विशेष टोपी नुमा छतरी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे ओलाकुड़ा कहा जाता है। बहुत सुंदर जानकारी, इसके लिए शुक्रिया। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बरसात से छाती का और छाते से रोमांस का बड़ा घनीभूत रिश्ता है, खासकर हमारी हिंदी फिल्मों में। छाता प्रतीक है साथ चलने का, हिस्सेदारी का, देखभाल का, साथ ही सुरक्षा और छाया देने का भी। ये जीवन में प्रेम का प्रतीक भी है। एक छाता कैसे दो प्रेम करने वालों को नजदीक ला देता है, ये फिल्म श्री 420 के गाने में आप देख सकते हैं। पुराणों में कथा है कि परशुराम जी के पिता महर्षि जमदग्नि की कड़ी तपस्या से पसीज कर भगवान सूर्यदेव ने उन्हें जूते और छाता भेंट किए थे। तरह तरह के रंगीन छातों से लेकर काले छातों तक मन के पिटारे में छातों की बहुत सी यादें आज भी कैद है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बारिश और छाते का रोमांस बेहद जादुई होता है। जहां तेज हवा के झोंके छाते को उड़ा ले जाते हैं और दो दिलों को एक दूसरे के करीब लाते हैं, तेज हवा में जब छाता उल्टा होता है तो पल भर के लिए सारी दुनिया रुक जाती है। बारिश और छतरी का ये रिश्ता सिखाता है कि जब तक मौसम सुहाना है तब तक साथ खूबसूरत है, लेकिन जब तेज हवा जैसी मुश्किलें आती हैं तो साथ निभाने के लिए लचीला होना बहुत जरूरी है, वरना रिश्ता टूट सकता है। क्या बात है, बहुत सुंदर लिखा है आप लोगों ने। मैं हमारे सभी श्रोताओं की उनकी लेखनी की बहुत कायल हूं। तो चलिए अगला गीत उन्हीं जज्बातों को लेकर सुनते हैं जहां सुलगते हुए जज्बात हैं और नायक और नायिका एक ही छतरी के नीचे थोड़ा सा करीब हैं।

हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि नहीं मंदाकिनी जी, हमारे यहाँ तो सूर्यदेव अधिक तेज दिख रहे हैं। वहीं एक श्रोता लिख रहे हैं कि हमारे यहाँ तो बारिश का दूर दूर तक कोई पता नहीं है, पर आज छतरी वाले गीतों की फुहारों से मन को ठंडक जरूर मिलेगी। एक श्रोता लिखते हैं कि बरसात में छतरी टोकनी आदि से बचते बचते वो साइकिल पर वो टोकनी तेज बरसात, दोस्तों के साथ घूमना एक अलग ही आनंद होता है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि पुणे में बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है, और एक श्रोता लिखते हैं कि नहीं हुई बारिश और अभी कोई आसार नजर भी नहीं आ रहे हैं। एक श्रोता का कहना है कि जून में बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी है हमारे शहर में, और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि छत्रपति संभाजी नगर में अभी तक ज्यादा बारिश नहीं हुई है। एक श्रोता ने लिखा है कि छतरी तो हर मौसम में काम आती है, चाहे गर्मी हो या बारिश, हसीनों को छतरी लेकर घूमने में ज्यादा मजा आता है, वो भी अलग तरह की। हमारे भोपाल में तो बारिश हो रही है और प्रकृति ने अपनी छटा बिखेर दी है, मौसम बहुत सुहाना हो गया है, क्या बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जब हम चेरापूंजी गए थे इतनी तेज बारिश, खूब हवा में हमारी छतरी भी उड़ गई थी। और एक श्रोता का लिखना है कि एक तरफ सुरीला सफर शुरू हो गया और बारिश के गीतों से, तो दूसरी तरफ तेज बारिश की शुरुआत भी हो गई है, दोनों एक साथ हो गए हैं, क्या कहने, क्या बात है। जी तो हमने जानना चाहा था कि आपके शहर में इस वक्त बारिश हो रही है, या बारिश आसपास एक दो दिनों में हुई या नहीं, या कोई आसार नजर आ रहे हैं कि नहीं, तो हमारे श्रोताओं ने हमें बताया है। और आप ये भी बताइए कि सुरीला सफर में आज आप हमारे साथ चल तो रहे हैं ना छतरी लेकर। तो अब आज के दो सवाल बिल्कुल सीधे साधे कि छतरी से जुड़ी कोई बातें। वैसे तो आपने छतरी को लेकर बहुत सारी बहुत ही खूबसूरत इबारत पेश की है, लेकिन आपके जीवन में छतरी से जुड़े कुछ किस्से, छतरी उड़ गई जैसा कुछ लोगों ने लिखा, छतरी ऊपर की ओर मुड़ जाती है कई बार, आप भीग जाते हैं, छतरी खो जाती है कई बार, आप भूल जाते हैं और तेज झमाझम बारिश में आपको भीगना पड़ता है, या ऐसा कोई किस्सा कि तेज बारिश थी, आप छतरी को लेकर साथ थे, छतरी के साथ ही, और चाय की टपरी आई और आप अचानक रुक गए और चाय पीने लगे। ऐसे किस्से भी आपकी जिंदगी में होंगे बहुत सारे, तो उन किस्सों को हमारे साथ साझा कीजिए ना। और हाँ, आपने किन किन गानों में छतरी को देखा है बताइएगा, कहीं भी, जरूरी नहीं है कि वहां बारिश ही हो रही हो, लेकिन छतरी को दर्शाया गया है उन गानों में, चाहे थोड़ा सा कहीं एक कोने में आपने देखा होगा कि दूर बहुत सारी लड़कियां छतरियां लेती हुई जा रही हैं, इस तरह के भी दृश्य फिल्मों में दिखाए जाते हैं और आगे नायक नायिका अपनी बात कह रहे होते हैं। तो कोई भी गाना जो आपको याद हो, कम से कम शब्दों में हमें लिख भेजिए जहां छतरी का इस्तेमाल किया गया है, हम तो सुनाई रहे। वैसे एक खुशी की बात यह है कि जैसे ही हमने आपको छतरी का क्लू दिया, आपने सभी गाने लिख दिए धड़ाधड़ धड़ाधड़, और हमारे एक श्रोता के गाने तो हमारे से बहुत ज्यादा मिल भी रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं कि आपकी और हमारी पसंद, आपकी और हमारी प्लेलिस्ट मिलने लगी है थोड़ा थोड़ा। आगे बढ़ते हैं सुरीले सफर में, वही देखते हैं आगे मौसम कैसा है।

हमारे श्रोता कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इस वर्ष बारिश कम होने के आसार हैं और यदि होगी भी तो जलते तवे रूपी धरती पर पानी के छींटों के समान होगी। वैसे भी इस वर्ष पहले के वर्षों की अपेक्षा कुछ बारिश कम होने की भविष्यवाणी भी की गई है। नहीं, आप ऐसा मत सोचिए, आशा रखिए, विश्वास रखिए, है ना। ऐसा नहीं होगा कि आप निराशा के बादल अपने आसपास मंडरा ले। आपको आशा रखनी है और निराशा बिल्कुल नहीं रखनी है। एक श्रोता लिखते हैं कि मेरे घर हर साल नई छतरी खरीदनी पड़ती है, कहीं भी जाते हैं तो भूल जाते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म श्री 420 का जो गीत आपने सुनवाया, इस फिल्म का राज कपूर और नरगिस जी का छाता लिए पोस्टर बहुत ही प्रचलित हुआ था और ये पोस्टर हमने अपनी दुकान में लगवा लिया था। क्या बात है।

एक श्रोता ने लिखा है कि राज कपूर और नरगिस की वो आइकॉनिक छतरी प्यार हुआ इकरार हुआ वाले गीत की आज भी हर उस दिल की धड़कन है जो पहली बार मोहब्बत के दरिया में उतरता है। वो छतरी धूप छांव से बचाने का कवच नहीं बल्कि दुनिया की नजरों से दूर अपना एक छोटा सा मुकम्मल संसार बसाने का जरिया बन जाती है। बहुत सुंदर लिखा है आपने। एक श्रोता ने लिखा है कि सुरीला सफर के सभी श्रोता प्रेमियों को नमस्कार है और उत्तर भारत तो अभी तक तप रहा है यद्यपि मानसून ने दस्तक दे दी है छिटपुट बारिश करके और आज के गीत भी बारिश वाले ही होंगे तो बरसात से भीगने से बचने के लिए छतरी जरूरी है। बिल्कुल आपने कुछ गीतों का जिक्र भी किया है और यकीनन आपकी कुछ गीत हमारे गीतों से हमारी पसंद के गीतों से मिलते हैं। शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत बधाई आपको। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बारिश में नायक नायिका छतरी पकड़कर गाते हुए प्यार का इजहार करते हुए सुंदर दृश्य ऐसे गीत आज सुरीला सफर में है तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। एक श्रोता ने लिखा है कि बारिश रोमांस और छाती के संगम को दर्शाती आज की छोटी सुंदर सी इबारत है। फिल्मों में बारिश हमेशा से प्रेम और भावनाओं

खूबसूरत प्रतीक रही है। रिमझिम फुहारों के बीच फिल्माई दृश्यों में छाता केवल बारिश से बचने का साधन नहीं, बल्कि दो दिलों को करीब लाने वाला एक प्यारा सा माध्यम बना है। और बारिश में छाते के साथ फिल्माए गए अनेकों रोमांटिक फिल्मी गाने हैं, प्यार हुआ इकरार हुआ जैसा कि आपने बताया, और बहुत सारे गीतों का जिक्र आपने किया है। एक श्रोता लिखते हैं कि नित नई प्रायोगिक प्रयास में प्रयासरत जोशी साहिबा, अच्छा मैं, कि नई अन्वेषण छतरी वाला गीत संगीत हम श्रोताओं को एक नई ऊर्जा और दिशा दे रहा है। बारिश की फुहार हो या प्रेमी दिल शांत बैठे संभव नहीं। यहाँ उल्लेखनीय विषय होती है छतरी एक और प्रेमी युगल, और दोनों एक दूसरे को भीगने से रक्षा की दिखावे की कोशिश करते हैं, परंतु दोनों के दिल से एक ही आवाज निकलती है, चलो इस प्रेम रस में सराबोर हो, भीग लिया जाए। मौसम अनुकूल विषय वस्तु पर आधारित इस सफर में हम श्रोता भी संगीत रस में भीगने की तमन्ना रखते हैं। बहुत सुंदर लिखा है आपने, शुक्रिया। आइए आगे चलते हैं, थोड़ा और भीगते हैं, छतरी रख लीजिएगा इस सफर में, ध्यान रखिएगा। हाँ, SD बर्मन का संगीत है इस बार, साहिर लुधियानवी के बोल हैं, गीता दत्त और साथियों की आवाजें, फिल्म का नाम है बाजी। हाँ, ये गाना भी आपकी प्लेलिस्ट में शामिल था, है ना, शामिल है ना।

टिप टिप टिप टिप टिप टिप टिप टिप कितना प्यारा गीत है ना। और हमारे मन का जो आंगन है उसमें भी बरसात हो जाती है इस तरह के गीत सुनने के बाद। तो मैंने आपसे पूछा था कि आपके शहर में बरसात हो रही है या नहीं, या आसपास हुई या नहीं, या कोई आसार नजर आ रहे हैं कि नहीं, आप बताइए ना। अपने शहर का नाम भी लिखिए ताकि हमें पता चले कि आपके शहर कौन सा है और कहाँ बारिश हो रही है। एक श्रोता लिखते हैं कि खंडवा शहर में कल शाम को आंधी तूफान के साथ तेज बारिश हुई है, मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है लेकिन शहर में कई जगह पेड़ गिर गए हैं। अच्छा, इतनी तेज बारिश हुई थी। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे गांव कल रात बरसात के दूसरे नक्षत्र के पहले दिन रात भर बारिश हुई। इधर गोंदिया में बेटी के यहां 10

15 मिनट बारिश हुई और अब धूप है। अच्छा, वही एक श्रोता लिखते हैं कि राजा महाराजाओं और संभ्रांत लोगों को धूप से बचाने के लिए कुछ विशेष रंग बिरंगी छतरियां लेकर लोग साथ चलते हैं। बिल्कुल सही कहा। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे यहाँ तो अभी बारिश थोड़ी सी बूंदे आई है, देखते हैं हमारे शहर में कब कब भीगता है इस तेज बारिश में। बिल्कुल भीगेगा, थोड़ा सा उम्मीद रखिए और बताइए अपने शहर के बारे में कि आप कौन से शहर से लिख रहे हैं और वहाँ बारिश हुई कि नहीं, और छतरी से जुड़ी कुछ यादें आपको लिखनी है कि आपके जीवन में छतरी का क्या योगदान रहा है, और कौन से गीत हैं वो जो आपको पसंद है उनके बारे में हमें बताइए, अच्छा लगेगा। एक श्रोता लिखते हैं कि बारिश और प्रणय का मोहक रिश्ता सदियों से चला आया है। महाकवि कालिदास के मेघदूत इस खंड काव्य में भी ये नाता दिखाई देता है। क्या बात है, हिंदी फिल्मों में भी बरसात और अनुराग भरा श्रृंगार हमेशा दिखाई देता है जो युवा दिनों को बेसुध बना देता है और आत्मिक आनंद देता है। बहुत सुंदर लिखा है आपने। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि छाता और प्यार का नाता दिखाने वाले बहुत सारे गीत हैं। बिल्कुल, हमने आपके गीत पढ़े देखे हैं और बहुत सारे गीत हमारे गीतों से मिल रहे हैं, बधाइयां आपको बहुत बहुत। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आप ही हैं जो बिना इबारत के सुरीला सफर प्रस्तुत कर रही हैं, जबकि बाकी लोग अभी भी इबारत का सहारा ले रहे हैं, जबकि बिना इबारत के कार्यक्रम का आनंद कई गुना बढ़ जाता है। क्या आज छतरी वाले गाने ढूंढने में श्रोताओं की भागीदारी नहीं रहेगी बल्कि और भी बढ़ जाएगी और उनके और आपके बजाए हुए गीत ज्यादा मेल खाएंगे। आपको कुछ बातें कुछ गीत की वापसी कराने की बधाई। देखिए, हम आपको एक बात कहना चाहेंगे, आपने जो बात लिखी है पिछली बार भी आपने यही कुछ लिखा था, जो बात मैंने लिखी है चार लाइनों में वो इबारत ही है। इबारत का कोई फिक्स तरीका नहीं है कि ये इसी तरह से सेट डिजाइन नहीं है कि इसी तरह का लिखा हुआ इबारत होता है। जो बात मैंने लिखी कि भई दशकों तक मुख्यधारा के हिंदी फिल्मों में गीतों के माध्यम से बारिश के साथ रोमांस किया गया है, तो ये एक इबारत ही है जो मैंने अपने तरीके से लिखी ताकि श्रोताओं को ज्यादा से ज्यादा इबारत समझ आए और वो गीतों से जुड़े। तो ये कार्यक्रम सुरीला सफर ही है और हमारा उद्देश्य इस वक्त आपका मनोरंजन करना सुरीला सफर के माध्यम से है। तो आप इसी इबारत को पढ़िए और समझिए कि इबारत के कई रूप हो सकते हैं। एक ही तरह की सेट पैटर्न पर कोई इबारत नहीं लिखी जा सकती। हाँ, रही बात शब्दों की, तो मैंने आपको क्लू दे दिया कि हमने आज छतरी मैं ये भी लिख सकती थी कि भई आज कुछ ऐसे गीत है जहां इस इबारत से आप समझिए, लेकिन मैंने आपकी बात को थोड़ा सा सरल बना दिया ताकि आप गीतों को अच्छे ढंग से ढूंढ पाएं और आपको भी खुशी हो। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन में बारिश हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती थी, अब बड़े हो गए हैं लेकिन अब इतना अच्छा नहीं लगता। अरे एक श्रोता ने लिखा है कि बारिश एक छतरी और रोमांस, ये तो अपने आप में ही एक मुकम्मल कविता है। सच में जब आसमान से रिमझिम फुहारें बरस रही हो और एक छोटी सी छतरी के नीचे दो लोग सिमट कर चल रहे हो तो उस पल का जादू कुछ अलग होता है। वो हल्की सी नजदीकी, एक ही छतरी में खुद को बारिश से बचाने की कोशिश दो अनजाने लोगों को एक दूसरे के करीब ले आती है। इसी खूबसूरत मंजर को फिल्मों में रूमानी परिकल्पना के साथ परिभाषित किया जाता है, जिसमें आज सुरीला सफर में हमें ये गाने सुनने को मिल रहे हैं। बिल्कुल, चलिए अगला गीत सुनते हैं। कल्याण जी आनंद जी का संगीत है, कमर जलालाबादी के बोल हैं, आवाज मुकेश की और फिल्म का नाम है छलिया।

जी एक श्रोता लिखते हैं कि भगवान महावीर की जन्मस्थली और भगवान बुद्ध की कर्मस्थली वैशाली बिहार में प्रचंड गर्मी है, दूर दूर तक काले काले बादलों का कोई अता पता नहीं है दीदी। चलिए तो सुरीले सफर के इस सफर में आ जाइए ना हमारे साथ, थोड़ा बहुत तो आपको आनंद आएगा ही इन बारिश इन फुहारों का, है ना। वही एक श्रोता लिखते हैं कि जब से विविध भारती उद्घोषकों ने, जिसमें आप भी हैं, बारिश के गाने सुनाने शुरू किए हैं, बादल मजबूर होकर मेरे शहर इंदौर में बरसने लगे हैं, क्या बात है। वही एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे जिले सागर मध्य प्रदेश की में इस रहली में इस सीजन की पहली बारिश परसों हुई थी, इस समय तो तेज धूप निकली है, चलिए बारिश की शुरुआत तो हुई। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे शहर अजमेर में अभी तेज धूप है, तापमान 36 डिग्री सेल्सियस है, कुछ दिन पहले बारिश हुई थी। अच्छा, वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे भोपाल शहर में रिमझिम बारिश हो रही है, पर हमने आज गीत तो एक भी नहीं लिखा, जबकि गीतों से प्यार तो हमें ज्यादा है, पता है क्यों नहीं लिखे गीत, क्योंकि आज हम आपकी पसंद के गीत सुनने वाले हैं। बहुत सुंदर। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे डूंगरपुर में भी बारिश बहुत कम हुई है, और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ग्रेटर नोएडा में बरखा रानी की प्रतीक्षा है, अभी भी लू चल रही है। बहुत सुंदर, और हम उम्मीद करते हैं कि आपके शहर में जल्द ही बारिश आए, लेकिन हाँ, अगर आप अभी गर्मी से परेशान है तो सुरीले सफर में निकल जाइए ना हमारे साथ। हम तो आपसे पूछ ही रहे कि सुरीले सफर में आप हमारे साथ हैं कि नहीं, छतरी को साथ, छतरी भी होनी चाहिए। चलिए तो सुरीले सफर में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ओपी नैयर का संगीत है, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं, गीता दत्त और साथियों की आवाजें हैं, फिल्म का नाम है मिस्टर एंड मिसेज 55।

हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि बारिश के गानों से हम सभी बोर हो रहे हैं। फिर आपने लिखा है बहुत बढ़िया जी, बात समझ में नहीं आई कि जब बोर हो रहे हैं तो फिर बढ़िया क्या लगा आपको, और हमने तो कहा ही नहीं कि बारिश के गाने हैं, हमने तो आज उन गानों को इस कार्यक्रम में शामिल किया है जिनमें छतरी का इस्तेमाल किया गया है। हो सकता है कुछ गीत ऐसे भी हों इसमें जहाँ बारिश नहीं हो रही थी लेकिन छतरी थी। अभी अगला गीत आप सुनने वाले हैं उसमें कहीं आपको बारिश नजर नहीं आएगी, ना उन बोलों में गीतों के और ना कहीं उस परिदृश्य में, लेकिन हाँ जो गायिका या जो नायिका उस गीत को फिल्मा रही हैं, गा रही हैं, वहां पर छतरियों का इस्तेमाल किया गया है। चलिए तो आपके विचारों को हम क्या माने, आप बोर हो रहे हैं और बढ़िया क्या लग रहा है थोड़ा स्पष्ट लिखें। एक श्रोता लिखते हैं कि आज मेरी कविता की दो पंक्तियां बोल दीजिए आप प्लीज। क्या लिखा है आपने, सफेद कागज पर काली स्याही से मैं लिखी हुई दास्तान हूँ। अच्छा तो आप थोड़ी लंबी कविता लिखिए, वैसे तो आपने बहुत गहरी बात लिख दी है। अगर आप लिखते हैं तो हमारे कार्यक्रम से जुड़ी कुछ पंक्तियां लिखिए ताकि हम उसको शामिल कर सके। वही एक श्रोता लिखते हैं कि ये वर्ष अल नीनो से प्रभावित है, ये एक मानसून से जुड़ा वैज्ञानिक शब्द है जो विश्वव्यापी वातावरण के संदर्भ में है। जब वातावरण इसके प्रभाव में रहता है तब उस वर्ष वर्षा बहुत कम होती है। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, और देखिए जब हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, हमारे श्रोता और भी आगे लिख रहे हैं इसी बात को कि ग्लोबल वार्मिंग के दंश को ये आशा और विश्वास ही तो झेलने की शक्ति प्रदान करता है। इसके जिम्मेदार बहुत हद तक हम इंसान भी तो हैं जिन्होंने प्रकृति का दोहन किया है, तो हमें अपने अंदर भी झांकना होगा कि आज समय पर बारिश क्यों नहीं हो रही है, या समय पर सर्दी क्यों नहीं आती है, समय पर गर्मी क्यों नहीं होती है। इसका कारण हम इंसान बहुत बड़ा एक कारण है जिन्होंने प्रकृति का नाजायज फायदा उठाया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि गुजरात में मेरे शहर बड़ोदरा में बारिश को लेकर अभी तक मुंबई जैसा ही हाल है, मैं कल ही मुंबई आई हूं। अच्छा एक श्रोता का लिखना है कि हमारे यहाँ सूरत में कल सुबह हल्की सी बारिश हुई, उसके बाद लग रहा है कि लंबी छुट्टी पर चली गई, वो आए न आए सुरीले सफर में बरसाती गीतों की फुहारों में हम भीग रहे हैं। अच्छा लग रहा है ना, बिल्कुल बारिश आएगी आपके शहर में। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैं अब तक कई छाते कहीं रखकर भूल आया हूं और वो कहीं मिले नहीं, इसलिए अब कहीं भी छाता लेकर नहीं जाता। अरे तो बारिश आएगी भीग जाएंगे, याद रखिए अपनी याददाश्त को थोड़ा बनाए रखिए भाई। और वही एक श्रोता लिखते हैं कि हम जब छोटे थे तब मेरे पापा हम सब भाई बहन के छाते पर ऑयल पेंट से अपने यानी हमारे नाम लिख देते थे ताकि स्कूल में उसे बदला ना जाए, तार के ज्वाइंट में ऑयलिंग तो खुद ही कर देते थे। हाँ बिल्कुल सही कहा, क्योंकि बच्चे लोग अक्सर स्कूलों में जो अपनी मैट है, अपने छाते हैं या अपनी पानी की बोतल है, टिफिन है, भूल जाते हैं तो माता पिता परेशान हो जाते हैं। वही एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन में अक्सर ऐसा होता था जब पापा जी ने हमें वर्षा ऋतु में विद्यालय पहुंचाने या विद्यालय से लेने आए थे और छाता खोलते ही वो उल्टा हो जाता था, तेज हवा में हवा की विपरीत दिशा में चलने

के कारण हम भीगते थे और पापा जी भी हंसते थे। बिल्कुल यही जिंदगी है। और इसी तरह हमारी जिंदगी में भी होता है कि हम बहुत कुछ अपने साथ लेकर चलते हैं और इस उम्मीद के साथ कि सब कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन अचानक कुछ उल्टा हो जाता है। लेकिन उसमें भी हमें आनंद ढूंढ लेना चाहिए। अगला गीत ऐसा ही है, जहां बारिश नहीं हो रही है और इन बोलों में भी बारिश नहीं है, लेकिन छतरियों का इस्तेमाल किया गया है। फिल्म का नाम है समाधि। लता मंगेशकर और अमीर बाई कर्नाटकी की आवाजें हैं। राजेंद्र कृष्ण की रचना, सी रामचंद्र का संगीत।

जी हमारे श्रोता लगातार अपनी बात लिख रहे हैं। एक श्रोता का कहना है कि बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है और हम सभी संगीत रस से भीगते हुए शानदार सफर कर रहे हैं। बिल्कुल यही हम चाहते थे कि आप इस सफर में मेरे साथ हैं कि नहीं। हालांकि आप लोगों ने लिखा है कि नहीं मुझे नहीं समझ आ रहा कि आप इस सफर में मेरे साथ आए हैं कि नहीं लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप सभी इस सफर में मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे। एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे शहर धार MP में हल्की फुहारों के साथ बारिश हो रही है और छतरी से याद आया कि पिछले वर्ष हमारी छतरी ले गया था और आज ही नहीं लानी पड़ेगी। एक श्रोता ने लिखा है कि छत्रपति संभाजी नगर से पुणे रेड बस ट्रेवल्स में ट्रेवल कर रहा था। पुणे आने पर मैंने केवल अपनी बैग उठाई और स्टॉप पर उतर गया। घर आने पर याद आया कि छतरी बस में ही भूल गया हूँ। भाई क्या बात है, ऐसे क्यों करते हैं, छतरी भूल जाते हैं। वही एक श्रोता ने लिखा है कि सोलापुर महाराष्ट्र से जैसे ही विविध भारती पर सुरीला सफर प्रोग्राम चालू हुआ तुरंत बरसात की बूंदें गिरने लगी। अच्छा, और एक श्रोता लिखते हैं कि आपने जो ही पूछा कि आपके यहाँ का मौसम कैसा है तो आसमान में बादलों ने दिवाकर को अपनी हिरासत में ले लिया आग बरसाने के जुर्म में। क्या बात है, क्या बात है, जुर्म इतना बड़ा था सूर्य देवता का कि बादलों ने उन्हें अपनी ओट में ले ही लिया। हमारे श्रोता लिखते हैं कि ये दुनिया वाले पूछेंगे मुलाकात।

बात हुई क्या बात हुई, ये गाना देवानंद और आशा पारेख के साथ फिल्माया गया है। बारिश नहीं है गाने में, लेकिन बहुत सारी सहेलियां रंग बिरंगी छतरियां लेकर गाती हैं। पार्श्व में कल्याण जी आनंद जी का मधुर संगीत और मेरा पसंदीदा गाना है। तो चलिए आपका पसंदीदा गाना हम आपको सुनवाते हैं फिल्म महल से, किशोर कुमार और आशा भोंसले की आवाजों में, आनंद बख्शी की रचना, कल्याण जी आनंद जी की धुन।

हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आज आप आई हैं, रिमझिम बारिश हमारे यहाँ चल रही है। ये कल तो गजब की बारिश हुई थी, बहुत ज्यादा तेज हवा, आंधी और बादल गरजे थे और बिजली भी खूब चमकी थी। इतनी तेज बरसात 2 घंटे हुई खंडवा शहर में और ठंडक हो गई, मजा आ गया, बहुत बहुत बधाई आपको। वही एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे यहाँ तो मई के मध्य से लेकर 22 जून तक तकरीबन 20 बार हल्की से मध्यम बारिश हो चुकी है। अभी 20 जून को भी हमारे यहाँ 1.5 घंटे तक लगातार तेज बारिश हुई, यानी राजस्थान हमीरगढ़ बात आप कर रहे हैं। बहुत सुंदर, अच्छी बात है ना कि राजस्थान में बारिश हो रही है कहीं कहीं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर में छतरी लेकर हम साथ चल रहे हैं, पर बारिश नहीं धूप से बचकर, क्योंकि हमारे यहाँ चटक धूप है। अच्छा, एक श्रोता लिखते हैं कि नहीं मंदाकिनी जी, छतरी लेकर तो हम साथ नहीं आए, हाँ संदेशों के साथ जरूर आए हैं, बातों और संदेशों के साथ। एक श्रोता ने लिखा है कि पहले गर्मियां शुरू होते ही छतरी बनाने वाले मोहल्ले में छतरी की रिपेयरिंग के लिए आते थे, पर अब

दिखाई नहीं देते हैं। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अगर अचानक छतरी नहीं हो और भीगने का मजा खूब आ जाता है। वहीं एक श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि खूब पेड़ लगाइए, ये बारिश भी आएगी और धूप भी छाते की तरह सुरक्षा देगी, मतलब पेड़ आपको सुरक्षा देंगे, इसलिए खूब ज्यादा पेड़ लगाइए, ठंडी छाव मिलेगी, बहुत सुंदर। वहीं लास्ट में अंत में एक श्रोता लिखते हैं कि आपके साथ छाते में चलते चलते हर्ष उत्साह की छींटे झेलते झेलते सुरीला सफर कैसे संपन्न हुआ पता ही नहीं चला। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये गीत अंतिम गीत के रूप में आपके साथ।

फिल्म चालबाज का गीत था अमित कुमार, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों का गाया हुआ, आनंद बख्शी की भूल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। और अब सुरीला सफर हम आखिरी मोड़ पर आ गए हैं पड़ाव का। ये अब जो है सफर यहाँ हमें इजाजत नहीं दे रहा कि हम और आगे बढ़े। ठीक है, फिर चलेंगे एक सुरीले सफर की और कभी और दिन। अब मंदाकिनी जोशी को दे दें इजाजत, फिर मिलूंगी। नमस्कार।

नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे जुगनू पर। अपने अंदर एक जगमगाता सूरज लिए चलता है जुगनू। रात का सूरज है चांद, लेकिन चांद से बेहतर है जुगनू, क्योंकि जुगनू को चमकने के लिए किसी दूसरे के प्रकाश की आवश्यकता नहीं। चांद तो सूरज से किरणें उधार लेता है, फिर उन्हें चांदनी में ढालकर फूला नहीं समाता है। लेकिन जुगनू वो हमें सिखाता है कि अपनी प्रतिभा और क्षमता पर विश्वास रखें, दूसरों पर निर्भर ना रहें, और जीवन में जब भी निराशा या असफलता का अंधेरा घना होने लगे तो अपनी सकारात्मक सोच और कर्म के दीपक को जलाए रखना चाहिए। मधुबन

अंधेरे की अपनी जिद है और जुगनुओं की अपनी जिद। सूरज बनने की जिद करो और जो ना बन सको सूरज, तो जुगनू बनकर छोटा सा सूरज अपने अंदर उगाकर अंधेरे से लड़कर रास्ता दिखाने वाला पथ प्रदर्शक बनो। जुगनू जब रात की काली चादर पर टिमटिमाना शुरू करते हैं, तो अक्सर अंधेरे में भटके को उम्मीद के सूरज तक पहुंचने का एक सिरा मिल जाता है और वो जुगनू अपनी रोशनी खोने तक उस भटकते प्राणी की उंगली पकड़ उसे सुबह की शफक रोशनी तक पहुंचा देते हैं।

हमारे सपने मन की मुट्ठी में रखे जुगनू ही तो हैं। माना जुगनू सूरज नहीं हो सकता और ना सूरज जुगनू हो सकता है, फिर भी सपनों के जुगनू हर सूरज की मुट्ठी में है। हर जुगनू अपने अंतस के सूरज से चमकता है, वो चमकता है फिर बुझता है और फिर चमकने लगता है। निरंतर ये क्रम जारी रहता है। जुगनू कभी सूरज की तरह तेज न चमक पाने पर निराश होकर अपनी चमक नहीं खोता, वो तो बस अपने को पूरी तरह से स्वीकार कर अपने आसपास के अंधेरे से निरंतर लड़ाई जारी रखता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कहा, हुर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्वभर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। लियोनेल मेस्सी फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। अर्जेंटीना की टीम नॉकआउट में पहुंची। और लंदन में FIH हॉकी प्रो लीग के शुरुआती मैच में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
1: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूती, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान रोहित शर्मा जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पद्म पुरस्कार विजेताओं पर आकाश

0: वाणी पीपल्स पद्म और आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं के जीवन और उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
1: मैं आपका काम सीखा, मूवी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूरी का ही होता है, तो मरूरी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
2: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ एक दूसरे को समझने की कोशिश करे, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सिख के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था, उसी दस्ते को फिर से उजागर करने को बनाने के लिए हमने प्रयास करना।
0: ये कार्यक्रम आज एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के साथ ही डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार हो गया है। श्री शाह ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें देश के महानतम नेताओं में से एक बताया। उन्होंने कहा कि डॉ. मुखर्जी के योगदान ने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
3: श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस राष्ट्र के बहुत बड़े नेताओं में शुमार होते हैं, जिन्होंने कभी जीवन में कुछ भी प्रसिद्धि के लिए नहीं किया, और उनकी बनाई पार्टी भारतीय जनसंघ, जो अब भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है, गंगा से लेकर बंगाल के गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी का साथ, और मूठ जैसे एक सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने 60 साल के अंदर इनकी विचारधारा पर आगे बढ़ते बढ़ते आज देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया है।
0: नई दिल्ली में नेफेड के नीलामी पोर्टल के शुभारंभ पर श्री शाह ने कहा कि 23 जून भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसी दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रीय एकता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। विभाजन काल को याद करते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल को भारत का हिस्सा बनाए रखने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। गृहमंत्री ने अनुच्छेद 370 का भी जिक्र किया, जिसने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था।
3: कश्मीर का राष्ट्रध्वज होता था, कश्मीर का संविधान अलग होता था, कश्मीर में एक अलग प्रधानमंत्री बैठते थे, कश्मीर में एक राष्ट्रपति भी बैठते थे। ये संकल्पना भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत खतरनाक। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक आंदोलन छेड़ा कि एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं रहे।
0: इस अवसर पर गृहमंत्री ने किसानों की सीधी भागीदारी को मजबूत करने के लिए खरीद कार्यों में बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने का आह्वान किया।
3: आने वाले 2 सालों में सहकारिता मंत्रालय सुनिश्चित करेगा कि दलहन का एक दाना भी एनसीसीएफ और नाफेड में व्यापारियों के माध्यम से न आए, सीधा किसानों के माध्यम से आए, जिससे मुनाफा पूरा किसानों के पास। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर को नीचे तक पहुंचाना है, और उसमें मैं मानता हूं कि नाफेड और एनसीसीएफ ने भी दृढ़ता के साथ शुद्ध तरीके से काम करने की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी जाकर परिणाम मिलेंगे।
0: नेफेड की प्रगति का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि 12 साल पहले गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा ये संगठन आज 74 लाख किसानों की सेवा करने वाला एक मजबूत संस्थान बनकर उभरा है।
3: नाफेड ने एक प्रकार से नेफिक्स.इन, दृष्टि, ईआरपी और नाफेड कल्याण, ये 4 पहलों की शुरुआत की, तो वो क्रांतिकारी इसलिए कि नाफेड जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था, आज नाफेड ये सारी पहल कर 500 करोड़ के मुनाफे के साथ, 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के 74 लाख किसानों की सेवा कर रहा है।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले एक दशक में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करने हेतु नेफेड और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ की टीमों को बधाई दी। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल की सहायता से किसानों को 48 घंटे के भीतर सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान प्राप्त हो जाता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध।

0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्व भर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। श्री डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने इस विषय पर चिंता व्यक्त की।
1: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
2: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
1: They all constitute an important threats for us.
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रेर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि वे भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर सार्थक चर्चा की उम्मीद कर रहे हैं। इस बीच श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका मजबूत द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में निर्णायक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, जिससे दोनों देशों के लिए नए आर्थिक अवसर खुलेंगे और अमेरिका भारत आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण मजबूती आएगी। अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि ये कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था। लखनऊ आग की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और उनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इस बीच फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के विशेषज्ञों और विशेष जांच दल के सदस्यों के एक संयुक्त दल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: घटना स्थल का मुआयना करने के बाद एसआईटी के सदस्य और एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार ने कहा कि उनकी टीम सभी पहलुओं की गहन जांच करेगी और हर विभाग की जिम्मेदारियों का विस्तार से आकलन करेगी। दूसरी ओर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की 6 सदस्यीय टीम ने आग लगने के कारणों का पता लगाने और घटनाक्रम स्थापित करने के लिए सबूत इकट्ठा किए। इस बीच लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इमारत को गिराने का नोटिस जारी कर दिया है। 3 मंजिला इमारत के अनाधिकृत निर्माण को लेकर 2016 में भी इसे गिराने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन 2 महीने से भी कम समय में इसे रद्द कर दिया गया था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: अयोध्या में राम मंदिर में दान और चढ़ावे में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही 3 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी ने आज अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। राज्य सरकार ने कथित वित्तीय अनियमितताओं और धन के दुरुपयोग की जांच के लिए इस उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया था। एसआईटी के सदस्यों ने पिछले सप्ताह कई संदिग्धों और मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों से पूछताछ की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में अलनीनो के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और कृषि पर इसके असर की समीक्षा के लिए एक बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौहान ने कहा कि अलनीनो की संभावित स्थितियों को देखते हुए सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और कृषि तथा खेती पर पड़ने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र में मॉनसून फिर से सक्रिय हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुंबई और आसपास के उपनगरों में आज लगातार तीसरे दिन भी बारिश हो रही है।
4: मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून मध्य अरब सागर के बाकी हिस्सों, मुंबई सहित महाराष्ट्र के कुछ और हिस्सों और मध्य व पूर्वी भारत के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। आज पुणे जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ घंटों में मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पुणे, रायगढ़ और रत्नागिरी के घाट इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बड़ी प्रतीक्षा के बाद आई इस बारिश से नागरिकों को राहत मिली है। अगले कुछ दिनों में महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में बारिश होने से किसान बुआई का काम शुरू कर सकेंगे। कृषि विभाग

0: ने किसानों को जरूरी मात्रा में बारिश होने तक बुवाई में जल्दबाजी न करने की सलाह दी है। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल के तराई वाले कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा और तेलंगाना में भी कल तक तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और उत्तराखंड में आज गरज के साथ वर्षा और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूरदर्शी नेता, प्रख्यात शिक्षाविद और देशभक्त डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि डॉ. मुखर्जी ने निडर होकर देश की एकता और अखंडता का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना जीवन देश के विकास के लिए समर्पित कर दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने ईरान पर अस्थायी रूप से बड़े प्रतिबंध हटा दिए हैं। इनमें ईरानी मूल के कच्चे तेल, पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के उत्पादन, वितरण और बिक्री को अधिकृत किया गया है। अमेरिका के राजकोष विभाग ने बताया कि 60 दिन के लिए जारी किया गया सामान्य लाइसेंस 21 अगस्त तक प्रभावी होगा। फीफा विश्व कप में आज अमेरिका के सांता क्लारा में ग्रुप जे मैच में अल्जीरिया ने पहली बार खेल रहे जॉर्डन को 2-1 से मात दे दी। लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। एक महत्वपूर्ण मुकाबले में अर्जेंटीना ने कल रात ग्रुप जे मैच में ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश किया। एफआईएच प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कहा, होर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्व भर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: ये तो बता छुपने वाले सामने आ।
1: मोहम्मद रफी की आवाज में अभी अपनी फिल्म तुमसा नहीं देखा का गीत सुना। गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार थे ओपी नैयर। विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

0: आशा भोसले और साथियों को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था सती परीक्षा। गीतकार थे नजामी और धुन बनाई थी सम्मुख बाबू ने।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिसम ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: कार्यक्रम में अब सुनिए चित्रगुप्त के संगीत निर्देशन में पंडित भरत व्यास की बोल, युगल स्वर लता मंगेशकर और मन्ना डे की। फिल्म का नाम साक्षी गोपाल।

इस गीत के बाद अब हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का गाया फिल्म रानी रूपमती का गीत। बोल पंडित भरत व्यास के हैं और संगीत एस एन त्रिपाठी का है।

0: एक जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना, उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
3: सचिन देव बर्मन के संगीत निर्देशन में लीजिए मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत सुनिए, स्वर लता मंगेशकर का, और ये फिल्म है पेइंग गेस्ट।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म नया दौर से हमने लिया है। इसे आवाज दी है आशा भोंसले ने, गीतकार साहिर लुधियानवी हैं और धुन बनाई है ओपी नैयर ने।

कार्यक्रम के आखिर में हम आपको रोशन के संगीत निर्देशन में फारूक केसर का लिखा गीत सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम है अजी बस शुक्रिया। गायिका हैं लता मंगेशकर।

0: सखी सहेली
1: हाँ, तो अब आज हमारे सामने बैठी हैं मंजरी जी। तो मंजरी जी, आपको मेरा नमस्कार और सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
2: आरती, तुम्हें और सुनने वाली सभी सखियों और सगा भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और आज हमारे साथ आरती है तो बड़ा अच्छा लग रहा है, और देखो बहुत सारी बातें भी हैं। तो हमारी जो आज के विषय है वो पहले बता देते हैं आरती, की हल्की फुल्की बातें, घर में आंगन क्यों था जरूरी।
1: बिल्कुल, आज हम घर आंगन को लेकर आए
2: जी, और सखी सहेली के आंगन में लेकर आए, तो सब लोग हमारे साथी लोग सखिया लोग जुट गए हैं। तो अगला विषय क्या है आरती?
1: बिल्कुल, अगला विषय है हमारा सखी विशेष के अंतर्गत हम लेकर आए हैं आज अश्विनी अशोकन जी को, जो कि सह संस्थापक हैं मैड स्ट्रीट डेन की। और साथ ही हम बात करेंगे

0: मुहावरों की दुनिया में क्या होता है, वो जो बहुत ज्यादा गलत काम होता
1: जी जी
0: है
1: जी
0: वो है आग में घी डालना।
1: घी डालना। तो इस पर सब लोग अपने अपने विचार डालें और कैसा अनुभव रहा है उसके बारे में
0: और
1: बताएं।
0: इस मुहावरे का उनके लिए क्या अर्थ है वो बताएं हमें,
1: जी
0: और साथ ही आंगन के विषय में बताएं, उनका आंगन घर का कैसा था,
1: कैसा था,
0: कैसे
1: बिल्कुल
0: खेलते थे वो अपने आंगन में।
1: बिल्कुल। और वरिष्ठ नागरिकों के लिए जरूरी एप्लीकेशंस, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे।
0: जी
1: यानी बड़े प्यारे से विषय हैं आरती, लेकर आई हो तुम, तो हम लोग इन पर बात तो करेंगे, लेकिन उससे पहले गीत सुन
0: ये
1: लेते
0: सुन
1: हैं।
0: लेते हैं।

0: और हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो
1: जी जी
0: अच्छे तरीके से रह सकें, इसके लिए हम कुछ नया लेकर आए हैं।
1: हाँ
0: वो
1: बताइए।
0: लेकर आए हैं वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ ज़रूरी एप्लीकेशंस कौन सी हैं जिनके ज़रिए वो अपने आप को अच्छे से अपने सुरक्षा भी अपनी कर सकते हैं और अपनी बहुत सी ज़रूरतें भी पूरी कर सकते हैं।
1: तो बताइए।
0: तो आज के जो डिजिटल युग है उसमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ ज़रूरी एप्लीकेशन उनके जीवन को और अधिक सुरक्षित बनाती हैं और सुविधाजनक बना सकती हैं, जैसे कि वो बैंकिंग से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं, सरकारी योजनाओं से लेकर मनोरंजन तक हर सुविधा मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से हम उनको उपलब्ध करा सकते हैं, उपलब्ध करते हैं। ऐसे में वरिष्ठ नागरिक अगर कुछ महत्वपूर्ण वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस का उपयोग करना सीख लें तो उनका जीवन बहुत अधिक सुविधाजनक, सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन सकता है। जैसे कि हम सभी लोग ये सब चीज़ें उपयोग करते ही हैं, जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे जो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट होता है, जिसकी वेबसाइट है abha.abdm.gov.in। ये एक डिजिटल हेल्थ आईडी है जिसमें व्यक्ति के स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जा सकते हैं। इसमें डॉक्टर की पर्चियां हैं, जांच रिपोर्ट है, इलाज का विवरण है, एक ही स्थान पर उपलब्ध रहता है, जिससे मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रहते हैं और अस्पताल में बार बार कागजात ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती और आपातकाल में डॉक्टर को स्वास्थ्य इतिहास बताने में आसानी होती है।
1: बिल्कुल आरती। और इसके अलावा ऑनलाइन SBI.SBI जो भारतीय स्टेट बैंक की डिजिटल बैंकिंग सेवा है, जहां हम बैलेंस चेक कर सकते हैं, फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, इसमें FD और अन्य बैंकिंग सेवाएं भी मिलती हैं। इसके साथ उमंग एप्लीकेशन जिसमें पेंशन संबंधी जानकारी रहती है, गैस बुकिंग जैसी बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। साथ ही जीवन जो कि भारत सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए लॉन्च किया गया एक विशेष एप्लीकेशन है, जहां वरिष्ठ नागरिकों को आपातकालीन सहायता, सरकारी योजनाओं की जानकारी और पेंशन से जुड़ी सुविधाएं एक ही जगह मिल जाती हैं, और मेडिसेफ जो एक बेहतरीन दवा रिमाइंडर ऐप है।
0: बिल्कुल। और जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं अक्सर समय पर दवा लेना जब हम भूल जाते हैं, तो ऐसे में ये ऐप सही समय पर अलार्म बजाकर दवा की याद दिलाता है और परिजनों को भी सूचित कर सकता है कि आपको इस समय दवा देने का टाइम हो गया है। और वेल्दी और या फिर माई फिटनेस, वेल्दी यानी कि आपकी वेलबींग या आप किस तरह से स्वस्थ हैं, वो फिटनेस आपकी चेक करता है। तो ये फिटनेस पॉल, ये फिटनेस और हेल्थ ट्रैकिंग का ऐप है जो वरिष्ठ नागरिकों को उनकी शारीरिक गतिविधि और खान पान का ध्यान रखने में मदद करता है। और साथ ही एक और है, वो है माई स्कीम, एक सरकारी पोर्टल है जहां बुजुर्गों के लिए चलाई जा रही सभी पेंशन और कल्याणकारी योजनाओं जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की जानकारी और आवेदन की प्रक्रिया आसानी से मिल जाती है। और है सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग DOSJE, जो कि भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट है।
1: बिल्कुल। और इसी के साथ ही SCW.DOSJE.GOV.IN जो वरिष्ठ नागरिकों को आवास, स्वास्थ्य सुविधाएं और राष्ट्रीय हेल्पलाइन जैसी सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा ऑडिबल एप्लीकेशन है, कई बुजुर्गों को पढ़ने में आंखों की कमजोरी के कारण परेशानी होती है, तो उनके लिए ऑडियो बुक सबसे उत्तम है। यहाँ हजारों किताबों को सुनकर आनंद लिया जा सकता है। इसके साथ वरिष्ठ नागरिक कल्याण पोर्टल जो कि भारत सरकार का केंद्रीय पोर्टल है, सीनियर सिटीजन वेलफेयर पोर्टल, बुजुर्गों को पेंशन, स्वास्थ्य और कल्याणकारी योजनाओं की सटीक जानकारी प्रदान करता है।
0: जी बिल्कुल। और एल्डरलाइन राष्ट्रीय हेल्पलाइन है जो कि बुजुर्गों के लिए समर्पित राष्ट्रीय हेल्पलाइन सेवा है। इसका टोल फ्री नंबर है 14567 यानी 14567, और हम इसके माध्यम से गरिमापूर्ण वृद्धावस्था वेबसाइट पर जाकर आवास, भावनात्मक सहयोग और कानूनी विवाद समाधान से जुड़ी सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही जीवन प्रमाण पोर्टल भी है, और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो भी जीवन प्रमाण है उसके जरिए पेंशन भोगी घर बैठे अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं, जिसके लिए उनको पहले जाना पड़ता था और अपना जीवन प्रमाण पत्र देना पड़ता था बैंक में।
1: बिल्कुल। और पेंशन भोगियों को पोर्टल पेंशनर पोर्टल विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों और सेवानिवृत्त लोगों के लिए कर छूट, यात्रा रियायतों और कल्याणकारी योजनाओं का विस्तृत विवरण देता है। अब तो ऐसे फोन भी उपलब्ध हैं जो बुजुर्गों की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं। इनमें बड़े बटन, फोटो स्पीड डायल और एक डी डेडिकेटेड SOS यानी आपातकालीन बटन होता है। इन फोन्स में तेज आवाज सुनने की मशीन के अनुकूल डिवाइस और लंबी बैटरी लाइफ जैसे फीचर्स मिलते हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो कहना चाहिए कि बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं जिनसे हमारे बुजुर्ग अपना फायदा कर सकते हैं, काम कर सकते हैं।
0: जी
1: तो

0: ये चीज़ बहुत अच्छी है आरती।
1: बिल्कुल,
0: और
1: अगर इनकी जानकारी हो और इनको चलाना आता है आपको, तो आप इनके जरिए बहुत ऐसी आप चीज़ों को, अपनी ज़रूरतों को आप पूरा कर सकते हैं, जिनके लिए हमें पहले बाहर जाना पड़ता था, वो अब हम घर बैठे ही एक क्लिक पे कर सकते हैं अच्छे
0: बिल्कुल।
1: तरीके
0: और
1: से।
0: आरती देखो, हमारी एक साथी लिखते हैं कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए तकनीकी अब वरदान बन गई है, उनके दैनिक जीवन को आसान, सुरक्षित और आनंददायक बनाने के लिए कई बेहतरीन मोबाइल एप्लीकेशन उपलब्ध हैं, जो स्वास्थ्य देखभाल, आपातकालीन सहायता, दैनिक सुविधाओं और मनोरंजन का ध्यान रखते हैं। उम्र में एक पड़ाव ऐसा आता है जब हमें सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, घर परिवार में बुजुर्गों को ये सहारा सहज मिल जाता है, जिससे उनकी जिंदगी आसान हो जाती है। सरकार भी उनकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए कई कोशिशें करती रहती है, कई योजनाओं और सरकारी सुविधाओं में उन्हें खास तवज्जो या छूट दी जाती है।
1: बिल्कुल, और इस तरीके की जो चीज़ें हैं उनको अपनाना भी चाहिए, जो नई तकनीक आ रही है वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद भी है, और जो कि जैसे कि हमें पेंशन की जानकारी प्राप्त करनी है या हमें कोई दवा मंगानी है, तो उसके उसके लिए हम, अगर कोई घर में उस समय नहीं है, तो हम इस तरह से अपने वेब के साइट के जरिए या फिर किसी ऐप के जरिए इस तरह से हम वो ले सकते हैं, जानकारी भी ले सकते हैं और वो दवा मंगा भी सकते हैं आराम से।
0: बिल्कुल। और हमारे एक साथी और लिखते हैं आरती, नागरिकों को या फिर से ऐसे सीनियर सिटीजन्स को मासिक पेंशन मुहैया कराती है जिसके पास आय का कोई साधन नहीं या जिनका हालचाल लेने वाला इस संसार में कोई नहीं है। वरिष्ठ नागरिकों को प्रॉपर्टी टैक्स में भी छूट मिलती है, साथ ही कई बीमा कंपनियां भी ऐसे लोगों के लिए विशेष मेडिकल प्लान लेकर आ रही हैं। कई बीमा कंपनियों ने भी जीवन बीमा की उम्र को बढ़ाकर 70 या 75 वर्ष कर दिया है, ताकि उम्र के इस पड़ाव पर भी उन्हें वित्तीय असुरक्षा का आभास ना हो सके।
1: बिल्कुल, बहुत ज़रूरी भी है इस चीज़ के लिए कि वो अपने अंदर सुरक्षित महसूस करें, तो इन बहुत सारी जो वेबसाइट्स हैं उन पे जाकर या बहुत सारी एप्लीकेशन है उनकी सहायता से, और या इस तरीके की अब फोन भी चल गए हैं जिनके जिनका उपयोग करके वो अच्छे तरीके से अपना मनोरंजन भी कर सकते हैं, अपनी ज़रूरत के सामान भी मंगा सकते हैं। और मंजी, इसी के साथ समय हो गया एक छोटे से अंतराल का।

0: हाँ सुमंजरी, इतना अच्छा प्यारा सा गाना सुनने के बाद अब हम कौन सी बात करने जा रहे
1: देखो आरती, ये बताओ ना कि तुमने
0: हैं।
1: कभी आग में घी डालने का काम किया है क्या?
0: मैंने कभी नहीं किया है आग में घी
1: जी
0: डालने का काम। हाँ, उस घी को निकालने का काम किया है, यानी कि लड़ाई, जो लड़ाई झगड़ा हो रहा था उसको सुलझाने का काम किया है।
1: ये तो बहुत अच्छा तुमने
0: जी
1: काम किया, क्योंकि जब ऐसे समय में झगड़ा हो रहा है तो आप अगर उसमें सही बीच बचाव कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो भी हमें ध्यान से करना पड़ता है आरती, नहीं मालूम पड़ा हम
0: ये ना
1: बचाव में
0: हो।
1: कर रहे,
0: हाँ
1: खुद ही
0: बिल्कुल,
1: फंस गए उस चक्कर में।
0: ये ना हो कि बात पहले झगड़े हो रही थी, आपस में बात चल रही थी, बात वाला झगड़ा हो रहा था और हमारे जाने के बाद वो लात घूंसे पे आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए।
1: जी, और देखो एक साथी लिखते हैं कि आग में घी डालना मुहावरा, पहले से भड़के हुए झगड़े या गुस्से को और भड़का देना, स्थिति को और खराब कर देना, इसका उन्होंने मतलब लिखा है।
0: जी
1: और मुहावरे की दुनिया में ले जा रहे हो, ये अच्छी बात है। एक लिखते हैं कि वैसे तो कोई भी शुभ कार्य के लिए किए जा रहे यज्ञ में आहुति देते हुए घी डालना जरूरी होता है, घर के सभी सदस्य शामिल होते हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन यहाँ इस मुहावरे के मुताबिक आग में घी डालना मतलब किसी के गुस्से या विवाद को और अधिक भड़काने, यानी किसी खराब परिस्थिति को और भी खराब यानी अशुभ करना होता है, बड़ी बुरी बात है।
0: जी
1: अंग्रेजी में इसे एड फ्यूल टू द फायर बोला जाता है। बहुत
0: जी
1: अच्छी सी बात लिखी इन्होंने।
0: और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि जब आग में घी डाला जाता है तो आग और तेजी से धधक उठती है। इसी प्रकार जब दो लोगों के बीच बहस या लड़ाई चल रही हो और कोई तीसरा व्यक्ति बीच में ऐसी बातें या चुगली कर दे जिससे उनका गुस्सा शांत होने के बजाय और बढ़ जाए, तो उसे आग में घी डालना कहते हैं। अक्सर ये लड़ाई झगड़ा क्लेश बढ़ाने वाले शब्दों पर कहा जाता है। आजकल सोशल मीडिया पर कुछ बात हुई नहीं, बस इसी तरह के आग में घी डालने शुरू कर देते हैं, जो परिवार, समाज और देश सभी के लिए घातक होता है। बोलचाल में लोग कहते हैं लगाना बुझाना या फिर लड़ाई को आगे बढ़ाना।
1: और एक हमारे साथी लिखते हैं कि आग में घी डालना एक प्रसिद्ध हिंदी मुहावरा है। इसका अर्थ है किसी पहले से बिगड़ी हुई स्थिति को और भी अधिक बिगाड़ देना या क्रोध, विवाद तथा तनाव को बढ़ावा देना। जब दो लोग बीच झगड़ा हो रहा हो और कोई

0: तीसरा व्यक्ति ऐसी बातें कहे कि जिससे झगड़ा और बढ़ जाए तो उसे आग में घी डालना कहते हैं। ये मुहावरा हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में शांति और समझदारी से काम लेना चाहिए, ना कि ऐसी बातें करनी चाहिए जो समस्या को और बढ़ा दे। इसीलिए हमें हमेशा मेल मिलाप और सद्भाव को बढ़ावा देना चाहिए, इन्होंने लिखा है आरती।
1: बिल्कुल। और एक और महेश श्रोता जो लिखते हैं कि इसका अर्थ है किसी पहले से बिगड़ी हुई स्थिति को और अधिक बिगाड़ देना या क्रोध, विवाद या तनाव को बढ़ावा देना। जब दो लोगों के बीच झगड़ा हो रहा हो और कोई तीसरा व्यक्ति ऐसी बात कहे कि झगड़ा और बढ़ जाए तो उसे आग में घी डालना कहते हैं। और ये मुहावरा हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में शांति और समझदारी से काम लेना चाहिए, न कि ऐसी बातें करनी चाहिए जो समस्या को और भी बढ़ा दें। इसलिए हमें हमेशा मेल मिलाप और सद्भाव को बढ़ावा देना चाहिए।
0: और आरती, कभी कई बार ऐसा होता है ना कि देखो भाई बहनों के बीच में छोटी छोटी सी बातों पर कहासुनी हो गई, और उसको सुन करके तू आपका दो एक तो भाई बहन में हो ही रहा है झगड़ा, लेकिन दूसरा आकर भाई आपके बीच में लग गया कि नहीं इसने तो ऐसा कहा था, ये गलत कह रही थी, तुम्हारे बारे में ऐसा कह रही थी। तो यानी आग में घी डालने का काम घर में भाई बहन के बीच में अक्सर झगड़ों में ऐसा देखा जाता है, और जब दो पड़ोसी झगड़ रहे हो तो तीसरा भी आकर उसमें आग में घी डालने का
1: बिल्कुल
0: काम।
1: पड़ोसी हो चाहे भाई बहन हो चाहे कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, अक्सर ऐसा होता है कि झगड़ा किसी न किसी छोटी बात पर भी शुरू होता है, लेकिन अगर कोई समझाने वाला नहीं होता है तो वो झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो बढ़ के विकराल रूप धारण कर लेता है।
0: बिल्कुल। और आपस में जो इसके बाद झगड़े के बाद जो मन के भेद हैं वो दूरियां बढ़ जाती है, मतभेद हो जाता है, तो वो बहुत दिक्कत वाला होता है, क्योंकि बाद में जब हम सामने वालों को देखते हैं तो याद आता है ना कितने अच्छे संबंध थे हमारे, इसके साथ आज ऐसा हो गया, वो बड़ा दुख देने वाला है। और मान लीजिए कि दो मित्र किसी बात पर आपस में बहस कर रहे हैं, तभी एक तीसरा व्यक्ति आकर ऐसी बातें करने लगे जिससे दोनों का गुस्सा और बढ़ जाए, तो भाई ऐसी स्थिति में तो यही कहा जाएगा ना कि आग में घी डालने का काम
1: बिल्कुल,
0: कर रहे हो, है ना?
1: बल्कि हमें उस स्थिति को संभालने की कोशिश करनी चाहिए, ऐसा करना चाहिए कि उनको समझाना चाहिए कि भाई जब क्रोध आपका शांत हो जाए तब आप आपस में बात करिए, जब तक क्रोध में रहते हैं ना हम तब तक हमें समझ में नहीं आता हम क्या सही कर रहे हैं या गलत। तो अब इसी बात को थोड़ा सा यहाँ पे विराम देते हुए एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं।

0: तो देखो भाई, इतने गीत के बाद हम लोग फिर अपनी उसी बात पर आ गए, घी वाली
1: डालना,
0: बात पे।
1: तो क्या कह रहे हैं श्वेता?
0: हमारे साथी कह रहे हैं कि जब आग में घी डाला जाता है तो आग और

0: तेजी से धधक उठती है। इसी
1: हम्म,
0: प्रकार जब दो लोगों के बीच बहस या लड़ाई चल रही हो और कोई तीसरा व्यक्ति बीच में ऐसी बातें या चुगली कर दे जिससे उनका गुस्सा शांत होने के बजाय और बढ़ जाए, तो उसे आग में घी डालना कहते हैं। अक्सर ये लड़ाई झगड़ा क्लेश बढ़ाने वाले शब्दों पर है। आजकल सोशल मीडिया पर कुछ बात नहीं, बस इसी तरह के आग में घी डालने की बात शुरू कर देते हैं, जो परिवार, समाज और देश सभी के लिए घातक होता है। बोलचाल में लोग कहते हैं लगाना बुझाना।
1: शांत रहे उतना ही अच्छा। ये शांति से काम लेना चाहिए,
0: बिल्कुल
1: क्योंकि जिस समय हमें गुस्सा है, बस थोड़ी देर हम शांत रहें, थोड़ी देर काउंट कर, 2 3 4, धीरे।

0: हाँ तो मंजरी,
1: अंतराल के बाद एक बार फिर सभी सखियों का और श्रोता भाइयों के साथ साथ आरती तुम्हारा भी स्वागत है।
0: बिल्कुल, हम सुन रहे हैं क्या सखी सहेली
1: जी।
0: तो एक प्रोमो सुन लेते हैं।
2: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
3: खून से है क्यों भीगा जिसमें ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम।

0: आठवीं में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू हुई। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी। इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
0: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: हाँ तो मंजरी, अब क्या करें?
3: अब बताओ तुम क्या करते?
2: एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं।

0: आरती सखी विशेष के अंतर्गत हम लोग बात करने वाले हैं अश्विनी अशोकन सह संस्थापक मैड स्ट्रीट डेन की जो है। अश्विनी अशोकन भारतीय तकनीक जगत की प्रेरणादायक महिलाओं में से एक है जिन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI को केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित न रखकर उसे आम जीवन और व्यवसायों के लिए उपयोगी बनाने का बड़ा काम अपने हाथ में लिया।
1: जी बिल्कुल, और अश्विनी अशोकन का जीवन इस बात का उदाहरण है कि कला और विज्ञान जब एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं तब कुछ नया और बेहतर आविष्कार आकार लेता है। चेन्नई की रहने वाली अश्विनी अशोकन का जन्म प्रोफेसर और कंप्यूटर वैज्ञानिकों के परिवार में हुआ था।
0: 12वीं कक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने विजुअल कम्युनिकेशन में दाखिला लिया। उन्होंने दृश्य संचार और इंटरेक्शन डिजाइन का अध्ययन किया तथा बाद में अमेरिका के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की।
1: बिल्कुल, और एक प्रशिक्षित शास्त्रीय नृत्यांगना और संगीतकार के रूप में उन्होंने 14 से 21 वर्ष की आयु के बीच देश भर में प्रदर्शन किया। दिलचस्प बात यह है कि विश्वविद्यालय में उनका शोध प्रबंध गति व्याकरण पर था,
0: जिसमें उन्होंने ये पता लगाया कि नृत्य के सांस्कृतिक रूप में हमें ये सोचने में कैसे मदद कर सकते हैं कि हम अपने रोबोट और अन्य डिजिटल एजेंटों में गति को कैसे डिजाइन करें। उद्यमिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने लगभग एक दशक तक एक प्रसिद्ध कंपनी में काम किया।
1: बिल्कुल, उन्होंने वहाँ पर मोबाइल नवाचार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और भविष्य की तकनीकों पर काम किया। इसी दौरान उनके मन में ये विचार जन्मा कि AI को केवल तकनीकी उपलब्धि नहीं बल्कि मानव जीवन को बेहतर बनाने का साधन बनना चाहिए।
0: जी, और अश्विनी कहती है, मैं समझती हूँ कि न्यूरल नेटवर्क कैसे काम करते हैं। मैं मशीन लर्निंग के मूल सिद्धांतों को समझती हूँ। मुझे तकनीक के निर्माण की पर्याप्त जानकारी है और सबसे बढ़कर मैं अपने मूल कौशल की को भली भांति जानती हूँ जो दुनिया भर के लोगों के लिए सार्थक तरीके से प्रौद्योगिकी को समझना और उसका उपयोग करना है।
1: बिल्कुल, वर्ष 2013 में उन्होंने अपने पति और न्यूरो साइंटिस्ट आनंद चंद्र शेखरन के साथ मैड स्ट्रीट डेन की स्थापना की। कंपनी का उद्देश्य ऐसी AI तकनीक विकसित करना था जो मशीनों को देखने, समझने और सीखने की क्षमता प्रदान करे। बाद में कंपनी ने VUE.AI जैसे प्लेटफॉर्म विकसित किए जिन्होंने खुदरा व्यापार, ई कॉमर्स, स्वास्थ्य और वित्त जैसे क्षेत्रों में नई संभावनाएं खोली। अश्विनी केवल एक सफल उद्यमी ही नहीं बल्कि कार्यस्थलों पर लैंगिक समानता की प्रबल समर्थक भी हैं।
0: उन्होंने अपनी कंपनी में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और तकनीकी क्षेत्र में उनके लिए अवसर सृजित करने पर विशेष ध्यान दिया। अपने दूरदर्शी नेतृत्व और नवाचार के कारण अश्विनी अशोकन को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सम्मानित किया गया है। आरती, जब भी हम ऐसे सखी सहेली के में लेके आते हैं, ऐसे विषय सखी विशेष के बारे में बात करते हैं, तो उनकी जो उपलब्धियां हैं, जो उन्होंने कार्य किया है, तो उसको सुनकर समझकर ऐसा लगता है कि हमारे अंदर भी एक लौ जगती है कि हम भी कुछ ऐसा करें कि एक हम ऐसी जगह पे अपनी पहचान बना सके।
1: बिल्कुल, और तकनीकी के क्षेत्र में उन्होंने इतना काम किया AI के लिए जहाँ पर आजकल मतलब सभी कर रहे हैं, लेकिन पहले इतनी ज्यादा लड़कियां नहीं आगे आ रही थी, लेकिन अब बहुत संख्या में लोग इसमें काम कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हुए तो बहुत समय हो गया, हम कुछ गीत सुन लें।
0: जी,

0: तो देखो भाई, हमारे गाने में भी अंगना शब्द आ गया, तो आज
1: हाँ
0: हम लोग उसी पर तो बातें करने
1: बिल्कुल,
0: वाली है
1: आंगन की ही
0: कि
1: बातें करनी है हमको।
0: जी देखो, पुराने समय में घरों में जो आंगन एक केवल खुली जगह नहीं होते थे आरती, बल्कि वो घर की धड़कन हुआ करते थे। आंगन में ही सब कुछ काम हम लोग किया करते थे। घर में दादी नानी मौसी चाची सभी लोग आंगन में बैठ कर ही, चारपैया होती थी, नहीं तो पीढ़े पर बैठते थे, नहीं तो चटाई डाल के बैठते थे, और वहीं पे सब्जी काटने से लेकर धोना सुखाना पछोरना गेहूं चकिया दरना, ये सारे जो
1: सब
0: काम
1: कुछ।
0: होते थे सब वहीं होते थे। और जैसे ही सीजन आता था होली आने वाली, तो उसके पहले जो दिन महीने होते थे उसमें बड़ी पापड़ कचरी अचार ये सब चीजें डाली जाती थी, और उसके लिए पूरा घर जुट जाता था।
1: बिल्कुल,
0: यानी
1: हर मौसम समझ लीजिए
0: जी,
1: हमारे आंगन में उतरता था।
0: यानी कि आंगन में हम बहुत सारी जिंदगी एक साथ जीते थे। और जो उत्सव त्योहार होते थे, यो याद होगा शादी के पहले जब मंडप वगैरह लगता है, तो
1: सब
0: पंगत में
1: आंगन
0: जो खाना खाया
1: बिल्कुल।
0: जाता था वो भी चटाई डाल करके, बड़ी लंबी सी पत्ती सी होती थी, उसके उस पर बैठ कर लोग खाना खाते थे, तो उसका भी एक आंगन का एक अलग
1: बिल्कुल।
0: मजा है। और
1: और जी
0: गर्मियों के दिन में, हाँ तुम क्या कहने
1: हाँ,
0: वाली
1: मैं ही
0: थी?
1: कह रही थी कि जैसे अभी बारिश के दिन चल रहे हैं, अब शुरू कहीं कहीं तो हो गई है और कहीं कहीं धीरे धीरे चल रही है बारिश, तो बारिशों का जो जो असली मजा होता था ना, वो आंगन में आता था। क्योंकि आंगन में जब पानी भर जाता था, बूंदे गिरती थी, छप छप छप
0: क्या
1: छप,
0: बात
1: इतना
0: है।
1: मजे आते थे कि
0: और तुम्हें
1: मतलब।
0: याद है ना वो जो नाव कागज की बना के हम लोग आंगन में जो पानी भरता था,
1: जी
0: और जब निकासी की जो जगह होती ना, उस जगह भी हम लोग कपड़ा ठूस दिया करते थे
1: बिल्कुल।
0: कि पानी भर
1: ये
0: जाए।
1: मुझे मुझे लगता है कि ना, ये जो यादें हैं वो सिर्फ हम लोग की नहीं, सभी की होंगी,
0: सभी की
1: सभी
0: है
1: के घर आंगन, जिनके जिनके घरों में आंगन, बल्कि अधिकतर लोगों के आंगन ही होता था घर में जो भी थे, तो वो आंगन का अपना अच्छे तरीके से उसका उपयोग भी करते थे। वहां पे सब काम किस तरह से, कैसे क्या करना है, वो चीजें भी करना, वहां पे इंजॉय किस तरह से हमें अपने आनंद उठाना है उस चीज का,
0: बिल्कुल।
1: वो भी करते थे।
0: और देखो ना, हमारे साथी क्या लिखते हैं कि हमारे पुराने घर में लखनऊ में एक आंगन हुआ करता था, उसके ऊपर लोहे का जाल होता था, और उस पर हम लोग झूला डलवा लेते थे अपने पापा लोग से, और सब भाई बहन मिलकर झूला झूलते थे। आसपास की सहेलियां भी इकट्ठी होकर झूलते थे, बड़ा मजा आता था। उसी में छोटे बच्चे वही नहाते धोते, नहाना धोना, कपड़े धोना, मम्मी लोग का पकवान बनाना, दादी माँ के साथ सब कुछ इस आंगन में ही हुआ करता था।
1: बिल्कुल।
0: और आंगन में याद है जब कपड़े में साड़ियों में मार देने का एक था, तो चावल के पानी से मार दिया, मार निकाल करके उसको साड़ियों पे मार देते, तो जो खींचना है सुखाना है साड़ी को, वो उसी आंगन में लंबी दूरी तक खड़े होकर के
1: बिल्कुल।
0: करते थे, तो बहुत मजा आता था
1: और
0: उन
1: रात
0: यादों
1: में
0: में।
1: जब सोने के लिए लोग जैसे कि अपनी देते हैं, अपनी यादें जब करते हैं, साझा करते हैं, तो लिखते हैं कि हम भाई रात में ऐसे सोते थे कि सब पूरा आंगन में पूरी चरपाइयां बिछा लेते थे, तो बहुत से लोगों की यादें जुड़ी होती हैं आंगन से।
0: बिल्कुल। और मच्छरदानी लगा के और पंखा लगा करके सोया जाता था, जब पंखा नहीं था तो हाथ वाले पंखे से बैना जिसे कहते हैं, वो डुला करके एक दूसरे को करते थे
1: बिल्कुल
0: हवा, वो भी बहुत यादगार है। और
1: बिल्कुल
0: हमारे साथी क्या लिखते
1: बिल्कुल।
0: हैं
1: हमारे
0: बताओ।
1: एक साथी लिखते हैं कि बच्चे बड़ों की नजर में सुरक्षित बचपन होता था आंगन में। बच्चे बड़ों की नजरों के सामने आंगन में कंचे, गिट्टे या छुपन छुपाई खेलते थे, और आज के फ्लैट्स की तरह बच्चे कमरों में कैद नहीं थे, बल्कि खुले आसमान के नीचे दौड़ते थे। प्राकृतिक एयर कंडीशनर था वो, समझ लीजिए, रोशनी थी, हवा थी, आंगन पूरे घर में प्राकृतिक रोशनी और ताजी हवा का सबसे बड़ा जरिया था। और गर्मियों की रातों में आंगन में पानी का छिड़काव करके चारपाई बिछा दी जाती थी, जो प्राकृतिक ठंडक देती थी।
0: क्या बात है। और हमारे साथी देखो, और बढ़िया सी यादें इन्होंने साझा करी है कि आंगन हर घर का सिर्फ खाली हिस्सा नहीं होता था, वो उस घर की सांस है, धड़कन है। आंगन वो जगह होता है

0: जहाँ बचपन में दादी नानी से कहानियां सुनी जाती थी, जहाँ माँ ने लकड़ी के चूल्हे पर दाल में बघार लगाया तो उसकी खुशबू पूरे घर में महक जाया करती थी, जहाँ बाबूजी खाट पर बैठकर अखबार पढ़ते, रेडियो सुनते थे, आंगन मतलब बिना किराए का अपना आसमान, जहाँ सुबह की पहली किरण, बारिश की पहली बूंद और चांद की चांदनी पर अपनी ही लगती थी, मतलब सोच लो कितना
1: बिल्कुल
0: सुंदर था वो समय। और आज भी जिनके आंगन वो इसका मजा लेते हैं,
1: बिल्कुल
0: सुबह तुलसी पर जल अर्पण से लेकर संध्या आरती तक घर की स्त्रियों की दिनचर्या होती थी, इसी आंगन में गिरे और संभले भी, यही से पारिवारिक रिश्तों की पहचान हुई। घर के आंगन ऐसी बहुत सी स्मृतियां होती हैं जो जीवन भर साथ रहती हैं। उनमें सौभाग्यशाली में से मैं हूँ कि मेरे घर में तीन आंगन शुरू से ही और उन्हीं में मेरा जन्म से लेकर बचपन बड़ा हुआ, हमारी चार बहनों और मेरा और मेरे बेटे का के विवाह मंडप भी बने और आज भी उन्हीं आंगनों में शेष जीवन व्यतीत हुआ जा रहा है। बहुत सारी यादें साझा करिए। और आंगन में जब ये मांगलिक उत्सव होते थे, जब ढोलक पर जो गाने बजते थे, सारी औरतें मिलकर ये
1: जी
0: गाती थी, नाचते थे, बच्चे भी नाचते थे, तो बहू बेटे सब क्या है, मतलब एक समा बन जाता था रात
1: बिल्कुल।
0: में।
1: और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि दोपहर ढलते ही आस पड़ोस की महिलाएं आंगन में जुट जाती थीं और अपने सुख दुख की बातें कहती थीं, यहीं बैठकर सुख दुख बांटे जाते थे और गपशप होती थी, और अचार डालना, पापड़ सुखाना और गेहूं साफ करना जैसे काम यहीं पर हंसते खेलते पूरे हो जाते थे। मतलब काम कितना भी ज्यादा क्यों ना हो, पता ही नहीं चलता था इतने सारे लोगों के बीच में।
0: बिल्कुल। और हमारे साथी लिखते हैं, पुराने समय में संयुक्त परिवार होते थे, आंगन में बैठकर महिलाएं घर के काम करती थी, बुजुर्ग आराम करते और बच्चे खेलते थे, ये परिवार को एकजुट रखने का मुख्य स्थान था। सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व, पूजा पाठ, त्योहारों के आयोजन, शादियों की रस्में और मेहमानों का स्वागत अक्सर आंगन में ही किया जाता था। घर के बीच में तुलसी का चौरा और छोटे पौधे आंगन की शोभा बढ़ाते थे, और जब दिवाली का उत्सव आता था तो इसी तुलसा के चौवारे के चारों और बहुत सारी रंगोली बनाई जाती थी, दिए जलाए जाते थे मिट्टी के, और घर भी वहीं पे हम लोग बनाया करते थे, याद होगा तुम्हें, ईंटों से घर बनाते थे, खेलने के लिए गुड्डे गुड़िया भी वहीं रखे जाते थे। यानी आंगन हम लोगों का मनोरंजन का एक बहुत बड़ा स्थल होता था। हमें कहीं ग्राउंड पे जाने की
1: बिल्कुल
0: जरूरत नहीं, बाहर जाने की जरूरत नहीं, घर में आंगन है तो बहू बेटियां सब वहीं पर अपने दिन अच्छे से बिता
1: जी।
0: लेती थी।
1: और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि हमारे घर में आंगन है, इस आंगन में हमारे बच्चे खेलकर बड़े हुए हैं, अब बच्चों के बच्चे खेल रहे हैं, झूला है, पेड़ पौधे के कारण तितलियां आती हैं और बच्चे उन तितलियों को देखते हैं और पीछे पीछे जाते हैं, छुई मुई का पौधा है, उसके साथ बच्चे अपना प्यारा सा वक्त गुजारते हैं, आंगन में नीम का और बेल के बड़े पेड़ हैं, घर में ताजी हवा और प्राकृतिक रोशनी आती है जिससे वातावरण स्वच्छ और स्वस्थ रहता है। ये परिवार के सदस्यों के मिलने जुलने, बच्चों के खेलने और त्योहारों और पारिवारिक कार्यक्रमों के आयोजन का मुख्य स्थान है। आंगन में पेड़ पौधे लगाने से घर का तापमान भी संतुलित रहता था। आंगन घर की सुंदरता, स्वास्थ्य और पारिवारिक एकता का महत्वपूर्ण केंद्र है।
0: क्या बात है, कितनी सारी यादें सबकी ताजा हो गई हैं। और आंगन में, या आंगन में झूला भी तो होता ना आरती, जिसमें गर्मियों में अपना सारा दोपहर उसी में पेड़ के नीचे झूला करते थे। और देखो, एक हमारे साथी संदेश लिखते हैं कि आजकल वो घर कहाँ जहाँ आंगन हुआ करते थे, अब तो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे टावर बन रहे हैं, वो भी बिना आंगन के। पुराने समय में, यानी हमारे जमाने में भी हर घर में आंगन हुआ करते थे। इसमें कुदरती वेंटिलेशन नियम लागू पड़ता है, जैसे कि घर में हवा, प्राकृतिक रोशनी के साथ शुद्ध हवा का संचार होता रहता था, साथ साथ में परिवार जुड़ाव भी बढ़ता है, जो अति आवश्यक है। परिवार के साथ साथ बाहरी वातावरण को भीतरी कमरों से जोड़ता है, जिससे घर एक मंदिर जैसा और शांत और ऊर्जावान और आरामदायक बना रहता है।
1: बिल्कुल। एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि घर में आंगन का होना सिर्फ जगह की उपलब्धता नहीं है बल्कि पारिवारिक जुड़ाव है, वेंटिलेशन और प्राकृतिक रोशनी का मुख्य माध्यम है। ये घर का खुला केंद्र बिंदु होता था जहां धूप सेकने, गर्मियों में सोने, बच्चों के खेलने और महिलाओं के साथ मिलकर खाना पकाने जैसी गतिविधियां आसानी से होती थी।
0: और देखो, हमारे एक साथी लिखते हैं कि पड़ोसियों का मिलन स्थल, दोपहर ढलते ही आस पड़ोस की महिलाएं आंगन में जुट जाती थी, सुख दुख की बातें यहीं बैठकर सुख दुख बांटे जाते थे और गपशप होती थी, सामूहिक काम, अचार डालना, पापड़ सुखाना, गेहूं साफ करना जैसे काम यहीं हंसते खेलते पूरे हो जाते थे। और आंगन में कहीं कहीं पर हमने देखा है कि वो लोग चूल्हा भी बना लेते थे और शाम का खाना तो वहीं पे बनता था, किसी किसी के यहाँ के दिन में भी बनता था। और बहुत मतलब अच्छा समय वहीं पर अच्छा समय बीतता था, और वहीं पर हम लोग पढ़ाई भी तो कितने किया करते थे,
1: बिल्कुल,
0: शाम को बैठकर लिखाई
1: लोगों
0: पढ़ाई
1: के
0: कर रहे
1: समझ
0: हैं।
1: लीजिए हर काम का केंद्र बिंदु जो था वो आंगन ही था,
0: बिल्कुल
1: क्योंकि वो प्राकृतिक, एक तो हवा उसमें आती है आपको, है ना, और दूसरी चीज है वहां पे आप बैठ के अपना कोई भी, जब पूरा परिवार एक साथ बैठता है ना, तो आपको कोई तनाव नहीं कुछ नहीं, आप बहुत

0: अच्छे से अपना समय बिताते
1: और वो
0: हैं।
1: याद है जब चावल बीनते थे तो गोरैया आ गई तो उनको चावल उसी थाली में से निकाल के दाने डाल दिए, वो
0: बिल्कुल
1: चुग रही है तो उनको भी फुदकता हुआ चूचू करता हुआ देख रहे हैं, तो बड़ा मजा आता था। यानी आंगन में कई बार बहुत सारे ऐसे पक्षी भी आ जाते थे, उतर आते थे, तो उनको दाना डालने में बहुत मजा आता था।
0: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि आंगन के बीचों बीच तुलसी का पौधा होता था जहाँ सुबह शाम दिया जलाया जाता था, और घर के बुजुर्ग दिन भर आंगन में बैठकर अपने नाती पोतों को कहानियां सुनाते थे, और आंगन में बैठकर वो घर के मुख्य दरवाजे और आने जाने वाले लोगों पर आसानी से नजर भी रख पाते थे।
1: और एक हमारे साथी लिखते हैं कि सुरक्षित बचपन, बच्चे बड़ों की नजरों के सामने आंगन में कंचे गिट्टे या छप्पन छपाई खेलते थे, और इस तरह के बहुत सारे गेम भी हुआ करते थे, आइस पाइस कह लो या पकड़म पकड़ाई कह लो या रस्सी कूदना है, कबड्डी है, ये सब भी आंगन में खूब हुआ करते थे, तो उसका
0: बिल्कुल।
1: भी एक अपना मजा है जो है आज भी
0: और
1: यादों में बना हुआ है,
0: हर मौसम
1: हर
0: का, चाहे
1: मौसम
0: गर्मी
1: का।
0: हो उसमें अलग तरीके से रहना, मजे करना, और चाहे बरसात हो, है ना, सर्दी के मौसम में धूप जो सेकते थे ना,
1: अरे वाह,
0: वो जो
1: क्या
0: सूरज की
1: बात है।
0: रोशनी आती थी ना, सबसे पहले आंगन में जो धूप उतरती थी, तो सबका यह होता था कि भाई जल्दी जल्दी काम कर लो, बस आंगन में धूप सेकनी है।
1: और जहां जहां धूप जा रही है ना,
0: जी
1: वहां वहां पे कुर्सियां भी जा रही है, चारपाई भी
0: बिल्कुल
1: जा रही है, और मूंगफली भी खाते थे वहां पर बैठ के आंगन में, ये बहुत अच्छा
0: बिल्कुल
1: टाइम पास था। कि
0: बिल्कुल
1: उसके साथ जो तो नमक की पुड़िया याद है ना,
0: जी।
1: यानी पूरा मजा आता था। अमरूद भी आ गए सीजन में तो वो भी काट के, सब मतलब
0: तो
1: खान पान से
0: मतलब
1: लेके
0: जो
1: हर
0: भी
1: काम
0: चीजें
1: आंगन
0: आपको,
1: में।
0: जो भी काम करना है ना, सब लोग जुट के बस चलो आंगन में बैठे करना है ना, चाहे पढ़ाई हो, चाहे खाना पीना हो, चाहे आनंद उठाना हो किसी चीज
1: तो फिर
0: का।
1: आनंद उठाते हैं गीत का।
0: बिल्कुल, एक गीत का आनंद उठाते हैं।

0: भाई देखो हम लोगों ने कितना सारा वक्त इस आंगन में
1: बिल्कुल
0: गुजार लिया, हम
1: इस
0: लोगों को
1: आंगन में
0: भी
1: हमारा पूरा वक्त पूरा हुआ अभी
0: अब हमें चलना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: तो
1: तो
0: सभी को
1: और
0: मंजरी वर्मा और
1: आतिश श्रीवास्तव का
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: जानी मानी शायर, एक जानी मानी गीतकार, वो कहते हैं खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिश हो तो भीग जाया कर, दर्द हीरा है, दर्द मोती है, दर्द आंखों से न बहाया कर। शकील आजमी जो कहते हैं परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। कई मशहूर फिल्मों के गाने उन्होंने लिखे। आर्टिकल 15 फिल्म मुल्क,
1: सब सखियों का पिया प्यारा, सब में है और सब सुनारा,
0: और फिल्म थप्पड़,
2: एक टुकड़ा धूप का अंदर अंदर मनसा।
0: जाने माने शायर शकील आजमी से बातें की हैं ममता सिंह ने। ये है इस कार्यक्रम का पहला भाग।
2: बेखबर
3: दोस्तों नमस्कार, रेडियो सखी ममता सिंह की ओर से आज शायरी की दुनिया, गीतकारी की दुनिया और अदब की दुनिया की खास शख्सियत की आमद है विविध भारती के स्टूडियो में, जिन्हें हमने बड़े एहतराम से विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित किया है, उनका हम इस्तकबाल कर रहे हैं। वो शायर हैं, गीतकार हैं, शकील आजमी साहब। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी बैठ के क्या आसमान देखता है। घटाएं उठती हैं, बरसात होने लगती है, जब आंख भर के फलक को किसान देखता है। यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरी जबां देखता है। शकील आजमी साहब, विविध भारती के स्टूडियो में आपका हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
4: नमस्कार, बहुत शुक्रिया ममता जी, और बहुत शुक्रिया विविध भारती।
3: इन आपके ही चंद अल्फाज के साथ हमने आपका स्वागत किया, तो हमें बताइए कि ये जो शायरी हमने श्रोताओं को सुनाई आपकी ही कलम से निकली थी, तो ये शायरी की लौ कैसे जली आपके भीतर, कब जली?
4: उसके बड़े कारण, बड़े असबाब हैं उसके। असल में क्या होता है कि शायर पैदा होता है
3: जी,
4: बनता नहीं है, बनाया नहीं जाता।

0: सिखाया नहीं जाता, इसीलिए शायर को गॉड गिफ्टेड कहते हैं,
1: जी
0: खुदादाद सलाहियत का नाम है शायरी। तो जब खुदा किसी को शायर बनाना चाहता है और बड़ा शायर बनाना चाहता है तो उसको बहुत सारे प्रोसेस से गुजारता है। किसी की माँ छीन लेता है,
1: ओहो,
0: किसी से बाप छीन लेता है, किसी से महबूबा छीन लेता है, किसी को बेघर करा देता है, लेकिन बहुत कुछ लेके उससे बहुत ज़्यादा देता है, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत इंतज़ार करना पड़ता है। मेरे साथ भी इस तरह के हादसात हुए, घटनाएं हुई। बहुत छोटा था, बचपन में मेरी माँ का इंतकाल हो गया, बाप ने दूसरी शादी कर ली और फिर मेरी परवरिश मेरी नानी ने की, मेरे मामू ने, मेरे नाना ने की, खालाओं ने, मामी ने, ममानी ने। तो मैं ननिहाल में परवरिश पाया। मैं ननिहाली गांव और दधियाली गांव दोनों जगह पे हमारे हम जमींदार थे, खेतीबाड़ी का काम था। तो ये सब जो घटनाएं हुई ये सब मेरे अंदर कहीं ना कहीं ये जमा होती गई। और फिर एक छोटी उम्र में इश्क भी हुआ, वो भी नाकाम हुआ। तो ये सारे जो सदमात थे, ये जो सारे दुख थे, जो सारे गम थे, महसूसात थे, है ना, ये सब जो एहसास थे, ये सब जमा होते गए और एक दिन इन्हीं दुखों की कोख से मेरे अंदर शायर पैदा हुआ।
1: जी जी।
0: ये 1984 का जमाना था।
1: कितने बड़े थे आप?
0: मैं 71 में पैदा हुआ।
1: ओ, तब तो बहुत छोटा।
0: हाँ, छोटा ही था, कच्ची उम्र थी। तो मैं उस जमाने में गुजरात के शहर बड़ौदा में था। 1984 लास्ट या 85 शुरू का जमाना था। तो हम काम करते थे, कई कारीगर मिलके काम करते थे। तो उस दिन भी काम कर रहा था मैं, और मुझे लगा कि मैं जैसे बीमार हूँ, बुखार है, तो मैंने काम बंद किया और रूम पे चला गया। लेकिन मैं बीमार नहीं था, मुझे बुखार भी नहीं था, बस अंदर से ऐसा फील हो रहा था, वो अंदर शायर पैदा हो रहा था।
1: काम क्या कर रहे थे?
0: मैं सुपारी काटने का काम कर रहा था उस जमाने में।
1: अच्छा।
0: जो पान में सुपारी खाई जाती
1: जी,
0: है
1: जी।
0: वो बड़े पैमाने पे बड़े सरोते से वो काटी जाती है, और कारखाने होते हैं बड़े, और गुजरात में इसका बहुत काम है। सबसे ज्यादा सुपारी मैं समझता हूँ गुजरात में ही खाई जाती है। तो मैं रूम पे गया और लेट गया, और मेरी आदत है चादर गर्मी में भी
1: जी,
0: थोड़ा सा ऊपर डाल लेता हूँ। तो चादर डाल ली मैंने और लेट गया। मेरे बाजू में रेडियो था,
1: क्या
0: और
1: बात है?
0: आज मैं रेडियो स्टेशन पे हूँ, और समझिए कि इस रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में,
1: जी, जी, जी।
0: या उसको समझने में, या उसके महसूस करने में।
1: हाँ।
0: तो हुआ ये कि मैं ऐसे ही कैजुअली, मतलब बस
1: रेडियो का स्विच ऑन कर,
0: हाँ,
1: दिया।
0: कर दिया ऑन, और जहाँ पे वो जिस स्टेशन पे कांटा था मैंने उसको कुछ घुमाया वुमाया भी नहीं, सरकाया भी नहीं, वहीं से एक गजल
1: बज रही थी।
0: और वो गजल थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं,
1: क्या बात,
0: क्यों हुआ मैं दीवाना बेड़ियां समझती हैं, बाम से उतरती हैं जब हसीन दोशीजा, जिस्म की नजाकत को सीढ़ियां समझती हैं। ये गजल कोई गा रहा था, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू हो गई, और सेम मीटर में, है ना। अब वो गजल तो मैंने जाये कर दी, मुझे याद नहीं है उसका एक शेर जिसमें तखल्लुस होता है, जिसे मक्ता कहते हैं।
1: शुरू हो गई, मतलब आप कहने लगे?
0: मैं, हाँ,
1: अच्छा, उस गजल के साथ साथ आप कहने लगे।
0: मेरे अंदर का शायर जो
1: जी,
0: है
1: जी,
0: मुतहर्रिक हो गया, एक्टिव हो गया उसी गजल के साथ।
1: जी, और ये हो सकता है कि उस समय आप विविध भारती सुन रहे हो, विविध भारती से रंग तरंग प्रोग्राम होता था।
0: अच्छा,
1: तो वहाँ पर गजलों का प्रोग्राम
0: हुआ
1: करता था।
0: हाँ, तो वो गजल का ही था। अब मुझे नहीं मालूम कि वो कौन सा स्टेशन था, मैं बड़ौदा शहर में था गुजरात में, और वो गजल शुरू हो गई जो मैंने अभी बताई, और उसी के साथ साथ मेरी गजल की तख्लीक शुरू हुई। पहली गजल मैंने उसी दिन कही, और उसके बाद से फिर गजलें कहने लगा। मेरे जो दोस्त थे उन सबको लगता था ये तो पागल हो जाएगा, तो मेरी डायरी में बहुत सारी चीज़ें जो लिखी हुई होती थी
1: जी,
0: उनको वो चुरा लेते थे, हटा देते थे। लेकिन आशिकी और शायरी इस तरह से जो है

0: वो मिटाई नहीं जाती, खत्म नहीं होती, वो एक जुनून होता है जो चलता रहता है। तो
1: तो वो गजल याद है? हाँ
0: गजल तो याद नहीं है क्योंकि मैंने वो जाय कर दी थी। उसका एक शेर याद है मुझे
1: जी
0: जिसमें तखल्लुस होता है, शायर का नाम होता है, गजल का आखिरी शेर होता है, वो एक शेर याद है। खून से है क्यों भीगा
1: खून
0: जिस्म
1: से
0: ये शकील अपना।
1: क्या बात है?
0: अच्छा मीटर सेम है, जो उस गजल का मीटर था वही इसका मीटर है, बहर वही है। खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूं पत्थरों को है मालूम।
1: क्या बात है, वाह वाह, क्या बात है। तो
0: हाँ
1: मतलब रेडियो ने आपकी गजलों की दुनिया की शुरुआत की, तो
0: बिल्कुल
1: मतलब कह सकते हैं कि पहली तालीम रेडियो से लिया आपने शायरी की।
0: हाँ, शुरुआत तो वहीं से हुई, बल्कि वो रेडियो स्टेशन गवाह है, उस मेरी शायरी के पहले दिन का गवाह है।
1: क्या बात है
0: जी हाँ
1: शकील साहब, जब रेडियो की बात चलती है तो बगैर गीतों के रेडियो की बात अधूरी सी लगती है, तो यहां पर कोई गाना आना चाहिए। बताइए कौन सा गीत सुनवाए, आपकी पसंद का कोई गाना, आपका लिखा हुआ या फिर कोई और गाना भी सुन सकते हैं। वैसे आपकी लंबी फहरिस्त है
0: जी
1: गानों
0: हाँ
1: की,
0: जी हाँ जी
1: उसकी
0: हाँ
1: चर्चा भी हम आगे करेंगे।
0: हाँ वो सुना दें आप। मधोशी का गीत है, अय खुदा तूने मोहब्बत ये बनाई क्यों है,
1: क्या बात है,
0: गर बनाई तो मोहब्बत में जुदाई क्यों है।
1: वाह वाह वाह। तो सुनते हैं मधोशी फिल्म का ये गाना।

0: शकील साहब, इस गाने के बाद यूं तो हम फिल्मों में आपकी एंट्री के बारे में आगे बात करेंगे, यहाँ पर हम ये जानना चाहते हैं कि ये दिल टूटने की बात भी है गाने में, और ये अमूमन कहा जाता है कि दिल टूटने पर शायरी की शुरुआत होती है, और आपने जिक्र भी किया कि माँ नहीं रही, अम्मी नहीं रही, और इश्क का भी जिक्र किया, तो वो कहानी बताइए हमें कि वो इश्क क्या था, दिल टूटना कैसे हुआ।
1: असल में दिल टूटना एक आम जुमला हो गया है, जो मतलब कहा जाता है कि भाई शायरी करने के लिए दिल का टूटना ज़रूरी है। दरअसल एक बुनियादी दुख चाहिए
0: जी,
1: बुनियादी दर्द। ऐसा नहीं कि आप जख्मी हो गए और वो जख्म का एक दर्द है, वो भर जाता है, वो मिट जाता है, ख़त्म हो जाता है जख्म भरते ही।
0: जी
1: बुनियादी जो दुख है, बुनियादी जो दर्द है, जो

0: तो आपको अपने किसी करीबी से मिलता है, माँ से मिले, बाप से मिले, या ननिहाल से मिले, या महबूबा से मिले, महबूब से मिले, तो ये बुनियादी दुख जो होता है वो आपके अंदर से नहीं निकलता है और वो आपको लगातार सेंसेटिव बनाता रहता है।
1: जी
0: और शायर होने के लिए सेंसेटिव होना बहुत ज़रूरी है।
1: जी
0: तो मैं समझता हूँ कि शायर जो है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा सेंसेटिव प्राणी है।
1: जी
0: हाँ, तो वो बुनियादी दुख एक नहीं था मेरे यहाँ, मेरे यहाँ बहुत थे। एक तो सबसे पहला जो दुख था वो माँ की डेथ का था, फिर बाप ने दूसरी शादी कर ली तो हम वहाँ रहे नहीं बाप के पास, और ननिहाल में हमारी परवरिश हुई। तो ननिहाल भी दूसरा घर होता है, माँ का मायका होता है, तो वो भी घर ही होता है वो, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फर्क होता है। ठीक है,
1: बिल्कुल
0: जो आपको बाप के यहाँ जो अधिकार आपका होता है वो नानी नाना के यहाँ, मामू और मामानी के यहाँ इतना अधिकार नहीं होता
1: बिल्कुल सही बात,
0: जितना अधिकार आपका आपके
1: माँ
0: बाप
1: से
0: के।
1: मिलता है
0: हाँ,
1: बिल्कुल।
0: तो जब आप सेंसिटिव होते हैं कैजुअली, तो बहुत सारे बच्चे ननिहाल में परवरिश पाते हैं और उनको कोई प्रॉब्लम, हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हम बहुत अच्छे से वहाँ पले। लेकिन चूंकि मैं बड़ा सेंसिटिव था बचपन से ही, शायद खुदा ने तय कर दिया था कि मुझे क्या करना है, मुझे शायर होना है, तब मैं शायर नहीं था लेकिन सेंसिटिव मैं शुरू से था। तो ये प्रोसेस
1: चल रही थी
0: था,
1: बचपन
0: हाँ, जो मुझे नहीं मालूम था लेकिन वो कहीं लिखा जा रहा था।
1: जी
0: तो ये बहुत सारे जो दुख थे ये सब इकट्ठा हो गए, और मैंने कहीं लिखा है कि मेरे दिल में एक संदूक था नासूर नाम का,
1: जी
0: जिसमें सारे दुख जमा हो रहे
1: जमा
0: थे,
1: हो रहे थे,
0: और
1: क्या
0: एक दिन
1: बात
0: वो
1: है।
0: फट गया
1: ओहो
0: और वो शायर पैदा हुआ, उन दुखों की कोख से शायर पैदा हुआ।
1: जी
0: तो एक बुनियादी दुख चाहिए, ये बुनियादी दुख आपको जावेद अख्तर साहब के यहाँ भी मिलेगा, ये बुनियादी दुख आपको गालिब के यहाँ भी मिलेगा,
1: जी
0: निदा फाजली साहब के यहाँ भी मिलेगा, मीर के यहाँ भी मिलेगा। मीर का तो मामला ऐसा है, मीर तकी मीर हमारे बड़े शायर थे, उन्होंने एक ख्याली महबूबा क्रिएट कर ली थी और उससे इश्क करते थे जो दुनिया में थी ही नहीं, लड़की।
1: जी
0: ठीक है, तो आप सोचिए कि उस इश्क में, उस तकलीफ में कितनी शिद्दत रही होगी कि एक ख्याली महबूबा का जन्म हो गया, है ना। वो बीमारी भी कहते हैं वो
1: जी
0: इंग्लिश में स्किजोफ्रेनिया, मदहोशी फिल्म में भी यही प्रॉब्लम थी बिपाशा के साथ,
1: जी
0: जो हमारी फिल्म थी, हमारी कहानी में। तो ये सारा मामला है उस बुनियादी दुख का,
1: जी
0: उसके बगैर मुमकिन नहीं है,
1: उस
0: क्योंकि वो जो बुनियादी दुख है ना वो आपको अंदर से नर्म करता है, मुलायम करता है, सेंसेटिव करता है, जिसकी वजह से आप जो हैं चीज़ों को बहुत शिद्दत से कैच करते हैं,
1: महसूस करते, वो जो
0: महसूस करते
1: खरोचे
0: हैं।
1: होती है वो खरोच आपको
0: हाँ
1: कहीं शब्दों में ढाल लेते हैं
0: जी,
1: तो
0: हाँ
1: आपको सुकून मिलता है। तो
0: जी,
1: हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ अल्फाज, कोई चंद शायरी अगर आप हमारे श्रोताओं को सुनाएं तो
0: खुद को इतना भी मत बचाया कर
1: क्या बात है।
0: खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हो तो भीग जाया कर।
1: क्या बात है।
0: शुक्रिया। खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हो तो भीग जाया कर, दर्द हीरा है, दर्द मोती है, दर्द आंखों से मत बहाया कर।
1: वाह
0: अभी हम इसी दर्द की बात कर रहे थे,
1: वाह वाह वाह
0: दर्द जो है वो बहुत कीमती चीज है,
1: जी
0: हम
1: जी
0: उसको बहुत आसानी से उस दर्द को फ्रस्ट्रेशन में,
1: हाँ
0: गुस्से में बाहर निकाल देते हैं उसको, नहीं, उसको जीना चाहिए उस दर्द को।
1: जी
0: वही दर्द आपको बड़ा कलाकार, बड़ा फनकार बनाता है।
1: ऊंचाई तक ले जाता है कई
0: तो
1: बार,
0: दर्द हीरा है, दर्द मोती है,
1: क्या बात है।
0: दर्द आंखों से मत बहाया कर, काम ले कुछ हसीन होठों से, काम ले कुछ हसीन होठों से, बातों बातों में मुस्कुराया
1: वाह वाह वाह, क्या बात है। और दर्द में मुस्कुराना कितना मुश्किल
0: कर।
1: होता है, लेकिन अपनी मुस्कुराहट से हम कई बार अपने दर्द को ढांक लिया करते हैं। और यहाँ पर हम चाहते हैं नानी की जो बातें हैं, आपने जिक्र किया नानी नाना के यहाँ पले, तो नानी की बहुत सारी कहानियां होती हैं, नानी की जबान से सुनी हुई वो कहानियां, नाना की बहुत सारी बातें, बहुत सारी हिदायत।

0: नसीहतें कुछ याद है तो संक्षेप में बताइए,
1: नानी की मोहब्बत है
0: बताइए कोई किस्सा
1: यार
0: बताइए नानी
1: मैं
0: का।
1: आपको बताऊं कि दुनिया की पहली और आखिरी औरत है मेरी नानी, जिसने मुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत की।
0: क्या बात है, ओह
1: बहुत बहुत प्यार किया मुझे मेरी नानी ने। माँ को तो देखा नहीं मैंने, मतलब चेहरा याद नहीं है। माँ के साथ एकाध वाकया जरूर याद है, लेकिन चेहरा नहीं याद है। मेरी माँ को टीबी था, उस जमाने में टीबी लाइलाज था,
0: जी जी
1: तो उसी में उनकी डेथ हुई। तो नानी ने बहुत प्यार किया, और नानी के साथ वाकया तो क्या है, वो मेरे लिए अपने बेटे से लड़ जाती थी, मामू से। अपने बज़ाहिर मुझे ऐसा लगा कि अपने बेटे से ज़्यादा प्यार मुझसे करती थी वो। तो वो औरत तो मेरे लिए बहुत बड़ी, कोई दूसरी औरत मैंने बताया कि ऐसी मुझे ज़िंदगी में नहीं मिली जो मेरी नानी की तरह मुझे प्यार किया हो जिसने। तो बहुत सारे वाकये हैं, मेरे लिए सबसे लड़ जाती थी वो। और कोई चीज़ जब उन्हें मिलती थी तो वो अपने दुपट्टे के पल्लू में बांध लेती थी
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
1: और वो मुझे देती थी चोरी से, चुपके से। और मेरी पढ़ाई का ख्याल रखती थी
0: जी
1: बहुत,
0: जी
1: और मैं पढ़ने में तेज था शुरू से। एक आध दो सब्जेक्ट में कमज़ोर भी था, जैसे मैं गणित में कमज़ोर था, और जो धार्मिक पढ़ाई होती है, दीनियात कहते हैं, वो एक सब्जेक्ट होता था, उसमें कमज़ोर था। बाकी सब में, राइटिंग वगैरह में, आलेख में
0: तेज से।
1: बहुत तेज था मैं।
0: तो यहाँ पर जब आप नानी की बातें कर रहे हैं तो मुझे जावेद साहब का एक शेर याद आ रहा है, मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी, जब मेरे बचपन के दिन थे चांद में परियां रहती थी। और जावेद साहब के नाम से मुझे याद आ गया कि जावेद साहब ने आपकी शायरी की बड़ी सराहना की है। एक कोई मुशायरा था गुजरात में जहां पर निदा साहब, जावेद साहब और बड़े बड़े नामचीन शायर थे
1: हाँ, सूरत में।
0: जी,
1: जी
0: सूरत में।
1: जी
0: तो वो क्या वाकया है, जरा उसका जिक्र कीजिए, वो घटना बताइए।
1: वो शायरों में तब मैं आया नहीं था, और मैं सूरत में ही रहता था,
0: जी
1: और गुजरात उर्दू एकेडमी की तरफ से सरकारी मुशायरा था। वो बहुत ही बड़ा मुशायरा था, और ये बात है 1994 की,
0: जी शीन
1: है ना।
0: काफ निजाम भी आए
1: हाँ
0: थे
1: हाँ
0: इसमें।
1: शीन काफ निज़ाम साहब ने उसकी निज़ामत की थी, उसका संचालन किया था।
0: जी
1: अच्छा, आपको इतना डिटेल में
0: बिल्कुल, कुंडली आपकी पता है लेकिन हमें श्रोताओं तक पहुंचाना है सारी बात
1: तो उसमें सारे बड़े शायर, मतलब निदा फाजली,
0: जी
1: जावेद अख्तर, मोहम्मद अलवी, और शीन काफ निज़ाम, और इफ्तिखार इमाम सिद्दीकी, और मंजर भोपाली वगैरह जैसे जो मुशायरे के टॉप के शायर थे, ये इस तरह के शायर भी उसमें शामिल थे। और ये जो मैं बता रहा हूँ, ये अदबी और लिटरेरी पोएट थे
0: जी
1: सब।
0: जी
1: और जावेद अख्तर साहब का तो मतलब आप यूं समझिए कि बॉर्डर रिलीज हो गई थी या होने वाली थी, और उनके गीतों ने मतलब आग लगा रखी थी पूरे
0: जी
1: मुल्क
0: जी
1: में।
0: जी हिट
1: संदेशे आते हैं, है
0: गाने
1: ना,
0: आते रहते,
1: आए
0: बिल्कुल
1: जाते हुए लम्हों, वो गाने, मतलब ये वही जमाना था।
0: हाँ
1: और प्रोफेसर वारिस अलवी साहब थे, जो गुजरात उर्दू एकेडमी के चेयरमैन थे, और उर्दू साहित्य के बहुत बड़े क्रिटिक, बहुत बड़े नक्काद थे वो, प्रोफेसर वारिस अलवी साहब। तो उनके फोन पर जावेद अख्तर साहब आए थे, वरना वो आते भी नहीं।
0: जी जी जी
1: हाँ, तो वो बहुत बड़ा मुशायरा था, और उसमें एक अलमिया ये हुआ, एक विडंबना हुई, कि उसमें कई शायर मकामी थे, मतलब सूरत के लोकल शायर थे कई। तो लोकल शायर हर जगह पे यही दस्तूर है कि उसको पहले पढ़ा दिया जाता है,
0: जी
1: बाद में फिर जो मेहमान शायर हैं
0: हाँ
1: दूसरे शहरों
0: उनको
1: से आए
0: बाद में
1: हैं,
0: रख।
1: और जो नामचीन हैं, बड़े शायर हैं, फिर धीरे धीरे उनका नंबर आता है। जैसे जैसे मुशायरा ख़त्म होता जाता है, तो वो जितने बड़े शायर हैं वो बाद में पढ़ते हैं। अब जो लोकल शायर थे मकामी, उनको पढ़ाना शुरू किया शीन काफ निज़ाम साहब ने। अच्छा, उसमें कुछ अहमदाबाद के भी थे, मतलब गुजरात के दूसरे शहरों से भी
0: जी
1: थे,
0: जी जी
1: तो उन्हें भी ठीक से कोई सुनने को तैयार नहीं था, क्योंकि स्टेज पर इतने बड़े बड़े शायर बैठे हुए थे। अब सूरत के शायरों को पढ़ाना शुरू किया, और दो या तीन शायर पढ़े होंगे कि हूटिंग शुरू होने लगी कि भाई मकामी शायरों को नहीं सुनना है, पब्लिक जो है, सामईन जो है, वो सुनने को तैयार नहीं।

0: अब ये तय किया गया कि भाई मकामी शायरों को नहीं पढ़ाया जाएगा। अब मेरा तो वो पहला बड़ा मुशायरा था और उसके लिए हमने बड़े जतन किए थे, बड़ी मेहनत की थी, और ये जो बाहर से सब शायर आए थे इनकी देखभाल में भी हम थे, जावेद साहब के और मोहम्मद अलवी साहब और निदा फाजली साहब, और इन सब से मेरी पहली मुलाकात हुई थी
1: और उसमें जावेद खुद को प्रूफ करने का समय
0: हाँ
1: था।
0: हाँ
1: जी।
0: जावेद साहब से भी, निदा साहब से भी, मोहम्मद अलवी साहब से भी, इन सब से मेरी पहली मुलाकात थी। इफ्तिखार इमाम सिद्दीकी, इन सब से मेरी पहली मुलाकात थी। शीनकाफ निजाम साहब से शायद पहले मिला हूंगा। तो हुआ क्या था कि सर्किट हाउस में ये सारे शायर ठहरे थे, तो मेरी मुलाकात, चूंकि मैं वहां पे मेहमान नवाजी में और देखभाल में था, मैं तो मेरी सबसे मुलाकात पहले ही हो चुकी थी, और निदा फाजली से मेरी अच्छी ट्यूनिंग हो गई थी। और वो क्यों हो गई थी कि निदा फाजली साहब को तो मैं यूं भी पसंद करता था, लेकिन उनकी एक किताब जो नसरी है, मतलब उनका सवान ही नावेल है, उन्होंने अपनी जिंदगी पर एक नावेल लिखा है जो दो जिल्दों में, दो वॉल्यूम में है, तो ये पहली जिल्द थी, तब तक दूसरी नहीं छपी थी, दीवारों के बीच, वो हमारे यहाँ सूरत में एक लाइब्रेरी में थी और मैंने वो पढ़ रखी थी और उससे मैं इतना इम्प्रेस हुआ था, उसको पढ़ के रोता था मैं। निदा फाजली का जो कैरेक्टर है वो लगता था मैं हूं।
1: क्या बात है
0: ना
1: जी, काफी कुछ दुख उनके भीतर भी जमा।
0: हाँ, तो हमारी जिंदगी बड़ी मिलती जुलती थी
1: जी।
0: तो मुझे लगता था कि निदा फाजली मैं हूँ, तो मैं उसको पढ़ के रोता था मैं। तो निदा फाजली साहब के साथ मैंने उस किताब पर डिस्कस की, तो वही वजह बनी, कारण बनी हमारे नजदीक आने की। और निदा फाजली साहब का उस जमाने में मुशायरों में तूती बोलता था
1: बिल्कुल,
0: और खास तौर से सूरत में बड़े मकबूल थे वो, सूरत में बहुत अच्छा सुना जाता था
1: जी,
0: उनको
1: जी।
0: तो अब जब ये तय हो गया, ऐलान कर दिया कि भाई अब मकामी शायर नहीं पढ़ेंगे, तो मुझे अफसोस हो रहा था कि यार मुझे पढ़ने को नहीं मिलेगा और ये मेरा पहला इतना बड़ा मुशायरा। तो निदा फाजली साहब ने एक कासिम हकीम साहब थे जो एडवोकेट थे और गुजरात उर्दू अकेडमी के वाइस चेयरमैन थे, नायब, तो उनसे मेरे अच्छे रिश्ते थे, उन्होंने मेरे लिए मतलब अकेडमी और किताब छपवाना ये सब में बड़ी मदद की थी उन्होंने भी, तो लोकल पैमाने पर उन्होंने मुझे स्टेज भी दिलवाया। तो निदा फाजली साहब ने उनसे कहा कि अगर शकील को नहीं पढ़ाओगे तो मैं भी नहीं पढ़ूंगा।
1: क्या बात है,
0: ठीक है। और उस मुशायरे में वो अपनी वाइफ को भी लाए थे, तो हम लोग जानते भी नहीं थे और उन्होंने बताया भी नहीं कि मेरी वाइफ है। उन्होंने फोन पे बताया कि भाई वो एक शायरा है मालती जोशी सनम, वो भी आएंगी, तो अब वो चूंकि निदा साहब ने कहा था तो कोई उनको मना नहीं कर सकता था, हाँ भाई ठीक है उनको भी ले आइए। तो मालती जी उस जमाने में मतलब यंग थी और
1: विविध भारती में आ चुकी हैं।
0: अच्छा, और बड़ी खूबसूरत लगती थी, मतलब उनकी जो
1: अभी भी लगती है
0: तो उनका जो चेहरा है वो सायरा बानो जी से भी थोड़ा मिलता जुलता है,
1: जी, जी।
0: है ना। और वो मुझे याद है काली साड़ी पहन रखी थी उन्होंने। तो एक और भी शायरा थी, रफिया शबनम आबिदी साहिबा भी थी, वो बॉम्बे से, वो प्रोफेसर हैं, काफी पढ़ी लिखी नक्काद हैं, क्रिटिक भी हैं और शायरा भी है, और यहाँ बॉम्बे यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी, शायद अब रिटायर हो गई हैं, प्रोफेसर भी थी वो, तो वो भी थी उस मुशायरे में, रफिया शबनम आबिदी साहिबा। लेकिन सामेईन की जो नजर थी वो मालती जी पे ही थी, हाँ, क्योंकि वो बड़ी खूबसूरत लगती थी और काली साड़ी में थी वो। तो अब जब मुझे बुलाया गया माइक पर, तो मैंने एक गजल का मतला सुनाया, मतलब पहला शेर, कि किसी भी खेत पे बरसे कहीं का हो जाए।
1: क्या बात है,
0: किसी भी खेत पे बरसे कहीं का हो जाए, खुदा करे कि ये बादल जमी का हो जाए।
1: वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह।
0: खुदा करे कि ये बादल जमी का हो जाए। फिर एक शेर था जो मैंने मालती जी की नजर कर दिया, है ना, हालांकि कोई दूसरा शायर होता तो निदा फाजली साहब की मौजूदगी में उनकी बीवी को ऐसा शेर
1: हिम्मत नहीं करते, नजर,
0: हाँ, नजर करने की हिम्मत नहीं करता।
1: जी,
0: हाँ। मैंने जुर्रत कर ली
1: जी, जी।
0: और वो शेर मैंने पढ़ दिया कि मैं उसके जिस्म का सब जहर पी के मर जाऊं।
1: क्या बात है,
0: मैं उसके जिस्म का सब जहर पी के मर जाऊं अगर वो सांप मेरी आस्ती का हो जाए।
1: वाह।
0: अब इस शेर पे इतना हंगामा हो गया अचानक, इतना हंगामा हो गया कि मतलब जैसे मुझे सुरूर सा हो गया।

0: मैं जैसे झूमने लगा, मैं इतनी दाद मिल गई मुझे। और फिर एक दूसरा शेर था, वो भी मैंने उन्हीं की नजर कर दिया इसके बाद, कि दुआ करो वो सितारा जमी पे टूट गिरे, हमारे साथ रहे और यही का हो जाए।
1: क्या बात है बहुत
0: अब निदा साहब ने
1: बढ़िया
0: उठ के मुझे माला पहनाया
1: जी
0: और मालती जी को बुके लेके जबरदस्ती भेजा कि
1: जी
0: जा दे
1: जी
0: दे। तो इस तरह से वो मुशायरा मेरी
1: बहुत
0: जिंदगी का एक
1: यादगार रहा
0: यादगार और पहला बड़ा मुशायरा था।
1: जी।
0: उससे पहले मैंने छोटी छोटी गोष्ठियां जो होती हैं हर शहर में, जो शायरों की अपनी होती है, एक दूसरे को सुनते हैं, या कोई छोटा मोटा मुशायरा दो चार पढ़ा होगा, ये मेरा पहला बड़ा मुशायरा था। और इस तरह से कितनी मुश्किलों से मुझे पढ़ने का मौका मिला, और हम सब मायूस ही थे, लेकिन बस कुछ खुदा का ऐसा करना था कि मुझे बहुत दाद मिली, बहुत कामयाब हुआ मैं। और इसी मुशायरे के जरिए जावेद अख्तर साहब से मेरे रिश्ते बने, निदा फाजली साहब से दोस्ती हुई, मोहम्मद अलवी साहब से हुई, और मैं फिर बम्बई आया तो निदा साहब से भी मिला और जावेद साहब से भी मिला मैं। हाँ
1: जी। तो जब आप ये अपने शायरी सुना रहे थे तो वहां पर मुझे भी आपका ही एक शेर याद
0: इरशाद
1: आया
0: इरशाद
1: है। मैं
0: इरशाद
1: सो रहा हूं तेरे ख्वाब देखने के लिए, ये आरजू है कि आंखों में रात रह जाए।
0: क्या बात है,
1: मैं सो रहा हूं तेरे ख्वाब देखने के लिए, ये आरजू है कि आंखों में रात रह
0: अरे
1: जाए।
0: वाह,
1: तो ऐसे आपके तमाम अशआर लोग सोशल मीडिया पर इस्तेमाल करते हैं। लोग अपनी महबूबा के लिए जब खत लिखते हैं, खतों खतूत का जमाना तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी व्हाट्सएप पर है अभी जमाना, तो लोग व्हाट्सएप पे भेजा करते हैं।
0: हाँ ये शेर
1: और
0: भी कितना यूनिक है
1: जी
0: कि मैं इसलिए सो रहा हूं कि तेरे ख्वाब देख पाऊं,
1: जी
0: मैं
1: जी
0: सो रहा हूं तेरे ख्वाब देखने के
1: जी
0: लिए।
1: तो इसमें तमाम तरह के जज्बात हैं। हम तमाम जज्बात खंगालेंगे और बहुत सारी यादें आपकी खंगालेंगे, यादों के गलियारों में ले चलेंगे, फिल्मी दुनिया की ओर ले चलेंगे अभी। लेकिन यहाँ पर आप श्रोताओं को ले आइए गाने के पास। कौन सा गाना सुनवाएं?
0: थप्पड़ का सुना दीजिए, आपको ही बहुत पसंद है, एक टुकड़ा धूप।
1: एक टुकड़ा धूप, ये तो हम सबका पसंदीदा गाना
0: जी
1: है। थप्पड़ फिल्म का गाना सुनते हैं।

0: ये थप्पड़ फिल्म का गाना था शकील साहब, और अनुभव सिन्हा जी इसके फिल्म के निर्देशक थे। विविध भारती के स्टूडियो में आ चुके हैं और मेरा सौभाग्य कि उनसे हमने बहुत सारी बातें की, आपका भी जिक्र हुआ था।
1: अच्छा,
0: तो आप बताइए, अनुभव सिन्हा से कैसे मुलाकात हुई, मुंबई आए तो इस गाने तक आप कैसे पहुंचे, इस फिल्म तक कैसे पहुंचे? फिल्म भी बड़ी प्रशंसित थी और ये गाना एक टुकड़ा धूप का तो बहुत प्रशंसित हुआ ये गाना।
1: जी अहमद फराज साहब का एक शेर है, जिंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे।
0: क्या बात है
1: तो अनुभव सिन्हा साहब जरा मुझे देर में मिले।
0: जी।
1: हुआ ये था कि हमारे एक दोस्त हैं जो लंदन में रहते हैं, उस जमाने में बॉम्बे में भी रहते थे और लंदन में भी रहते थे, ब्रिटिश नागरिक हैं वो,
0: जी
1: तो सेवी अली नाम है उनका। उन्होंने मुझे अनुभव सिन्हा साहब से मिलवाया था, नंबर भी उन्होंने ही दिया था मुझे।
0: जी
1: अनुभव सिन्हा साहब शायरी के शौकीन हैं और खुद भी वो कविता लिखते हैं और गजल भी, शेर भी कहते हैं कभी कभी।
0: अच्छा, ये बात
1: हाँ,
0: तो नहीं पता
1: कभी
0: थी।
1: कभी शेर कहते हैं, वो नहीं बताते हैं लेकिन कभी कभी कहते हैं और फिर मुझे सुनाते
0: क्या बात
1: हैं।
0: है,
1: हाँ
0: बहुत
1: तो
0: बढ़िया
1: हाँ, तो वो लिखने पढ़ने वाले आदमी हैं, वो
0: जी,
1: किताब पढ़ते हैं,
0: बहुत पढ़ते
1: नावेल और
0: हैं
1: कहानियां
0: जी।
1: बहुत पढ़ते हैं और लिखते भी हैं वो। तो मैं उनको कभी कभी कोई शेर या कभी कोई गजल ऐसे व्हाट्सएप पर भेज दिया करता था,
0: जी
1: तो उनको अच्छा लगता था तो मुझे रिप्लाई भी देते थे। और उनकी जो बड़ी बहन है, जो शायद दिल्ली में रहती हैं या कलकत्ता में रहती
0: जी
1: हैं, बड़ी बहन है, वो भी मेरी बड़ी फैन है, बाद में मुझे पता चला। तो उन्होंने भी शायद कुछ जिक्र किया होगा। और अभी जो मैंने गजल सुनाई, खुद को इतना भी मत बचाया कर, ये गजल उनको बड़ी पसंद है।
0: क्या बात है।
1: हाँ, मैं उनसे मिला नहीं हूं लेकिन ये अनुभव सिन्हा साहब के जरिए ही मुझे पता चला। तो हुआ ये कि मैंने ये बात इसलिए कही कि तू बहुत देर से मिला है मुझे, अनुभव सिन्हा साहब के जो फिल्म मेकिंग है इसको आप दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। उनका जो सफर है रावण तक या तुम बिन टू तक, वो एक अलग अनुभव सिन्हा है।
0: बिल्कुल।
1: और जो मुल्क से शुरू होके जो आया है अभी
0: थप्पड़
1: 80 तक,
0: और भीड़
1: भीड़
0: भी
1: और 80 तक आया है,
0: आर्टिकल 15
1: आर्टिकल
0: बिल्कुल अलग है।
1: फिफ्टीन, थप्पड़, अनेक, ये सारी सारा जो काम है ये बहुत अलग और मुख्तलिफ काम है। लेकिन बड़े स्केल की फिल्में, ये फिल्में भी बड़ी हैं लेकिन जैसे रावण का स्केल जो है, या 10 का, तथास्तु का, कैश का, ये फिल्में बहुत बड़े पर्दे की फिल्में थीं
0: जी
1: और बहुत मल्टी स्टारर फिल्में थीं, और इन फिल्मों में गानों की गुंजाइश बहुत होती थी, और गाने जो हैं बहुत रोमांटिक गाने, कमर्शियल गाने जिसको कहते हैं खास तौर से, ऐसे गाने बनते थे। वो गानों से ही आए थे अनुभव सिन्हा साहब, वीडियो के डायरेक्टर थे जो

0: पहले एल्बम का बड़ा क्रेज था,
1: जी,
0: तो एल्बम के गाने बड़े फिल्म के गानों की तरह शूट होते थे, तो
1: और
0: वो
1: सुंदर फिल्मांकन किया
0: हाँ
1: उन्होंने।
0: बहुत सारे उन्होंने गानों के वीडियो शूट किए हैं फिल्म से पहले। तो ये जब भूषण कुमार जी जब दिल्ली से बॉम्बे आए, अपने टी सीरीज को संभालना शुरू किया, और जो पहली फिल्म बनाई उनकी देखरेख में जो पहली फिल्म बनी थी वो तुम बिन थी, अनुभव सिन्हा साहब उसके डायरेक्टर थे। अनुभव सिन्हा साहब से उन्होंने खुद ही कहा कि इतने अच्छे वीडियो डायरेक्ट करते हैं आप, तो हमारे लिए फिल्म बनाइए। तो वो पहली फिल्म थी उनकी तुम बिन। वहां से लेके रावण तक की जो उनकी जर्नी है, उस जर्नी में मैं नहीं हूं, उसी का मुझे दुख है। लेकिन जितने अनुभव सिन्हा मुझे मिले हैं वो भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है,
1: जी,
0: वो भी मेरी खुशनसीबी
1: मैं तो उनको अनुभव का खजाना बोलती
0: है।
1: हूँ।
0: हाँ तो ये जो दूसरे वाले अनुभव सिन्हा है ये मुझे मिले, वो जो पहले वाले
1: पहले
0: जो
1: वाले नहीं।
0: पहला वाला जो हिस्सा
1: हाँ,
0: है वो मुझे नहीं मिले।
1: देर आए दुरुस्त
0: तो
1: आए।
0: हाँ, तो हुआ ये था कि रावण के बाद उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस कायम किया, उनके बैनर का नाम है बनारस, और वो खुद बनारस के रहने
1: जी
0: वाले
1: जी
0: हैं,
1: जी
0: तो आदमी जहाँ पैदा होता है उस जगह से उसको बहुत प्यार होता है। मैं आज भी आजमगढ़ जब जाता हूँ तो जिन गलियों में खेलता था उनकी शक्लें बदल गई हैं, और कुछ गलियाँ खत्म हो गई हैं,
1: जी
0: कुछ जगहें बदल गई हैं सब, फिर भी वहाँ जाता हूँ मैं। वो जो पुराने पेड़ होते थे सब कट कटा गए हैं, एकाध जो बचे हैं उन पेड़ों के पास जाता हूँ, वो जो स्कूल जहाँ पढ़ता था वहाँ जाता हूँ अकेला, और उसको फील करता हूँ मैं, सिर्फ फील करता हूँ खामोशी से। तो अनुभव सिन्हा साहब बनारस के हैं, इसलिए अपने बैनर का नाम भी उन्होंने बनारस रखा है,
1: जी जी
0: बड़ा
1: जी
0: खूबसूरत सा
1: जी
0: नाम भी है
1: उनके
0: बनारस।
1: नंबर पर वही लिखा हुआ था,
0: हाँ
1: उनके
0: हाँ
1: व्हाट्सएप नंबर
0: हाँ
1: पर।
0: तो हुआ ये कि जब उन्होंने प्रोडक्शन हाउस कायम किया तो कुछ तीन चार फिल्में उन्होंने ऐसी प्रोड्यूस की जिनमें वो खुद डायरेक्टर नहीं थे, है ना, एक वार्निंग थी, और एक माधुरी दीक्षित और जूही चावला के साथ गुलाब गैंग थी,
1: जी जी
0: है
1: जी
0: ना, और इसी सीरीज की एक फिल्म थी जिद,
1: जी
0: जो वो प्रोड्यूस कर रहे थे।
1: उसमें आपने गाना लिखा है।
0: हाँ वो प्रोड्यूस कर रहे थे। तो वो जो फिल्म थी जिद, वो भट्ट साहब स्कूल की फिल्म थी, महेश भट्ट टाइप फिल्म थी वो। तो अनुभव सिन्हा साहब को उस फिल्म में ऐसे गाने चाहिए थे जिनमें शायरी हो, है ना, रोमांटिक फिल्म थी तो शायरी वाले गाने चाहिए थे। मुझसे पहले दो तीन गीतकार उसमें आजमाए गए थे, मुझे ऐसा बताया गया, बात नहीं बनी, फिर मुझे बुलाया गया, वो भी अनुभव सिन्हा साहब ने मुझे फोन नहीं किया, जो म्यूजिक डायरेक्टर थे शारिब तोशी, तो तोशी जी को उन्होंने कहा कि ये नंबर है शकील आजमी का, शकील आजमी को बुलाओ, वो इसके गाने बढ़िया लिखेंगे। तो उन्होंने कहा हमारे पास नंबर है, हम बुला लेते हैं। तो तोशी जी ने मुझे फोन किया, और फिर वही, तब मैं मीरा रोड में रहता था, मैं सुबह सुबह कुछ 7:30-8 बजे उनके घर आ गया, वो मलाड में रहते थे, और फिर वो अपनी गाड़ी में मुझे अनुभव सिन्हा साहब के ऑफिस ले गए। अच्छा, पहले से उन्होंने भी मुझे फोन पे नहीं बताया कि मामला क्या है, दो तीन गीतकार उसमें आजमाए गए थे, मुझे ऐसा बताया गया, बात नहीं बनी, फिर मुझे बुलाया गया, वो भी अनुभव सिन्हा साहब ने मुझे फोन नहीं किया, जो म्यूजिक डायरेक्टर थे शारिब तोशी, तो तोशी जी को उन्होंने कहा कि ये नंबर है शकील आजमी का, शकील आजमी को बुलाओ, वो इसके गाने बढ़िया लिखेंगे। तो उन्होंने कहा हमारे पास नंबर है, हम बुला लेते हैं। तो तोशी जी ने मुझे फोन किया, और फिर वही, तब मैं मीरा रोड में रहता था, मैं सुबह सुबह कुछ 7:30-8 बजे उनके घर आ गया, वो मलाड में रहते थे, और फिर वो अपनी गाड़ी में मुझे अनुभव सिन्हा साहब के ऑफिस ले गए। अच्छा, पहले से उन्होंने भी मुझे फोन पे नहीं बताया कि मामला क्या है और कहाँ जाना है, फिर वो रास्ते में बताया कि सिन्हा साहब यहाँ जा रहे हैं, उनकी फिल्म का एक गाना है, तो एक गाने के लिए बुलाया था, लेकिन वो सारे गाने धीरे धीरे मैंने लिखे, और उसके गाने बहुत हिट हुए, बहुत ही कामयाब हुए, उसका म्यूजिक मतलब उसने बहुत पैसे कमाए, फिल्म नहीं चली इतना, गाने बहुत हिट हुए।
1: ये फिल्म का नाम एक बार फिर बताइए।
0: जिद,
1: जिद फिल्म।
0: उसके गाने थे सांसों को जीने का इशारा मिल गया,
1: जी
0: तू
1: जी
0: मिला तो खुदा का सहारा मिल गया, फिर मरीजे इश्क हूं मैं, फिर तू जरूरी सा है मुझको जिंदा रहने के लिए,
1: क्या बात है।
0: तो ये सारे गाने सुपर हिट हुए उसके।

0: तो एक हमारी समझिए कि एक कामयाब जोड़ी बन रही थी, और उसके बाद फौरन उनकी जो वाइफ है रत्ना सिन्हा जी, वो फिल्म कर रही थी शादी में जरूर आना, फिर उसके गाने भी मैं लिख रहा था। और फिर अनुभव सिन्हा साहब ने मुझे एक बताया कि मैं ऑफिस में ही था, उनके ऑफिस में ही, कि मैं ये फिल्म कर रहा हूँ। तो अनुभव सिन्हा साहब जो हैं, जिद के बाद उन्होंने तुम बिन टू है ना, अच्छा ये सारा लॉस हो रहा था, ये
1: जी
0: जो फिल्में अपनी कंपनी में उन्होंने प्रोड्यूस की वो सारी फिल्में फ्लॉप हो रही थी, जिद भी नहीं चली थी। जिद के म्यूजिक ने बहुत अच्छा किया, बहुत पैसा कमाया, लेकिन फिल्में नहीं चल रही थी। ये जो मैंने अभी नाम लिए मैंने,
1: जी
0: ये सारी फिल्में फ्लॉप हो गई। अब टी सीरीज की तरफ से अनुभव सिन्हा साहब को ऑफर आया कि भाई ये जो तुम बिन टू बनाइए हमारे लिए, भूषण कुमार जी ने उनको ऑफर दिया, तो तुम बिन टू बनाइए, वो भी नहीं चली। उसमें एक गजल थी कोई फरियाद, जो जगजीत सिंह जी ने
1: जी
0: गाई थी, उस गजल को हमने इसमें रिक्रिएट किया और इसका नाम चेंज हुआ, तेरी फरियाद हो गया है ना। तो ये पिक्चर भी नहीं चली।
1: जी
0: उसके बाद जो है ये रिलीज हुई रत्ना सिन्हा जी की फिल्म, ये हिट हो गई और उसमें गाने भी हमारे बहुत चले और बड़ी इज्जत मिली। उसमें एक गाना था, तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकू तुझ में, तेरी बातें चटपट चाट सी हैं, तेरी आंखें गंगा घाट सी हैं, मैं घाट किनारे सो जाऊं फिर सुबह सुबह जागू तुझ में, तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकू तुझ में।
1: जी क्या बात
0: तो
1: है।
0: ये गाना इसने बड़ी इज्जत दी मुझे, और यूं समझिए कि बनारस का ये दूसरा एंथम हो गया। पहला तो खई के पान बनारस वाला है ना, उसका कोई तोड़ नहीं है, तो ये दूसरा एंथम ये मेरा गाना बना।

0: जब भी आप जाएं, और मतलब मैं जब भी जाता हूं बनारस, तो मुझे बड़ी इज्जत मिलती है इस गाने की, वैसे और पूरे देश में मिलती
1: जी,
0: है, और पॉपुलर हुआ बहुत ये गाना।
1: बात चल रही थी, तुम मिंटू फिल्म के गाने का भी जिक्र
0: हाँ
1: किया आपने।
0: हाँ
1: वहां
0: हाँ
1: पर जगजीत सिंह साहब ने एक
0: जी
1: गजल गाई है, वो गाना गाया है जगजीत सिंह साहब, और साथ में रेखा भारद्वाज की
0: जी
1: आवाज
0: हाँ
1: थी।
0: जी हाँ
1: तो ये कैसा एक्सपीरियंस था आपका, जगजीत सिंह साहब एक गजल के मामले में, गजल की दुनिया के बादशाह माने जाते हैं, और कौन ऐसा नहीं है जो उनका मतलब पसंदीदा सिंगर नहीं
0: जी
1: है।
0: हाँ, मेरे तो सबसे पसंदीदा गजल सिंगर है, मैं इज्जत करता हूँ मेहदी हसन खान साहब की, गुलाम अली साहब की, सबकी।
1: और रेखा भारद्वाज भी थी उसमें,
0: हाँ,
1: उस गाने में।
0: लेकिन जो सबसे ज्यादा मुझे छूता है गजल
1: हाँ
0: सिंगर, वो है जगजीत सिंह साहब, और वो गजल बड़ी फेमस थी, तो उस गजल को लाना चाहते थे अनुभव सिन्हा साहब। मैंने उनसे जिद भी की कि सेम मीटर में मैं दूसरी गजल लिख देता हूँ, बोले नहीं मुझे तो वही चाहिए।
1: क्या बात है।
0: तो मैंने कहा कि फिर ये मुखड़ा चेंज करते हैं, इसका मतलब चेंज करते हैं, नहीं मतलब वही रहेगा, तो फिर मैंने कहा फिर नाम भी वही रहेगा, तो फिर गाना भी वही रहेगा, तो उसमें मैं कहाँ नजर आऊंगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कुछ ऐसा करते हैं, आप मुखड़ा चेंज कर लीजिए, लेकिन उसमें फरियाद लफ्ज मुझे चाहिए, फरियाद लफ्ज चाहिए मुझे।
1: क्या बात
0: हाँ,
1: है।
0: तो मैंने कहा ठीक है,
1: हाँ
0: फिर मैंने उसको लिखा कि अब कोई आस ना उम्मीद बची हो जैसे,
1: क्या बात है।
0: मुझे सिचुएशन बताई। पहली जो फिल्म थी तुम्बिन, उसकी भी जो कहानी थी, वो एक लड़का है जो बाजाहिर मर गया है,
1: जी।
0: लेकिन बाद में वापस आता है, ठीक है, और फिर दूसरे लड़के से प्यार हो जाता है, लेकिन वो बाद में फिर वो वापस आता है, इसी तरह की कहानी इसमें भी थी। तो वो लड़का जो है मर गया है या गायब हो गया है, बजाहिर आप समझिए मर गया है, और लड़के का बाप जो है उसके फोटो पे हार लगा रहा है, और लड़की मौजूद है, नेहा शर्मा उसमें हीरोइन थी, वो मौजूद है, और बाप जो है लड़के का कह रहा है कि ये मर चुका है, तू इसको भूल जा, अब नई जिंदगी शुरू कर, मर गया ये, कहाँ इसके अभी चक्कर में है तू। और उसी जगह पे दूसरे लड़के का तारुफ होता है, दूसरा लड़का जो है वो इंट्रोड्यूस होता है, तो मुझे बताया गया कि यहां से वो गाना शुरू होगा। तो मैंने लिखा कि अब कोई आस ना उम्मीद बची हो जैसे,
1: क्या बात है। अब कोई आस न उम्मीद बची हो जैसे। वाह
0: तेरी फरियाद मगर मुझ में दबी हो जैसे।
1: वाह वाह।
0: ये नेहा शर्मा के हीरोइन के पॉइंट ऑफ व्यू से, के उस बाप ने भी उसको समझा दिया कि इसके ख्वाब मत देख और यहां से निकल, तेरी जिंदगी बहुत, तुझे बहुत अभी जीना है, तो मान तो रही है कि ठीक है, अब कोई आस ना उम्मीद बची हो जैसे, लेकिन फिर भी तेरी फरियाद मगर मुझ में दबी हो जैसे,
1: क्या
0: मतलब
1: बात है।
0: अभी भी जैसे तू है ना, मान भी लिया फिर भी। तो होता यह था कि मुखड़े के बाद एक लाइन उस पहली वाली गजल से हम लेते थे, और मुझे सिचुएशन बताई जाती थी कि इस लाइन पर ये सिचुएशन है, और इस लाइन को आपको दो लाइन करके, और ये तीसरी लाइन ही आएगी,
1: जी।
0: तो वो थोड़ा टेढ़ा काम था, सिचुएशन को भी मैनेज करना और उस लाइन को भी मैनेज करना,
1: जी।
0: ठीक है, तो वो बहुत सलीके से हुआ, और बहुत जल्दी आधे घंटे में ये गाना लिख दिया था मैंने। और उसमें एक जो सबसे अच्छा शेर है कि एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफर,
1: वाह।
0: ये पहली जो गजल थी ये फायज अनवर साहब ने लिखी थी, फायज भाई हमारे दोस्तों में हैं, उन्होंने लिखी थी। एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफर,
1: वाह
0: जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे।
1: क्या बात है।
0: अब मैं आपको बताने के लिए, ये समझाने के लिए बता रहा हूं, अब जैसे ये दो लाइन है, दो मिसरों का एक शेर होता है गजल में, अब पहला मिसरा मुझे छोड़ देना, पहली लाइन, एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफर, ये छोड़ देना है, जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे, इसको लेना है,
1: जी
0: और इसके ऊपर दो लाइन लगानी है, फिर ये आना चाहिए,
1: क्या बात
0: और
1: है।
0: वो तीनों लाइनें कनेक्ट होनी चाहिए, और सिचुएशन जो है वो बात भी होनी चाहिए। तो मैं खाली ये एक लाइन पर बात करता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, कि जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे, रात कुछ ऐसे कटी है।
1: रात कुछ ऐसे

0: कटी है,
1: के सहर ही न हुई।
0: क्या बात है, वाह।
1: रात कुछ ऐसे कटी है कि सहर ही ना हुई, जिस्म से जा के निकलने की खबर ही ना हुई।
0: वाह, क्या बात है।
1: रात कुछ ऐसे कटी है कि सहर ही ना हुई, जिस्म से जा के निकलने की खबर ही ना हुई। जिंदगी तेज, बहुत तेज चली हो जैसे।
0: क्या बात है।

जानी मानी शायर और गीतकार शकील आजमी से ममता सिंह की बातचीत का पहला भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी किरण बंग, संपादन रीमा जोशी और विविध भारती की ओर से इसे प्रस्तुत किया जुबैर खान ने। इस कार्यक्रम का दूसरा और आखिरी भाग आप सुनेंगे अगले हफ्ते सेल्यूलॉइड के सितारे में।

श्रोताओं, अभी हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले कर रहे थे FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। लीजिए अब पेश है प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं CF वन विभाग सरगुजा। लीजिए सुनिए।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 51 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर और सूरजपुर में हाथियों की कुल संख्या 6 है। ये सरहरी, केवरा, करंजवार, सिंघरा, कैरा डांड, गणेशपुर, कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी, टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के वाड्रफ नगर में हाथियों की कुल संख्या 2 है। ये पिंडारी, कोटराही, कोल्हुआ, भगवानपुर, नवापारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के अंबिकापुर, लुंड्रा, सीतापुर और मैन पाट में हाथियों की कुल संख्या 35 है। ये सकालो, किशुनपुर, घंघरी, कुल्हाड़ी, कंचनपुर, खलीबा, पड़ौली, जमीरा, मसगा, डांडपारा, चौरपानी, बांसाझाल, आमापानी, कुड़केल, घोघरा, मानपुर, दांतीढाब, गढ़गांव, बैगहवा, चोरकी पानी, कंडराजा, घोड़ाघाट, नर्मदापुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी और पत्थल गांव में हाथियों की कुल संख्या 14 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, बिलासपुर, चरईमारा, रानी कोम्बो, जामटोली, खड़ामाचा, हरदीझरिया, राजा आमा, महेशपुर, झिमकी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो, बाकारुमा, लेलुंगा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 134 है। ये कुड़ेकेला, पुरुंगा, छाल, बोजिया, औरानारा, बेहरामार, लोटान, रुपुंगा, कोयलार, सागरपुर, ढोढ़ा गांव, केदा, टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वन मंडल के केंदई, जडगा और एतमा नगर में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये लालपुर, कोयलार गढ़रा, परला, चोटिया, कापानवापारा, घुचापुर, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, कुकरी कादर, आमा टिकरा, नवापारा, मड़ई, कोदवारी, कठमोरगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ और खरसिया में हाथियों की कुल संख्या 24 है। ये बंगूरसिया, जुनवानी, जोबी, नोंदरहा, पौड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के बार नवापारा में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये पकरी, तेंदुचुआ, कोठारी, रामपुर, अचानकपुर

0: के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़, अमलोर, ताराजय, डडई पानी, बुडार, सिंहार, छिंदौला, लूठापारा, नारी पानी, डूमर घाट, कोदोमाली, मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोट।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे CF वन विभाग सरगुजा। श्रोताओं, हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से इस वक्त बोल रहे हैं। शाम के 5:05 हुए हैं। लीजिए अब पेश है कार्यक्रम साहित्यिकी। साहित्यिकी के आज के इस अंक में आप सुनेंगे श्रीमती चमलेश्वरी राव के स्वर में उनकी लिखी कहानी का पाठ, और फिर इसी कार्यक्रम में श्री वेदुला वेंकट रमणा किरण का काव्य पाठ आप सुनेंगे। संपादन और प्रस्तुति डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की होगी। लीजिए सुनिए।

0: साहित्य की कार्यक्रम में श्रोताओं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। श्रोताओं, साहित्य उतना ही पुराना है जितना हमारा अपना इतिहास। हमारे भावों की, विचारों की, हमारी संवेदनाओं की उत्कृष्ट और कलात्मक अभिव्यक्ति है साहित्य। हमारे जीवन को साहित्य प्रेरणा देता है, दिशा देता है और जीवन के यथार्थ की अभिव्यक्ति भी करता है। साहित्य की बहुत सारी विधाएं प्रचलन में हैं। कहानी कहने की विधा यानी किस्सा गोई की विधा बहुत ही प्राचीन है। वैसे साहित्य शब्द सुनते ही हम सब उससे थोड़ी सी दूरी बना लेते हैं, लेकिन वाकई में साहित्य हमारे जीवन के सबसे निकट है। कहानियां सुनना किसे अच्छा नहीं लगता। इसी क्रम में साहित्य की में लीजिए, आज सुनिए चलमेश्वरी राव जी से कहानी गांठ। जीवन के यथार्थ और संबंधों पर आधारित ये कहानी हमारे जीवन को दिशा भी देती है, प्रेरणा भी देती है और जीवन के यथार्थ की अभिव्यक्ति भी करती है।
1: अक्सर जिंदगी में आंखों के सामने कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि कलम बिना लिखे मानती ही नहीं। घटनाएं सुखद भी होती है और दुखद भी। वह गर्मी की ढलती शाम थी, 5 बज गए थे, लेकिन आकाश से उतरती आग से जीव जंतु व्याकुल थे, अपने अपने ठिकानों से बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ऐसी गर्मी में मैं अपनी नियुक्ति का पत्र लेकर लखनऊ पहुंची। टाइम्स ऑफ इंडिया में एज ए स्टोरी राइटर के पद पर नियुक्ति हुई थी। मैंने किराए का घर ढूंढना शुरू किया। इतने बड़े शहर में सब कुछ अनजान था मेरे लिए। इतनी भीषण गर्मी में मेरी सामान्य दृष्टि एक व्यक्ति पर पड़ी, अधेड़ उम्र के पुरुष पर, जो लुंगी बनियान पहने बाल्टी से भरकर एक मंदिर के पास लगे हुए वृक्षों पर पानी डाल रहे थे। उन्हें न गर्मी की परवाह थी और न ही आसपास की तपती शून्यता से लेना देना था। मैंने सामने जाकर उन्हें नमस्कार किया और अपनी मंशा बताई कि मुझे किराए का मकान चाहिए। वो सहर्ष मदद करने के लिए तैयार हो गए। मैं उनके घर गई, उनके परिवार से मिली। बहुत ही करुणामयी और संवेदनशील परिवार था उनका। उनको वृक्षारोपण करने का शौक था। वो अक्सर कहते, जिंदगी वो नहीं जो जिए।

खुद के वास्ते जिंदगी वो है जिससे रोशन हो रास्ते। बहुत ही अच्छा लगा उनसे मिलकर। आखिरकार एक मकान दिलवा दिया उन्होंने। 5,000 किराया था और मेरे ऑफिस के आसपास ही था। मेरे घर के सामने ही दो भाइयों का परिवार था। दोनों परिवार के बीच में एक दीवार थी। लोग बताते हैं कि दोनों भाइयों में अटूट प्यार था। दो जिस्म एक जान कहे जाते थे। कहीं भी साथ जाते, कपड़े भी करीब करीब एक जैसे ही पहनते थे। दोनों भाई अच्छे पद पर थे। दोनों संपन्न परिवार से थे, धनी थे। फिर न जाने ऐसा क्या हुआ कि एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखते थे। बड़ा भाई राम और छोटा भाई श्याम। राम के एक बेटा एक बेटी और श्याम के दो बेटे। बच्चे सभी के पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। मेरी भी राम से दोस्ती हो गई। उन्होंने अपनी बेटी की शादी गुजराती परिवार में कर दी थी। दामाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। खुशहाल परिवार था। श्याम के बच्चे अच्छी जगह जॉब कर रहे थे। मैंने कभी उन लोगों को आपस में बातें करते नहीं देखा। शादी ब्याह किसी भी फंक्शन में साथ नहीं देखा। न जाने ऐसी कौन सी गांठ थी कि घुलने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने अक्सर अपने आप से पूछा कि क्या खून के रिश्ते इतने कमजोर होते हैं। इनमें ना तो प्रेम था और ना ही संवेदनाएं, सिर्फ झूठी शान, ईगो और बेबुनियाद ख्यालात। सुबह जब मैं प्रेस जाने के लिए तैयार हो रही थी तो राम जी को खिड़की में से देखा कि वो गमलों को साफ करके गुलाब के पेड़ों की खराब पत्तियों को छांट कर निकाल रहे थे। अनायास एक कांटा चुभ गया। उन्होंने अंगूठे को मुंह में रख लिया था। तभी एक महिला को मैंने कागज उन्हें देते हुए देखा। शायद वो बिजली का बिल था। कई बार उन्होंने मेरा बिजली का बिल भी जमा किया था। बहुत ही सुलझा हुआ व्यक्ति तो था उनका। ठीक उल्टा छोटा भाई श्याम था। कभी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं देखा मैंने। बहुत कम बातें हुई हैं उनसे। आज एक स्टोरी कवर करने जाना था मुझे। कुकर की सीटी की आवाज सुनकर मैं खिड़की के पास से किचन में आ गई। खाना खाकर मैं भी निकल पड़ी। सुबह से शाम तक घर से बाहर रहना पड़ता था। वक्त का पता ही नहीं चलता था। लेकिन रात होते ही तन्हाई काटने को दौड़ती थी। दोनों बच्चे देहरादून में सीए की पढ़ाई कर रहे थे। हॉस्टल में रहते थे। मैंने एक दिन देखा सामने एक ऑटो खड़ा था जिसमें एक बूढ़ी माताजी आई थी। राम उनका हाथ पकड़कर अंदर लेकर जा रहे थे। शायद आज कुछ फैसला होना था। वही जमीन जायदाद संपत्ति, इसके अलावा और क्या हो सकता था। कोर्ट कचहरी मुकदमा में दोनों की जमा पूंजी खत्म हो गई थी। जोर जोर से बहस सुनाई दे रहा था। कौन कौन लड़ रहे थे ये समझ नहीं आ रहा था। आज पहली बार दोनों भाइयों की तेज तेज आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने नजरअंदाज किया और बाहर निकल गई। एक दिन मैंने देखा एक ट्रक भरकर पौधे गाड़ी में आए। ट्रक मेरे घर के सामने ही रुका तो देखा राम जी पौधों का पेमेंट कर रहे थे। मेरी उत्सुकता जागी और मैं उनके पास पहुंच गई। उन पौधों का क्या करेंगे आप? मैं इन्हें लगाऊंगा, कुछ दोस्तों को दूंगा और कुछ नर्सरी में दे दूंगा। मैंने पूछा क्यों? उन्होंने कहा मुझे शांति मिलती है। कोमल पत्तों को जब मैं निहारता हूँ तो मेरी आंखों को ठंडक पहुँचती है। फिर ये पौधे बड़े होकर लोगों को छांव देते हैं, पक्षियों को रहने का ठिकाना देते हैं, सहारा देते हैं, धूप से बचाते हैं। मैंने सोचा जब नजरिया इतना अच्छा है तो मन में पड़ी गांठों को खोलते क्यों नहीं। आखिरकार जीवन सभी का चल रहा था। मुझे भी एक साल हो गया था। मैंने एक दिन पूछा कि आप दोनों परिवार के बीच कुछ विवाद है क्या? उन्होंने बताया कि पिताजी की जमीन को श्याम ने बिना बताए बेच दी और पूरा पैसा उसने अपने नाम कर लिया। विवाद इतना बढ़ गया कि आपसी बातचीत बंद हो गई। मकान के बीचों बीच एक दीवार खड़ी कर दी गई। सभी ने समझाया इस मसले को सुलझा लो, पैसे आपस में बांट लो, लेकिन उसने एक न सुनी और अंत में हमारा परिवार अलग हो गया।
आज

0: पूरी बात सुनने के बाद यह समझ आया कि रिश्तों से मूल्यवान संपत्ति है। वक्त बीत रहा था, मेरी नौकरी भी बढ़िया चल रही थी। हर दिन कहीं ना कहीं एक स्टोरी कवरेज के लिए निकलना पड़ता था। एक बहुत बड़े ऑफर के सिलसिले में 2 महीने के लिए दिल्ली जाना पड़ रहा था। मैं भी तैयारी करने में जुट गई। धीरे धीरे वक्त भी अपनी रफ्तार से सफर को आगे बढ़ा रहा था। 2 महीने खत्म कर जब मैं घर पहुंची तो माहौल देखकर असमंजस में पड़ गई। देखा, सामने इतनी हलचल मची हुई थी। मैंने अपनी काम वाली बाई से पूछा, क्या हुआ? उसने बताया कि एक दिन राम भैया की तबीयत अचानक बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने बताया बाईपास सर्जरी कराना होगा, अन्यथा जान का खतरा है। फैमिली डॉक्टर ने बताया, जैसे ही श्याम को पता चला तो वो तुरंत ही अस्पताल पहुंचा और डॉक्टर से बोला, जितने पैसे लगेंगे मैं दूंगा, आप इलाज शुरू कीजिए। इलाज शुरू हुआ, ऑपरेशन सक्सेस हुआ। मैं भी सोचने लगी, अकस्मात इतनी बड़ी घटना घट गई। क्या ये घटना दोनों भाइयों को जोड़ने के लिए थी? दूर रहकर भी करीब होते हैं, दिल के रिश्ते भी अजीब होते हैं। आज उनके परिवार के सभी सदस्यों को पहली बार देखा। दोनों परिवार की महिलाएं और बच्चे आए हुए थे। दोनों परिवार के बच्चों में स्नेह के बीज दिखे। ईश्वर ने एक खेल रचा। मुझे इतना पता है, मैं हर उस आंसू को पवित्र मानती हूँ जो एकांत में बिना सिसकियों के बहते हैं। एक रिश्ता जिसमें कई अनकही बातें थी, अनछुए पल थे, दूरियां थी, फिर भी कहीं मन के कोने में संवेदना भी थी। पैसों के कारण भले मन में लालच ने घर बना लिया, ईश्वर ने प्रेम की पराकाष्ठा को देखने के लिए एक खेल रचा जिसमें आपसी प्यार फिर लौट पड़ा। आज मुझे भी बड़ी खुशी हुई। मैं भी उन्हें देखने गई और एक पौधा मैंने भी उन्हें गिफ्ट किया। मनुष्य कितनी भी चालें चल ले, लेकिन मर्जी ईश्वर के हाथ होती है। योजना इंसान बनाता है, पर निर्णय सदैव ईश्वर के हाथ होता है। सबसे पहले बीच की दीवार तोड़ दी गई, मेरी भी आंखें भीग गई, पूरा परिवार एक हो गया, मन की गांठें खुल गई और मेरी भी एक बेहतरीन स्टोरी का कवरेज हो गया।
1: अभी आप सुन रहे थे श्रीमती चलमेश्वरी राव से कहानी गांठ। श्रोताओं, कविताएं भी बड़ी सूक्ष्म अभिव्यक्ति हैं हमारी भावनाओं की, कम शब्दों में लेकिन बहुत शक्तिशाली रूप से। आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं श्री वेदुला वेंकट रमना किरण जी की कविताएं, जो जीवन के यथार्थ, आध्यात्म और बहुत कुछ प्रकृति और पर्यावरण से भी जुड़ी हैं, जिसका सम्मिलित रूप ही हमारा जीवन है। तो आइए सुनते हैं
2: वेदुला वेंकट रमना किरण की कविताएं। वाचन कर रही हैं रेहाना तबस्सुम।
3: सरयू तट की चिड़िया। चिड़िया उड़ती है नभ की ओर, फिर धरती पर लौट आती है, जैसे जीवात्मा जग में आकर परमात्मा की राह तलाशती है। चिड़िया घोंसला खुद रचती है, तिनकों में घर संसार बसाती है, मेहनत में भक्ति घोलकर प्रेम का दीप जलाती है, साथी को रिझाती है गान से, सुर में सिमटा होता है विश्वास, जीवन का मीठा प्रकाश। भोजन लाकर बच्चों को पहले अपना अमृत देती है, त्याग की उस मौन साधना में माँ का देवत्व जीती है, परिवार संग घोंसले में रातों को चैन से सोती है, जैसे सेवा के पुण्य से थकी हुई आत्मा रोती नहीं, हंसती है। ओ चिड़िया, तुम सरयू तट पर मुझे प्रभु की सीख सिखाती हो, निस्वार्थ कर्म, प्रेम, समर्पण जीवन का धर्म बताती हो। तेरे संग रहती है मेरे मन में, मेरी चेतना में बनती हो ध्वनि, सरयू की लहरों के संग गूंजती भक्ति भाव की निर्मल वाणी। चिड़िया तुम गुरु हो मौन की, साधना का अनोखा पाठ, छोटे कंठ में गुथी है तूने समस्त सृष्टि का साक्षात। दीपकों के साए में कटते वृक्ष। उस दिन सोचते सोचते शाम उतर आई, मन में प्रश्न, कहां लगा

हूँ पीपल कहाँ रूप हूँ बरगद, जिसकी छाया में मेरी पीढ़ियाँ सांस ले सके, जिसके साक्षी बने कई कई जन्मों के सपने। कल नगर पालिका की गाड़ी देखी, पीपल लदे बरगद बंधे, मानो तीर्थ यात्री न हो बल्कि निर्वासित आत्माएं। रेतीली बंजर धरती पर उन्हें फेंक कर लौट गई गाड़ियां खामोश। वहीं कटे पड़े थे कई वनरेबल वृक्ष, सिरच्छेद महात्माओं की तरह। और तभी आई एक यात्री बस। 60 वर्ष की स्त्री पुरुष उतरे, अपने कटे वृक्षों के आगे दीपक जलाया, प्रणाम किया, फिर लौट बैठे सीटों पर। पूजा पूरी, कर्तव्य खत्म। मैं ठिठक गया, अब क्या करूं? कहां रोपूं पीपल कहां बरगद? फिर भी भरे मन से गड्ढा खोदा, बीज रोपे, एक सप्ताह तक पसीने से सींचा। हरा संकेत मिला, नई कोपलें हवा में हिल हिल कर जैसे कह रही हूं, हमें बचा लो ताकि हमारे आगे कोई दीपक न जलाए, हम कटने से बचे रहें। पेड़ों की आज्ञा मान एक बोर्ड लगाया, कृपया पीपल और बरगद के आगे दीपक न जलाएं। घर लौटा, दूसरे दिन देखा अनेक दीपक जल रहे थे, बोर्ड उखड़ा पड़ा था और दोनों अंकुर जड़ से उखाड़ फेंके गए। सरयू तट पर धुआं उठता था आस्था का, जहां पूजा ने जीवन को जलाया और परंपरा ने भविष्य को काट डाला। हे प्रभु, क्या धर्म यही है? जलते दीपों के नीचे सूखते वृक्ष? क्या श्रद्धा जीवित को मारकर ही पूरी होती है? सच्चा दीप तो वह होगा जो जले पर वृक्ष को ना जलाए, जो उजाले में छाया भी बचाए। सरयू की लहरें आज भी पूछती है, पूजा कब बनेगी संरक्षण और आस्था कब सीखेगी जीवित को बचाकर पूजना? साक्षी, टेबल पर रखी ठंडी काली कॉफी से पूछता हूँ, कब से रुकी है समय की भाप इसमें? कांच के उस पार टेसू खिलते हैं जैसे अग्नि ने फूलों का वस्त्र ओढ़ लिया हो। संसार का उत्सव मन का मौन, दीवारें रंग जाती है बार बार, सफेद में, हरे में, नारंगी में, पर आत्मा का पुराना धूसर किस रंग से ढके? ईंटों की नकल करती दीवार देख लगता है हम भी तो नकल के संसार में सच्चाई की ईंट जोड़ते रहते हैं एक अधूरी कविता बनकर। गुसलखाने से निकलती भाप में शब्द पिघलते हैं, डायरियों में कैद कहानियां कूड़ेदान की प्रतीक्षा में खड़ी। वे जानती हैं कल के बाद स्मृतियां सिर्फ बोझ कहलाएंगी। समीर नई दुल्हन संग व्यस्त होगा, आंगन की बैटरी वाली गुड़िया एक दिन थम जाएगी, जैसे सुख भी थमते हैं चार्ज खत्म होते ही। दरवाजे खिड़कियां बाहरी हवा से रिश्ता तोड़ लेगी और भीतर दम घुटेगा प्रार्थनाओं का, दिया कब का बुझ चुका है। पर अहंकार की आंधी अब भी जल रही है, एक आईना है गवाह जो बताएगा हम रोज बदलते चेहरों में अपना असली चेहरा खोते गए। टैक्सी स्टैंड पर खड़े बूढ़े मानुष मन में लिए अधूरी यात्राएं, जैसे आत्माएं मोक्ष की सवारी का इंतजार करती हूं। और सरयू तट पर सूरज ढलेगा अपने समय पर, आकाश का एक टुकड़ा बचाकर, जैसे ईश्वर हर संध्या याद दिलाता हो, सब कुछ रंग रिश्ते आवाजें ढल जाएंगी, पर जो भीतर जगह निराकार दिया है वही शेष रहेगा, न उजाला न अंधेरा। रोशनी से परे संग, जाना पड़ेगा बूंदों को छोड़कर घास को, जैसे आत्मा छोड़ती है तन की आस। बूंदे चिपकी रहती हैं प्रतीक्षा में सूरज के आने की, जानते हुए भी कि रोशनी में घास फिर नहाएगी और वे स्वयं विलीन हो जाएंगी। मैं तुमसे कहता हूं मेरे सपनों में मत आना, मैं घास नहीं हूं जो हर उगते सूरज को ओढ़ ले। मुझे नहाना नहीं है बाहरी उजास में, मुझे तुम्हारे साथ रहना है भीतर के अंधेरे में, क्योंकि जीवन में हर बार रोशनी की जरूरत नहीं होती, कभी कभी बस किसी के साथ की जरूरत होती है, वही साथ जो दीप बन जाए। तुम साथ रहो तो रास्ते स्वयं उजाले हो जाते हैं और अंधेरा डर नहीं ध्यान बन जाता है। सरयू तट पर बैठा मैं जल में अपने प्रतिबिंब

0: देखता हूँ। बूंद भी मैं, घास भी मैं, सूरज भी मैं, अंधेरा भी मैं। फिर समझ आता है तुम बाहर कहीं नहीं हो, तुम भीतर ही हो, वही शाश्वत संग जो बिना रोशनी के भी जीवन को प्रकाशित कर देता है। गहराई में समंदर टूटा, बारिश बनकर लौटा उम्र भर, मंजिल पास थी, हर बात ठहर गई परछाई बन। करीब रहे हम, फिर भी दूरियां रहीं अजीब सफर। आते जाते में सफर समझ में आया, मंजिल नहीं, समंदर भीतर, आसमां भी छुपा है गहराई में। दूर रहकर भी गजल उगती रही तेरे बिना। दिल खर्च न कर, इस शहर की मिट्टी बंजर है, सैलाब थमा, अंदर लहरें रहीं खामोश, मगर बिन दस्तक ही यादें चली आती हर बार। सफर जारी है, नजरें मिली ही नहीं, खौफ की दीवार ऊंची थी, इश्क चुप रहा, शिकायत अधूरी, गजल आसमान ठहरी, दिल जमी पर ही। ख्वाब भी खाली दहलीज तक ढूंढाया, तन्हा ही लौटा, वक्त बदला पर पत्तों सा ठहरा सपना, हवा फैसला। खामोशी बोली आंखों ने जो कहना था, अनकहा रह गया। इश्क का मतलब टूट कर जो बिखर जाए वही मुकम्मल। हर ट्रेन नहीं रुकती, हर प्लेटफॉर्म मुकाम नहीं, सफर जारी है। शुरुआत का जोश आखिर की थकन के बीच, सच ठहरता नहीं, वक्त से पहले क्या, दिल तेज रफ्तार में है, अंजाम भागता। बारिश तुम, नदियां अचानक नहीं मरती, उनकी सांसें धीरे धीरे छीनी जाती हैं, पहाड़ों की चुप्पी, जंगलों की कटती देह और लालच की लंबी सड़कें उन्हें सुखा देती हैं। फिर एक दिन पहली बारिश आती है, धरती मुस्कुराती है और मुझे लगता है तुम लौट आए हो किसी बादल के बहाने। आम बारिश और तुम, आम के पेड़ तले बारिश हमेशा कुछ ज्यादा मीठी लगती है, टप टप गिरती बूंदों के बीच पके फलों की गंध हवा में घुल जाती है। मैं एक आम उठाता हूँ और उसकी मिठास में तुम्हारी हंसी का स्वाद पाता हूँ। कुछ मौसम फल नहीं देते, यादें देते हैं। भीतर का जंगल, मेरे भीतर भी एक जंगल रहता है, कुछ पेड़ उम्मीद के हैं, कुछ पछतावों के, कुछ स्मृतियों के। बरसात आती है तो वे सब हरे हो जाते हैं, तब समझ में आता है कि सूखा बाहर नहीं भीतर पड़ता है।
1: श्रोताओं, साहित्य की कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे वेदुला वेंकट रमना किरण की कविताएं, वाचन स्वर था रेहाना तबस्सुम का।
2: अगले कार्यक्रम में फिर किसी नई विधा के साथ, कुछ नए साहित्यकारों के साथ आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए सुप्रिया को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम साहित्यिकी। साहित्यिकी के आज के संक में अभी आपने सुना श्रीमती चमलेश्वरी राव के स्वर में उनकी लिखी कहानी का पाठ, और फिर इसी कार्यक्रम में श्री वेदुला वेंकट रमणा किरण का काव्य पाठ। संपादन और प्रस्तुति डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की थी। अब कार्यक्रम संबंधी एक सूचना हम आपको दे दें। प्रत्येक गुरुवार और शुक्रवार शाम 7:30 से फोन इन पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। इसमें किसान भाई कृषि उत्पाद, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और अपने स्वास्थ्य संबंधी

समस्याओं के समाधान पाने के लिए विशेषज्ञों से फोन पर सवाल पूछकर समाधान पाते हैं। इसी कड़ी में गुरुवार 18 जून को स्टूडियो में पशु चिकित्सालय बरतोरी बिलासपुर के पशु चिकित्सा सहायक शल्य डॉक्टर रंजना नंदा उपस्थित रहेंगी। इनसे सुबह 10:30 से 11 बजे तक सवाल पूछने के लिए विषय होगा बरसात पूर्व पशुओं को रोग प्रतिबंधात्मक टीकाकरण, और सुबह 11 बजे से 11:30 तक का विषय होगा पशु विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी। इन विषयों से संबंधित समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए आप हमें हमारे इन नंबरों पर कॉल लगा सकते हैं। हमारे नंबर नोट कीजिए, हमारे नंबर है मित्रों 2665922 और 3100026। याद रखिए, इन नंबरों को डायल करने से पहले आप बिलासपुर का स्टडी कोड लगाना बिल्कुल ना भूलें। बिलासपुर का स्टडी कोड है 07752। इन कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग का प्रसारण आप 25 जून और 26 जून को संध्या 7:30 से 8 बजे के बीच सुन सकते हैं। सूचना यहीं समाप्त हुई।

0: है आज मैं हवा में उड़ रहा हूँ, कुछ ज्यादा हो गई, बहुत ज्यादा। हैं, ये क्या टकरा गया यार? अरे चिराग, ये क्या अलाउद्दीन का चिराग है? घिस कर देखता हूँ।
1: क्या हुक्म है मेरे आका?
0: क्या तुम सब कुछ कर सकते हो?
1: हाँ मेरे आका, मैं सब कुछ कर सकता हूँ।
0: तो तुम मुझे इस देश का राजा बना दो।
1: माफ कीजिएगा आका, अभी इसके लिए 15 दिनों का वक्त बाकी है।
0: अरे तो मैं क्या आज के लिए बोल रहा हूँ, 15 दिनों बाद बना देना।
1: मगर मैं मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकता आका।
0: क्या मतलब, किस मुर्दे को जिंदा करना पड़ेगा यार?
1: आपको मेरे आका, नशे के कारण आपने अपनी जिंदगी खत्म कर ली है आका। मुझे माफ कर दो, मैं जा रहा हूँ आका।
2: नशा चाहे शराब का हो, सिगरेट का हो या नशीली दवाओं का, ये आपका सर्वनाश करता है। नशे से बचिए, समाज को बचाइए।

हमारी और आपकी प्यारी आकाशवाणी। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से इस वक्त बोल रहे हैं। शाम के 5:35 होने को है। चलिए अब रुक करते हैं बहनों के कार्यक्रम महिला सभा की ओर।

0: कार्यक्रम महिला सभा सुनने वाली सभी श्रोता सखियों को आपकी रेडियो सखी प्रभा कश्यप का प्यार भरा नमस्कार। जय जोहार सखियों, आप सभी कैसी हैं? हमारी आशा तो यही है कि हमारी सभी सखियां स्वस्थ और मनमस्त होंगी और अभी शाम के वक्त दिनचर्या के कार्यों से थोड़ा रिलैक्स होकर आकाशवाणी के कार्यक्रमों का आनंद ले रही होंगी। सखियों, हम महिलाएं जीवन में अनेक रिश्तों से जुड़ी होती हैं, बेटी, बहन, पत्नी, बहू, माँ और दादी नानी के रूप में हर रिश्ता हमारे जीवन को नई पहचान और नई जिम्मेदारी देता है। और सखियो, सबसे महत्वपूर्ण और अनमोल रिश्ता होता है पति और पत्नी का। जो रिश्ता नया बनता है, जिसे हम चुनते हैं, प्रेम, विश्वास, सम्मान और सहयोग के मजबूत नींव पर टिका रहता है यह रिश्ता। सखियो, यह रिश्ता केवल साथ रहने का नहीं बल्कि हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ निभाने का है। जब दोनों एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं और हर सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं, तब परिवार खुशहाल और मजबूत बनता है। सखियो, पति पत्नी जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं। यदि दोनों समान सहयोग, विश्वास और समझदारी के साथ आगे बढ़े तो जीवन की हर राह आसान हो जाती है। पर सखियो, थोड़ी लड़ाई, थोड़ा मतभेद होना तो स्वाभाविक है, पर सखियो, बैठकर बातें करने से, धैर्य और प्रेम से हर समस्या का समाधान निश्चित निकाला जा सकता है। तो कोई भी छोटी छोटी बातों का बड़ा इशू ना बनाएं। इस प्यारे से रिश्ते को संभाल कर, संजो कर जीवन के प्रत्येक पहलू का आनंद लें, एक दूसरे की ताकत बने, हर परिस्थितियों में एक दूसरे का हाथ और साथ थामे रहें और एक सफल वैवाहिक जीवन जिए अपने हम सफर अपने जीवन साथी के साथ। सखियो, अब आइए सुनते हैं कुछ संदेश।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे।
2: सो इजी।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: सखियो, अब आइए चलते हैं आज के क्रम फोन करें गीत सुने की ओर।
5: सखियो, आज जिंदगी की भागदौड़ में हम सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त हो गए हैं, लेकिन बचपन की सहेलियों के साथ बिताए हुए सुनहरे पल हमेशा दिल में बसे रहते हैं। वो यादें हमें सिखाती हैं कि सच्ची खुशी छोटी छोटी बातों और अपने दोस्तों के साथ बिताए समय में ही छिपी होती है। आज हम भी बातें करेंगे अपनी सखियों से, उन्हीं यादों की, अपने सखियों के साथ बिताए हुए सुनहरे पलों की।
6: हेलो,
5: फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौन बोल रहे हैं आप?
6: मैं सुष्मिता बरगा बोल रही हूँ, बिलासपुर से। अभी तो गर्मी की छुट्टी खत्म हो गई है।
5: जी जी,
6: रूटीन शुरू हो गई है हमारी।
5: जी जी बिल्कुल, ये रूटीन में बहुत जरूरत है, गानी यादों को ताजा करें। तो आप अपने कुछ सुनहरे पल जो अपनी सखियों के साथ आपने बिताए होंगे वो आप हमसे आज साझा करें।
6: का ये थीम देखकर ही मैं फोन की हूँ। मेरे को इतना अच्छा लगा
5: जी
6: कि जो अभी हम कहें कि फोन से हम व्हाट्सएप ग्रुप बना लिए हैं बहुत सारे। पहले तो चिट्ठी का था, फ्रेंड्स लोगों से हम बचपन के जो सखी सहेलियां रहती थी उनसे फोन से बात करते थे
5: जी।
6: लेकिन अब क्या है, सोशल मीडिया का एक बहुत पॉजिटिव जो है कि हम सोशल मीडिया ने हमको हमारे बिछड़े हुए जो बचपन की सखियां थी उनसे व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर हम मिलते हैं और बात करते हैं
5: जी। जी,
6: यादों की बात करें तो प्रभा जी, याद ऐसा है कि बचपन का जो याद होता है वो सारा जीवन याद रहता
5: जी, बिल्कुल है।
6: वो जो खुशी, जो मस्ती रहती है बचपन में और नादानी, अभी याद करते हैं तो ऐसा लगता है कि कितना अच्छा था, कोई टेंशन नहीं, झुंड में

0: मस्ती करने का।
1: जी जी बिल्कुल,
0: झुंड बना लेते थे, बैठ के अचार खा रहे हैं, कहीं बेर तोड़ने जा रहे हैं, किसी के घर में बिही लगा है पता चल गया तो जाके हम तोड़ रहे हैं। हम संडे का खूब इंतजार करते थे, बाकी दिन तो ज्यादा लड़कियां हैं तो पहले नहीं था इतना ओपन, हमारा सोसाइटी नहीं था तो हम नहीं जा पाते थे
1: जी।
0: लेकिन संडे के दिन मिलना है, क्या खाना है और छुपा छुपा के आचार खाना है ये जो है बड़ लगता है। और बीच में कोई फ्रेंड कहीं बाहर चली गई है तो अरे तू ज्यादा दिन के लिए मत जाना। अभी ऐसा एक इत्तेफाक हुआ था, पिछले साल में मायके गई थी तो वहाँ मुलाकात हुई, करीब 10-12 सहेलियां मेरी आई थी, इतना ऐसे लग रहा था कि हम फिर बातचीत बिल्कुल किसी के चेंज हुए हैं नहीं लगा।
1: जी जी,
0: अब अपनी अपनी लाइफ में विश्वास नहीं करेंगे। हम आफ्टर 40 ईयर्स मिले थे, 40 साल के बाद, इन 40 सालों में किसी से एक आध बार मुलाकात हुई होगी या शादी वादी में मिले हैं तो मिले हैं। ऑल इंडिया रेडियो या आपका आकाशवाणी बिलासपुर के मैं आभारी हूँ कि कुछ पल के लिए हमारे व्यस्ततम जीवन में अब हम फिर बचपन के ओर आपने लौटा दिया।
1: जी जी बिल्कुल, हम भी आपकी बातें सुनकर फिर से हम अपने बचपन को याद करने लगे और बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके
0: सजना।
1: और बिल्कुल आप तक पहुँचाते हैं आपके पसंद का गीत, फिर भी हमारी एक सखियों का फोन आ रहा है उनसे बात करने के बाद।
0: धन्यवाद। हेलो
1: हेलो, फोन करेगी सुने कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। आप कौन बोल रहे हैं?
2: मैं अंकिता बोल रही हूँ।
1: कहाँ से?
2: घुरू नगर से हूँ।
1: जी जी बताइए अंकिता जी, कैसे हैं आप?
2: बहुत बढ़िया।
1: और आज जैसा कि हमारा विषय था कि हम सखियों को याद करें, आपकी सखियों को कौन को याद आ रही है जिससे आपकी लड़ाई झगड़ा और खूब सारा प्रेम रहता हो और जिसको याद कर भी तरोताजा हो जाती है आज भी?
2: यादें
1: जी,
2: पर बचपन की यादें हैं जो वो अनमोल। तो मैं अपने बचपन के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। बचपन के वो दिन भी कितने कमाल के हुआ करते थे, जब ना कल किसी की फिक्र रहती थी, ना आज के काम का तनाव। दादी नानी के घर हम जाते थे, अच्छी हमारी यादें रहती उस समय। नानी के घर में मीठे मीठे आम की छुट्टी में जाते थे तो आम गलियों में घूमा करते थे। जैसे आज की फिक्र रहती थी ना, वैसे मतलब की फिक्र नहीं,
1: निश्चिंत होके हम रहते थे। और ऐसा कोई खेल खेलती होंगी जो आज भी अब अपने बच्चों को उस खेल से जोड़ना चाहेंगी, कोई पारंपरिक खेल हो जो?
2: हाँ हाँ, बहुत पसंद आता था, जैसे कि हो जाता था कबड्डी, हो जाता पिट्टुल, हो जाता था, वो हमको बहुत पसंद आता था।
1: तो आज को उसे जोड़ना चाहेंगी?
2: हाँ बिल्कुल, हम जोड़ते ही हैं अपने बच्चों की, सिखाते ही हैं।
1: जी जी जी, आपसे बात करके हमें बहुत ही अच्छा लगा। कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहेंगी?
3: हनीमून ट्रैवल्स फिल्म का।
1: बिल्कुल, चलिए आप तक पहुँचाते हैं आपके पसंद की फिल्म का ये गीत।

0: फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौन बोल रही हैं आप?
1: मैं डॉक्टर मीना शर्मा बोल रही हूँ।
0: कहाँ से बोल रही हैं मीना जी?
1: मैं गवर्नमेंट कॉलेज तखतपुर में हूँ।
0: जी, जी जी और बताइए कैसे हैं आप?
1: अच्छी हूँ।
0: मौसम कैसा है तखतपुर का?
1: तखतपुर में तो बहुत गर्मी है।
0: ये जो वक्त है मैम थोड़ा उमस का मौसम रहता है इस समय।
1: जी जी जी उमस बहुत
0: और बहुत जरूरी है कि हम समय समय पर अपने आप को हाइड्रेट रखते रहें, डिहाइड्रेशन से बचाएं, पानी का सेवन करते रहें।
1: जी जी
0: इस मौसम में अब जो बारिश का मौसम आने वाला है फिर से नए नए पत्तियां पेड़ पौधे हर जगह हरा भरा दिखाई देगा, तो उसके साथ ही आज हम अपनी भी यादें थोड़ी हरी भरी कर लेते हैं अपनी सखियों को, बचपन की सखियों को याद करके।
1: जी जी बचपन तो बहुत ही भूलने लायक नहीं कहना चाहिए।
0: जी जी
1: सबसे मीठी यादें जीवन में बचपन की होती है मैडम।
0: जी जी आपकी कोई सखी
1: याद आते हैं?
0: आपकी कोई बचपन की सखी होगी या?
1: हाँ बचपन की सखी है मेरी मंजू माधुरी वाजपेयी।
0: जी जी
1: वो भी बिलासपुर में है।
0: जी कुछ किस्सा होगा आप लोग के साथ या कुछ बातचीत जो आज भी याद करके आप मुस्कुराती होंगी खुश होती होंगी वो बताइए आप।
1: बस वही बचपन में स्कूल जाते थे
0: जी
1: और मेरे पापा मेरे लिए रिक्शा लगा के रखे थे जाने आने के लिए।
0: जी जी
1: तो रिक्शा वाला जब लेने आता था तो मैं उससे छुप जाती थी रिक्शा में ना जाना पड़े और सहेलियों के साथ हम सब उसमें बैलगाड़ी चलती थी पहले, आजकल तो बैलगाड़ी दिखने नहीं मिलती।
0: जी जी
1: तो बैलगाड़ी में हम लोग अपना बैग रखते थे उसके पीछे पीछे चलते और बस वही रोड के किनारे से कैच खरीद लेते थे कैच खाते हुए।
0: अरे वाह कितना मजा आता रहा होगा। मैम उस वक्त
1: बहुत अम्मा लोग लेके बैठना चटपटी बोलते जिसको
0: जी जी
1: वो खरीद के खाना नड्डे उंगलियों में लगा के नड्डे खाना स्कूल के दिन तो डांट भी पड़ती थी।
0: जी जी जी
1: बहुत एंजॉय करते थे लेकिन वो दिन अब बहुत याद आते हैं मैडम।
0: जी मैम वो याद करके हम फिर से ऊर्जावान अपने आप को बना लेते।
1: जी जी जी तो अभी हम लोगों ने 2 साल पहले मुलाकात भी की थी सब बचपन की
0: पार्टी किया होगा आप लोगों ने फिर से वो सब चीजें याद करके
1: पूरी रात और दिन हम सब के खूब मस्ती की हम सब।
0: जी जी
1: लगा आपसे बात कर
0: मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
1: लुटेरा फिल्म का गीत सुनना चाहूंगी मैं।
0: जी बिल्कुल हमारी और सखियों से भी हम बात कर लेते हैं उसके बाद आप तक पहुँचाएंगे आपकी पसंद की फिल्म का ये गीत और फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हेलो मैं काजल बात कर रही हूँ।
0: क्या करती हैं काजल जी आप?
2: हाउस वाइफ हूँ और ऐसे मेकअप करती हूँ।
0: अच्छा मेकअप आर्टिस्ट हैं आप।
2: ऐसा कोई दिन नहीं जाता जो बचपन की यादें ना आए स्कूल लाइफ ना याद आए।
0: तो स्कूल लाइफ का कोई एक ऐसा किस्सा बताइए जिसमें आपकी सहेलियों के साथ बहुत मजा किया हो जो आपको हमेशा याद आता हो।
2: तो हम लोग स्कूल में जब थे ना हम लोगों का गर्ल्स स्कूल था।
0: जी
2: हम लोग ऐसा वीक में एक बार ना हम लोगों का ऐसा डिसाइड था कि हम लोग अपने अपने घर से कुछ स्पेशल डिश बना के लेके जाए।
0: अच्छा
2: 6th-7th की बात है। हम लोग ऐसे रहता था कि वो अपने घर से कुछ स्पेशल डिश अपनी मम्मी से बनवा के लेके आएगी, फ्रेंड है बेस्ट फ्रेंड वो ऐसा करेगी। हम लोग का 6-7 लोगों का ग्रुप था ना तो हम ऐसा करते थे हमेशा। तो 6th से स्टार्ट हुआ था वो पूरा 12th तक हम लोगों का था। वीक में एक बार हम लोग सबकी फेवरेट कुछ स्पेशल डिश बनवा के लेके आते थे।
0: अच्छा
2: तो वो अभी भी हमारा कभी प्लान बनता है ना तो ऐसा हम करते हैं।
0: मतलब अभी भी आज भी आप सभी सखियां जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से?
2: हाँ बिल्कुल बिल्कुल
0: जी।
2: बाकी बचपन की यादें तो वो हमेशा रहेगी।
0: जी जी
2: और वो मोमेंट कभी वापस नहीं आ सकता लेकिन उस मोमेंट के सहारे पूरा लाइफ टाइम खुशी खुशी दिया जा सकता है ऐसा रहता है।
0: जी जी बिल्कुल बचपन की यादें और बचपन की जो सुनहरी सखियों के साथ की बिताए हुए पल होते हैं वो हमें एक ऊर्जा दे जाते हैं और हमेशा हमें ऊर्जावान बनने के लिए जरूरी है कि हम उन यादों को उन पलों को याद करते रहें और मुस्कुराते रहें और आगे बढ़ते रहें। काजल जी आप कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहेंगी?
2: मेरे को तो लुटेरे फिल्म का अच्छा लगता है सवार लूं।
0: बिल्कुल तो चलिए आप तक पहुंचाते हैं आपके पसंद की फिल्म का ये गीत।
2: थैंक यू।

0: हेलो,
1: कौन बोल रहे हैं आप?
0: मैं सुनीता कश्यप बोल रही हूँ।
1: सुनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में। जैसे कि आज हम बातें कर रहे हैं अपनी पुरानी यादों को, याद कर रहे हैं सुनहरी यादों को अपनी सखियों के साथ,
0: जी
1: तो आप अपना
0: जी
1: कोई अनुभव अपनी सखियों के साथ साझा करें। जब आप सखियों के साथ स्कूल जाती थी तो आप क्या मस्ती करती थी, कैसा लगता था?
0: बिना बात के तो हंसना
1: बिल्कुल जी
0: बिना बातों के हंसते रहना है और खेलना कूदना और क्या, फ्रेंड से हर बात शेयर करना।
1: जी जी
0: अब तो शादी हो गई, अब उसके बाद तो फ्रेंड तो मिलते नहीं है।
1: तो कभी ऐसा लगता हो कि अब शादी हो गई, हम दूर दूर हो गए हैं, कोई ऐसी कोई दोस्त हो जिससे आप मिलना चाहेंगी, जिनकी याद आज भी आपको आती होगी?
0: जी, मिलते हैं ना, मिलते हैं जब मायके जाते हैं
1: जी जी
0: तो वहाँ मिल जाती है, फ्रेंड है पास ही है मायके। जी
1: जी जी बिल्कुल, सखियों के साथ बिल्कुल हम सब सभी बातें शेयर कर सकते हैं। और आज भी जरूरत
0: जी
1: है कि हम अपना एक अच्छा दोस्त, अपनी एक सखी अपने पास हो, चाहे वो अपने पति के रूप में हो, चाहे अपनी सासू के रूप में हो, ननंद के रूप में हो या भाभी के रूप में, एक दोस्त
0: जी
1: हमें जरूर बनाना चाहे, चाहे वो हमारे
0: जरूर।
1: बच्चे के रूप में हो, जिससे हम सब कुछ बेफिक्र होकर शेयर कर सके, अपनी उलझने, अपने तनाव, अपनी खुशियाँ।
0: हाँ,
1: और सुनीता जी, आप कौन से फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे, आप हमें बताएं।
0: फिल्म मूवी का गाना सुना
1: तो
0: दीजिए।
1: बिल्कुल हमारी और सखियों से भी हम बात कर लेते हैं, उसके बाद आप तक पहुंचाएंगे आपकी पसंद की फिल्म का ये गीत।
0: जी
1: फोन
0: मैम,
1: करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
0: हेलो दीदी, नमस्ते।
1: ते नमस्ते, कैसे हैं आप?
0: बहुत बढ़िया, और आप कैसे हैं
1: ठीक हूँ मैं,
0: बताइए।
1: बढ़िया हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं आप?
0: मैं बिलासपुर से बोल रही हूँ, मेरा नाम रश्मि साहू है।
1: आपका बहुत बहुत स्वागत है फोन करे गीत सुने कार्यक्रम में।
0: सुनना था
1: हाँ, गाना सुनेंगे हम। पहले हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आप आज कौन सी सखी को आप याद कर रही हैं, अपनी कौन सा एक अनुभव या कोई एक हंसी का पल हमारे साथ साझा करेंगी अपनी सखियों को याद
0: मेरी,
1: करके।
0: जो हम लोग बचपन में ऐसे तो बहुत सारे दोस्त रहते थे, कबड्डी खेलते थे साथ में, घूमते फिरते। उसके बाद अब क्या हुआ, बड़े हो गए तो सब कोई हाउसवाइफ बन गया, तो कोई जॉब करने लग गए, सब अपने अपने बिजी हो गए। अब तो मिल मुलाना ऐसे मुश्किल से होता है कभी कभी।
1: तो अभी अपने मायके जाती हैं तो कभी कोई सखियों से मुलाकात होती है?
0: हाँ, वो

0: के टाइम में होता है, और कई कई तो गांव में ही है अपने, कई जो है दूसरे गांव से, तो ऐसे मिलना नहीं होता है, हम जाते तो वो नहीं आते, ऐसा होता है।
1: जी जी, लेकिन तीज त्योहार जो होते हैं उसमें कहीं ना कहीं हमें अपनी सखियों से मुलाकात होती है।
0: हाँ, एक वही त्योहार है जिसमें सभी सखियां अपने मायके तो आती ही जरूर है
1: जी,
0: नहीं?
1: और फिर से वो यादें ताजा हो जाती हैं।
0: ताजा हो जाती
1: हाँ
0: है। हाँ,
1: जी, आप कौन सा फिल्म का गीत सुनना चाहेंगी?
0: कॉकटेल मूवी का सुनना था।
1: तो चलिए, बिल्कुल पहुंचाते हैं आपके पसंद की फिल्म का ये गीत, और फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो, मैं आराधना बोल रही हूँ।
1: आराधना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम फोन करे गीत सुने में। जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
0: मैं गुरु से बोल रही हूँ।
1: जी, कैसी चल रही है आपकी दिनचर्या?
0: चल रही है अभी तो अच्छी खासी।
1: जी, और बच्चों की गर्मी छुट्टियां भी समाप्त हो चुकी हैं, तो
0: हाँ,
1: स्कूल
0: स्कूल
1: चालू
0: चले
1: हो गए
0: गए
1: हैं।
0: हैं।
1: तो आप हमें ये बताएं कि आपको अपने स्कूल के दिन याद आ जाते हैं कि नहीं? अपने बचपने की सुनहरी यादें,
0: बिल्कुल
1: अपने दोस्तों
0: बिल्कुल,
1: की याद
0: याद
1: आती है?
0: कैसे नहीं रहेंगे, याद आता है।
1: जी, तो कोई ऐसी दोस्त के साथ आपकी यादें हो जो आज भी याद आ जाती होंगी, बचपन की यादें, वो आज हमसे शेयर करें।
0: मेरे तो खूब सारी फ्रेंड थी,
1: जी
0: अभी भी हम लोग कांटेक्ट में हैं। हमारा ग्रुप का फ्रेंड अभी भी स्कूल फ्रेंड ग्रुप के नाम से ही चलता है, जिसमें हम सभी सहेली आपस से बात कर लेती है, एक दूसरे से दुख सुख शेयर कर लेती है। अभी भी हम लोगों का बात चलता है।
1: जी, और अभी आप अपने मायके जाती हैं तो कुछ सखियां से मुलाकात भी
0: अभी
1: होती
0: भी हम
1: होगी?
0: लोग, हाँ, जाते हैं तो सबसे पहले प्लान बनाते हैं, गार्डन घूमने जाते हैं।
1: जी।

0: जी
1: मार्केट जाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, हम लोग तीज में भी जाएंगे। पहले से हम लोग का प्लानिंग रहता है कि हम लोग इस दिन जाएंगे, इस दिन मिलेंगे।
0: जी जी, अगर अभी आपको मौका मिल जाए फिर से वही बचपना जीने का, अपनी सखियों के साथ सुनहरी यादें ताजा करने का, तो आप कौन सी अपनी सखी को याद करेंगी, उनको उनके साथ समय बिताना चाहेंगी?
1: मेरे तो बहुत सारे हैं जो अभी भी मुझे बहुत याद आती है।
0: और आप कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहेंगी?
1: रॉय का ही सुना दीजिए।
0: जी बिल्कुल, और आपकी बचपन की सखियां आपसे यूं ही जुड़ी रहे और आप मुस्कुराती रहे, और फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हेलो, मैं डॉक्टर इंदु कौशल बोल रही हूँ।
0: जी मैडम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम फोन करेगी सुने में।
2: धन्यवाद मैडम।
0: और बताइए मैम, क्या करते हैं आप?
2: मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। तो हमारे यहाँ परीक्षाएं चल रही है, सेमेस्टर एग्जाम।
0: अच्छा, सेमेस्टर
2: परीक्षा।
0: जी मैम जी, तो इस दौरान बहुत ऊर्जा की आवश्यकता होती है इस मौसम में।
2: जी बिल्कुल, एक तो सुबह से ड्यूटी रहती है।
0: जी जी,
2: ड्यूटी करने के बाद थोड़ी सी लगती है कि अब हाँ एनर्जी की जरूरत है, ऐसा टाइप का।
0: और आज हमारे कार्यक्रम में भी हम एक

0: सेमेस्टर परीक्षा।
1: जी मैम, तो इस दौरान बहुत ऊर्जा की आवश्यकता होती है इस मौसम में।
0: जी बिल्कुल, एक तो सुबह से ड्यूटी रहती है।
1: जी जी,
0: ड्यूटी करने के बाद थोड़ी सी लगती है कि अब हाँ एनर्जी की जरूरत है ऐसा टाइप का।
1: और आज हमारे कार्यक्रम में भी हम एक बचपन की एनर्जी को फिर से ताजा करने के लिए सखियों के साथ सुनहरी यादों को याद कर रहे हैं। तो कोई आप ऐसी अपनी सखी का नाम बताएं जो आज भी उसे आप याद करती हैं और उनसे फिर से मिलना चाहेंगी और फिर से वो की सुनहरी यादें, फिर से वो पल जीना चाहेंगी।
0: हाँ, मेरी एक ना बचपन में एक बहुत अच्छी प्यारी सी दोस्त थी, मुनिया करके नाम था उसका।
1: जी,
0: तो हम जब 8th में थे तब तक वो उसके साथ में मेरी दोस्ती रही। उसके बाद वो 8th के बाद मतलब पापा का ट्रांसफर हो गया, तो ट्रांसफर के बाद वो कहाँ गई, उसके बाद उससे मेरा मतलब आज तक कांटेक्ट नहीं हुआ। और आज भी ऐसा लगता है कि काश वो मेरे को मिल जाए तो मैं उससे अपनी बहुत सारी बातें जो है शेयर कर सकूं ऐसा करके। उसके साथ हम बहुत सारी मस्तियां करते थे, बहुत सारा खेलते थे, वो गुड़िया खेलते थे, मिट्टी के खिलौने से खेलते थे, ऐसे बहुत सारी यादें उसके साथ में जुड़ी हुई हैं।
1: जी,
0: लेकिन कभी उसके साथ में शेयर करने का मौका ही नहीं मिल पा रहा है क्योंकि उससे कोई कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा है।
1: जी जी बिल्कुल, हम आशा करते हैं फिर से आपकी दोस्त आपसे मिले और फिर से आप वो लम्हा वो पल याद करके हंसे मुस्कुराए।
0: जी जी
1: जी मैडम जी, आप कौन सा फिल्म का गीत सुनना चाहेंगी?
0: चिटिया कलाइयां कर दीजिएगा।
1: बिल्कुल, चलिए आप तक पहुँचाते हैं आपके पसंद की फिल्म का ये गीत। और फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार,
0: नमस्ते, थैंक यू।

सखियो अभी आप सुन रहे थे क्रम फोन करेगी सुने, प्रस्तुति थी मोनाली ठाकरे की, तकनीकी सहयोग था सौरभ केशरवानी का। सखियो आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें पत्रों के माध्यम से जरूर बताएं। कार्यक्रम चिट्ठी मिली में हमारा पता है कार्यक्रम चिट्ठी मिली द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी बिलासपुर, पोस्ट बॉक्स नंबर है 49, पिन नंबर है 495006। सखियो आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं, हमारी ईमेल आईडी है पत्र ईमेल bsp@gmail.com। और सखियो इन्हीं बातों और गीतों के साथ अनुमति दीजिए अपनी रेडियो सखी प्रभा कश्यप को। नमस्कार।

कार्यक्रम विवरण में सबसे पहले हम आपको आज शाम को प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। श्रोताओं, आज संध्या 6:20 पर और 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने। रात्रि 8 बजे सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन के गाए हुए कुछ बेश कीमती तराने। रात्रि 8:15 पर रजनीगंधा की हम खुशबू बिखेरेंगे और आज संध्या 7:20 पर ग्राम सभा कार्यक्रम में बेरा के गोट का विषय होगा पारंपरिक खेती। संध्या 7:30 पर किसानवाणी कार्यक्रम में स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम आप सुनेंगे, कार्यक्रम किसानवाणी गांव में, जिसमें ग्राम सरायपाली विकासखंड कोटा के अंतर्गत महिला स्व सहायता समूह द्वारा दाल प्रसंस्करण इकाई के उद्घाटन समारोह की आप सुनेंगे रेडियो रिपोर्ट। संपादन चित्रलेखा तिवारी का होगा और इस कार्यक्रम की प्रस्तुति डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की होगी। इसके अलावा कल सुबह और शाम के आकर्षणों में, कल सुबह 8:30 पर अमराई कार्यक्रम में कल के कलाकार होंगे नरेंद्र यादव, कांति मरकाम, सुशीला सोनवानी, रोहित खरे और इनके साथी। हेलो आपकी पसंद का समय होगा कल सुबह 10 बजे। कल की प्रस्तुति शांतनु कपूर की होगी। कल सुबह 11 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT हमारे ही केंद्र से। और कल शाम यानी बुधवार शाम 5 बजे पहले आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। चित्रपट संगीत का समय होगा 5:05 पर। 5:35 पर युवा जगत कार्यक्रम के अंतर्गत मेरी बाईसाइकिल विषय पर होगी चर्चा। और आगे इसी कार्यक्रम में क्रम सम सामायिकी के अंतर्गत सवाल जवाब क्रम का आप लेंगे आनंद। रात्रि 8 बजे सुगम संगीत के कार्यक्रम में कल आप सुनेंगे अनूप जलोटा के गाए हुए कुछ चुनिंदा गैर फिल्मी गीत। और रात्रि 8:15 पर रजनीगंधा की खुशबू हम बिखेरेंगे हमारे ही केंद्र से। और इसके अलावा श्रोताओं, कल संध्या 7:20 पर ग्राम सभा कार्यक्रम में बेरा के गोट का विषय होगा महिला किसान और आत्मनिर्भरता। आगे इसी कार्यक्रम में सफल कृषक से भेंट क्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे एक भेंट वार्ता। इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण यही समाप्त हुआ।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला सभा। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6:05 हुए हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम विवरण।

श्रोताओं, हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6:10 होने को हैं। कुछ ही पलों में छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से करेंगे।

0: रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग संध्या तिवारी के जय जोहार। अब सुनो आज के प्रमुख समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में राखे गए दूसर नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार दिन एमा छत्तीसगढ़ के बुधरी तातीला मिले पद्मश्री सम्मान। राज्य मंत्री परिषद के बैठक में आज वीबी जी रामजी योजना और छत्तीसगढ़ कंप्रेस्ड बायोगैस नीति ला देगी मंजूरी। उन्हें अटल आजीविका समृद्धि हाट योजना शुरू करे के लेगी फैसला। और प्रदेश के 11,600 ले ज्यादा ग्राम पंचायत मन में काली ग्राम सभा के आयोजन करे जाही। अब समाचार विस्तार ले। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में राखे गए दूसर नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार दिन ये दौरान ओमन 2 पद्म विभूषण 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री समेत कुल 65 पद्म अलंकरण दिन एमा छत्तीसगढ़ के बुधरी ताती घलो शामिल है जौन मनला पद्मश्री ले सम्मानित करेगी। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या में केंद्र सरकार है बछर 2026 बर 5 पद्म विभूषण समेत 131 पद्म अलंकरण के घोषणा करे रही। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पगरेती में आज मंत्रालय में राखे गए राज्य मंत्री परिषद के बैठक में कतकुन फैसला लेगी। बैठक के बाद पत्रकार मन ले गोट बात करत उप मुख्यमंत्री अरुण साव बताइने की मंत्री परिषद विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण योजना छत्तीसगढ़ के प्रारूप के अनुमोदन करे है। ये योजना के तहत पात्र ग्रामीण परिवार के सदस्य मल्ला हर एक वित्तीय बछर में 125 दिन के रोजगार के गारंटी दे जाही। एकर तहत जल संरक्षण प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन ग्रामीण आधारभूत संरचना निर्माण आजीविका मूलक परिसंपत्ति के विकास और ग्रामीण क्षेत्र मन में रोजगार के मौका दे जाही। ये योजना के तहत चालू वित्तीय बछर बजट में 4,000 करोड़ रुपए के प्रावधान करे गए है। उन्हें मंत्री परिषद अटल आजीविका समृद्धि हाट योजना शुरू करे के घलो फैसला ले है। ये योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में हथकरघा बुनाई सिलाई हस्तशिल्प केंद्र के संगे संग दलहन तिलहन प्रसंस्करण इकाई राइस मिल डेयरी के संग सेवा केंद्र के स्थापना करे जाही। एकर तहत कोल्ड स्टोरेज सोलर ड्रायर कृषि सामान मरम्मत अटल डिजिटल केंद्र विपणन केंद्र और आपूर्ति केंद्र घरो ग्रामीण क्षेत्र मन में स्थापित करे जाही। ये योजना के उद्देश्य स्थानीय उत्पादन प्रसंस्करण सेवा और विपणन गतिविधि ला बढ़ावा देना है। एकर ले गांव वाले मन ला अपन क्षेत्र में रोजगार और स्वरोजगार के नवा मौका मिलही। उन्हें एक आने फैसला में मंत्री परिषद छत्तीसगढ़ कंप्रेस्ड बायोगैस नीति के प्रारूप के अनुमोदन करे है। ये नीति के माध्यम ले राज्य में उपलब्ध कृषि अवशेष नगरीय ठोस अपशिष्ट पशुधन अपशिष्ट और आने जैविक संसाधन के वैज्ञानिक प्रबंधन करके ओमला कंप्रेस्ड बायोगैस ईंधन में बदले जाही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में नैफेड के नीलामी पोर्टल के शुभारंभ करी। ये मौका में श्री शाह किसान मन के सीधा भागीदारी मनला मजबूत करे बर खरीदी काम में बिचौलिया मन की भूमिका समाप्त करे के आह्वान करी। नेफेड के प्रगति के जिक्र करत श्री शाह कहिने कि 12 बछर पहली गंभीर वित्तीय कठिनाई के सामना करत ये संगठन आज 74 लाख किसान मन के सेवा करैया एक मजबूत संस्थान बन के उभरे है। ये मौका में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान घलो मौजूद रही। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में अल नीनो के मौसम में पड़ैया प्रभाव और कृषि ऊपर एकर असर के समीक्षा पर एक ठीन बैठक करी। बैठक के बाद श्री चौहान मीडिया ले गोट बात करत बताइने कि अलनीनो के सेती देश भर में कमजोर मानसून की स्थिति बने हैं जिकर सेती करीबन 315 जिला ऐसा है जिहां वर्षा कमती होए के संभावना है। श्री चौहान कहने कि अलनीनो के संभावित स्थिति ला देखत सरकार किसान मन के हित की रक्षा और खेती में पड़ैया प्रतिकूल प्रभाव ला कमती करे बर प्रतिबद्ध हवे। ये बैठक में छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुई। उमन कहने कि सूखा की स्थिति ले निपटे बर राज्य सरकार कमती बेरा वाले फसल दलहन तिलहन ऊपर जोर दे के संगे संग बीज सुरक्षा और फसल बीमा ला प्राथमिकता देवत व्यापक रणनीति बनाए है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो।

आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन छत्तीसगढ़ के हर खबर पर। सुनत रहो आकाशवाणी समाचार। अब आगू बाढ़ बांचे समाचार कोती। प्रदेश के 11,600 ले ज्यादा ग्राम पंचायत मन मा काली 24 जून के ग्राम सभा के आयोजन करे जाही। ग्राम सभा मा आवास प्लस 2.0 के स्थायी प्रतीक्षा सूची समेत आने आने विषय मा गोट बात करे जाही। आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण ले मिले सिस्टम जनरेटेड स्थायी प्रतीक्षा सूची ला पढ़े जाही। संगे संग पात्र हितग्राही मन के प्राथमिकता सूची तैयार करे जाही और ग्रामीण मन ले मिले दावा आपत्ति के निराकरण करे जाही। ग्राम सभा में विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण के बारे में घलो गांव वाले मन जानकारी दे जाही। प्रखर राष्ट्रवादी नेता और शिक्षाविद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आज पुण्यतिथि हरय। ये मौका मा उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह ओ मल्ला श्रद्धांजलि अर्पित करीन। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कही ने कि डॉक्टर मुखर्जी ह अपन जिंदगी ला देश के विकास पर समर्पित कर दी। इति छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका ह आज लोकभवन में डॉक्टर मुखर्जी के फोटो में फूल माला चढ़ा के श्रद्धांजलि दीन। ये मौका में राज्यपाल डॉक्टर मुखर्जी के राष्ट्र निर्माण में दे गए योगदान ला सुरता करत कही ने कि ओमन राष्ट्रीय एकता व अखंडता ला मजबूत करे बर अपन जिंदगी ला समर्पित कर दी। उन्हें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय घलो रायपुर के मुख्यमंत्री निवास में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के फोटो में फूल माला चढ़ाई। ओमन कहने कि डॉक्टर मुखर्जी के विचार संघर्ष और त्याग भारतीय लोकतंत्र और राष्ट्रवादी चिंतन के अमूल्य धरोहर आए। महासमुंद जिला के सरायपाली क्षेत्र के बलौदा बेलमुंडी डायमंड ब्लॉक में वैज्ञानिक अन्वेषण के दौरान हीरा मिले ले छत्तीसगढ़ के खनिज क्षेत्र में नवा संभावना बने हैं। NMDC CMDC लिमिटेड डहर ले 200 टन खनिज सामान के परीक्षण के बाद 5 हीरा मिले हैं जेखर वजन 1.22 कैरेट के हवय। एमा 2 जेम क्वालिटी के हीरा शामिल है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ह एला प्रदेश भर महत्वपूर्ण बतावत कहिने कि एखर ले निवेश रोजगार और आर्थिक विकास के नवा मौका बाढ़ी। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी मन भर पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन के प्रक्रिया 20 जून ले शुरू हो गए है। आदिवासी विकास विभाग के मुताबिक छात्रवृत्ति पर ऑनलाइन आवेदन राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम ले जाही। उन्हें नवा आवेदन 1 अगस्त ले मंजूर करे जाही। विभाग स्पष्ट करे है कि छात्रवृत्ति के राशि सार्वजनिक वित्तीय प्रबंध प्रणाली PFMS के माध्यम ले सीधा विद्यार्थी मन के आधार ले लिंक बैंक खाता में जमा करे जाही। अब पेशे मौसम के हाल। छत्तीसगढ़ में दक्षिण पश्चिम मानसून हा काली दस्तक दे के बाद आज मध्य छत्तीसगढ़ तक पहुंच गए है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी है बताएंगे कि 22 जून के मानसून हा बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा जिला के रद्दा ले प्रवेश प्रदेश में आगे है और आज की स्थिति में मानसून मध्य छत्तीसगढ़ तक पहुंच गए है। अब यह 2-3 दिन में मानसून के आगू बाढ़े की संभावना है। अब थोड़की समाचार सार मा छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल डहर ले संचालित अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिक मन के प्रतिभावान लयिका मन ले 3 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए है। मत्स्य विभाग डहर ले प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना के तहत 25 जून के रायपुर में जल कृषि बीमा जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन करे जाही। अंबिकापुर ले हजरत निजामुद्दीन के बीच चलैया एक्सप्रेस ट्रेन अब हफ्ता में 2 दिन चलही। कर्मचारी चयन मंडल डहर ले छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में डाटा एंट्री ऑपरेटर के रिक्त पद में भर्ती पर 28 जून के पहली चरण के परीक्षा आयोजित करे जाही। और मुंगेली जिला में लालपुर थाना क्षेत्र के बैगा कांपा गांव के तीर हुए सड़क हादसा में 1 लड़का के मौत हो गई। उन्हें 2 लड़का मन घायल हो गए। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में रखे गए दूसर नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार दिन हेमा छत्तीसगढ़ के बुधरी तातीला मिले पद्मश्री सम्मान। राज्य मंत्री परिषद की बैठक में आज VBG रामजी योजना और छत्तीसगढ़ कंप्रेस्ड बायोगैस नीति ला देगी मंजूरी। उन्हें अटल आजीविका समृद्धि हाट योजना शुरू करे के लेगी फैसला। और प्रदेश के 11,600 ले ज्यादा ग्राम पंचायत मन मा काली ग्राम सभा के आयोजन करे जाही।

0: एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यही सिरावा थे। जय जोहार।
1: श्रूयंताम प्रवाचक
2: श्रोताओं, छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार का अनुप्रसारण अभी हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से कर रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 6:20 हुए हैं। लीजिए पेश कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने। ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का स्वागत अभिनंदन। ईमेल करें गीत सुने। इस कार्यक्रम का पहला गीत लीजिए पेश है अलका याग्निक और शान की आवाज में, बस इतना सा ख्वाब है। इस फिल्म से गोल्डी बहल की है रचना और आदेश श्रीवास्तव का है संगीत। ईमेल के जरिए जिन श्रोता साथियों की पसंद हम तक पहुंची है उनके नाम हैं नांदघाट कातलबोर से भाग सिंह राजपूत, भाग्यश्री टिकेश्वर, ऋतु राजपूत, डोंगरगढ़ से राष्ट्रपाल गजभैये, राधिका अनिष्का तन्मय गजभैये, कुरावली से अनिल कुमार माया देवी, राहुल विनित सोनम वर्मा, बक्सर बिहार से सरफुद्दीन अंसारी, फातिमा सुरित, रमेश साहू, रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा ऋषभ, पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा सुलोचना भगत, चेतन भगत, राजस्थान से रामकुमार रिवाड़, चंद्रकला रिवाड़, दिल्ली शहर से आसमा परवीन, आमना परवीन और वली भाई अंसारी, संबलपुर कांकेर से इसी गीत की फरमाइश लिख भेजी है फागू राम यादव, ज्योति ओजस्वी ने, बुलंद शहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शाहनवाज सरफराज, फरदीन सुहान अरजान और अबान अब्बासी, गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन, साइमा नवाज, हसन नवाज, एहद मृफा नवाज और चाहत, बिलासपुर से छनुलाल शिवास, अनीता पुष्पा, अंजू योगिता, रजन साहू, हेमंत नामदेव और धर्मदास वाधवानी, देवरी भाटापारा से के आर साहू, आकाश कमलेश, गन्नूलाल रजक, मुरली, सावतपुर से हमारे साथी हैं ऋषि शेन, रितेश कंचन, माही सेन, जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल सोनू, पप्पी भाटिया, मुंबई से अदीबा नाज, फातिमा नसरीन अंसारी, आलिया और सबा अंसारी, जालंधर से संदीप और तेलंगाना से मोहम्मद बुराहुद्दीन, महाराष्ट्र से संतोष सुनैना, सुकन्या सविता, नागपुर से वैशाली टुकटुक, शैलेश प्रिंस, एकांश सुमित ध्वनि, जालंधर से मीना कौर, मन्नत नूर और यवतमाल से पंजाब रामटके, यशोधरा श्रव्या रामटके, भाटापारा से बचकामल मोतीलाल यादव, सियाराम चुआराम वर्मा, सूरज पारेकर, नारायण यदु, भुवन कामरी, अवरेठी पारा भाटापारा से अनीता साहू, वीणा नेहा, मोनिशा साहू, खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, अब्दुल हक, जियाउल हक और मोहम्मद उमर डावर और साथ में हैं राजेंद्र कटारे। तो इन सभी की पसंद पर लीजिए पेश है बस इतना सा ख्वाब है इस फिल्म का गीत।

श्रोताओं, ईमेल करें, गीत सुनें। इस कार्यक्रम का अगला गीत हम आपकी नज़र कर रहे हैं अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज़ में जुर्म सिनेमा से। राहत इंदौरी के लिखे बोल अनु मलिक का है संगीत, और ईमेल के ज़रिए जिन श्रोता साथियों की पसंद हम तक पहुंची है उनके नाम हैं जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार, आदर्श सार्थक अलौकिक, राजकोट से जूली जगदीश, प्राची प्रवीण, रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायब और लड्डू, हांसी से राजू मिगलानी, बबीता, सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू, जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका गाव्या, सुच्चा सिंह पाठक, दुर्राबांधा बाटापारा से प्रमोद साहू, देव नवीन, युवराज साहू, राजस्थान से वेद और अलका, बठेना पाटन से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, निधि, निखिल, यश, प्रयाण, शिवम, रेखा और धनेश्वरी वर्मा, राजस्थान से ही लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित, खुशी गोस्वामी, और भिलाई से अशोक, प्रमिला, आसमा, गंडई टिकरी पारा से जागेश्वर, कचरीबाई, जयश्री, ऋषभ और ऋचा देवांगन, सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना, हसन नाजिया और इब्राहिम, सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अल्तमश खत्री, मोहम्मद अलकम्मा खत्री, रमेश और मोहम्मद शादाब खत्री, लुथरा खमरिया से अक्रम अमीन, अर्श आतिका, लोगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल, अविराज, रिंगनी से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, नवागढ़ कटई से हमारे साथी हैं नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय नमन अपार, लुथरा खमरिया से नकुल श्याम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजीज,

तिवर्ता, डबरीपारा, कोरबा से महेंद्र प्रताप मरगाम, जया, जागेंद्र, गजेंद्र, जयंती, ममता, मनीषा, मंजू, मानसी, सुरेंद्र, मोहन, सहोद्रीबाई, मनमोहन सिंह, गिरजाबाई, मरगाम, चंद्रपाल मरावी और लक्ष्मी। दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक, समर्थ और शौर्य नामदेव। बुड़गहन से रामदुलारी प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकला, शशिकांता प्रजापति। कवर्धा से हमारे साथी हैं राधेश्याम पांडे, वीणा, विनय, शंकर पांडे। और महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर और साजिद शाहिद। इन सभी की पसंद पर लीजिए पेश है जुर्म फिल्म का गीत, अभिजीत और अलका याग्निक के युगल स्वर में।

0: हेल्दी वा इंडिया।
1: हेल्दी वा का सम्मान है
0: शुद्ध शहद एटू बिलोना की कच्ची घनी सरसों तेल और प्राकृतिक खाद्य उत्पादों की श्रृंखला के साथ हेल्दी वा इंडिया लेकर आया है शुद्धता और गुणवत्ता का विश्वास। हर दिल में भरोसा, हर घर में हेल्दी वा। अपने नजदीकी स्टोर पर पूछिए
1: हेल्दी वा इंडिया।
0: अब हर घर की सेहत और शुद्धता का नया भरोसा हेल्दी वा इंडिया।
2: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
3: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
2: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
3: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
2: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
4: श्रोताओं, इन संदेशों को सुनने के बाद लीजिए पेश है कार्यक्रम का अगला गीत, मोहम्मद अजीज और लता मंगेशकर की आवाज में खेल फिल्म से। जावेद अख्तर के लिखे बोल हैं, राजेश रोशन का है संगीत। और ईमेल के जरिए जिन श्रोता साथियों की फरमाइश हम तक पहुंची है उनके नाम है जाखोद से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत सुंदरलाल, योगेश दीपक, पूजा खटक। पंडरिया से उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी, साहिल, भारती बघेल। गाजीपुर यूपी से सुरेश, उर्मिला, दीपक, स्वाति, जसवाल। पंजाब से सुभाष, विमला, इंदु, पार्वती, हिमांशु। जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी, कल्पित, गर्वी, हिमांश। रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी। डव्वाली से राजेंद्र नारंग, अंजू, मोहित, तानिया नारंग। बुलडाणा से अमोल, शोभा, दीपाली, श्लोक कुमार। जनकपुरी, सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी, पर्ल, विलिस डिकेस्ट्रो। और बठेना से रमेश परमेश्वर साहू, राजबत्ती, टोप सिंह, काजल, पूर्वी, हेजल, राजेश, रेशमा साहू। राजस्थान से मीना, मंजुला और विमला। नैला से प्रमोद कुमार, वीमा, वैभवी, विनोद, विभूति, अंशु, बबली, प्रियांशु। राजकोट से जूली, प्राची, प्रवीण। गुमला से नजमुल होदा, एसएम जावेद, शगुफ्ता अंजुम। तेलंगाना से शेख अल्लाह बख्श, राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना। तखतपुर से मिश्रीलाल विश्वकर्मा, मीना देवी, विशाल मानस, गंगा देवी विश्वकर्मा। पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य कोयल, नानक चंद्र मल्होत्रा। लोरमी चचड़ी से कमलकांत मरावी, प्रमीला नेहा, पुष्पराज, ऋषभ मरावी। धमतरी से कोमल सेन, तोषण सेन, विनायक सेन। कुलगांव से पांडु चंदन, उषा, प्रतीक्षा, प्रथमेश, पांडु रंग। रायगढ़ से शिवकुमार चौहान, संक्रांति, रितेश, राजेश्वरी, उत्कर्ष चौहान। मालोट पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश, सौरभ, शाइना, मैंडी शर्मा। पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर, मनु। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी, निमित आहूजा। और धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद, आलिया और आयान के फरमाइश पर लीजिए पेश है खेल फिल्म का गीत।

श्रोताओं, लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज़ के युगल स्वर में अभी आप सुन रहे थे खेल फिल्म का गीत। ये था ईमेल करें कि सुने इस सफ़र के पहले भाग का अंतिम गीत। दूसरे भाग में ठीक संध्या 7 बजे आपसे हमारी होगी फिर से मुलाकात। लेकिन अभी इस वक्त संध्या के 6:45 होने को हैं। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार के लिए एक बार फिर से हम जुड़ेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से।

0: आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
2: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
1: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
2: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
1: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
2: क्यों?
1: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
3: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
4: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
5: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
4: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
5: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
4: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
5: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
3: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
6: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
5: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
7: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
5: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
7: आकाशवाणी से।
3: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
8: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। छत्तीसगढ़ की बुधरी ताती को भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया। राज्य मंत्रिपरिषद ने विकसित भारत जीरामजी योजना के प्रारूप का अनुमोदन किया। प्रदेश की 11,600 से अधिक ग्राम पंचायतों में कल ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। और छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल में दस्तक देने के बाद आज आगे बढ़ा दक्षिण पश्चिम मानसून। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए गए। इनमें छत्तीसगढ़ की बुधरी ताती भी शामिल हैं, जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया।
9: डॉक्टर बुधरी ताती, समाज सेवा।
8: दंतेवाड़ा जिले के हीरानार ग्राम की निवासी बुधरी ताती को महिला सशक्तिकरण और समाज सेवा के लिए पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया। गौरतलब है कि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्र सरकार ने वर्ष 2026 के लिए 5 पद्म विभूषण सहित 131 पद्म अलंकरणों की घोषणा की थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में नैफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री शाह ने किसानों की सीधी भागीदारी को मजबूत करने के लिए खरीद कार्यों में बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने का आह्वान किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार

0: अल नीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने कहा कि देश में अब तक लगभग 43% कम वर्षा हुई है और जुलाई में भी मानसून के कमजोर रहने की आशंका है। उन्होंने बताया कि लगभग 315 जिले सामान्य से कम वर्षा से प्रभावित हो सकते हैं, जिनमें 111 उच्च प्राथमिकता वाले जिले शामिल हैं, जहां सिंचाई की व्यवस्था बहुत सीमित है। श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। उन्होंने कहा कि किसानों को समय पर मार्गदर्शन सुनिश्चित करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों, कृषि मौसम विज्ञान इकाइयों और एसएमएस, व्हाट्सएप, कॉल सेंटर, रेडियो, टेलीविजन और सोशल मीडिया जैसे अन्य परामर्श माध्यमों का उपयोग किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण योजना छत्तीसगढ़ के प्रारूप का अनुमोदन किया है।
1: विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण वीबी जी राम जी की योजना छत्तीसगढ़ के लिए प्रारूप का अनुमोदन किया गया। भारत सरकार के अधिनियम 2025 के अनुरूप लागू की जा रही इस योजना के तहत पात्र ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिवस अकुशल श्रम आधारित रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान की जाएगी। इस योजना के क्रियान्वयन में केंद्र और राज्य के व्यय का अनुपात 60-40 का रहेगा और वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य बजट में 4,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
0: वहीं मंत्रिपरिषद ने अटल आजीविका समृद्धि हाट योजना शुरू करने का भी निर्णय लिया है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में हथकरघा, बुनाई सिलाई, हस्तशिल्प केंद्र के साथ ही दलहन तिलहन प्रसंस्करण इकाइयां, राइस मिल, डेयरी तथा सेवा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। इसके अंतर्गत कोल्ड स्टोरेज, सोलर ड्रायर, कृषि उपकरण मरम्मत, अटल डिजिटल केंद्र, विपणन केंद्र तथा आपूर्ति केंद्र भी ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए जाएंगे। वहीं एक अन्य फैसले में मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ कंप्रेस्ड बायोगैस नीति के प्रारूप का अनुमोदन किया है। इस नीति के माध्यम से राज्य में उपलब्ध कृषि अवशेष, नगरीय ठोस अपशिष्ट, पशुधन अपशिष्ट और अन्य जैविक संसाधनों का वैज्ञानिक प्रबंधन कर उन्हें कंप्रेस्ड बायोगैस ईंधन में परिवर्तित किया जाएगा। प्रदेश की 11,600 से अधिक ग्राम पंचायतों में कल 24 जून को ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। ग्राम सभा में आवास प्लस 2.0 की स्थायी प्रतीक्षा सूची सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण से प्राप्त सिस्टम जनरेटेड स्थायी प्रतीक्षा सूची का अवलोकन और वाचन किया जाएगा। साथ ही पात्र हितग्राहियों की प्राथमिकता सूची तैयार की जाएगी और ग्रामीणों से प्राप्त दावे आपत्तियों का निराकरण किया जाएगा। ग्राम सभाओं में विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण के संबंध में भी लोगों को जानकारी दी जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। महासमुंद जिले के सरायपाली क्षेत्र के बलौदा बेलमुंडी डायमंड ब्लॉक में वैज्ञानिक अन्वेषण के दौरान हीरे मिलने से छत्तीसगढ़ के खनिज क्षेत्र में नई संभावनाएं बनी हैं। एनएमडीसी सीएमडीसी लिमिटेड द्वारा 200 टन खनिज सामग्री के परीक्षण के बाद कुल 5 हीरे मिले हैं, जिनका वजन 1.22 कैरेट है। इनमें 2 जेम क्वालिटी के हीरे शामिल हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे निवेश, रोजगार और आर्थिक विकास के नए अवसर बढ़ेंगे। प्रखर राष्ट्रवादी नेता और शिक्षाविद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज पुण्यतिथि है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने अपना जीवन देश के विकास के लिए समर्पित कर दिया। इधर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमन डेका ने आज लोकभवन में डॉक्टर मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी के विचार, संघर्ष और त्याग भारतीय लोकतंत्र और राष्ट्रवादी चिंतन की अमूल्य धरोहर हैं। राज्य सरकार ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अंबिकापुर की कुछ समितियों में वित्तीय अनियमितताओं के मामले में कार्रवाई की है। इसके बाद शंकरगढ़, कुसमी, रामानुजगंज और रामचंद्रपुर क्षेत्र के प्रभावित किसानों को अब फिर से खाद और बीज मिलना शुरू हो गया है। मामले में दोषी अधिकारी

0: कर्मचारियों पर एफआईआर, निलंबन और विभागीय कार्रवाई की गई है। करीब 497 किसानों की शिकायतों में 30 करोड़ 51 लाख रुपए से अधिक की अनियमितता सामने आई है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि किसानों के हितों से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग ने चालू शैक्षणिक सत्र में प्रदेश के 75 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए चयनित अभ्यर्थियों की मेरिट सूची जारी कर दी है। इसके साथ ही विभाग ने ऑनलाइन काउंसलिंग की तिथियां भी घोषित कर दी हैं। काउंसलिंग की प्रक्रिया विकासखंड स्तर पर 30 जून को, जिला स्तर पर 2 जुलाई को, राज्य स्तर पर 3 जुलाई को, विशेष पिछड़ी जनजाति समूह तथा आरक्षित वर्ग के लिए 4 जुलाई को और आरक्षित दिवस 6 जुलाई को होगी। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 20 जून से शुरू हो गई है। आदिवासी विकास विभाग के अनुसार छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से लिए जाएंगे, वहीं नए आवेदन 1 अगस्त से स्वीकार किए जाएंगे। और अब पेश है मौसम का हाल। छत्तीसगढ़ में दक्षिण पश्चिम मानसून कल दस्तक देने के बाद आज मध्य छत्तीसगढ़ तक पहुंच चुका है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी ने बताया कि सोमवार 22 जून को मानसून ने बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा जिले के रास्ते प्रदेश में प्रवेश किया है और आज की स्थिति में मानसून मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों तक पहुंच चुका है। आगामी 2 से 3 दिन में मानसून के और आगे बढ़ने की संभावना है।
1: 22 जून को मानसून ऑनसेट किया है छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा तक। आज की स्थिति में देखा है तो मानसून जो है मध्य छत्तीसगढ़ तक प्रवेश किया है और आगामी 2-3 दिन में और भी आगे बढ़ने की संभावना है और वज्रपात वाला स्थिति जो है आगामी 5 दिन तक भी रहने की संभावना है और अधिकतम तापमान में अगले 24 घंटों में 1 से लेकर 3 डिग्री का गिरावट मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ में होने की संभावना है।
0: और अब कुछ समाचार संक्षेप में। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आज संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी के स्नातक दाखिलों के परिणाम घोषित कर दिए हैं। प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार सीयूईटी के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा संचालित अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के प्रतिभावान बच्चों से 3 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसके लिए 22 जून से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अंबिकापुर से हजरत निजामुद्दीन के बीच चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन अब सप्ताह में 2 दिन चलेगी। छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में डाटा एंट्री ऑपरेटर के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए 28 जून को प्रथम चरण की परीक्षा आयोजित की जाएगी। और सक्ती जिले के छुईपाली गांव के पास एक मालवाहक वाहन के पलट जाने से 10 से अधिक लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 4 की स्थिति गंभीर बनी हुई है। पुलिस के अनुसार वाहन में 15 से 20 लोग सवार थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। छत्तीसगढ़ की बुधरी ताती को भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया। राज्य मंत्रिपरिषद ने विकसित भारत जी रामजी योजना के प्रारूप का अनुमोदन किया। प्रदेश की 11,600 से अधिक ग्राम पंचायतों में कल ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। और छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल में दस्तक देने के बाद आज आगे बढ़ा दक्षिण पश्चिम मानसून। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार का अनुप्रसारण अभी हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से कर रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। संध्या के इस वक्त 7 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने, इस सफर का दूसरा और अंतिम भाग। तो चलिए कार्यक्रम की ओर रुख करते हैं।

में एक बार फिर से आप सभी सुनने वालों का स्वागत। लीजिए पेश है जुबीन गर्ग और अलीशा चिनोई की आवाज़ में क्रिश 3 फिल्म का ये गीत। समीर की रचना है, राजेश रोशन का है संगीत। और ईमेल के ज़रिए जिन श्रोता साथियों की पसंद हम तक पहुंची है उनके नाम हैं पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती नरगोड़ा से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, जोगेशपुरी, ट्विंकल।

टू टॉमस पिंकी लवली आरती, नरगोड़ा से कीर्तनपुरी गोस्वामी लक्ष्मी देवी, जोगेशपुरी ट्विंकल डिंपल मीनाक्षी निशा तुलसी दिशा गोस्वामी, हिसार से राजकुमार प्रमोद कुमार पुष्पेंद्र कुमार, सीतामणि बिहार से मसरत जहानाज तलहत फरहत रिफत नुजहत, शाजिया शाहीन नाज नाजिया नूरी नाज, हिंगोली महाराष्ट्र से शाजी नंदा अनुमान उत्तम, बठिंडा पंजाब से परमेन सिंह मनजीत कौर करणवीर करण दपिंदर परिंदर कुलदीप सिमू एकम दमन अभिजोत, गुजरात से प्रवीण सोनी पूजा पायल और जगदीश, राजकोट से रुचि गुप्ता ट्विंकल और उमा गुप्ता, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र कपिल पूजा, बिहार से उमा राज पवन संजय दीपक कमल और उमा, लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर राही मेहराज जहां, अडार नांदघाट से माखन वर्मा चांदनी राहुल और गोपी वर्मा, पिपरिया से हमारे साथी हैं कमलकांत गुप्ता दीपा रिमझिम गुप्ता, समडिल नवापारा से मुकेश श्रद्धा अदिति राधे दीपक अंकु राघव गुप्ता, राजकोट से राजेश स्वाति ख्याति और सरगुजा मैनपाट से अजीता पॉल प्रभा रानी प्रियांशी शर्मा, करजत मुंबई से अब्दुल कलाम राइन अब्दुल सलाम राइन, पीपरलोड सरगांव से दीपेश वर्मा पूनम ज्योति शिवांश, पलारी से नीतीश कुमार तनुजा ईशांत लखनलाल सावित्रीबाई देवांगन, खमरिया से हमारे साथी हैं साबित खान धर्मेंद्र प्रजापति सावित्री देवी प्रतीक कुमार, बलौदा से दिलहरण गौतम अंजनी अंजलि आनंद पटेल समृद्धि पटेल, नेपानगर से सुदर्शन शाह पल्लवी प्रखर कुशल नीति सुरभि अश्विन मंगला और राजेंद्र शाह, दतरंगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा पारसमणी पुष्पेंद्रमणि नोखेलाल वर्मा, महाराष्ट्र से श्रीकृष्ण बाटे संदीप अमूल्य बाटे, पलारी से प्रकाश प्रिंस निखिल यशस्वी वर्मा, देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक के आर साहू अश्वनी गणेश राम, पंजाब से गगनदीप तृप्ता प्रशांत प्रियम वामिका और वाणी, इसी गीत की मिली जुली फरमाइश लिख भेजिए करनाल से सुधीर संदीप जगमोहन और प्रतिभा शर्मा ने, साथ में है माया कुमार, हरियाणा से जसबीर सिंह अड़ोड़ा जतिंदर कौर गुरप्रीत लवप्रीत करमजीत, गंडई पडरिया से पवन कुमार सेन प्रभा देवी सेन लक्की विक्की नानू रविंद्र रौनक सेन, रसेड़ा से मुरलीधर साहू लक्ष्मी देवी योगेश संध्या कीर्ति ढिकेश वासु डॉली पूर्वेश, इंदौर से नारायण ललिता गणेश कार्तिक परी स्वाति प्रयाग चौधरी, बागबहरा से पन्नालाल सेन खुशबू तारा कौशल सेन, पंजाब से भूषण विशाल विष्णु विशु लाडी शालिनी और वानी आरबी खेड़ा, पांडर कवड़ा से अनिल उषा अनुश्री धनश्री बुरांडे, उदयपुर सरगुजा से जीवधन सिंह पैकरा गुरनी करिश्मा सुमार साय कलेश्वर सुखराम हिरामणी और ऐश्वर्या पैकरा, भाटापारा से प्रेमलाल भूपेंद्र साहू दुष्यंत राघवेंद्र साहू, दिल्ली से लालबाबू उमाराज दिव्या भारती, छत्तीसगढ़ से प्रभा डॉली कबीर देवशंकर, लोरमी से दुर्गेश मरकाम निर्मला दीपक प्रीतम धनराज मरकाम, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से उदयभान पाल जय हिंद दीक्षा प्रतीक्षा विमलेश पाल और दिव्यांश बघेल, अकोला से सुशीला देवी सदानंद गौरव आरव और अर्पिता, पैठन से सुरेश अनीता आरती पूजा प्रसाद सोनल सिया, पोड़ी बाटा अकलतरा से दिलीप चंदन छुवाराम यदु निखिल चंदन वसुंधरा प्रांजल चंदन, जालंधर से संदीप ज्योति मन्नत भरत और कमल साहनी, दूनापुर यूपी से मोहम्मद फरहान मोहम्मद सलमान मोहम्मद इरफान मोहम्मद इसरार नरगिस, दूलापुर यूपी से ही मुकेश शीतल सोनू सुरेश राजपाल पंकज काजल सीमा मानवी तनवी लक्ष्य सोनी मोहनी ऋतिक बलवीर सिंह, सहारनपुर से सुरेश आशु सोनाली, अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल रंजीत कौर जयप्रकाश प्रियंका मन्नत गुरकीरत गुरशब्द सिंह राहुल,
भिलाई से नौशाद अहमद सिद्दीकी, हमीदुन सिद्दीकी, जिशान

श्रोताओं, कार्यक्रम का अंतिम गीत लीजिए पेश है अरिजीत सिंह की आवाज में राज रिबूट फिल्म से। पसंद ईमेल के जरिए इन श्रोताओं की हम तक पहुंची है। उमरखेड़ से अभिजीत, सरिता, प्रिंस, एकांश, मोहाली, चंडीगढ़ से टीडी, मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल, चवीर और अमनदीप, कालका से शुभचंद बजाज, साहिल बिट्टा बजाज, अम्बागढ़ चौकी से रिजवान खान, आयशा सबिया, अनस रेहान, छत्रपति संभाजी नगर से राजेश, राजदीप, राशि, शीतल राजेश, पोटिया कला दुर्ग से संजय, सुजाता, शशांक, सीमा, लचनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू, डुमराव से वली उल्ला अंसारी, महेंद्र मोदी, विक्रांत और इफजल ताज, बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा अमित राय, हैप्पी राय, महाराष्ट्र से ही पीएस निर्मला विशाल, सोंगा से फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित, देविका रानी, गजेंद्र कुमार, हियांश कुमार चंदन, श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता, अनिकेत, रोहिणी, ऋषिकेश, जीविका दले, कवर्धा से अशोक कुमार, लीलेश्वरी, खुशांत, निशांत, रोहासी से मुकेश, नंदनी, मनीष, जानकी, साहू, पंजाब से हरजिंदर, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता, चिरमिरी कुरासिया कॉलरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव ऋषभ, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे, कालिंदी लहरे, मजनू काटिल्ला से कमल बालूचा, मधु सागर बालूचा, सरगांव से राजेश वर्मा, हीरोमन पल्लवी, राजेश्वरी, पटियाला से मुकेश, नीलम, यवतमाल से राहुल, सरला, विशाल, चेतन, रोशनी, प्रियांशी, दिल्ली से बोधराज, कमला रानी, गीतिका, भानु, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किशु, ताशु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद, कालेगांव से सुधाकर राजे, प्रशांत, संचित, प्रथमेश, प्रणाली, सर्वत, देशमुख, दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना, चैतन्य और मेगा मस्कीन। इसी गीत की फरमाइश लिख भेजी है राजनंदगांव से बबलू, जामुन देवी, पूजा, प्रेम, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, आराध्या साहू ने, महाराष्ट्र से रुपेश, महेश, प्रज्ञेश, प्रीतेश, भागलपुर से कमल, अश्वनी, अमरदीप, पशुपति, टिक्कू, मुस्कान, दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता, रुद्र वर्मा, कथिया, पारा, जूना, बिलासपुर से हमारे श्रोता हैं सुशील देवांगन, अखिलेश, लोकेश, आशीष, रवि, शनि, रेयांश, कान्हा, आदित्य देवांगन, मदनपुर से श्रवण कुमार साहू, योगेश, राहुल, जलगांव जंक्शन से दिनेश, वंदना, आदेश, वसुधरा, ग्वालियर से सुरेश, किरण, लाव्या, आरव, एस के, पप्पी, सहारनपुर से आशु, गुनौर से नसीमुल और फरदीन, अब्बासी, दानिश, रायपुर से विनोद, वीणा, विविधा, महाराष्ट्र से विजय, रतन।

अरिजीत सिंह की आवाज़ में अभी आपने सुना राज रिबूट फिल्म का ये गीत। और इस अंतिम गीत के साथ ही ईमेल करें, गीत सुने, ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। श्रोताओं, हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से इस वक्त बोल रहे हैं। संध्या के 7:20 होने को हैं। चलिए अब रुख करते हैं कार्यक्रम ग्राम सभा की ओर।

0: राम सनी भैया के झोंकाओ, राम राम जय जोहार। संगवारी हो, 30-40 बछर पहले की बात करबो तो सुरता आते कि हमार जम्मो किसान भाई बहनी मन के कोला बारी बकरी ब्यारा मन में 12 महीना साग भाजी के खेती हुए। डबरी तलाव नदिया नरवा कुआ ले रहटा के माध्यम ले पानी पलवाए और हमार बहुत झिन किसान भाई मन कांवर ले पानी डोहार डोहार के साग भाजी के खेती करे। मोर एक झिन भैया के खांधा हर कांवर में पानी डोहार डोहारे के कारण बैला के डिल्ला बरोबर फूले रहे। संगवारी हो, वो समय के साग भाजी के सेवादे हर कुछ अलग रहे। वो समय की धनिया के खुशबू हर महकत रहे। धनिया के पत्ती मिला के पताल के चटनी पिसत ले पूरा घर भर हर कहर महर महके लगे। राहेदार के सेवाद के बात करी चाहे दुबराज की खुशबू ही कुछ अलग रहे। घर के साग भाजी ला पारा परोस में चार घर मिलके बाटन। संगवारी हो, आज के समय में आनी बानी के सुख सुविधा के रहे के बावजूद हमर खुला बारी बकरी ब्यारा मन सुनना पड़े हवाए। हमर पारंपरिक खेती में कमी आ गए हवाए और जिन कोला बारी में खेती हुए उमा अब रासायनिक के बहुत ज्यादा उपयोग होत हवाए। संगवारी हो, रासायनिक खेती ले केवल हानि ही हानि हवाए। जैसे कि रासायनिक खेती करे ले भूया की उपजाऊ क्षमता मन नष्ट हो जाते। रासायनिक खातू माटी के उपयोग करे ले हमर सफा पानी मन जहरीला हो जाते, पानी मन हर दूषित हो जाते। रासायनिक खातू माटी के उपयोग करे ले हमर मित्र कीट मन नष्ट हो जाते, जैसे कि नेवला कीकरा घोंघी बेंगवा गिंगरुआ जैसे बहुत अगन जीव जंतु मन नष्ट हो जाते। संगवारी हो, कोतरी सरांगी टिंगना बामी खोक्सी और भुंडा मछली मन आज रासायनिक खातू के उपयोग करे ले नष्ट हो जाते। रासायनिक खातू माटी के उपयोग करे ले हमार पर्यावरण हर प्रदूषित हो जावत है, जेकर कारण हमार सेहत में बुरा असर पड़त हवे। संगवारी हो, ये सबले बड़े बात हमार खाए पिए के जो अनाज है जो साग भाजी है ये मन हर जहरीला हो जावत है, जिन मन हर हमार सेहत ला नुकसान पहुंचावत है। तो संगवारी हो, रासायनिक खेती ले छोड़ के प्राकृतिक खेती करो। बाजार के ऊपर निर्भर रहे के बजाय खुद के कुलाबारी में साग भाजी की खेती करो। खुद स्वस्थ रहो और प्रकृति घलावला स्वस्थ रखो। संगवारी हो, अगर हम अपन कुलाबारी में साग भाजी लगाबो तो निश्चित है हमला बाजार में निर्भर रहने पड़ी, बाहर से बिसाए की जरूरत नहीं पड़ी। और अपन हाथ में अगर हम जैविक खेती करबो तो यह हमार सेहत ला फायदा ही फायदा पहुंचाई, कोनो प्रकार के नुकसान नहीं पहुंचाए। तो संगवारी हो, चेत कराओ, पारंपरिक खेती कराओ और अपन सेहत ला स्वस्थ रखो। अब सुनत हन ये संदेशाला।
1: हर घर की पहचान है
2: हल्दीवा इंडिया,
1: हल्दीवा का सम्मान है।
2: शुद्ध शहद एटू बिलोना की कच्ची घनी सरसों तेल और प्राकृतिक खाद्य उत्पादों की श्रृंखला के साथ हल्दीवा इंडिया लेकर आया है शुद्धता और गुणवत्ता का विश्वास। हर दिल में भरोसा, हर घर में हल्दीवा। अपने नजदीकी स्टोर पर पूछिए
1: हल्दीवा इंडिया।
2: अब हर घर की सेहत और शुद्धता का नया भरोसा हल्दीवा इंडिया।
3: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
4: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
3: मैं फसल की नहीं एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
4: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
3: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
1: हर घर की पहचान है
2: हल्दीवा इंडिया,
1: हल्दीवा का सम्मान है।
2: शुद्ध शहद A2 बिलोना घी, कच्ची घानी सरसों तेल और प्राकृतिक खाद्य उत्पादों की श्रृंखला के साथ हल्दी।

0: वह इंडिया लेकर आया है शुद्धता और गुणवत्ता का विश्वास, हर दिल में भरोसा, हर घर में हल्दीवा। अपने नजदीकी स्टोर पर पूछिए अब हर घर की सेहत और शुद्धता का नया भरोसा, हल्दीवा इंडिया।
1: संगवारी हो, ये तो हम सुने संदेशा, और अब आओ सुनबो कार्यक्रम के संबंध में सूचना। संगवारी हो, हमर मयारू कार्यक्रम किसान वाणी में जमो बृहस्पत और जमो शुक्रवार के 7:30 बजे ले 8 बजे तक, मतलब ऐसा ही बेरा में आप सबके मयारू कार्यक्रम फोन इन कार्यक्रम के प्रसारण होते, जेन में हमर किसान भाई बहनी मन खेती किसानी ले जुड़े समस्या के समाधान पाए बर फोन करता हो। तो यही क्रम में अवैया बृहस्पत के यानी कि परो दिना, संगवारी हो आज मंगलवार है, कल बुधवार है, परसों बृहस्पत, तब परो दिन 25 जून 2026 के बृहस्पत के दिन में 10:30 बजे ले 11:30 बजे तक फोन इन कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हुई, जिनमें 10:30 बजे ले 11 बजे तक के रिकॉर्डिंग के विषय हवे बरसात के पहली जानवर मल्ला रोग प्रतिबंधात्मक टीकाकरण, और 11 बजे ले 11:30 बजे तक के रिकॉर्डिंग के विषय हवे पशु विभाग द्वारा संचालित योजना मन की जानकारी। संगवारी हो, विषय ला एक पिताऊ बताए थो, 10:30 बजे ले 11 बजे तक के रिकॉर्डिंग के विषय हवे बरसात की पहली हम अपन जो जानवर पोसे हवन उमन ला रोग प्रतिबंधात्मक टीकाकरण लगवाई, तो कौन कौन प्रकार के टीकाकरण लगवाना है एक बारे में जानकारी मिली, और दूसरा विषय हवे 11 बजे ले 11:30 बजे तक के रिकॉर्डिंग के जो विषय हवे यह हवे पशु विभाग द्वारा संचालित योजना मन की जानकारी कि कौन कौन प्रकार की योजना हर हमारे किसान भाई मन पर हवे, तो ये पशु विभाग द्वारा यह योजना हर संचालित हुआ थे। ये दोनों विषय में हमर समस्या के समाधान करे बर हमर बीच में विशेषज्ञ पहुना रही डॉक्टर रंजना नंदा, पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ, पशु चिकित्सालय बरतुरी, विकास खंड बिल्हा, जिला बिलासपुर। संगवारी हो, लौहा हमर फोन नंबर ला लिख लेवाओ, हमर फोन नंबर हवे 07752, यह बिलासपुर जिला के कोड नंबर आए, अब एकर पाछू में फोन नंबर हवे 266592। फोन नंबर एक पिताऊ बताए थो, बिलासपुर जिला के कोड नंबर 07752 66592। संगवारी हो, जो पहली रिकॉर्डिंग होही ओकर प्रसारण होही वही दिनांक 25 जून 2026 के दिन बृहस्पत के ऐसने बेरा में 7:30 बजे ले 8 बजे तक, और जो दूसरी रिकॉर्डिंग के प्रसारण होही 26 जून 2026 दिन शुक्रवार के ऐसने बेरा में 7:30 बजे ले 8 बजे तक। तो संगवारी हो, फोन करे के बेरा कुछ सावधानी ला जरूर बरतिया, जैसे कि तुहर मोबाइल में बढ़िया से नेटवर्क रहे, बढ़िया टावर रहे, ताकि तुहर आवाज हर सफा सफा हमर तक पहुंच सके। दूसरिया सावचेती बरतिया कि भीड़ भाड़ वाले जगह ले रही के फोन झन करिया, ताकि कोलाहल वाले आवाज हर हमर बीच तक मत आवे। कभी कभी कहा होते संगवारी हो, लेकिन पिछकर मन चिल्लावत रहते हो, आप मन फोन करते हो तो आपके बात हर हमर तक नहीं समझ में आवे, तो लेकिन पिछकन की आवाज घर उघर झन आवे, ये बात के सावचेती करिए, और जिन विषय हवे वही विषय में सवाल पूछे की कोशिश करिए। तो संगवारी हो, ये तो हुई हमार कार्यक्रम के संबंध में सूचना, और अब हमार बेरा होती हमार मयारू कार्यक्रम किसान वाणी कति पर आगू बढ़े के, तो आओ अब आगू बढ़बो हमार मयारू कार्यक्रम किसान वाणी में।

0: कार्यक्रम सुनिया जम्मू संगवारी मन के स्वागत है। राम सनी भैया के झुकाओ, राम राम जय जोहार। संगवारी हो, आज आप मन बले क्या हन स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम किसान वाणी गांव में। और यह गांव हर हवाए सरायपाली विकास खंड कोटा। यहाँ ला महिला स्व सहायता समूह द्वारा दार प्रसंस्करण इकाई के उद्घाटन समारोह के रेडियो रिपोर्ट। कार्यक्रम के संपादन करे हवाए चित्रलेखा तिवारी और कार्यक्रम के प्रस्तुति हवाए डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन। तो आवाज सुनेथन किसान वाणी गांव में।
1: रेडियो सुनैया जम्मू श्रोता संगवारी मल्ला कजरी बहनी के राम राम जय जोहार। संगी हो, आज हम कार्यक्रम बनाए पहुँचे ग्राम सराई पाली जो आते विकास खंड कोटा के अंतर्गत। और आज यहाँ गनियारी के जन स्वास्थ्य केंद्र और आजीविका मिशन के सहयोग से महिला स्व सहायता समूह के द्वारा दाल प्रसंस्करण के यूनिट स्थापित किए जाते, यानी दादरी के मशीन लगाए जाते। मंच में उपस्थित मुख्य अतिथि डॉक्टर पी डी हतेश्वर जी, विशिष्ट अतिथि रहीम गनियारी के जन स्वास्थ्य केंद्र के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर गजानन जी और विशिष्ट अतिथि रहीन डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन, आकाशवाणी बिलासपुर के प्रमुख संगमा गांव सरायपाली के सियान पूर्व सरपंच और समाज प्रमुख जम्मो मंच में उपस्थित रहीन और अपन आशीर्वाद अचरा भर भर के सब झन लदीन। गणमान्य नागरिक जौन उमेर मैदान में उपस्थित रहीन, सबके उत्साह बहुत बढ़िया रहीस। कार्यक्रम के सफल संचालन अनिल बामरे जी करत रहीन। आवा आज आप मनसो यहाँ के कार्यक्रम साझा करीन अपन रेडियो के माध्यम ले। पहली जानीन गनियारी के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर गजानन जी के विचार।
2: नमस्ते। पहले तो मैं ये बताता हूँ कि हम पोषण का काम, हालांकि मैं डॉक्टर हूँ और हमारी संस्था स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करती है, तो पोषण और स्वास्थ्य बहुत गहरे रूप से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने पोषण के काम करना चालू किया। जब पोषण के गहराई में गए तो पता चला कि पहले यहाँ पे दाल तेल ये चीज़ें चावल के साथ होती थी और काफ़ी मात्रा में मोटा अनाज भी होता था, लेकिन धीरे धीरे ये इसकी मात्रा कम हो गई थी। तो शुरू में किसानों के साथ बात करके हमारी टीम ने यह प्रयास किया कि हम इसका उत्पादन बढ़ाएं। जब उत्पादन आ गया तो फिर हमने ये देखा कि ये उत्पादन सब बिचौलियों के माध्यम से बाहर चला जा रहा था और जो इसके संबंधित जो रोजगार और जो अर्थव्यवस्था, शहर की अर्थव्यवस्था मजबूत बन रही थी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था कमजोर रह गई। और इसमें एक महिलाओं का भी पक्ष है कि महिला को अपने घर में कुछ बोलने का अधिकार नहीं होता, क्योंकि ये लगता है कि ये पैसे नहीं कमाती। तो फिर हमने इस सबको जोड़ते हुए ये देखा कि किसान जब उत्पादन कर रहा है और फिर हम महिलाओं को अगर छोटा मशीन के माध्यम से ये बात का ट्रेनिंग दे कि आप इसको पक्का बना सकते हो गांव में ही और इसको आप पैकेजिंग कर सकते हो और बिल्कुल नेचुरल तरीके से बिना केमिकल वाला उत्पाद आप बना के इसको मार्केट से लिंक करने में हम आपकी सहायता करेंगे। तो हमने थोड़ा सा टेक्निकल सपोर्ट किया, महिला समूह यहाँ पे था, इन्होंने भी अपना तैयारी दिखाई, उन्होंने बहुत योगदान दिया, उन्होंने अपनी जगह चुनी, उसके मकान को अच्छा किया, क्योंकि कहीं पर भी मशीन लगाना है तो वो सेफली ऑपरेट होना और साफ़ सफाई का ध्यान होना ये बहुत ज़रूरी है। तो उस हिसाब से फिर बनाया और आज हम देख रहे हैं कि ये महिला समूह जो है अपना मशीन चला के इनका ट्रेनिंग पूरा हो गया है। अभी तक लगभग इन्होंने 2-3 क्विंटल दाल प्रोसेस भी कर चुके हैं और बहुत अच्छे क्वालिटी का दाल है। हमने ये दाल का टेस्टिंग भी करवाया हो तो इसमें केमिकल BLQ मतलब बिलो लेवल ऑफ क्वांटिफिकेशन है, तो ये पूरा एक जैविक दाल है जो हमें गांव से डायरेक्ट, हम जैसे हम डॉक्टर भी हम ये दाल खाते हैं और शहर के भी कुछ लोग हमसे जुड़े हुए हैं, इस मंच के माध्यम से ये लेते हैं, अधिकाधिक लोग इससे जुड़े और हम गांव की महिलाओं को, गांव की अर्थव्यवस्था को और किसानों को और सशक्त बनाएं, इसी आशा में काम चल रहा है।
1: अभी हम सुनत रहे हैं गनियारी के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर गजानन जी के विचार। अब सुनबो जन स्वास्थ्य केंद्र गनियारी से जुड़े हुए हमारे सफल कृषक हवाए होम प्रकाश जी, आवाज जानी उखर विचार।
3: नमस्ते, जय जोहार। कार्यक्रम है यहाँ दाल के प्रोसेस कर ही और शुद्धता के साथ गांव के लोग तो खही और साथ ही साथ एला बाजार तक पहुँचान गरिमा मंच के माध्यम से ये सोचा भी। एकर शुरुआत है वो 4 साल पहले 2021-22 में शुरू करें। शुरू ऐसे हो इसकी गांव में आके देखें, गांव बैठक करें और गांव में बैठ के सब किसान मन के साथ विचार विमर्श बनाएं कि भाई दलहन तिलहन के खेती काबर नहीं होते, काबर नहीं कर पाते। तो किसान मन के जो बड़े समस्या है वो सामने आई, वो हबे फसल के सुरक्षा जानवर से, जंगली जानवर से और पालतू लवारिस जानवर से। तो एकर समाधान कैसे हो सके ये बार बार बैठक करके चर्चा होते रहे और

0: एक स्थिति ऐसे बने इसकी ये समस्या के समाधान कैसे कर सकतन, तो सामूहिक सोच के साथ में ये बढ़ीस की किला सामूहिक फेंसिंग के रूप में कर सकतन पूरा गांव के एक फेंसिंग के साथ में। धीरे धीरे फिर चर्चा करते करते पूरा गांव के सोच बनीस और 2024 में पूरा गांव मिल के पूरा 250 से 300 एकड़ सरईपल्ली के पूरा खेती के फेंसिंग के काम हुईस। जैसे फेंसिंग के काम हुईस तो खरीफ के फसल है वो तो बिल्कुल सुरक्षित हो गए और खरीफ के साथ साथ फिर दलहन तिलहन के खेती भी होने लगी। अभी सरईपल्ली में देखबो तो लगभग 150 कुंटल तिंवरा के उत्पादन आ है, 25 से 30 कुंटल बटरी उत्पादन आ है, 25 से 30 कुंटल सरसों के उत्पादन आ है, ये तरीका से दाल के उत्पादन है वो बढ़ीस। तो दाल के उत्पादन बढ़ीस तो लोग तो अपन खाना में शामिल करते और उत्पादन ला अपन खाए बर रखे के बाद में ओला बाजार में बेचते, तो बाजार में बेचते तो ये साल दाल के रेट भी कम हो गए काफी, तिंवरा के खड़ा तिंवरा के रेट तो एकर बर का हो सकते। फिर विचार विमर्श हुईस और प्लान ने हुईस कि हम दाल मिल लगाबून, खड़ी तिंवरा बटरी ना बेच के ओला दाल निकाल के दाल के रूप में देन और अपन खाना में शामिल करन। तो ये सोच के साथ में जन स्वास्थ्य सहयोग, गांव के सहयोग और गरिमा मंच के सहयोग से दाल प्रोसेसिंग मशीन लगे है और ओकर आज उद्घाटन के कार्यक्रम है और ये दाल निकालन जो इच्छुक जो साथी है अच्छा खाना चाहते वहां तक पहुंचान, जेकर से रोजगार है उत्पादन करते खेती करते तो जो भी श्रम है उत्पादन है रोजगार है वो गांव में तो मिलते और दाल के माध्यम से भी जो भी काम होते प्रोसेस करते पैकेजिंग करते वो रोजगार भी गांव में आए। ये तरीका से अगर हम सोच के साथ में चलबो तो सच में हमर गाँव आत्मनिर्भर बन सकते, जो एक सोच है वे ग्रामीण आत्मनिर्भर रोजगारी मंच, तो वो दिशा में हम एक कदम बढ़ाए।
1: गनियारी के सफल कृषक होम प्रकाश जी ला सुनत रहे हैं। अब संगी हुआ पारी आते बहनी मन जो भिन्न भिन्न क्षेत्र के स्व सहायता समूह के बहनी मन आही और अपन विचार जो दाल प्रसंस्करण मशीन लगा थे तेकर बारे में देवा थे, तो आवा जाने का कहते बहनी
2: महिला स्व सहायता समूह। हम देखा था कृष्णा महिला स्व सहायता समूह के अंतर्गत दाल लगा के अपन मशीन लगाए हैं।
1: हाँ।
2: तो प्रेरणा कहाँ से मिली से काम बुताला करे के और कहाँ से सहयोग मिली?
3: हमन ला तो गनियारी संस्था से ही मिली से और गनियारी संस्था के जो हमारे भैया मन है कार्यकर्ता और हमारे दीदी मन है और सर है इनकर माध्यम से हमारा मिली से।
2: आप समूह में का पद में?
3: मैं समूह में अध्यक्ष के पद में।
2: के जन हवा समूह में?
3: 11 जन हमारे समूह में 11।
2: तो सब जन जोड़ मिल के करा था?
3: हाँ।
2: एक और बहनी हवा जो ये समूह से जुड़े हुए है उहू से बातचीत करी और उखर परिचय जानी। बहनी राम राम।
4: राम राम।
2: आप अपन परिचय देवा?
4: रेखा पूर्ति।
2: आप समूह से जुड़े हैं?
4: जी कोषाध्यक्ष हूँ।
2: इसे दाल लगाए के अपन मशीन डाले हवा, तो एक शुरुआत कहाँ से करा और एक कच्चा माल कहाँ से मिली साहब?
4: कच्चा माल आधा गांव से मिली से और गरिमा संगम तरफ से भी आई से।
2: बढ़िया लगा थे?
4: अच्छा लगा थे, बढ़िया लगा थे।
2: आज उद्घाटन हुई से?
4: जी।
2: आगे काम कंटिन्यू करना है ना?
4: जी करना है।
2: मेहनत तो जोर से लगी?
4: हाँ लगी ना।
2: चला बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामना।
4: जी सर।
2: आप नवा बूता शुरू करे है देखा?
4: जी सर।
2: है ना। और यहाँ हमारे कुछ स्व सहायता समूह के बहनी मन से मुलाकात हुई से, आवाज जानी बहनी मन से उखर समूह के नाम और काका बूता करते तौन। बहनी राम राम।
5: राम राम दीदी।
2: आप अपन नाम और परिचय बताओ।
5: हाँ, मोर नाम है यशोदा टोप्पो और ग्राम पंचायत करही कछार। हमर समूह के नाम है श्री सिद्ध बाबा महिला स्व सहायता समूह, उमा के मैं सचिव हूँ। और हमार समूह मतलब हमन हैंड वाश है, फिनाइल है, ए आजीविका के ऊपर अभी हमन काम करत हन। हमार समूह के साथ साथ हमन एक ठो कॉपरेटिव भी बनाए हन जेखर नाम है संगम महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित करही कछार बेलगहना।
2: अरे वाह, तो सहकारी समिति में का काम
5: उमा है? अचार पापड़ और बड़ी है, कोदो कुटकी मिलेट्स के ऊपर भी।
2: अच्छा, मिलेट के ऊपर भी काम करा था।
5: हाँ।
2: तो के जन हा बहनी समूह में?
5: हमन 12 जन हन दीदी, हमार जम्मो साथी मन उपस्थित है,
2: सब कोई आए है।
5: हाँ।
2: तब बढ़िया बढ़िया आपके समूह चला थे बहनी?
5: हाँ दीदी, बहुत अच्छा चला थे। और शासन ले जैसे आजीविका पर हमन लोन भी ले हन, 2 से 3 बार ले चुके हन, ओकर बदौलत मतलब हमार काम आगे बढ़ाते।
2: और मार्केटिंग पर का करता?
5: मार्केटिंग पर हमन स्वयं से मतलब जैसे जहाँ स्टॉल लगाना रहते वहाँ स्टॉल लगाए जाथन और मोबाइल के द्वारा मतलब अपन प्रचार प्रसार करत रहथन। और जैसे संगी मन संग आए रहथन समूह के बीच में, तो वहाँ भी अपन बात ला रखथन दीदी।
2: अच्छा, आपके बीच में आपके अध्यक्ष हाँ है?
5: हाँ,

0: व्यक्ति थे।
1: दीदी राम राम।
2: राम राम।
1: आप अपन नाम और परिचय बताओ।
2: मोर नाम चंपा है और करी का छार बेलगहना ले आए हैं।
1: आपके समूह बढ़िया चला थे?
2: हाँ, हमारे समूह बढ़िया चला थे। हमारे समूह के नाम श्री सिद्ध बाबा है।
1: जैसे कि बहनी बताई ने सहकारिता भी बनाया है।
2: हाँ।
1: तो बहनी सहकारिता से का का काम होते और का का लाभ मिलत?
2: मेहनत भी करत हन तो हमार रोजी भी निकल जाते।
1: आज के समय में बहनी मन आगे बढ़ के काम करते घर ले निकल के बाहर, तो एक बार आप बहनी मतलब का प्रेरित करना चाहत?
2: हाँ, हमारे बढ़िया लगा थे और हम आगे भी बढ़ना चाहत हन। और हमारे साथ में ना समूह के दीदी मतलब जोड़ना भी चाहत हन और आगे बढ़ाना चाहत।
1: आज यहाँ उपस्थित हो है तो का उद्देश्य से आए है?
2: यहाँ मशीन लगा थे।
1: चलो देखिए।
2: हाँ, समूह वाले पूरा हमला बुलाई इन समूह वाले यहाँ उद्घाटन हो ही मशीन लगा थे दाल वाले ऐसे करके हम सब महिला मनाए हम।
1: देख के बढ़िया, आपो मन प्रेरणा ले हो।
2: हाँ।
1: है ना?
2: हाँ।
1: दीदी राम राम।
0: राम राम।
1: आप अपन परिचय देवा।
0: मोर नाम गणेशिया उराव है, करी कछार डोंगरी पारा के आऊ। महू समूह में जुड़ के काम करत हूँ।
1: दीदी समूह में जुड़े है तो का अच्छा लगे से और का परेशानी आई?
0: परेशानी कठिनाई तो बहुत सारा आई से उमला झेलत झेलत यहाँ तक के अभी पहुँचे हैं हम। हाँ। जैसे हमला घर ले निकलना मुश्किल रहे। हाँ, पति मन के टोका टाही रहा है तेन में। अब देख के अब हमार काम ला देख के उपन है जावा आज वहाँ ला मीटिंग है इसे के खुद से भेजते उमन है।
1: अरे वाह, तो बढ़िया लगा थे।
0: हाँ, हम लाए बहुत अच्छा लगा थे।
1: दो पैसा मिलते तो अच्छे लगते।
0: हाँ, अच्छा लगते।
1: अब काम बढ़िया चला थे?
0: हाँ, चला थे।
1: अब समूह ला बढ़ाए बर का करना चाहा था?
0: अब बढ़ाए बर अब सरकार के मदद लेना चाहा था ना, कुछ मदद चाहिए था।
1: विभागीय मदद मिलते?
0: हाँ, मिलते।
1: और जानकारी मिलत रहते?
0: जानकारी मिलत रहते।
1: रेडियो सुनता दीदी?
0: हाँ, सुनथन।
1: तो रेडियो में आप मतलब हर चीज के जानकारी मिलत रही? हमन बेरा बखत में देत रही थे, सुनता हूँ ना।
0: हाँ हाँ, सुनथन।
1: आवा सराय पाली से ही एक जन बहनी से भेंट करी, वो बताही यहाँ का का काम होते तेकर बारे में। दीदी राम राम।
3: राम राम।
1: आप अपन परिचय बताओ।
3: मोर नाम राम कुंवर पोरते है। मैं सराय पाली के हूँ।
1: हाँ?
3: मैं आश्रम स्व सहायता समूह के सचिव हूँ। समूह बनाए हैं, बचत खाता कर करके जमा करत हन।
1: तो यहाँ जब आए है दे दाल मशीन लगा थे तो ये सबसे प्रेरणा ले हो ना?
3: हाँ।
1: एक बार आज?
3: हाँ।
1: चला चला बढ़िया बात है। अब आपके समूह से और कौन कौन आए दीदी? बहनी राम राम, जय जोहार।
4: जय जोहार।
1: बतावा अपन परिचय।
4: मोर नाम रुकमणी पोरते है।
1: कहाँ से हवा?
4: सरायपाली।
1: अच्छा, कौन सा समूह से जुड़े हवा?
4: आश्रम स्वसहायता
1: थोते। बहनी राम राम।
5: राम राम, जय जोहार।
1: आप अपन परिचय बतावा।
5: मेरा नाम प्रभा ध्रुव है, मैं ग्राम बैगा पारा से हूँ। और हमारे यहाँ पैकेजिंग का काम होता है और सफाई भी का काम होता है।
1: आप अपन समूह के नाम
5: बताओ। सरस्वती महिला स्वसहायता समूह।
1: के जन है समूह में?
5: हम 12 जन मतलब पहले रहे हैं, पर 2 जन निकल गए ना तो 10 जन हैं। 10 जन ही काम करते हैं।
1: का चीज की बूता करते हैं समूह से?
5: हम कोदो कुटकी सफाई वगैरह और पैकिंग भी करते हैं, हल्दी मिर्ची और फिरवा सरसों वगैरह
1: पैकेजिंग के काम।
5: हाँ, पैकेजिंग के काम भी करते हैं, सफाई के काम भी होते।
1: अच्छा चला थे?
5: हाँ, बहुत अच्छा चला थे। अभी
1: समूह ला आगे बढ़ाए बर या नया काम करे बर या नया कुछ सीखे बर का का करा था?
5: हम अभी तो हर महीना मीटिंग होते तो भैया मन समझाते कि आगे पढ़े बर का करना चाहिए ऐसे करके। तो हर मीटिंग अटेंड करथन तो बहुत अच्छा लगते है हमन ला, और आगे और अच्छा से बढ़ी न ऐसे सोचे वह
1: समूह से।
5: जी
1: बिल्कुल, बहुत अच्छा बात है। पढ़े लिखे सब कोई शिक्षित हवे?
5: कुछ दीदी लोग नहीं पढ़े हैं, कुछ लोग पढ़े हैं।
1: तो जो पढ़े थे मैंने मतलब पढ़ा था ना।
5: हाँ, मतलब वो लोग लिख लेते हैं, स्टॉल वगैरह भी जाते हैं। तो
1: आज यहाँ पे आए हो है ना, तो दाल दराई की मशीन लगे है, एला देख के का सीखना चाहता था, का प्रेरणा लेना चाहता?
5: यहाँ भी के दीदी मतलब कुछ रोजगार मिली, और मैं तो आज पहली बार ये मशीन देखे हूँ। और बैगापारा में भी पैकेजिंग वाला मशीन है ना, वो भी पहले बार देखे रहे हूँ। सोचे नहीं रहे के वाला मशीन हमन ला देखे मिली या फिर आप वाला काम कर पाबो कि नहीं।
1: आज करा था?
5: हाँ, आज करा था। बहुत अच्छा लगा थे, आगे सब दीदी मन बढ़ा थे। बहुत बहुत धन्यवाद है भैया मतलब भी जो हम मतलब समूह में जोड़े है वह।
1: आज अपन जुड़ा हुआ बढ़िया बूता कर, घर से बाहर निकल के काम।
5: हाँ, घर पहले हम सिर्फ अपन मायके और ससुराल तक ही आना जाना करते रहे, अकेला जाए भी नहीं सकत रहे अब दो जन या फिर एक जन भी बुलाते स्टॉल में ना तो भी जाए बर तैयार रहते काम करता ना और घर के भी मन मतलब विश्वास हो गए है कि जब हम बहुत अच्छा काम करते हैं कोई गलत काम न है तो परिवार भी सपोर्ट करते हैं मतलब
1: हमारे बीच में एक जन आओ बहनी बैठे हैं आवा उखर से उखर परिचय जानी और जानी के समूह में जुड़ के कैसे बूता करते हैं बहनी राम राम
6: राम राम
1: आप अपन परिचय देवा
6: मोर नाम प्रेम कुमारी श्रीवास है मैं ग्राम बैगापारा का निवासी हूँ।

0: के नाम का है,
1: महालक्ष्मी।
0: समूह से जुड़ के बुता करत हो और चुक चुक में जो तैयार होके आज यहाँ आए हो, तो कैसे लगा थे? बढ़िया लगा थे
1: काहे के हमारे जो काम करा था वहाँ के घाटा ने हुआ थे तो आना जरूरी है। वह
0: काम करा था तो अच्छा लगा।
1: हाँ, बहुत अच्छा लगा थे। अब ऐसे ही काम आखिर हम आप करबो, काहे अभी हमन जो काम करा था हमारे लड़का मन के भविष्य में काम देगी। काहे के हमारे बहू बेटी आई ओमन आगे चल के सब देखी तो समझी के हाँ कि हमारे सास मने सब चीज करत रही से तो हम तो कर सकत हन।
0: ये सब से जुड़ के आप काम बुता करा था, घर से बाहर निकले है तो अच्छा लगा थे?
1: हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि पहले तो निकलते नहीं थे क्योंकि घर तक ही सीमित, ना सास ससुर कोई भी बाहर निकलने नहीं देते थे। लेकिन अब बहुत खुशी हो रहा है कि वही लोग निकलने के लिए बोल रहे हैं कि तुम लोग जाओ, पढ़े लिखे हो तो कब काम देगा।
0: और जो बहनी मन समूह से जुड़ना चाहते हैं या कुछ काम करना चाहते वो मतलब आपका संदेश देना चाहते?
1: मैं तो यही कहूँ दीदी कि तुम लोग भी जुड़ो और काम करो।
0: आजकल ठल्हा रहना नहीं है,
1: हाँ,
0: है ना?
1: काम करो,
0: समय के सदुपयोग करो।
1: हाँ, दीदी के मन काम करही तो आगे बढ़ी भी मन है, काहे के मन अपन बच्चा भी लाए समझा सकत है कि एक चीज करना है तो तुम लोग बढ़ोगे।
0: बहुत अच्छा बात है बहनी। अब हमारे बीच माओ बहनी मन है और जा बहनी। राम राम।
2: राम राम, जय जोहार।
0: आप अपन परिचय देवो।
2: मैं सराई पाली के हूँ, मोर नाम गंगा मरावी है, मोर समूह के नाम महामाया सम सहायता समूह है। हम 12 सदस्य हन, 12 सदस्य मिल के सब सुगर समूह में काम करत हन। हम पहले जुड़े हन तो 10-10 रुपया लेके जुड़े हैं, लाख लाख बार इसने सियान मन बोलिन के लाख के तुमन समूह बना के ला के काम करा तो हम काम करें। लाख में तो कुछ नहीं मिली लेकिन हाँ हमारे सबे 12 रहे तो 15 जन रहे, 15 जन घट के 12 जन हन। 12 जन होके कहते नहीं चला हम खेत खारबो, सबे संगी हम मिलजुल के खेत बोह। खेत ला हम बोए पहली साल हम ज्यादा नहीं 33 कट्टी धान हम शुरू बोहन तो यही कोठार में हम बोए रहे ना मीसे कूटे हन। तो वो धान ला बेच के हम बेचे तो 50,000 के धान हुई। वो धान ला बेच के फिर अगले साल फिर खेती किसानी करे ऐसे ऐसे करके हम अपन बाल बच्चा बस दू पैसा समूह मन जो ना वैसे हम।
0: बहुत बहुत धन्यवाद बहनी। दीदी राम राम, जय जोहार।
3: राम राम, जय जोहार।
0: आप अपन परिचय देवा।
3: मैं सविता मरावी सरायपाली के पंच हूँ।
0: देखा आप पंच के पद में हवा सरायपाली के है ना, पंच के पद में रही के आप लोग कैसे लगा था? एक महिला जो घर में घर गृहस्थी संभालत रही से आज बाहर में पंच के पद में हवा तो आप लोग कैसे महसूस हुआ थे बतावा, अपन अनुभव बतावा हमारे बहनी मन ला।
3: हाँ, वो अच्छा लगा थे।
0: अच्छा लगा थे।
3: हाँ।
0: और का काम करता पंच में?
3: अभी तो ये गोदी माटी चालू हुई सेवा त्रि पंचायत में। हाँ, अब जाते
0: बहनी मन भर ही आप काम करत हो ना।
3: हाँ, अब ओतीली योजना ही ना तो कुछ भी बकरी पालन गाय पिहड़ी विहड़ी कुछ भी या साबुन निरमा अगरबत्ती ये सब के बनाए की योजना ही ना तो गांव के महिला मतलब अपन पंचायत के मतलब सकेल के मतलब काम बताबो और जुड़ मिल के करबो।
0: बहुत अच्छा बहनी, आप मन अच्छा काम करत हो। तो दीदी राम राम, जय जोहार।
4: राम राम, जय जोहार। दीदी
0: आप अपन परिचय बतावा।
4: मोर नाम ऋषि ध्रुव, मोर गाँव के नाम बेड़ा पाट, ग्राम पंचायत लिटिया, पोस्ट ऑफिस करगी खुर्द, तहसील कोटा, जिला बिलासपुर, राज्य छत्तीसगढ़। और हम समूह में काम करते हैं लड्डू बनाए के, और समूह के नाम है जय बुढ़ादेव। हम लड्डू बना के काम करते हैं छोटे छोटे फुलवारी वाले बच्चा मन के। और हम सबो दीदी मिल के अपन बढ़िया काम करत हन। और प्लस हम मध्यान्ह भोजन उठाए हैं, अपन गांव के स्कूल में भी काम करत हन। हमला बहुत अच्छा लगा थे दीदी।
0: तो लड्डू काका के लड्डू बनाते
4: चना मुर्रा प्रोटीन के। हाँ,
0: है ना?
4: हाँ, फुलवारी वाले बच्चा मन भर।
0: और का काम करना चाहा था अपन समूह के?
4: बहुत काम करना चाह कर बोनी मैं बना के प्लानिंग चलत है अभी। और पापड़ भी बनाने कहाथन, मतलब बहुत हमला खुशी होते मजूर के और काम करे के।
0: तो बहनी राम राम, जय जोहार। और अपन परिचय भी बतावा।
5: राम राम, जय बिहान दीदी मल्ला। मोर नाम विजया बाई परकाम है। मोर गांव के नाम ग्राम बेड़ा पाट, मोर समूह के नाम जय बुढ़ा दे। मैं माँ के अध्यक्ष हूँ। हमन पोठी लड्डू बनाता ने चना मुर्रा के दे दे।
0: और का काम करता?
5: और प्रशिक्षण दी से दीदी हमारे आरी से गन्यारी संस्था ले पापड़ बना के। तो आटा आटा लकट डरे हमन बना डरे हन फिर बनाबो है दे पापड़।
0: का के आटा के पापड़?
5: रागी आटा के।
0: हाँ, रागी के आटा के पापड़। तो ये तो बहुत पौष्टिक वाला चीज है। देखा एक ठनाओ इशारा आ गए, जनाओ बहनी बोलना चाहते हैं और अपन अनुभव भी हम संग शेयर करना चाहते हैं। बहनी राम राम, जय जोहार।
6: राम राम, जय जोहार।
0: आप अपन परिचय दे।
6: मोर नाम राजकुमारी ध्रुवे है, मैं ग्राम बैगापारा से हूँ।
0: कौन सा समूह से जुड़ेगा?
6: मोर समूह के नाम है श्री वैष्णो देवी सहायता समूह, और हम संगम महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति से भी जुड़े हैं।
0: तो का काम करता सहकारी समिति? खेती में काबू तक
6: उमा हमन अचार बनाथन कोदो के कुटाई करते कुछ दीदी मन जहाँ करी गछार में यूनिट लगे है कोदो कुटाई वाला और यहाँ कोरी पारा में हल्दी मिर्ची के लगे है और वहाँ बैगा पारा में पैकिंग वाला यूनिट लगे है जहाँ हमारे दीदी मन पैकिंग के काम करते।
0: अरे वाह, तो सब तरफ से काम चलाते।
6: हाँ, सब तरफ से काम।
0: दीदी कै जन है अपन समूह में आपके?
6: हमन तो समूह में 10 जन हन दीदी, पर जैसे बताए हो ना संगम महिला बहुदेशी सहकारी समिति उमा हमन 56 सदस्य हन।
0: अच्छा, तो हम ये जानना चाहबो कि दीदी हम ये भी जानना चाहबो बुता काम ला शुरू करो तो का परेशानी आई और अभी का खुशी आते आनंद भी है मा, तो दोनों पहलू ला हमर बहनी मन ला बतावा सुनाई हमन।
6: पहले काम ला चालू करें दीदी तो गाँव में जानता है कि घर से निकलना भी थोड़ा रूढ़ीवादी कहे जाए तो अभी भी कम नहीं हुए हुए, तो पहली घर से जान तो घर वाले मन ला एक दिन पहले बताना पड़ा है कि आज हमन यहाँ जाबो काम में या फिर मीटिंग है था जाबो इसे करके। पर अभी हमन ला मतलब बहुत सारा बदलाव हो गए और अच्छा भी लगते है, जैसे हमन कहीं भी जाते हैं तो घर वाले से भी दबाव नहीं है और बढ़िया खुल के मतलब बाहर भी जा सकते हैं बात करे के अनुभव हो थे, वहाँ जाके हमन ला बहुत अच्छा लगते है जैसे कि हमन बचपन में आ गए हैं चार जन साथी के साथ मिले बैठे मिलते
0: अलग अलग काम
6: करे मिलते अलग अलग हर प्रकार से बात सुने मिलते ये सब है।
0: बढ़िया बात है बहनी।
6: अगर समूह में जुड़ा था तो कई प्रकार के फायदा है, जैसे समूह के माध्यम से बचत करा था तो हम बाहरी ब्याज में पैसा जैसे 5% 10% से लेहे से बांस जाते हैं और साथ ही साथ हम लोग वैसा भी मिल जाते, तो एक से जुड़े में बहुत फायदा है दीदी मल्ला, जो नहीं जुड़े वो मन जुड़ सकते हैं, समय के भी मतलब बचत हो
0: है ना? तो समय के सदुपयोग करना है तो समूह से जुड़ करके बढ़िया बढ़िया बुता
6: करना है।
0: चलो भाई बहुत अच्छा संदेश है, आज हमारे बीच में सब कोई दिन है, हमारे बीच में एक बहनी भी हमारे जो मितानिन दीदी के भी बूता करते हैं उखर से भी बातचीत करी मितानिन दीदी बन के वाला कैसे अनुभव हुआ थे, तो बहनी राम राम।
7: राम राम दीदी,
0: अपन परिचय का बूता करते है बतावा।
7: मोर नाम यशोदा टोप्पो है और मैं ग्राम करही का छाया के मैं मितानिन में भी काम करता हूँ अपन समूह में भी काम करता हूँ।
0: तो मितानिन दीदी बन के कैसे लगते?
7: मितानिन दीदी बन के जैसे हमला गर्भवती के सेवा करना है, बच्चा के सेवा करना है, कखरो जान जोखिम में है ओला बचाता तो हम लोग बहुत अच्छा तसल्ली मिलते दीदी कि कखरो जीवन बच तो गए
0: है ना, और लोग बात मानते हैं
7: कभी तो मानते हैं कभी अपन झाड़ फूक में भी चल देते हैं, फिर हमार से नहीं माना है तो गांव में जो जेकर बात मानते हैं ओला लेके साथ में जाता है फिर मना के मल्ला हॉस्पिटल तक ले जाता।
0: चला चला बढ़िया बात है, ठीक बहुत बहुत धन्यवाद।
8: ग्राम सरायपाली में आयोजित कार्यक्रम के सफल संचालन करत अनिल बामने जी, आवाज अनिल उखर विचार।
9: नमस्कार, मैं अनिल बामने। आज हमने ग्राम सरायपाली में दाल मशीन स्थापित की है जो कि कृष्णा महिला स्वसहायता समूह को सौंप रहे हैं। जनस्वास्थ्य सहयोग संस्था द्वारा महिलाओं को मशीन चलाने के लिए हमने पूर्व में प्रशिक्षण दिया है जिसमें अलग अलग प्रकार की दालों को कैसे निकालना है, प्रोसेस कैसे करना है, जिसमें छिलका निकालना, ग्रेडिंग करना। इस मशीन में सभी प्रकार की दालें प्रोसेस की जा सकती है, जैसे तिवरा है, बटरी है, चना है, अरहर है, कुल्थी है, और एक उच्च गुणवत्ता के साथ प्रोसेस होती है। न्यूट्रिशन को किसी भी तरीके का या गुणवत्ता को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होगा। इस मशीन के स्थापित होने से निश्चित रूप से किसानों को, आसपास के किसानों को, जो मशीन सरायपाली में लगी है तो आसपास के किसान यहाँ अपना दलहन लाकर बेच सकते हैं, तो जो बिचौलियों से जो शोषण होता था उसमें कमी आएगी और महिला समूह को रोजगार मिलेगा और आसपास की महिलाएं फिर यहाँ से दाल खरीद के अपनी उसको पैकेज करके पैकेट बनाकर बेच सकते हैं और साथ ही अपने खाने में शामिल करेंगे, वो तो सबसे बड़ा उद्देश्य है ही हमारा। इसको जनस्वास्थ्य सहयोग संस्था के माध्यम से ये मशीन कृष्णा महिला सोसायटी समूह को आज हम हैंडओवर कर रहे हैं, निश्चित रूप से इसका हेल्थ बेनिफिट के साथ साथ रोजगार और स्वरोजगार भी मिलेगा। धन्यवाद।
8: अभी हम जानत रहे कार्यक्रम के सफल संचालन करत अनिल बामने जी के विचार। अब संगवारी हुआ सरायपाली में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर पी डी हतेश्वर जी, उप संचालक कृषि बिलासपुर। एमन भी अपन विचार वहाँ रखें जिला हम रेडियो के माध्यम ले आज आप मन तक पहुँचावा थन। आवाज सुनिन डॉक्टर पी डी हतेश्वर जी के विचार।
10: जय जवान जय किसान। तो पहले तो मैं जन स्वास्थ्य केंद्र गनियारी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं, जिसके द्वारा आज ये जो कार्यक्रम रखा गया है आपके विकासखंड कोटा के सरायपाली ग्राम में, ये बहुत सराहनीय है। आज इस सरायपाली के पावन भूमि में हम लोग बैठे हैं और गरिमा ग्रामीण आत्मनिर्भर रोजगारी मंच दाल प्रसंस्करण इकाई दाल दराई वाला केंद्र स्थापित हो रहा है, मशीन स्थापित होने जा रहा है जिसका अनावरण है। बहुत खुशी की बात है कि आज जो दाल प्रसंस्करण इकाई यूनिट का अनावरण होने जा रहा है और हमारे जन स्वास्थ्य केंद्र आजीविका मिशन की ओर से जो आप लोगों ने जो एक कदम उठाया है दलहन के

0: खेती करने का। ये बहुत सी सराहनीय है, बहुत बड़ी कार्य है ये, कारण कि हमारे यहाँ हमारे देश में जितना हमें खपत होती है दाल की, तिलहन की भी, तो हमारे अधिकांश 56 से 60% तिलहन की आयात होता है बाहर विदेश से, 10 से 15% दलहन, जबकि हमारा बहुत बड़ा दलहन उत्पादन हमारा भारत है, 10 से 15% मात्रा में विदेश से आयात करते हैं। और आप लोगों के सराहनीय कदम है जो आप लोग आत्मनिर्भर दाल की ओर से बनने के लिए दलहन पैदा करके और जो अग्रसर हो रहे हैं, ये बहुत सराहनीय कदम है। इसको आप खुद अपने उपयोग करेंगे, साथ साथ में अगल बगल के हमारे स्वास्थ्य केंद्र हैं, स्कूल हैं, आंगनबाड़ी हैं, हॉस्टल हैं, इनको आपके माध्यम से इनमें आपका दलहन तिलहन के उत्पाद पहुँचे। और साथ साथ विशेष एक चीज ये है कि इसमें प्राकृतिक है, नेचुरल है, इसमें किसी प्रकार के केमिकल, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, जो कीटनाशक दवा होते हैं, इसको उपयोग नहीं कर रहे हैं आप लोग। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, ये खुद भी खाइए और दूसरों को भी खिलाइए, जिससे स्वास्थ्य पर भी अच्छा असर पड़ेगा।
1: संगवारी हो, अभी हम सुनत रहे हैं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर पीडी हतेश्वर जिला जौन ही उप संचालक कृषि बिलासपुर। एक संग आज के कार्यक्रम के समापन हुआ थे। आज ग्राम गनियारी के जन स्वास्थ्य केंद्र और आजीविका मिशन संगम सहकारी समिति के सहयोग से गरिमा रोजगार मंच के द्वारा कृष्णा स्व सहायता समूह सराई पाली के बहनी मन दार दरे की मशीन लगाई। एक संग रेडियो रिपोर्ट होते समाप्त। रेडियो रिपोर्ट बनाए मा रिकॉर्डिंग और संपादन चित्रलेखा तिवारी के रहीस और कार्यक्रम के प्रस्तुति डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन के रहीस। संगी हुआ यही गोट बात के संग आज के कार्यक्रम में देवा विदा। राम राम, जय जोहार।
2: संगवारी हो, अभी हम सूरत रहन स्थल कार्यक्रम में आधारित कार्यक्रम किसानवाणी गांव में और ग्राम सराईपाली विकासखंड कोटा में महिला स्व सहायता समूह द्वारा दाल प्रसंस्करण इकाई के उद्घाटन समारोह के रेडियो रिपोर्ट, संपादन चित्रलेखा तिवारी, संयोजन प्रस्तुति डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन। ये तो है किसानवाणी गांव में कार्यक्रम। अब आवाज सुनथन ये संदेशाला।
3: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
4: पुतला बोल रहे?
3: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
4: मतलब?
3: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहा,
4: पर हम तो सभी डाले हैं।
3: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
4: सच है?
3: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
4: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूँगा।
5: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।

0: आजादी के अमृत महोत्सव पर हम देश के किसानों को दे रहे हैं सुरक्षा की सौगात। प्रधानमंत्री फसल बीमा पॉलिसी अब आपके हाथ, और पॉलिसी को बीमित किसानों के द्वार तक पहुंचाने के लिए हमने फसल बीमा पॉलिसी वितरण कार्यक्रम का किया है शुभारंभ।
1: देश भर के किसानों ने करीब 21,000 करोड़ रुपए ही प्रीमियम के तौर पर दिए, लेकिन उन्हें मुआवजे के तौर पर 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मिले।
0: जब खराब मौसम की हो मार, PMFBY दे आर्थिक सुरक्षा बार बार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: किसान भाइयों,

0: आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
1: संगवारी हो एकर संगे संग आज के कार्यक्रम में विदा लेक बिदा हुआ थे अपन भाई राम सनेलो विदा। राम राम जय जोहार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए, पेश है सुगम संगीत। सुगम संगीत की आज किस महफिल में आप सभी का स्वागत। लीजिए, पेश है आज की महफिल का पहला नगमा, अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाज में।

सुगम संगीत की आज की इस महफिल में आप सभी का स्वागत। लीजिए, पेश है आज की महफिल का पहला नगमा अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाज में। बोल लिखे हैं अमीक हनीफी ने और आवाजें हैं इस गजल की अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की। लीजिए पेश है।

श्रोताओं, सुगम संगीत के आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाज़ों में गाए कुछ बेशकीमती तराने, गज़लें। लीजिए, पेश है एक और बेशकीमती मोती जो हम आपकी नज़र करते हैं अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की ही आवाज़ों में। इस गज़ल को लिखा है RS हरियाणवी रतन ने। लीजिए, सुनिए।

अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे इस प्यारे से गजल को, और इस अंतिम प्रस्तुति के साथ ही ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। श्रोताओं, हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से इस वक्त बोल रहे हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम रजनीगंधा।

श्रोताओं, भारतीय हिंदी सिनेमा जगत के फलक पर ऐसे बहुतेरे सितारे हुए हैं जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और तीव्र इच्छा शक्ति के बूते वो स्टारडम हासिल किया जिसका ख्वाब वो बचपन के दिनों से ही देखा करते रहे और उन्हें उनके ख्वाबों की ताबीर हासिल हुई। ऐसे ही सितारों में से एक हुए हैं हिंदी और पंजाबी फिल्मों के नामचीन अभिनेता राज बब्बर, जिन्होंने फिल्मों के साथ साथ राजनीति में भी अपनी पैठ मजबूत जमा रखी है। आइए सुनते हैं उनकी फिल्म का एक बेहद लोकप्रिय गीत और फिर करते हैं उनके विषय में कुछ और बातें तफसील से।

रजनीगंधा कार्यक्रम सुनने वाले आप सभी श्रोता साथियों को आपकी अपनी अंतरा का महकता हुआ सलाम।

श्रोताओं, इस गीत को सुनते ही और मेरी बातों को समझते हुए आप अब तक ये समझ ही चुके हैं कि आज हम कार्यक्रम में बात कर रहे हैं अभिनेता राज बब्बर के विषय में। जी हाँ, राज बब्बर का जन्म 23 जून यानी आज ही के दिन 1952 में टुंडला उत्तर प्रदेश में हुआ था। राज बब्बर के पिता हुए कुशल कुमार बब्बर और माता हुई शोभा बब्बर। राज बब्बर की माने तो उनका कहना ये है कि उन्होंने एक्टिंग का शौक बचपन के दिनों से ही अपने दिलो दिमाग में पाल रखा था और वे अक्सर मौका मिलते ही स्टेज शो भी किया करते थे। राज बब्बर ने 1975 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी NSD से एक्टिंग का कोर्स पूरा किया और दिल्ली के कई थिएटर ग्रुप से राज बब्बर जुड़कर लगातार थिएटर या यूं कहें रंगमंच के कार्यक्रमों में भाग लेते रहे। राज बब्बर ने 1977 में

आई फिल्म किस्सा कुर्सी का। जी हाँ, इसी फिल्म से बी टाउन यानी बॉलीवुड में एंट्री मारी, जिसमें उन्हें सराहना तो बहुत मिली, लेकिन इंसाफ का तराजू जैसी फिल्म की सफलता के बाद वो रातों रात स्टार बन गए। राजबब्बर की फिल्मों के गाने बेहद पसंद किए गए क्योंकि वे रोमांटिक और बेहद रोमांस से भरे हुए हुआ करते थे। हम अगर आज फेहरिस्त को याद करते चले तो अनगिनत ऐसे गीत हैं जो राज बब्बर पर फिल्माए गए हैं और हम सब उन गीतों को गाहे बगाहे याद किया करते हैं, गुनगुनाया करते हैं। आइए सुनते हैं एक और ऐसा गीत जो बेहद कम सुना गया लेकिन पसंद किया गया बहुत ज्यादा। वो गीत कौन सा है, लीजिए पेश है।

श्रोताओं, राज बब्बर ने 1980 के दशक में हिंदी सिनेमा के पर्दे पर नकारात्मक एवं गंभीर फिल्म के किरदारों को बहुत ही शिद्दत और सहजता के साथ निभाया और अपने देखने सुनने वालों को ये विश्वास भी दिला दिया कि केवल हीरो की भूमिका, मारपीट वाले सीन या पेड़ों के इर्द गिर्द रोमांटिक गीत गाकर ही सार्थक नहीं होते, बल्कि बुराई से अच्छाई की ओर पूरी तरह मुड़ जाने वाला व्यक्ति भी अपने समाज में नंबर वन की पोजीशन रखने वाला सुपर हीरो बन सकता है। आइए सुनते हैं जगजीत सिंह की आवाज में, यूं कहिए लरजती हुई आवाज में, राज बब्बर फिल्म, राज बब्बर के ऊपर फिल्माए गए इस रूहानी संगीत को।

श्रोताओं, राज बब्बर साहब ने मध्यम वर्गीय पितृसत्तात्मकता और बात बात पर शंका करने वाले किरदारों को भी अपनी अनूठी अदा से सिल्वर स्क्रीन पर जीवंत कर दिखाया है। जैसे याद कीजिए अगर तुम न होते फिल्म और एतबार जैसी फिल्मों को। बहरहाल राज बब्बर ने आगरा विश्व

विद्यालय से अपनी पूरी पढ़ाई की और आगे चलकर वे राजनीति में भी पहले समाजवादी पार्टी और फिर कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए। उन्होंने संसद सदस्य के रूप में भी कुछ बेहद महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। राजबब्बर ने बीआर चोपड़ा द्वारा निर्मित महाभारत धारावाहिक में भी भरत मुनि के किरदार को बेहद संजीदगी और शालीनता से निभाया है। इनकी प्रसिद्ध और लोकप्रिय फिल्मों की अगर बात की जाए तो आप तो ऐसे न थे, निकाह, प्रेम गीत, अंगार, आज की आवाज, वारिस, भीगी पलकें, याराना, संसार, ऐसी अनेकों फिल्में हैं जिन्हें दर्शकों और आलोचकों द्वारा विशेष तौर पर पसंद किया गया। और राज बब्बर साहब को फिल्मों में देखा गया बेहद रोमांटिक, एक अलग तरह के अंदाज वाले हीरो के किरदार में, जिन्होंने कभी तो रेखा के साथ, कभी अनीता राज के साथ, तो कभी सलमा आगा के साथ भी हीरो के किरदार को बखूबी निभाया। आइए सुनते हैं उनके दिल की आवाज़ क्या कहती है।

श्रोताओं, मिर्च मसाला जैसी फिल्मों में राज बब्बर के अभिनय को प्रशंसकों ने खूब सराहा। राज बब्बर रेखा और स्मिता पाटिल के साथ भी अनेक फिल्मों में नजर आए और उनकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा बढ़ गई कि एक दौर में स्मिता पाटिल के साथ इन्होंने विवाह रचाया। इनकी महबूब जोड़ी पर फिल्माए गए इस सदाबहार गीत को सुनते हैं और आगे की कहानी बयां करते हैं।

श्रोताओं, राज बब्बर के जन्मदिन पर हम उनके गीतों को सुनते हुए उनके फिल्मी सफ़र को याद कर रहे हैं। नौजवान अभिनेता को आपने एक अपने अलग अंदाज में सफ़ेद पोशाक के साथ इतना मान दिया, सम्मान दिया और हमेशा के लिए अपने दिल में बसाए रखा। लेकिन अब हम कार्यक्रम में बात करना चाहेंगे एक ऐसे सह कलाकार अभिनेता की जिन्होंने 1940 से लेकर 1970 तक के दौर में खूब नाम रोशन किया। ये गुरुदत्त साहब की टीम के अभिन्न अंग बने रहे और अपने समय में शानदार कुछ फिल्मों का रुख अपनी ओर इन्होंने मोड़े रखा। इन्हें आपने देखा और पसंद किया, चौदहवीं का चांद, प्यासा, प्यार की जीत, साहेब बीबी और गुलाम, दिल ने फिर याद किया, दाग, धर्म करम, प्रेम नगर, खानदान और वक्त जैसी फिल्मों में। जी हाँ, ये हुए हैं रहमान, जिनका जन्म दिन है आज, यानी 23 जून 1921 में इनका जन्म हुआ। रहमान मुख्यतः खलनायक की भूमिका में ही नजर आते रहे सिल्वर स्क्रीन पर। रहमान ने अपनी शालीन अदाकारी और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस और बेहद नफासत भरे अंदाज के लिए बहुत लोकप्रिय भी हुए। आइए सुनते हैं रहमान के जन्मदिन पर उन्हीं पर फिल्माए गए एक और बेशकीमती से गीत।

तो श्रोताओं, आज की रजनीगंधा हिंदी सिनेमा जगत के दो अलग अलग दौर के फनकारों पर केंद्रित रही। पहले राज बब्बर और फिर रहमान साहब के जन्मदिन पर हमने आज उनकी फिल्मों के जरिए उन्हें खूब याद किया। गीतों और बातों का ये कारवां यूं ही चलायमान रहे। हिंदी सिनेमा जिंदाबाद रहे, इसी दुआ के साथ दीजिए विदा आपकी अपनी अंतरा को। नमस्कार।

0: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रजनीगंधा। रात्रि के 8:45 हुए हैं। समाचार अब दिल्ली से रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में पत्रकार पी नारायणन, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और आर माधवन तथा गायिका अलका याग्निक शामिल। सरकार ने कहा, अल नीनो के कारण कमजोर मॉनसून के संभावित असर से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां की जा रही हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। जर्मनी में जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत का दबदबा जारी। आज भारत ने 2 रजत सहित 3 पदक जीते।

0: और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं का समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और शिष्टमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने 2026 में भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। बैठक के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संयुक्त रूप से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिक देवोभव की सोच के साथ अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2024 बैच के 183 प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए कार्य करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने युवा सिविल सेवकों से दृढ़ संकल्प, नवाचार और नागरिक केंद्रित शासन के साथ राष्ट्र निर्माण के लिए स्वयं को समर्पित करने का आग्रह किया। विकसित भारत 2047 की परिकल्पना का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले दशकों में हर नीति और प्रशासनिक निर्णय का उद्देश्य विकसित भारत का निर्माण होना चाहिए। श्री मोदी ने युवा अधिकारियों से राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान का निरंतर मूल्यांकन करने का भी आग्रह किया। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक हैं। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में तथा पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। एक रिपोर्ट।
2: इस साल सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। आज के समारोह में पद्म भूषण 7 लोगों को दिया गया, जिनमें पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूडी और प्रख्यात गायिका अलका याग्निक शामिल हैं। वहीं राजनेता शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 57 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए, जिनमें क्रिकेटर रोहित शर्मा, मशहूर अभिनेता आर माधवन और प्रसार भारती के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पत्ति शामिल हैं। वहीं प्रसिद्ध टेलीविजन और फिल्म अभिनेता सतीश शाह को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल रहे। सुपर्णा सेके के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
3: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है।

0: इन फसलों को कम पानी की आवश्यकता होती है और जो कठिन परिस्थितियों में भी अच्छी पैदावार दे सकती हैं। खान मंत्रालय ने 56 महत्वपूर्ण खनिज खंडों और 11 खनन अन्वेषण लाइसेंस खंडों की सफल नीलामी के साथ देश के खनिज मिशन को गति प्रदान की है। मंत्रालय ने नीलामी के सातवें चरण के अंतर्गत 10 महत्वपूर्ण खनिज खंडों की सफलतापूर्वक नीलामी की है। इससे अब तक नीलाम किए गए खंडों की कुल संख्या 56 हो गई है। कुल मिलाकर अब तक 88 खंडों की नीलामी हो चुकी है। इस चरण में ग्रेफाइट, दुर्लभ खनिज वेनेडियम, टाइटेनियम, ग्लोकोनाइट और रॉक फॉस्फेट जैसे खनिज शामिल थे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए ट्रकों और बसों से बदलने के लिए सरकार डेमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मंत्रालय ने कहा कि ये समझौते के अंतर्गत मूल उपकरण निर्माता योजना के अंतर्गत खरीदे गए ट्रकों और बसों के एक्स शोरूम मूल्य पर 8% की छूट प्रदान की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत दोनों मंत्रालयों में राष्ट्रीय परिवहन गतिशीलता और किफायती आवाजाही व्यवस्था की स्थापना की जाएगी। केंद्र का मुख्य उद्देश्य सड़क और परिवहन क्षेत्र में दीर्घकालिक योजना, निवेश और नीति निर्माण में सहयोग के लिए उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान करना होगा। विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि अमरीका और ईरान के बीच समझौता ज्ञापन होने के बाद से भारत आने वाले 11 जहाजों ने होर्मुज जलडमरू मध्य को पार किया है। इनमें भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल के 3 टैंकर के अलावा विदेशी ध्वज वाला एक LPG वाहक पोत, एक कच्चा तेल टैंकर और उर्वरक लदे 6 मालवाहक जहाज शामिल हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्दी होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर सकेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि कतर में हुए धमाके में मारे गए भारतीय नागरिकों के शवों को वापस लाने के लिए भारत सरकार कतर के साथ मिलकर काम कर रही है।
1: रास लफान परियोजना में जब वहाँ एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहाँ के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल ईरान, इथियोपिया, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की।
1: ब्रिक्स NSA की मीटिंग चल रही है, कल हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की चीन के विदेश मंत्री और वहाँ के पॉलिट ब्यूरो के जो चीफ हैं उनसे भी हमारे NSA की द्विपक्षीय वार्ता हुई और इसमें उन्होंने जो हमारे द्विपक्षीय संबंध हैं उसके बारे में जिक्र किया और ये सकारात्मक बातचीत थी।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने फिलिस्तीन के साथ अच्छे संबंधों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि हमने मानवीय आधार पर फिलिस्तीन को सहायता भी प्रदान की है।
1: सालों से फिलिस्तीन के साथ हमारे अच्छे संबंध रहे हैं और हम लोगों ने उनको विकास की साझेदारी के तहत कई एक सारे प्रोजेक्ट्स मुहैया कराया है। ये प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने द्विपक्षीय तरीके से और साथ ही साथ UNRWA के माध्यम से भी मुहैया कराया है और मानवीय आधार पर उनको सहायता भी प्रदान की है और आगे भी ये कार्य हमारा चलता रहेगा।
0: भारत संयुक्त अरब अमीरात रक्षा साझेदारी पर श्री जायसवाल ने कहा कि हाल के कुछ वर्षों में संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत के रिश्तों में काफी सुधार हुआ है और रक्षा साझेदारी की इसमें प्रमुख भूमिका है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सेसेग बटमुख और उद्योग तथा खनन मंत्री गोंगोर दमदनियाम के साथ मंगोल तेल शोधन परियोजना के निर्माण स्थल का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और मंगोलिया की मैत्री परियोजना में निरंतर प्रगति हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के नेतृत्व वाले शिष्टमंडल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इस दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के

0: लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी 2026 के परिणाम आज घोषित कर दिए। उम्मीदवार सीयूईटी के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस वर्ष प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ अशोक कुमार लाहिड़ी ने कहा है कि पिछली तिमाही में भारत का कुल व्यापार 5.4% बढ़ा है। आज नई दिल्ली में ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट का नवीनतम संस्करण जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। श्री लाहिड़ी ने कहा कि पिछली तिमाही में भारत का निर्यात 1.84 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया और आयात में 6.5% की वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि भारत को सिर्फ पेट्रोल पर निर्भर न होकर दूसरे विकल्पों की ओर बढ़ना चाहिए।
1: डाइवर्सिफिकेशन मतलब सिर्फ पेट्रोलियम में निर्भर होना नहीं चाहिए, तो इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी, बायोगैस, विंड, सोलर, न्यूक्लियर वो करना चाहिए। और दूसरी चीज है वी शुड एक्सप्लोर मोर सो दैट वी कैन हैव मोर डोमेस्टिक पेट्रोलियम। थर्ड इज वी शुड डाइवर्सिफाई आवर सोर्सेज। एक जगह कुछ गड़बड़ हो गया तो हमें और कहीं से ला पाएंगे।
0: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तेज वर्षा, आंधी और तेज हवाएं चली, जिससे तापमान में गिरावट आई। अगले 2 से 3 दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में कल तक तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। जर्मनी के सोहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 रजत और 1 कांस्य पदक सहित कुल 3 पदक अपने नाम किए। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर स्पर्धा में शिवा नरवाल ने रजत और युग प्रताप सिंह राठौर ने कांस्य पदक जीता। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर टीम स्पर्धा में शिवा नरवाल, संदीप बिश्नोई और चिराग शर्मा की तिकड़ी ने रजत पदक जीता। अब भारत के कुल 15 पदक हो गए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे ग्रुप के एक मैच में अमेरिका के ह्यूस्टन में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। ग्रुप एल में रात 1:30 बजे इंग्लैंड का सामना घाना से होगा। वहीं सुबह 4:30 बजे क्रोएशिया का सामना पनामा से होगा। लंदन में FIH हॉकी प्रो लीग में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 के गोल से हरा दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण के 2 समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में पत्रकार पी नारायणन, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और आर माधवन तथा गायिका अलका याग्निक शामिल। सरकार ने कहा, अल नीनो के कारण कमजोर मॉनसून के संभावित असर से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां की जा रही हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, this is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says BRICS has vital role in deepening security cooperation and addressing challenges like terrorism and cyber security. President Draupadi Murmu presents Padma Awards at 2nd Civil Investiture Ceremony. Journalist P. Narayanan, tennis legend Vijay Amrit Raj, actors Mammootty and R. Madhavan and singer Alka Yagnik among renowned recipients. Government says it is making advanced preparations to help farmers deal with the possible impact of weak monsoon caused by El Nino. IMD issues orange alert for thunder squall in Delhi, Haryana, Chandigarh and West Uttar Pradesh till tomorrow. Indian men's hockey team beat arch rivals Pakistan 4-3 in opening match of FIH Pro League in London. And in FIFA World Cup, Portugal to take on Uzbekistan in Houston, US.

0: जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना, उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है?
3: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
3: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
4: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
3: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
4: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
3: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: बीच में क्यों रोक दी?
1: एक दूजे के लिए फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं अनुराधा और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाजों में। आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।
2: वो मैं तुमको टीच करता हूँ।
0: तुम और हिंदी कविता?
2: तुम समझता मैं हिंदी कविता नहीं जानता? मेरे जीवन साथी प्यार किए जा, जवानी दीवानी खूबसूरत जिद्दी पड़ोसन, सत्यम शिवम सुंदरम बिन्हर। वो इंग्लिश।

0: किशोर।
1: भूल गए
2: जानी मेरा नाम।
1: अच्छा?
2: चोरी मेरा काम, जानी मेरा नाम और चोरी मेरा काम, राम और श्याम
1: बंडल बाल
2: लड़के मिलन गीत गाता चल।
1: बेशरम
2: चार का मौसम
1: बेशरम।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: उंगलों की तरह बजता ही रहा।
2: जुदन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, तो मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे अभिनेता की जिनका जन्म संयुक्त प्रांत टुंडला आगरा में पंजाबी परिवार में 23 जून 1952 को हुआ। अपनी आरंभिक शिक्षा आपने आगरा से की, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के आप पूर्व छात्र हैं। इतनी जानकारियों के बाद निश्चय ही एक कलाकार का चेहरा आपके जेहन में कौंध गया होगा, और ऐसा ना भी हुआ हो तो ये गीत इस अभिनेता की पहचान करा ही देगा।

आज के फनकार में आज का सफर हम तय करेंगे एक सशक्त अभिनेता राजनीतिज्ञ राज बब्बर की बातों के साथ, उनकी फिल्मों के गीतों के साथ।

अभिनय की बारीकियां और उसके विस्तार को आपने एनएसडी से जाना। अपने प्रशिक्षण के बाद आप मुंबई चले आए। यहां आने के बाद समय के कुछ अंतराल पर आपको मिली फिल्म आप तो ऐसे न थे। ये 1980 की फिल्म थी जिसमें राज बब्बर ने विजय नाम के किरदार को निभाया था। इनके साथ रंजीता, दीपक पराशर, मदन पुरी और ओम शिव पुरी थे। मोहन कुमार द्वारा निर्मित, अम्बरीश संगल द्वारा निर्देशित ये फिल्म अपने एक गाने की वजह से आज तक याद की जाती है, जिसे 3 सिंगर्स ने आवाज दी थी और संगीत था उषा खन्ना का। ये गाना पर्दे पर रंजीता और राज बब्बर पर फिल्माया गया है।

सकते हैं कि राज बब्बर की विशेष पहचान फिल्म इंसाफ का तराजू से हुई। इस फिल्म में जीनत अमान और पद्मिनी कोल्हापुरे ने भी अभिनय किया। इस फिल्म में आपके अभिनय से प्रभावित होकर बी.आर. चोपड़ा बैनर की फिल्मों के आप सक्रिय सदस्य बन गए। निकाह में दीपक पाराशर और सलमा आगा के साथ आप थे, साथ ही आज की आवाज में स्मिता पाटिल के साथ आपने अभिनय किया।

सामाजिक घरेलू ड्रामा फिल्म थी 100 दिन सास के, जिसमें मुख्य कलाकार थे रीना रॉय, अशोक कुमार, राज बब्बर, बेला बोस और ललिता पवार। वैसे तो ये फिल्म पूरी तरह किरदार दुर्गा पर आधारित थी, जो समाज में बहुओं के लिए बनाए गए नियमों पर प्रश्न उठाती है। इस किरदार को रीना रॉय ने निभाया था। ये एक सफल फिल्म थी और इस फिल्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे राज बब्बर।

फिल्मों में रोल पाना इस थिएटर आर्टिस्ट का ध्येय था, वहीं फिल्मों के लिए किया जाने वाला स्ट्रगल एक सत्य, इंसाफ का तराजू। इसकी सफलता राज बब्बर के तमाम संघर्षों का एक सुखद परिणाम लेकर आई थी। इस फिल्म से जुड़ा हुआ एक किस्सा है। एक इंटरव्यू में आपने शेयर करते हुए बताया था कि वो अपनी माँ के साथ जब फिल्म देख कर निकले तो माँ रो रही थी। राज बब्बर ने सोचा शायद मेरे इतने सालों के संघर्ष के बाद मिली सफलता पर इनके खुशी के आंसू है, पर जब असली बात पता चली तो आपको सुखद आश्चर्य हुआ। माँ ने कहा, बेटा हम दो रोटी कम खा लेंगे, ऐसा काम मत किया कर। इंसाफ का तराजू में राज बब्बर ने एक नेगेटिव किरदार निभाया था।

0: राज बब्बर ने सुप्रसिद्ध थिएटर पर्सनालिटी सज्जाद जहीर की बेटी और मशहूर थिएटर आर्टिस्ट नादिरा जहीर बब्बर से विवाह किया। आपसे राज बब्बर की दो संतानें हैं, आर्य बब्बर और जूही बब्बर। ये दोनों ही कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। वहीं इनकी पत्नी मशहूर अदाकारा स्मिता पाटिल से प्रतीक बब्बर हैं, जो स्वयं एक बहुत अच्छे अभिनेता हैं।
1: दिखाओगे न थामके वो जोश में यू होश से।

राज बब्बर ने स्मिता पाटिल के साथ कई फिल्में की, जिनमें प्रमुख हैं आज की आवाज, वारिस, इंसानियत के दुश्मन, आवाम, जवाब, हम दो हमारे दो, शपथ, मेरा घर मेरे बच्चे, दहलीज, किनारा और भीगी पलकें। जन्म

किसी भी कला के क्षेत्र से जुड़े शख्स का हिंदी फिल्मों से जुड़ने के पीछे की कहानी कई बार बहुत रोचक और प्रेरणादायी होती है। ऐसा ही राज बब्बर जी के साथ भी हुआ। आगरा से पढ़ाई के बाद आप पटियाला यूनिवर्सिटी के ड्रामा डिपार्टमेंट का एक हिस्सा बने। यहाँ थिएटर का आपने विधिवत प्रशिक्षण लेना आरंभ किया, जहाँ इनकी मुलाकात हुई हरपाल टिमाणा जी से, जो खुद एनएसडी से थे। आप स्वयं पंजाबी कलामंच नाम की एक सांस्कृतिक संस्था चलाया करते थे। आपने राज बब्बर से एक दिन कहा कि देखो राज बब्बर, नाटक तुम कर रहे हो और बड़े अच्छे अभिनेता हो, मैं खुद भी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से हूँ, मैं तो यही नसीहत दूंगा तुम्हें कि जाओ और एनएसडी से एक्टिंग का कोर्स करो। ये बात राज बब्बर को जच गई। सन 1972 में राज बब्बर ने एनएसडी में दाखिला लिया, जहां इनके सीनियर्स थे नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी। महान थिएटर गुरु इब्राहिम अलका जी से इन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया। शुरुआती दौर में इन्हें दारा सिंह की फिल्में काफी पसंद थी, फिर दिलीप कुमार साहब के अभिनय ने इन्हें मुतासिर किया। एनएसडी करने के बाद इन्हें प्रस्ताव मिला कि आप एनएसडी की रिपेट्री का हिस्सा बने, लेकिन राज बब्बर चूंकि दूरदर्शन से भी जुड़े थे, सुदर्शन काया थी इनकी, पर्दे पर इनकी उपस्थिति दर्शकों को पसंद भी आती थी, ये इन्हें मालूम भी था, और इसी वजह से इन्होंने शायद ये निर्णय लिया कि वो रिपेट्री का हिस्सा नहीं बनेंगे। जहां तक दूरदर्शन की बात है तो ये काम इन्हें कहा जाता है कि इलारुन जी ने दिलवाया था। यही वो दौर था जब नादिरा बब्बर से आपका मिलना हुआ और विवाह संपन्न हुआ।

फिल्मों का इन्हें मिलना अभी भी तय नहीं था। थिएटर करते रहे जब इनके अच्छे मित्र शंकर सुहेल के द्वारा इनकी मुलाकात मशहूर प्रकाश मेहरा से हुई। सलीम जावेद की जोड़ी और रमेश सिप्पी उस वक्त एक बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे थे जिसके लिए राज बब्बर का चयन हुआ। स्क्रीन टेस्ट में भी आप सफल रहे। दिलीप साहब ने जब स्क्रीन टेस्ट देखा तो खुश हुए। रमेश सिप्पी भी आश्वस्त हुए कि अब फिल्म को एक महत्वपूर्ण किरदार राज बब्बर मिल गया है। पर बाद में किन्हीं कारणों से यह किरदार निभाया अमिताभ बच्चन ने और फिल्म थी शक्ति। प्रकाश मेहरा से इनकी भेंट एक वक्त पर नाउम्मीदी को चीरती हुई उम्मीद की किरण लेकर आई। नमक हलाल में काम करने की बात चली पर इस फिल्म में भी इनका रोल शशि कपूर ने किया। यहां भी उम्मीद दगा दे गई पर आशा इनकी न छूटी। शारदा फिल्म में आप एक छोटे किरदार में नजर आए जिसमें जितेंद्र, रामेश्वरी और सारिका थी। फिर सुपरहिट फिल्म इंसाफ का तराजू ने इनकी किस्मत बदल दी। राज बब्बर अपनी फिल्मी हैसियत के साथ साथ समाज सेवा के कार्य से भी जुड़े रहे हैं और एक राजनेता के रूप में भी सक्रिय हैं। इन्होंने अपने होम प्रोडक्शन में अपने भाई के साथ मिलकर बब्बर फिल्म्स के बैनर तले 1992 में कर्म योद्धा, 2003 में काश आप हमारे होते और 2010 में टीवी सीरियल महाराजा रणजीत सिंह का निर्माण किया। सन 1981 में इंसाफ का तराजू बेस्ट एक्टर के लिए, 84 में अगर तुम ना होते सपोर्टिंग एक्टर के लिए, 85 में आज की आवाज बेस्ट एक्टर के लिए, 94 में दलाल विलन के लिए और 1996 में याराना फिल्म के विलन के लिए फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए आपको नामांकित किया गया था। राज बब्बर की कई फिल्मों ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया है जिनमें हम पांच, कलयुग, राज और पूनम है।

ये रिश्ता ना टूटे, उमराव जान और अरमान फिल्म भी राज बब्बर को एक अच्छे अभिनेता के रूप में दिखलाती है। आपस की बात, दूल्हा बिकता है, दौलत जैसी फिल्म भी इनके अभिनय से सजी थी। लिबास, दहलीज, घायल, रुदाली, माया मेम साहब, बरसात और याराना में भी राज बब्बर ने अपनी अभिनय क्षमता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया और दर्शकों ने भी इसे सराहा, प्यार किया। फिल्म बंटी बबली, कॉरपोरेट, फैशन, बॉडीगार्ड, फोर्स और तेवर जैसी नए दौर की फिल्मों में भी इनके अभिनय ने भूमिकाओं को सशक्त किया। टेलीविजन पर भी 1986 में बहादुर शाह जफर में अकबर का किरदार आपने निभाया, 1988 में महाभारत में भरत राजा का किरदार आपने निभाया, वहीं 2010 की महाराजा रणजीत सिंह में आपने नरेशन किया। 2014-15 का धारावाहिक पुकार, कॉल फॉर द हीरो जैसी सीरीज से जुड़कर आपने अपने अभिनय कौशल का जौहर दिखलाया। राज बब्बर आज भी सक्रियता के साथ सामाजिक सरोकार रखने वाली गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। राज बब्बर ने अपने अभिनय से कई किरदारों को जीवन

0: आपने सुना आज का आज के फनकार, जो कि राज बब्बर पर केंद्रित था। आलेख और स्वर जी श्याम का, संपादन आकांक्षा सिंह का और प्रस्तुति थी रमेश गोखले की।
1: आज के फनकार।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

आइए सुने छाया गीत। छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। आए जो वो जिंदगी में तो खुशियों की पालकी पर बैठ मन चल पड़ा था एक अनजानी दुनिया में। उनका दामन थाम खुशियों की गुल्लक भरते रहे, उनकी प्यार भरी निगाहों ने फूलों की बारिश की, अधरों ने लिख दी

जब जिंदगी की रफ्तार में इंसान खुद को दौड़ता हुआ रोबोट बना लेता है, जब इंसान महज लफ्ज का जादूगर हो जाता है, जब इंसान में जज्बात नहीं रह जाते, तो वो इंसान नहीं बल्कि एक पुर्जा में तब्दील हो जाता है। जिंदगी में धूप, बारिश, नमी, बादल का एहसास बना रहे, इसलिए वक्त निकालकर खुद से गुफ्तगू बहुत जरूरी है।

हंसने की चाहत कई बार जिंदगी को आंसुओं का सैलाब बना देती है। आंखों की नदी को मुस्कुराहट से ढक लेते हैं हम। दिल में खामोशियों का जहां होता है, चेहरा यूं ही कुछ बोलता रहता है, क्योंकि बोलना इंसान की फितरत है। भीड़ में रहते हुए भी हम एकाकी होते हैं। हंसने की चाहत में हम आंखों में नदी भर लेते हैं।

हमदर्द, हम साया, हम सफर का जुदा होना, जिंदगी जैसे अंधेरे से घिर जाती है। जाने वाला चला जाता है दूर, कहीं दूर, लेकिन दिल नहीं मानता। दिल अपने भीतर उम्मीद का दिया जलाए रखता है कि शायद वो आएगा। टूट कर भी जीने का हौसला पा लेता है दिल। कुछ अजीब है ये दिल, अजीब है ये जिंदगी।

वो लोग खुशनसीब होते हैं जिन्हें मिलती है सच्ची मोहब्बत। मोहब्बत कभी स्वीकारोक्ति की मोहताज नहीं होती। मोहब्बत में जलकर भी अपनी और उसकी राहें रोशन कर लेते हैं। हर किसी के हिस्से में नहीं आती सच्ची मोहब्बत। कुछ लोग मोहब्बत की राहों में चलते हुए भटक जाते हैं। वे नहीं समझ पाते मोहब्बत की गहराई। ऐसे में तन्हाई मुस्कान बनकर उनका साथ निभाती है।

हमारे मन में यादों का सागर होता है, कुछ दर्द भरी यादें, कुछ खुशगवार यादें। कुछ दर्द भरी यादों की लहरों से हमारा मन चोटिल होता रहता है, कुछ दर्दीली यादें हमें सहलाती भी हैं, हमें सिखाती भी हैं, कुछ प्यारी यादें हमें इस तरह गुदगुदाती हैं कि हम खुद को भूलकर किसी की जादू भरी बातों में खो जाते हैं।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे।

0: बजे के बीच हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने। जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: ढलती जाए रात,
3: विविध भारती से बोल रही हैं, यह है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।

0: श्रोताओं, हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले कर रहे थे। रात्रि के 11 बजने को है समाचार। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रस लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति और स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। साथ ही भारत कतर सहयोग को विभिन्न क्षेत्रों में और मजबूत बनाने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म

0: पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक हैं। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार एलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: एलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है, और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले

0: है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है, और इसका मतलब यह है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है।
1: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज दावा किया कि ईरान अपने परमाणु केंद्रों की व्यापक निगरानी के लिए सहमत हो गया है। इसके बदले अमेरिका हार्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही पर पाबंदियों में ढील देगा और कड़े नियमों के तहत रोकी गई वित्तीय रियायतें जारी करेगा। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरानी नेतृत्व ने मौजूदा कूटनीतिक बातचीत के दौरान लचीला रुख अपनाया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने परमाणु निगरानी ढांचे के दायरे से को लेकर अमेरिका के दावों को खारिज कर दिया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने स्पष्ट किया कि ईरान ने अपने विशिष्ट परमाणु केंद्रों की अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसियों द्वारा निगरानी के लिए कोई सहमति नहीं दी है। पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग के लंदन चरण के अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 4-3 से हरा दिया। भारत की ओर से अभिषेक नैन, नीलकांत शर्मा, सुखजीत सिंह और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।